अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। आज सोमवार है, शक संबत 1948 की आषाढ़ मास की आठवीं तिथि, तदनुसार 29 जून 2026 ईस्वी। प्रातः की 5:49 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातः कालीन सभा।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, प्रस्तुत है चिंतन।
1: जंतुक उद्गम सँ बहुत पूर्वे वनस्पतिक उत्पत्ति पृथ्वी पर भेल छल। तैं वनस्पतिकें जीवधारीक समूह में अग्रजक स्थान प्राप्त छैक। पहिने सूक्ष्म एवं सरल रचनायुक्त वनस्पतिक उत्पत्ति भेल, पुनः क्रमशः विशाल एवं जटिल रचनायुक्त गाछ वृक्षादिक आविर्भाव होमय लागल। जंगम वा चर जंतुक आगमन बहुत बाद में भेल। जैव विकासक क्रम में प्रथमतः शाकाहारी प्राणी आयल, जे जीवन यापनक हेतु गाछ वृक्ष लता गुल्मादि पर आश्रित छल। मांसाहारी जीव बाद में आयल। एहि जीवक जे जीवनाधार से शाकाहारीय जीव मांसाहारिक वनस्पति पर निर्भरता निर्विवाद अछि। जँ वनस्पति नहि तँ शाकाहारी जीव नहि, आ जँ शाकाहारी प्राणी नहि तँ मांसाहारी जीवक सेहो कोनो अस्तित्व नहि। जँ वनस्पतिकेँ सृष्टिक धारक पालक आ रक्षक कहल जाए तो कोनो अतिशयोक्ति नहि हैत। लोक कल्याणकारिणी भगवती के शाकंभरी कही भारतीय चिंतन वनस्पतिक प्रति अपन विनम्रता अपन कृतज्ञता प्रकट केलक अछि। जखन भगवान कहै छथि अश्वत्थो हम वृक्षानाम, तखन स्पष्टतः वनस्पतिक महत्ता ओकर श्रेष्ठता प्रतिपादित होइ छै। वनस्पतिक महत्व सँ आदि मानव परिचित छल। वृक्ष पूजाक उत्स ताकब सरल नहीं अछि। मानवक पूर्वजक आश्रय वृक्षे छल। जखन ओ पैर पर चलय लागल तखनो वृक्षे ओकरा आश्रय देलकैक। वृक्षक कंदमूलक आहार, ओकर शाखातर विश्राम, ओकर छाल पातक परिधान, वृक्षे तँ मानव जीवनक मानवक जीवन यापनक लेल साधन स्वरूप छल। कल्पतरुक अवधारणाक पाछा यह हेतु अछि। कल्पतरु जे इच्छित वस्तु प्रदान करे, वृक्ष मात्रे कल्पतरु थिक। कने विचार को देखल जाए तो स्पष्टतः वृक्ष मानवक सब मूल आवश्यकताक पूर्ति करो में समर्थ अछि। दक्षिण भारत में नारिकेली गाछ के कल्पतरु कहल गेल अछि। नारिकेल सँ नाना भोज्य पदार्थ बनै छै। जटा सँ रस्सी आ दोसर दोसर उपयोगक सामान तैयार होइ छै। घरहट करक लेल प्रयोजनीय सब सामग्री

0: नारिकेली गाछ प्रदान करै छै। जाहि परिवार का 150 नारिकेली गाछ छै ओ परिवार भोजन वस्त्र आवासक मूल आवश्यकता के पूर्ति करय में समर्थ अछि। ततबा नहि, वृक्ष वायुमंडलीय शुद्धता के लेल अनिवार्य अछि। औद्योगिकरणक संगहि वायुमंडलीय शुद्धता के समस्या विराट रूप धारण कर रहल अछि। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि विषाक्त गैसक आधिक्य भेल जाय छै। एहि विष सँ मानव के बचावक लेल वृक्ष कवचक काज करै छै। एक अध्ययनक अनुसार एक गोट सामान्य वृक्ष अपन जीवन काल में 2,00,000 टाका मूल्यक लाभ मनुष्य के पहुंचबै छै। प्राण वायु प्रदान करै छै, वायुमंडल के स्वच्छ राखै छै, बरखा आनै छै, भूमि क्षरण के रोकै छै, फल प्रदान करै छै, मूल्यवान बहुपयोगी काठ दै छै। मानव जाति द्वारा जाहि गतियां वन संपदाक दोहन भ रहल अछि ओ चिंताक विषय थिक। गाछ काटल जाय छै अधिक, रोपल जाय छै कम। वन रोपणक दिशा में सामाजिक अभिरुचि अपेक्षित छैक। सामाजिक वन रोपण आइ सामाजिक उत्तरदायित्वक अंग बनि गेल अछि। सार्वजनिक स्थान आ प्रति प्रांत में गाछ वृक्ष रोपि एहि उत्तरदायित्वक वहन कयल जा सकै छै।
1: चिंतन, अभी आप सुन रहे थे प्रसारण आकाशवाणी की दरभंगा केंद्र से किया गया। अब सुनिए किसान भाइयों को संबोधित कार्यक्रम कृषि चर्चा। आज का विषय है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। आलेख और वाचन है अनिल कुमार कर्ण का।
2: किसान भाई लोकन, आजुक कृषि चर्चा संग उपस्थित छी हम अनिल कुमार कर्ण। एक कार्यक्रम में अपने सब गोटे के स्वागत, संगे सब गोटे के नमस्कार। अपन सभक देश कृषि प्रधान देश है, जनसंख्याक बेसी भाग एक काज पर निर्भर करैत अछि। खेती पथारी वाला काजक संग हम सब पशुपालन वाला काज सब सेहो प्राचीन काल सँ कऽ रहल छी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन के बड्ड बेसी महत्वपूर्ण स्थान अछि। पशुधन सब में गाय के सेहो अपन नीक महत्वपूर्ण स्थान अछि। सरकार सेहो सकांच अछि जे गाय सभक उचित देखभाल, उन्नत नस्ल सभक विकास, ओकर संवर्धन कोना कैल जाए, एहि लेल दिसंबर 2014 में भारत सरकारक दिश सँ राष्ट्रीय गोकुल मिशन RGM कार्यक्रम आरंभ कैल गेल। एहि अंतर्गत मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय के माध्यम सँ एकर क्रियान्वयन कैल जा रहल अछि। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक विधि सँ देसी गाय महीस के नस्ल विकास, ओकर संरक्षण करब, एकर अतिरिक्त दूध के उत्पादकता में वृद्धि करब। मूल रूप सँ राष्ट्रीय गोकुल मिशन के उद्देश्य के संबंध में जो विचार करी तो गौ जातीय उत्पादकता के प्रोत्साहन दे संग कृत्रिम गर्भाधान सेवक के मजबूती प्रदान करब। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के घटक उच्च अनुवंशिक योग्यता, संतान परीक्षण, वंशावलिक चयन, जीनोमिक चयन संगे जर्म प्लाज्म के आयात के माध्यम सँ बरत सब में अनुवंशिक योग्यता में वृद्धि करैत अछि। राष्ट्रीय गोकुल मिशन वीर्य केंद्र सीमेन सेंटर एकरा सब के मजबूत करैत अछि आ सुनिश्चित गर्भधारण के लेल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रौद्योगिकी के क्रियान्वित करैत अछि। संगे पशुधन में आनुवंशिक सुधार के लेल नस्ल गुणन फार्म के स्थापना करैत अछि। कृत्रिम गर्भाधान नेटवर्क संपूर्ण देश भर में कृत्रिम गर्भाधान धरि पहुंच बनेबाक लेल ग्रामीण भारत में बहुउद्देशीय कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन सबके स्थापना के प्रोत्साहन दैत अछि। RGM डेटा प्रबंधन आ सेवा वितरण में सुधार के लेल राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन के क्रियान्वित करैत अछि। देशी नस्ल सबक संरक्षण, देशी मालजाल सबके देखभाल आ संरक्षण लेल गौशाला सबके समर्थन देल जा रहल अछि। कौशल विकास आ जागरूकता क्षमता के निर्माण कार्यक्रम के माध्यम सँ कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करब, किसान सब में जागरूकता बढ़ेबाक लेल एकर अतिरिक्त गौ जातीय प्रजनन में अनुसंधान आ नवाचार के समर्थन करब, वित्त पोषण स्वरूप पशुपालक किसान भाई लोकन डेयरी

0: उद्यमी सबके डेयरी फार्मिंग ब्रीड मल्टीप्लिकेशन आ साइलेज इकाई सबक स्थापना के लिए 20% में अनुदान के व्यवस्था कैल जा रहल है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के प्रमुख पहल के संदर्भ में जो गप करी तो गोकुल ग्राम राज्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा स्थापित एकीकृत पशु विकास केंद्र है। राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र ई एकटा उत्कृष्ट केंद्र है। एहिठाम अपन देश के देशी नस्ल जर्म प्लाज्म के राष्ट्रीय भंडार के रूप में काज करित है। किसान भाई लोकन के लिए पुरस्कारक सेहो व्यवस्था कैल गेल है। देशी मालजाल आ पशुपालक के उत्कृष्ट प्रबंधन के लेल गोपाल रत्न पुरस्कार आ कामधेनु पुरस्कार देल जायत है। ई पशु हाट प्रजनक आ किसान भाई लोकन के जोड़ वाला एकटा ई पोर्टल है। 9 पशु संजीवनी एम्बुलेंस ई मोबाइल एम्बुलेंस से पशु के आपातकालीन उपचार में मदद भेटत है। पशु संजीवनी एम्बुलेंस के पहल राष्ट्रीय गोकुल मिशन के एकटा प्रमुख हिस्सा है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन से लाभ के संदर्भ में जो गप करी तो संपूर्ण देश में दूधक उत्पादन के क्षमता में विकास के नीक संभावना है। देश में प्रति व्यक्ति दूध के उपलब्धता में सेहो वृद्धि हेबाक संभावना।
1: अभी आप सुन रहे थे दैनिक कार्यक्रम कृषि चर्चा। अब हमारे दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार।

0: भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था जो भारत और सेशल्स के करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के तहत युद्धपोत आईएनएस तरकश और सर्वेक्षण पोत आईएनएस इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया जो सेशल्स के साथ भारत की पुरानी दोस्ती को उजागर करता है। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को हार्दिक बधाई दी। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के निमंत्रण पर शनिवार को सेशल्स पहुंचे। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है जो साझा ऐतिहासिक सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के देशों के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। श्री मोदी की यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है।
1: मेरी सेशल्स की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहाँ समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहाँ हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले।
0: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की भी समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधि मंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा।

0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चे के जीवन विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। गुजरात में 4th वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू होगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में FIH प्रो लीग के रिवर्स मैच में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। ICC महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा।
2: श्रोताओं, टीबी एक ऐसी बीमारी है जिससे दुनिया में करोड़ों लोग ग्रस्त हैं और बहुत लोग इस बीमारी के कारण दम भी तोड़ देते हैं। टीबी रोग कई नामों से जाना जाता है, जैसे तपेदिक, क्षय रोग और यक्ष्मा। तो टीबी रोग के बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विजय कुमार मिश्र जी। डॉक्टर विजय कुमार मिश्र जी DMCH दरभंगा के जाने माने चिकित्सक हैं। डॉक्टर साहब, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार।
3: धन्यवाद।
2: डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं को सर्वप्रथम आप ये बताएं कि टीबी के लक्षण क्या हैं।
3: टीबी के मुख्य तो लक्षण है बुखार, कभी हल्का बुखार, कभी तेज बुखार हो सकता था। खांसी होती है, खांसी में कफ ज़्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है। कभी कभी सीने में दर्द होता है, कभी खांसी के साथ हल्का ब्लड का अंश भी दिखाई पड़ सकता है। लेकिन कोई आवश्यक नहीं कि हर एक खांसी में ब्लड आए ही आए। और स्वास्थ्य में निरंतर गिरावट आती है, मरीज सुस्तरन लगता है, उसकी भूख कम हो जाती है और कमजोरी उसको ज़्यादा परेशान करती है।
2: जी डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जाता है कि खांसी तो ठंड से भी हो सकती है, परंतु टीबी की खांसी बहुत दिनों तक रहती है क्या?
3: हाँ, लंबे समय तक अगर खांसी है, 2 सप्ताह से अधिक अवधि की खांसी है
2: जी।
3: और शुरू के प्राथमिक उपचार में खांसी की अगर ये सुधार नहीं होती है
2: जी।
3: तो हम ये संदेह कर सकते हैं कि यह खांसी टीबी के चलते हो सकता है
2: जी।
3: तो इसके कुछ जांच पड़ताल हैं। सबसे सामान्य जांच है एक सीने का एक्सरे और कफ और बलगम का जांच। यह एक विशेष प्रकार के कीड़ा के चलते होता है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इस कीड़ा को हम खून के कल्चर में देख सकते हैं, कफ में देख सकते हैं, और इसके द्वारा अगर फेफड़े में नुकसान है तो उसकी कैविटी, पैच या दाग हम एक्सरे में देखकर हम इस निर्णय पर पहुंच सकते हैं कि इस मरीज को ट्यूबरकुलोसिस की शिकायत है
2: जी। आपने कहा कि टीबी का कारण है बैक्टीरिया
3: जी।
2: बैक्टीरिया ये कैसे किसी व्यक्ति में उत्पन्न होता है? ये
3: जैसे कि कोई मरीज ग्रसित है ट्यूबरकुलोसिस से, उसके आसपास में लोग बैठेंगे, उसको खांसी होगी, तो खांसी या छींक 6 मीटर तक अगले व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है
2: जी।
3: तो खांसी के द्वारा उसके कीड़े के जो सूक्ष्म, जो खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, उस व्यक्ति के श्वासा के रास्ते वो प्रवेश कर सकता है और उसको नुकसान पहुंचा सकता है
2: जी। लेकिन इसमें कौन सा अंग है टीबी में जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है?
3: देखिए, मुख्यतः ट्यूबरकुलोसिस 2 प्रकार का होता है, एक पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी, मतलब एक फेफड़े से संबंधित और एक गैर फेफड़े से संबंधित। तो मुख्य रूप से हमारे आसपास या गरीबी देशों में या जहाँ पर कि भरण पोषण या पौष्टिक भोजन आहार नहीं मिलते हैं, वहाँ पर फेफड़े की टीबी ज़्यादा होती है। परंतु वही कीड़ा अन्य अंगों को जैसे लिम्फ नोड, हड्डी में

0: के जोड़ों में, मूत्र रोग में, कहीं भी उसका इन्फेक्शन होगा, इसको हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। तो मुख्य रूप से फेफड़ा ही इसमें प्रभावित होता है और इसी से आजकल सारी दुनिया आक्रांत है
1: जी। ऐसा भी लोग कहते हैं, या भ्रम कहिए या सच्चाई कहिए, कि लोग कहते हैं कि कोई हर टीबी जो है इन्फेक्शस नहीं होता है, किसी को टीबी है भी तो नॉन इन्फेक्शस टीबी है, यदि वो खांसता भी है तो उस व्यक्ति के साथ बैठकर आप खाना खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं।
0: ये निर्भर करता है कि अगला व्यक्ति के शरीर की डिफेंस, सुरक्षात्मक प्रक्रिया कितनी मजबूत है
1: जी।
0: अगर वो व्यक्ति पूर्व में बचपन में उसको टीका पड़ा है तो उसको होने की संभावना कम रहती है, और वो स्वस्थ व्यक्ति है, उसकी जीवन शैली स्वस्थ है, कभी अचानक वो ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आता है तो संभावना घट जाती है। परंतु HIV जो आज के तारीख में जो बहुत बड़ी समस्या है, किसी भी व्यक्ति को HIV रोग है तो उसके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है, वैसे व्यक्ति को जरा भी इन्फेक्शन का डोज मिलने पर उसको होने की प्रबल संभावना रहती है।
1: इस हिसाब से समझा जाए कि जो आदमी पौष्टिक आहार नहीं लेता है या उसकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कमज़ोर है, वैसे व्यक्ति को TB होने की संभावना ज़्यादा रहती है।
0: हाँ, बशर्ते कि वो TB मरीज के आसपास या संपर्क में रहे तो।
1: जी, ऐसे नहीं होता
0: जी, ऐसे सामान्य रूप से नहीं होगा
1: जी। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे श्रोताओं को TB के कारण क्या है, लक्षण क्या है, इसके बारे में जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब सुनिए भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम के आरंभ में सबसे पहले ये देशगान।

आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना। आप हमारे सभी कार्यक्रम रेडियो सेट के अलावा मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR ऐप और सुनते रहें आकाशवाणी दरभंगा के सभी कार्यक्रम। अगला भजन हम आपको सुनवाते हैं,

सुरेश वाडकर के स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये भजन। आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना। अगला भजन हम आपको सुनवाते हैं, स्वर है हरिहरन का।

जगजीत सिंह के स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये भजन। इसी भजन के साथ भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना अब यही संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, प्रस्तुत है रामचरितमानस गान। मुख्य स्वर है भूपेंद्र सिंह का।

श्री राम के नाम की महिमा अपरंपार है। नाम के प्रसाद से ही शंभु अविनाशी हैं और अमंगल वेशधारी होकर भी मंगलकारी हैं। नारद मुनि ने नाम की महिमा को जाना और हरे तथा हर दोनों के प्रिय हो गए। विमाता के दुर्व्यवहार से दुखी होकर ध्रुव ने प्रभु का नाम जपा और ध्रुवलोक प्राप्त किया। राम के नाम स्मरण से ही हनुमान ने आराध्य को अपने वश में करके उनकी कृपा प्राप्त की। कलयुग में प्रभु के नाम को कल्पतरु अर्थात मनचाहा फलदायी बताया गया है। इसी नाम का स्मरण करके गोस्वामी तुलसीदास ने तुलसी की पवित्रता प्राप्त की। नाम की महिमा गाकर जीव चारों युगों तीनों काल तथा तीनों लोकों में शोक से मुक्ति पा जाते हैं। वेद पुराण तथा संतों ने नाम की ही महिमा गाई है। कहते हैं सतयुग में ध्यान त्रेता में यश तथा द्वापर में पूजा अर्चना से प्रभु प्रसन्न होते हैं, किंतु कलयुग में मनुष्य मन पाप रूपी समुद्र की मछली के समान है। इस कारण वो ध्यान यज्ञ अथवा पूजा अर्चना संपन्न नहीं कर पाता। अतः कर्म भक्ति तथा ज्ञान के अभाव में नाम स्मरण ही एकमात्र आधार है।

रामचरितमानस का। अभी आप सुन रहे थे प्रसारण आकाशवाणी की दरभंगा केंद्र से किया गया। जानकारी प्राप्त कीजिए आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ देर बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार मिथिला 7:05 पर। उर्दू प्रोग्राम अंजुमन आप सुना करते हैं 9:10 से। फिल्म संगीत का समय होगा 10:00। 10:30 पर आप सुनेंगे विद्यापति की। शास्त्रीय संगीत का समय होगा दिन के 11:00। 11:30 पर आप सुना करते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

बारह बजे समय होगा फिल्म संगीत का। बहनों को संबोधित कार्यक्रम नारी संसार आप सुना करते हैं 12:30 से। देशभक्ति गीत का समय होगा 1:10 पर। फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे 1:15 पर। रोजगार सूचना आप सुनते हैं 2:10 पर। 2:30 पर फिल्म संगीत का समय होगा।

लोकगीत का समय होगा दोपहर 3 बजे। सांधकालीन सभा के अंतर्गत आप सुनेंगे युवा दोस्तों को संबोधित कार्यक्रम तरुण कुसुम, संध्या 5 बजे। विद्यापति गीत का समय होता है 6:10 पर। ग्रामीण भाइयों को संबोधित कार्यक्रम गांव घर आप सुना करते हैं संध्या 6:30 से। किसान भाइयों को संबोधित कार्यक्रम खेती गृहस्थी का समय होता है संध्या 7 बजे। फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे 7:52 पर। मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार आप सुना करते हैं 8:15 पर। पब्लिक स्पीक यह कार्यक्रम आप सुनेंगे 9:30 से। और फरमाइशी फिल्मी गीतों पर हमारा फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी का समय होगा 10:00। ये था आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डाक्टर् गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी सेशल्स् देशस्य राष्ट्रियदिवसस्य स्वर्णजयन्ती समारोहे मुख्य अतिथिरूपेण भागं गृहीतवान्। भारतीय सैनिक बलस्य अथ नौसेना बलस्य दलानि अपि अस्मिन् पथ संचलन कार्यक्रमे भागं गृहीतवन्तः। अस्मिन् अवसरे श्रीमोदी सेशल्स् देशस्य नागरिकेभ्यः भारतपरं वर्धापनं प्रकटितवान्। विक्टोरिया इत्यत्र राष्ट्रपतिना पैट्रिक हर्मनी इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्तानन्तरं श्रीमोदी उक्तवान् यत् भारतं तादृशीं हिन्द महासागरस्य कल्पनां करोति यत्र समुद्रीय सुरक्षया सह आर्थिक समृद्धिरपि सुनिश्चिता स्यात्।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: पर्यावरण संरक्षणस्य सतत विकासस्य च नेतृत्वाय सेशल्स देशेन प्रधानमन्त्रिणे श्रीनरेन्द्र मोदिने पर्यावरण नेतृत्वस्य सर्वोच्च सम्मानः गार्डियन ऑफ द ब्लू होरिजन प्रदत्तः। सेशल्स देशस्य राष्ट्रपतिना पैट्रिक हर्मनी इत्यनेन प्रदत्तः अयं पुरस्कारः स्थायि अभिवृद्ध्यर्थं प्रधानमन्त्रिणः दीर्घकालीन सम्बलस्य तस्य हरितदृष्टेः च प्रतीकः वर्तते। श्रीमोदी जलवायु परिवर्तनस्य समाह्वानानां विरुद्धं संघर्षं कुर्वतां राष्ट्राणां कृते एतं पुरस्कारं समर्पितवान्। प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी सेशल्स देशे ह्यः मारिशस देशस्य समकक्षेन डॉ नवीन चन्द्र रामगुलामेन सह मिलितवान्। द्वावपि नेतारौ भारतस्य मारिशसस्य च वर्तमान सहकार्यस्य विषये चर्चां कृतवन्तौ। भारतेन प्रदत्त विशेष आर्थिक अनुदानस्य कार्यान्वयनस्य प्रगतेः अपि तौ समीक्षां कृतवन्तौ। द्वावपि नेतारौ भारतस्य विजन महासागर इत्यस्य तथा नेबरहुड फर्स्ट इति नीतेः अन्तर्गतं भारत मारिशस वर्धित रणनीतिक सहयोगस्य महत्वस्य विषये वैश्विक दक्षिणस्य प्रति तेषां प्रतिबद्धतायाः विषये च सहमतिं प्रकटितवन्तौ। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक प्रकरणे भिवांडी नगरस्य सत्र न्यायालयेन त्रयाणां आरोपिणां कृते 6 जुलाई पर्यन्तं बन्धनं विहितम्। आरक्षी अन्वेषकाः अन्ताराज्य परीक्षा तस्कराणां संलग्नतायाः शंकां कृतवन्तः। भिवांडी आरक्षिणः न्यायालयं निवेदयन् यत् आरोपी दिल्लीतः भिवांडीनगरं गत्वा उक्त टीईटी प्रश्नपत्रं 1,50,00,000 रूप्यकेषु विक्रीतवान्। आरक्षी अन्वेषकाः लीक कृतस्य कागदस्य स्रोतः अन्वेष्टुं वित्तीय व्यवहारस्य परीक्षणं कर्तुं महाराष्ट्रे अन्यत्र कागदं विक्रीतम् अस्ति वा इति ज्ञातुं तस्करसमूहस्य अन्येषां सदस्यानां परिचयं कर्तुं च 10 दिनानाम् आरक्षि अभिरक्षणं याचितवन्तः आसन्। अधिकारिणः अवदन् यत् अन्वेषणेन अन्तर्राज्यस्य राष्ट्रियस्तरस्य च जालस्य संलग्नता ज्ञाता वर्तते। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा अद्य नवदिल्ल्यां केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण परिषदः 16 सम्मेलने समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्य

0: क्रमस्य विमोचनं करिष्यति। श्रीनड्डा अस्मिन् एव सम्मेलने अनीमिया मुक्त भारत अभियानस्य परिचालन मार्गदर्शिकाः अपि विमोचयिष्यति। एनीमिया मुक्त भारत अभियानम् इत्ययं कार्यक्रमः भारतस्य एनीमिया विरुद्ध युद्धे महत्वपूर्णं सोपानं भविष्यति। वाणिज्य उद्योगमंत्री पीयूष गोयलः संयुक्तराज्यस्य भ्रमणस्य समाप्तेः अनन्तरं ग्रीस देशस्य एथेन्स नगरे व्यापारं निवेशं सामरिकं आर्थिक सहकार्यं च सुदृढीकर्तुं भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमण्डलस्य उच्चस्तरीय सम्मेलनस्य नेतृत्वं कुर्वन् वर्तते इति वार्ताः।
1: मीडियम वे पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ। आप सभी श्रोताओं का नमस्ते लखनऊ कार्यक्रम में
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने इस समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। परेड में नौसेना और थलसेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया। इसमें भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था, जो भारत और सेशल्स को करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के तहत युद्धपोत आईएनएस तरकश और सर्वेक्षण पोत आईएनएस इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया, जो सेशल्स के साथ भारत की पुरानी दोस्ती को उजागर करता है। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को हार्दिक बधाई दी। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हमनी के निमंत्रण पर शनिवार को सेशल्स पहुंचे। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के देशों के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। श्री मोदी की यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हमनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है।
3: मेरी सेशल्स की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहाँ समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहाँ हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहाँ हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले।
2: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स की सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चे के जीवन विकास पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है।

0: हफ्ते पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में FIH प्रो लीग के रिवर्स मैच में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। ये हॉकी विश्व कप से पहले FIH हॉकी प्रो लीग में भारतीय टीम का आखिरी मैच था। इस जीत के बाद विश्व कप से पहले टीम का आत्मविश्वास बढ़ा है। ICC महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया। लॉर्ड्स में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 4 विकेट पर 170 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट पर 172 रन बनाकर मैच जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार मिथिला।

0: नमस्कार मिथिला, नमस्कार श्रोता लोकन, आजुक नमस्कार मिथिला कांक में हम रंजीत और हमारे संग कहिया महू का हमारा नमस्कार।
1: जी हाँ बिल्कुल रंजीत जी, आपको भी और तमाम श्रोताओं को नमस्कार।
0: जनक श्रोता लोकन के बुझल छन कि कार्यक्रमक शुरुआत हम अपन करै छी सुविचार सँ, तो सबसँ पहले आजुक सुविचार।
1: जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है, स्वामी विवेकानंद ने कहा।
0: देखो स्वामी विवेकानंद के जे शब्दक बुनल जाल थिक ओ कतौ ने कतौ हमरा सब लोकन के प्रेरणा स्रोत। सीखबा के लेल कोनो उम्र के पाबंदी नहीं होइ छै, जखन अहाँके इच्छा जागृत हो जाए तखन से अहाँ सीखनाइ शुरू कऽ सकै छी। और तकर ज्वलंत उदाहरण आए दिन अखबार और सोशल मीडिया के संगे संगे आकाशवाणी और दूरदर्शन सँ सेहो अपना लोकन देखैत हेबै। हाल फिलहाल में एगो 70 या 72 वर्ष के व्यक्ति परीक्षा दैत नजर आबै छला है। तो और नमस्कार मिथिला के अंक में आब हमरा लोकन एक डिग्री आगा बढ़ै छी और श्रोता लोकन से जानकारी साझा करै छी जे आजुक दिन की खास महत्व राखैत अछि हमरा समाज में, हमरा राष्ट्र में, यानी कि 29 जून। आउ जानकारी साझा कऽ रहल छथि कहिया
1: आज ही के दिन क्या कुछ खास था। 29 जून 1893 को इस दिन देश के महान सांख्यिकविद पीसी महालनोबिस का जन्म हुआ था, जिनकी याद में हर साल राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। आज ही के दिन 1613 में लंदन का प्रसिद्ध शेक्सपियर का ग्लोबल थिएटर आग लगने से पूरी तरह से जलकर जल गया था। 29 जून 2007 को तकनीकी की दुनिया में क्रांति लाते हुए अपना पहला आईफोन बिक्री के लिए बाजार में उतारा गया था।
0: तो इचल आजुक दिन के साझा श्रोता लोकन महालोकन जानकारी श्रोता लोकन से साझा कयलहुँ। और कहिया हमरा लोकन बात करब जे भारत वर्ष में जे एकटा सबसँ पैघ समस्या अइ मुँह बने ठाढ़ थिक, ओ समस्या थिक कचरा मुक्त भारत के। जे भारत जे अइ से कचरा मुक्त कोना हैत, प्लास्टिक के जे कचरा अइ खास कऽ कऽ प्लास्टिक जे आइसँ लगभग 2 दशक 2.5 दशक पहिले हमरा समाजमे एकर कोनो कतौ स्थान नहि छल, मुदा आइ ओ प्लास्टिक हमरा जीवनके महत्वपूर्ण शैली भऽ गेलै। लोक बाजार जाइ छथि, थैला कही झोड़ा कही लऽ कऽ घरसँ बिसरि जाइ छथि या जानिकऽ नहि लै छथि, दुनू बात भऽ सकै छै। आओर प्लास्टिकके कैरी बैगके उपयोगके रूपमे करै छथि और ओ हमरा प्रकृति के लेल कतेक हानिकारक थिक, जे जीव जंतु छै ओकरा लेल कतेक हानिकारक छै, से अपने लोकन ओकर दुष्प्रभाव और ओकर परिणाम देख रहल छियै। तकरा बावजूदो हमरा लोकन एहि चीज सँ बचबा के उपाय नहि ताकि रहल छी, बशर्ते ओहि पर हम निर्भर भऽ गेल छी।
1: जी हाँ बिल्कुल, प्लास्टिक एक आदत सी बन गई हमारी, कि जैसा कि रंजीत जी ने कहा कि हम बहुत सारी चीज़ों को जानबूझकर समझते बूझते भी छोड़ देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं।

0: हैं कि चलो ये चीज़ की मार्केट में है, हम ले लेंगे, कर लेंगे। अगर आप एक छोटी छोटी आदत, उसका जो झोला है या जो कैरी बैग है, तरह तरह का मार्केट में मौजूद है,
1: जी, जी.
0: आप उसको कर सकते हैं घर में। बहुत भी आप सिलाई के माध्यम से एक छोटा सा पॉली टाइप का बैग बना सकते हैं, जो आप प्रयोग करने में आप उसे मार्केट ले जा सकते हैं, अपने रोज़मर्रा की लाइफ में आप उसका प्रयोग कर सकते हैं।
1: देखियो, थोड़े दिन पहले अपने सब गोटे सुनने हेबे जे सरकार पोलोथीन पर पूर्णतया बंद लगा प्रतिबंध क दिल्कै है, मुदा जखन आ यहाँ बाजार में चल हम दरभंगा आकाशवाणी के स्टूडियो में जो बैस के कह रहा, सिर्फ स्टूडियो से नहीं कह रहा, हम ओई चीज के शब्द के माध्यम से चित्रण कर रहा छी जे अहाँ के सामाजिक स्तर पर समाज में नजर आबि रहा है। आई अगर अहाँ के यहाँ देख लेबे जे कि अगर एक किलो सब्जी हरा खरीद ले जाए छथि तो हुनका संग में झोरा या कैरी बैग थैला नहीं रहे छन, हुनकर निर्भरता छन ओई पोलोथीन पर, जाए पोलोथीन के सरकार बंद कर देने छे। ओकरा लेल कतेक दिन पुलिस विभाग के द्वारा, कस्टम के द्वारा, उत्पाद विभाग के द्वारा छापेमारी कैल गेल, बहुत तरह के बात भले, लेकिन बावजूद एकर ओकर उपयोग समाज में बंद नहीं भले। कारण जे भेल हुई, या तो हमर मनोदशा ओकरा बदलाव के नहीं है, या फिर ओ चीज से हम खतरा के भैंप नहीं रहल छे, दुनू तरह के बात छे। तो ऐसे बचबा के लेल हमरा अखन के प्लास्टिक के उपयोग पर निर्भरता कम करबाक चाही। और अब चर्चा हमारा अखन आगा से हो कर बातचीत, मुदा तो पहले अखन ए फिल्म संगीत के आनंद लै छी, माफ कर दिया, अखन हमारा मैथिली सुगम संगीत के आनंद लै छी। अब श्रोता अखन सुनै छी सुंदरसन मैथिली गीत।

0: उम्मीद करते हैं श्रोताओं को ये मैथिली सुगम संगीत बिल्कुल पसंद आया होगा, और आकाशवाणी दरभंगा से हर एक चीज़ को हम समय के साथ आप तक प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, और कोशिश करते हैं कि हर एक चीज़ समय से ही हो, और यूं ही हमें अपने लाइफ में, अपने जीवन में समय के साथ चलते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। और अब समय हो चुका है हालचाल का, हालचाल प्रस्तुत करेंगे रंजीत कुमार झा।
1: धन्यवाद कहिया, नमस्कार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार के पंचायत के आत्मनिर्भर बनाबक लेल संकल्प जतौलनि हैं। वो कहलनि हैं कि पंचायत आत्मनिर्भर है तखन बिहार समृद्ध है। एहि उद्देश्य से पंचायत दिवस के आयोजन कयल जा रहा है। एकरा जरिए पंचायत के गरीबी मुक्त, स्वच्छ, समृद्धि और आत्मनिर्भर बनेनाइ अछि। एहि में स्वास्थ्य, शिक्षा, जल प्रबंधन, सिंचाई, पेयजल, स्वच्छता, हरित विकास, सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा जैसन विषय पर व्यापक चर्चा कऽ योजना के तैयार कयल गेल है। राज्य के सब ग्राम पंचायत में प्रत्येक महीना के अंतिम रवि को पंचायत विकास दिवस आयोजित कयल जाय। मुख्यमंत्री रवि को मुंगेर के टेटिया ग्राम पंचायत के पंचायत विकास दिवस के शुभारंभ करवा के बाद ऐ चीज के घोषणा कलन। वो कहलन कि वर्ष 2029 से पहले सब जिला मुख्यालय के फोर लाइन से जुड़वा के परियोजना पर काज कैल जा रहा है और जल्दी ऐ पर निर्णय लेल जाय। दरभंगा जिला के वरीय अधिकारी रवि को जिला के सब गैस एजेंसी के औचक निरीक्षण कैलन। जिला आपूर्ति पदाधिकारी बतौलन कि जिला में LPG गैस के पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता है। वो कहलन कि जिला में रवि को लगभग 75 गो गैस एजेंसी के माध्यम से 4,282 LPG सिलेंडर उपभोक्ता के बीच बांटल गेल, जाहि में सदर अनुमंडल में 1,176, बेनीपुर में 1,744, बिरौल अनुमंडल में 1,362 सिलेंडर बांटल गेल। ओत 29 जिन को सदर अनुमंडल में 6,494, बेनीपुर अनुमंडल में 1,384, बेरी और बिरौर अनुमंडल में 5,986 LPG सिलेंडर वितरण करवा के लक्ष्य निर्धारित कैल गेल है। उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद बतौलन कि जिला में पेट्रोलियम पदार्थ और LPG सिलेंडर के कोनो कमी नहीं है। 75 गो गैस एजेंसी के द्वारा बुकिंग के अनुरूप सुव्यवस्थित और सुचारू ढंग से LPG आपूर्ति उपभोक्ता के बीच कैल जा रहा है। संगे वो कहलन है कि कोनो तरह अपवाह से आम जनता के बचबाक चाहिए और जिला अधिकारी के द्वारा जो नियंत्रण कक्ष बनाओल गेल अछि ओहिमे से सही सही जानकारी लोग के प्राप्त करबाक चाही। पोलियो के जड़ से मिटाबक के संकल्प के संगे रवि को अनुमंडलीय अस्पताल बिरौल में पल्स पोलियो अभियान के आगाज कैल गेल। SDO शशांक राज चिकित्सा प्रभारी अधिकारी डॉक्टर भगवान दास के मौजूदगी में अस्पताल में जन्मल आधा दर्जन से बेसी बच्चा के पोलियो के 2 बूंद पिया के अभियान के शुभारंभ कैल गेल। एहि में अभिभावक से अपील कैल गेल कि बच्चा के जिंदगी भर के अपंगता से बचाव के लिए खुराक जरूर पियाबी। मौका पर स्वास्थ्य प्रबंधक जमशेद आलम सहित कतेको आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, अस्पताल के चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी मौजूद छला है। ओते केवटी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पल्स पोलियो अभियान के विधिवत शुभारंभ प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर निर्मल कुमार लाल के अध्यक्षता में कैल गेल। अ अवसर पर डॉक्टर दीनदयाल वैश्य, स्वास्थ्य प्रबंधक दिनेश आनंद सेहो उपस्थित छला है। केवटी ग्राम पंचायत सरकार भवन में रवि का ग्राम सभा के आयोजन कैल गेल। ग्राम सभा में पंचायत के द्वारा कैल गेल विकास कार्य और आगामी योजना के विस्तृत जानकारी उपस्थित ग्रामीण के संगे साझा कैल गेल। संगे रुकल भुगतान और अन्य समस्या के विस्तार से हो चर्चा कैल गेल और संबंधित विषय पर आवश्यक कार्रवाई के अनुशासन देल गेल।

जिला में 5 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान के विधिवत शुभारंभ रविवार को सीएससी कुशेश्वर स्थान में सेहो कैल गेल। अभियान के उद्घाटन जिला अधिकारी कौशल कुमार नवजात बच्चा के पोलियो रोधी दवाई के 2 बूंद पिया कलन। एकरा संगे जिला भर में जन्म सौ 5 वर्ष तक के बच्चा के पोलियो रोधी के खुराक पियाब के लिए विशेष अभियान शुरू कैल गेल। कार्यक्रम के दौरान जिला अधिकारी और हुनक धर्मपत्नी नवजात के खुराक पिया कर अभिभावक के संगे सफलता के स्वास्थ्य विभाग के शुरू कैलन। डीएम बतौलन कि अभियान 2 जुलाई तक विशेष अभियान के रूप में चलाओ जा रहा है। वो कहलन है कि 0 से 5 वर्ष तक के बच्चा के खुराक पियनाई सुनिश्चित कैल जाए और एको गो बच्चा नहीं छूटे, अ बात पर बेसी ध्यान देवक चाहिए। जिला अधिकारी आम जनता से हो अपील करें हैं कि जिनका घर में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चा उपलब्ध हैं, वो अपन नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या टीकाकरण केंद्र पर जाकर बच्चा के पोलियो के खुराक पियवा सकै छथि। दरभंगा जिला के 18 प्रखंड में रविवार जीविका के ओर से कार्यक्रम के आयोजन कैल गेल। कार्यक्रम में हजारों जीविका दीदी सक्रिय भागीदारी निभावत। महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास, स्वरोजगार, सामुदायिक सहभागिता एवं नशामुक्त समाज के निर्माण के प्रति संकल्प दोहरौलन। अय अवसर पर विभिन्न ग्राम संगठन और संकुल स्तरीय संघ के माध्यम से प्रभात फेरी निकालल गेल और मद्य निषेध और नशामुक्ति अभियान के समर्थन में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित सेहो कैल गेल। जीविका दीदी नशा से हुआ वाला सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी दुष्प्रभाव पर विस्तार से चर्चा कैलन। दरभंगा में नव निर्मित एवं चालू सत्र 2026-27 में शुरू भेल केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 एम्स के नामांकन के प्रक्रिया अंतिम चरण में है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियम के अनुसार नवका स्कूल में शुरुआती में बाल वाटिका 1, 2, 3 और कक्षा 1 से 5 तक के संचालित करावा के मंजूरी दिलक है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के मानक संचालन प्रक्रिया के तहत कोनो नवका केंद्रीय विद्यालय के प्रत्येक सेक्शन में प्रति कक्षा अधिकतम 40 गो छात्र के नामांकन के प्रावधान उपलब्ध कराओल गेल है। ई विद्यालय में अही सत्र से शुरू भ रहा है और एमए फिलहाल एक एक सेक्शन में संगे प्राथमिक कक्षा से हो चलायल जाए। विद्यालय प्रशासन के द्वारा बाल वाटिका और कक्षा 1 से 5 तक के लेल ऑफलाइन और ऑनलाइन आवेदन के बाद लॉटरी और प्रोविजनल चयन के सूची जारी कर दल जाए। चयनित छात्र के दस्तावेज के सत्यापन के बाद दाखिला के प्रक्रिया के तेजी से पूर्ण कैल जाए। ई स्कूल वर्तमान में +2 राज्य के उच्च विद्यालय कोल्हापोटी पटोरी के भवन में अस्थायी रूप से संचालित कैल जा रहा है। केवटी प्रखंड के कोठिया पंचायत के पंडारुच वार्ड में हाल में दिल आग लगी में 3 गो घर जलकर राख भ गेल छल। अई में जानकारी के बाद दरभंगा से भेटल छल। मिलत सूचना के बाद डीएम से अध्यक्ष कौशल कुमार और आपदा प्रबंधन विभाग के समाहर्ता सलीम अख्तर के दिशा निर्देश में दरभंगा के टीम के कोषाध्यक्ष रविंदर कुमार और संचालक नीजर खेड़िया के अगुवाई में कोठिया पंचायत के लिए रवाना कैल गेल। अई में अग्नि पीड़ित व्यक्ति के सब तरहक सुविधा जिला अधिकारी के तरफ से उपलब्ध कराओल गेल। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में शिक्षा शास्त्री बीएड सत्र 2025-27 के प्रथम वर्ष और सत्र 2024-26 के द्वितीय वर्ष के वार्षिक परीक्षा सोमवार से शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित वातावरण में आरंभ भ गेल। मुख्यालय स्थित बहुदेशीय भवन में रविवार शुरू भेली परीक्षा आगामी 3 जुलाई तक संचालित है। प्रथम पाली 10 बजे से और दोसर पाली 2 बजे से 5 बजे तक परीक्षा लेल जा रहा है। प्रथम पाली के प्रथम वर्ष के छात्र तथा दोसर पाली में द्वितीय वर्ष के छात्र परीक्षा दौ रहा है। विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम में प्रत्येक वर्ष 100-100 सीट निर्धारित कैल गेल है। रविवार प्रथम पाली में शिक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष के परीक्षा में 75 गो परीक्षार्थी और दोसर पारी में 95 गो परीक्षार्थी शामिल भेला। ई हाल चाल अखन अपने लोकन आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहल छी। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के होमगार्ड सेवा के कंपनी कमांडर गुलम समादेशक के 65 गो पद के लिए विज्ञापन जारी कर दल गेल है। अय पद के लिए 30 जून से 30 जुलाई 2026 तक आयोग के आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन ले जा सकते हैं। न्यूनतम 20 वर्ष उम्र के स्नातक और समकक्ष उत्तीर्ण अभ्यर्थी अय पद के लिए आवेदन कर सकते। अधिकतम आयु सामान्य कोटि के पुरुष के लिए 37 वर्ष और महिला के लिए 40 वर्ष निर्धारित किया गया है। नियुक्ति 3 चरण में है। पहल चरण में प्राथमिक लिखित परीक्षा, दूसरे चरण में मुख्य लिखित परीक्षा और तेसर चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा के बाद नियुक्ति कैल जाए। बिहार के बैंक में किसान के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैया अखनों बरकरार है।

0: खेती किसान के लगभग किसान के लोन देवे में बैंक कोताही बरतैत अछि। पिछला एक साल में राज्य में किसान के लक्ष्य के अनुरूप मात्र 68% लोन बैंक किसान के मंजूरी कलक है। राज्य में 1.14 लाख आंगनबाड़ी केंद्र पर भ रहल गतिविधि के निगरानी पोषण ट्रैकर के माध्यम से कैल जाय। एकरा सशक्त बनाबो के लेल समाज कल्याण विभाग आब मुख्यालय स्तर पर पोषण ट्रैकर कमांड सेक्टर के स्थापित करबाक निर्धारित कलक है। बिहार में 30 जून से शुरू होबय वाला श्रावणी महोत्सव के लिए 3 जिला में 129 को डॉक्टर के प्रतिनियुक्ति कैल गेल है। देश भर में निबंधित बेरोजगार में बिहार दोसर पायदान पर आयल गेल है। नेशनल कैरियर सर्विस NCS पोर्टल पर अखन तक देश भर में 6,26,00,000 से बेसी बेरोजगार अपन पंजीकरण करौलन है, जाहि में बिहार के 54,14,000 से बेसी बेरोजगार पंजीकृत करौलन है। एहि के संगे आजुक सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधि सम्पन्न होइत अछि। नमस्कार।
1: हालचाल के बाद श्रोताओं को अवगत करा दें लोकल अपडेट से। नगर में सफाई, पेयजल, स्ट्रीट लाइट व मृत पशु आदि से संबंधित शिकायत को लेकर निगम के नियंत्रण कक्ष के मोबाइल नंबर हैं 6226202777 40 पर आप शिकायत कर सकते हैं। शहर में बिजली की समस्या होने पर फ्यूज कॉल सेंटर के मोबाइल नंबर हैं 7763818777 पर आप संपर्क कर सकते हैं। ट्रेनों की बात करें तो सुबह 5 दरभंगा से पटना के लिए पैसेंजर, सुबह 6:30 पर दरभंगा से पटना के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस, 8:15 पर दरभंगा से नई दिल्ली के लिए बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट, दोपहर 12:30 पर दरभंगा से पटना के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस, शाम 7 दरभंगा से नई दिल्ली के लिए स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट। विमानों की बात करें तो सुबह 9:30 पर दरभंगा से मुंबई के लिए, सुबह 11:30 पर दरभंगा से दिल्ली के लिए, दोपहर 12:25 पर दरभंगा से कोलकाता के लिए, दोपहर 12:50 पर दरभंगा से दिल्ली के लिए, दोपहर 1:35 पर दरभंगा से मुंबई के लिए। ये विमान रविवार, सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को है। दोपहर 3 दरभंगा से हैदराबाद के लिए और शाम 4:35 पर दरभंगा से दिल्ली के लिए।
0: तो अखन यातायात संबंधी और मौसम संबंधी जानकारी कहिया हम अपने लोकन के बतबे छे और हमारा लोकन कहिया हम चर्चा करे छे प्लास्टिक मुक्त भारत से। तब देखियो, प्लास्टिक एक एहन अवशेष प्रकृति में नवका अनुसंधान में तैयार कैल गेले जे कि खत्म नहीं होइ छे। अहाँ पतला पोलोथीन देख लियो, प्लास्टिक के देख लियो, तो अगर अहाँ ओकरा में आगो लगेबे तो जड़ कते टाके गुठली बनि के रह जाइ छे। और ओकर सबसे ज्वलंत उदाहरण हम अहाँ के दी, हालांकि अखन बारिश के मौसम आबि गेल छे और मानसून से वो दस्तक दो देने अछि, अहाँ देखैत हेबै जे रोड के किनारे जे नाला बनल छे, कोनो कोनो नाला में अहाँ देखैत हेबै जे खाली प्लास्टिक के जे छै से जीपर पैकर सब वगैरह सँ सबटा ओ जाम पड़ल छै। पानि के जे नाला के पानि के बहाव जे छै ओ बहाव के गतिरोध पैदा कऽ रहल छै। ओकर ठीक उल्टा अहाँ देखबै पर्यटन करबल है, पर्यटन में पर्यटक के रूप में जे हमर साथी महानुभाव श्रोता लोकन सब कतौ कतौ घूमय फिरल जाय छै, गर्मी छुट्टी बिताबल जहाँ तहाँ गेल छलाह है सब गोटे, तो अपना संगे प्लास्टिक लऽ कऽ सेहो गेल छलाह। और अहाँ देख लेबै कि जमीनों के नीचा में अगर अहाँ कोनो प्लास्टिक के गाड़ि दियौ तो ने गोलै छै, ने सोरै छै, ने पोचै छै, ने जोरै छै। एतेक ठोस और एतेक मजबूत पदार्थ और कोनो छैहे नहि, लेकिन ओकर दुष्परिणाम की छै से अहाँ देख लियौ। अगर अहाँ कोनो नाला में प्लास्टिक दऽ देलियै तो माटि के जे पानि के एब्जॉर्ब करबाक शक्ति छै, माटि जे पानि के शोषण करै छलैए, ओ बंद भऽ जाइ छै। तकर परिणाम की होइ छै, तऽ पानि के जे माटि करबा माटि के जे पानि के शोषण करबाक शक्ति छलै से प्लास्टिक के रोकि दै छै, पृथ्वी के अंदर पानि नहि जाइ छै। और दोसर तरफ हम अहाँ कहै छी जे कल हमर सुखा गेल, कल पानि नहि दैए, सब तरह रोड ढालि देलियै, पक्का मकान बना देलियै, पक्का रोड बना देलियै, ओ जे धरती जे पानि जे शोषण कऽ करै छलै फिर बाद में हमरा वएह पानि भेटै छलै, आब ओ शोषणे नहि कऽ रहल छै। पोखरि भरा गेलै, इनार भरा गेलै, पानि पृथ्वी शोषण नहि कऽ रहल छै, एम्हर हम अहाँ दोहन कऽ रहल छियै। तऽ एकटा प्लास्टिक के कारणे प्लास्टिक प्रदूषण सँ कतेक दुष्परिणाम भऽ रहल छै और आबय वाला भविष्य में कतेक एकर दुष्परिणाम घातक हेतै से हमरा लोकनि अखन आकलन नहि कऽ रहल छियै। और क्षणिक सुख के लेल और दिखावा के लेल, सुख तो मानि लिया बाद वाली चीज छै,

0: सिर्फ और सिर्फ देखावा के लेल हम प्लास्टिक के उपयोग करबा के लेल मजबूर छी और आबो वाला भविष्य के लेल हम भारत के जे छै से प्लास्टिक से मुक्त नहीं कक प्लास्टिक के परिणाम भुगतल छोड़ रहल छिए। ऐसा काज नहीं चलो वाला है, सब गोटे के जागरूक होबो पड़त। आइ काल्हि अहाँ देखैत हेबै जे लोग के लगन पाती चलै छै पिए ला जे पानी के ग्लास उपयोग करे छे तो वो यूज एंड थ्रो ओहो प्लास्टिक के छे। कहियो हमरा समाज में प्लास्टिक का शुद्ध मानल जाय छले, आध्यात्मिक हिसाब से कहियां अगर देखल जाए तो प्लास्टिक के उपयोग अपना समाज में वर्जित छले। प्लास्टिक में लोग खेनाय, प्लास्टिक में लोग पानी पीनाय, ऐ चीज के लोग थोड़े अथी से देखे छलखिन जे नहीं अशुद्धता छै में हम एकर उपयोग नहीं करब, मुदा आय ओ हमर जीवन के अभिन्न अंग बनि के रह गेल। हम अहाँ बाजार में चलै छी बा कोनो काज से निकलल छी, अगर प्यास लागल तो कोनो दुकान के ऊपर जाकर कहै छी एक बोतल पानी दे दिए, और बोतल कथी के छिए तो प्लास्टिक के छिए, ओकर कमुन्ना कथी के छिए तो प्लास्टिक के छिए, और हम अहाँ की करै छी तो ओकर पानी पी लेला के बाद जत्ते पानी पीने वे बोतल के ओत्ते फेंक दै छिए। तो ई जे प्लास्टिक के उपयोग है वो हमरा समाज में हाँ उपयोग केनाई कोनो खराब बात नहीं छे, लेकिन ओकर निस्तारण कोना हेतै अइ पर सबसे बेसी जोर हमरा लोकन के देबाक चाही। और ओकर ज्वलंत उदाहरण अहाँ देखने हेबै जे कचरा प्रबंधन जे विभाग छे भारत सरकार के या बिहार सरकार के, ओकरा नदी और नाला से प्लास्टिक से जे कचरा बनल छलै और गाध के निकालबाक लेल कतेक मेहनत करय पड़लै है। तो प्लास्टिक प्रदूषण से बचनाई हमारे लोकन के एक प्रमुख कार्य में शामिल भ गेल है, और अगर हमारे लोकन चाहे छी कि आबो वाला भारत के अतिक समस्या के सामना नहीं करो पड़े, आबो वाला जे हमर पीढ़ी है तकरा एक हम स्वच्छ वातावरण बना के भारतवर्ष के ले दिए, तो आइ हमारे लोकन के प्लास्टिक के उपयोग से बचबाक चाही। बाजार जाए छी कतौ जाए छी तो संग में थैला लऽ कऽ चलू, झोरा लऽ कऽ चलू, नहीं तो आइ काल्हि तऽ लोग गाड़ी से चले छथि, गाड़ी में डिक्की होइ छै, डिक्की के उपयोग करू, लेकिन प्लास्टिक पोलोथीन पन्नी के उपयोग नहीं करी। बहुत रास आदमी के देखे छै जे एक किलो कोनो सामग्री खरीदता हुनका तो पन्नी में दैते छै, ओकरा बावजूदो कहै छथिन जे हो बुझाइए पन्नी कहीं फाट नहीं जाए एकटा पन्नी और दे। अतेक उदारता अहाँके पन्नी के तरफ किएक जा रहा है, प्लास्टिक के तरफ अतेक उदारता किएक? ओत कनी कंजूसी करियो ना, जत कंजूसी करो के चाहिए ओत उदारता देखाब जत उदारता देखाब के चाहिए ओत कंजूसी करें। यह समन्वय जो समाज में स्थापित नहीं भ रहा है तो कचरा आगा बढ़ रहा है, प्लास्टिक उपयोग बेसी भ रहा है, प्लास्टिक से की हानि है हमारा समाज में वो आबे वाला पीढ़ी के बताब के चाहिए और वही पर रोक शत प्रतिशत लगाब के चाहिए।
1: जी हाँ बिल्कुल, प्लास्टिक के की चीज़ों को हम छोटी छोटी चीज़ छोटी छोटी आदत जब तक हम अपने अंदर नहीं लगाएंगे, ख़रीदारी करते समय हमेशा कपड़े का झोला या जूट से या किसी चीज़ का बना हुआ ऐसा थैला उसको हमके साथ लेकर जाने की ज़रूरत है। पानी के बोतल से के लिए जो स्टॉक की जगह आप कांच या तांबे या स्टील या किसी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। पहले ज़माने में जैसा कि रंजीत जी ने पहले भी कहा कि पहले ज़माने में इन सब चीज़ों को लोग परहेज़ करते थे, पीतल या स्टील के गिलास में पानी पीना ही शुद्ध मानते थे, और अभी भी कहीं ऐसे कुछ ऐसी जगह है, कुछ ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों को आज भी फॉलो करते हैं, मानते हैं। तो बदलाव समाज में तभी आएगा जब तक हम सरकार के साथ या सरकार ने भारत सरकार ने भी प्लास्टिक को लेकर कई प्रकार के कानून बनाए हैं, और जब तक हम इन कानूनों को खुद पे लागू नहीं करेंगे तब तक वो कानून समाज पर, देश पर, राष्ट्र पर लागू नहीं हो सकता है। तो छोटी छोटी बदलाव के साथ हम अपने आप में जब बदलाव लाते हैं तो वो चीज़ होगा। प्लास्टिक हमारे
0: हम बदलेंगे जग बदलेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, तो शुरुआत हमारा अपना आप से करो पड़ते।
1: जी हाँ बिल्कुल, और प्लास्टिक के लिए हमारे जो धरती के लिए है, मृदा के लिए है, मिट्टी को बर्बाद जो करता है वो प्लास्टिक का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, क्योंकि लास्ट में यह है कि हम जितनी चीज़ों को प्रयोग करते हैं वो चीज़ लास्ट में ज़मीन पे ही जाता है, नदी नाले के माध्यम से ही वो धरती पर ही रहना है, अब वो गलता सरता है नहीं। जिससे आप देखेंगे कि ग्रामीण इलाकों में भी अब जो वाटर लेवल है, जो पानी है, जो चापाकल है, वो सूखने लगा है। गर्मी के मौसम में लोग परेशान होने लगे हैं, उनके पास मोटर होने के बावजूद भी वो दिन में दोपहर में अभी भी आप चला लें तो वो नहीं चलेगा। समरसेबल लोग गड़वा रहे हैं ज़रूर वो, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में जब तक प्लास्टिक के प्रयोग को हम कम नहीं करेंगे तब तक जो वाटर लेवल है वो धीरे धीरे नीचे चला जाएगा और हम

0: नुकसान हो सकते हैं। तो प्लास्टिक को जो हम अपने हम सफ़र की तरह मानने लगे हैं, प्लास्टिक को अपना हम सफ़र नहीं मानना होगा, प्लास्टिक को अपनी ज़रूरत नहीं माननी पड़ेगी, मजबूरी के तहत हम उसे प्रयोग कर सकते हैं अगर ऐसा बहुत मुश्किल है तो।
1: जखन हमारे पास विकल्प वैकल्पिक व्यवस्था मौजूद है, अपना पास वैकल्पिक व्यवस्था मौजूद है, लोग तांबा के बोतल के उपयोग करे छथि, पहले शीशा के बोतल के उपयोग होइ छलिए, बाँस के बोतल के उपयोग होइ छलिए, लकड़ी के बोतल के उपयोग होइ छलिए। अच्छा आ कहिया हम एक बात कहूँ जो जे हम अहाँ ग्रामीण परिवेश में पढ़ल पढ़ल छी, लकड़ी के बर्तन में खाना बनी देखने छलिए।
0: हाँ बिल्कुल,
1: आँ
0: बिल्कुल।
1: अखनो बहुत रास घर हेतै जिनका घर में कांसा के पीतल के बड़का बड़का बर्तन हेतै, आ एल्युमिनियम के बर्तन में खाना बनै छै। कुकर की छियै, शुद्ध प्रतिशत एल्युमिनियम छिकै, और वो एल्युमिनियम में बनल खाना हम अहाँ खा रहल छी, और कि एल्युमिनियम कंस हमरा अहाँ के अंदर नहीं जा रहा है। विज्ञान ने प्रमाणित कर दल किया जे पहले हमरा ओहिठमन माता बहिन लोढ़ी या सिलौट पर रोज मसाला पीसै छलखिन हैं, ओहि मसाला में ओहि लोढ़ी सिलौट के कण जाइ छलै जे हमरा शरीर के लेल फायदामंद होइ छलै। लेकिन आइ काल्हि की छियै, कोनो कोनो महिला मिक्सी में धऽ देलखिन आ घर भऽ गेलै, ओ पिसा गेलै। तो ओ जे समन्वय छलै, प्लास्टिक के उपयोग ताइ वर्जित कयल जा रहल छै, अहाँ प्लास्टिक के बोतल में पानि पीब रहल छी कि ओहिमे प्लास्टिक के अंश नहीं जा रहल छै, तांबा के बोतल में अहाँ पानि पीब रहल छी ओहिमे तांबा के अंश जा रहल छै, चांदी के बोतल में अहाँ पानि पीबै छी ओहिमे चांदी के अंश जा रहल छै। तो सब बात हमरा लोकन बुझै छियै, तहिया हम श्रोता लोकन सेहो सब बात बुझै छथिन, लेकिन सवाल एहिठमन ई उठै छै जे बुझै छियै सबटा बात हम, लेकिन जाहि काज करब से हमरा सहूलियत होयत वएह काज हम करब। एक बोतल पानि लऽ कऽ हम घर से निकलि सकै छी, ई हमरा बस के चीज थिक, हम प्लास्टिक के बोतल के उपयोग नहीं करब, हम घर से एक बोतल पानि लऽ कऽ निकलब। समय सेहो कहिया महा ठीक इशारा केलहुँ हँ, चर्चा हमरा लोकनि आगा सेहो करब। और आब आजुक नमस्कार मिथिला के अंक में समय भेल जा रहल हमरा लोकनि के मैथिली फिल्म संगीत सुनबा के, ताहू श्रोता लोकनि हमरा लोकनि अखन सुनै छी सुंदर सन फिल्म संगीत, ओकरा बाद फिर अपने लोकन से बातचीत हेतै।

0: छल तहियो रेडियो छल, और आइयो विभिन्न तरहक संसाधन बाजार में उपलब्ध भ गेलै तहियो आइयो रेडियो अहाँ लेले छी, काल्हिओ छल, आइयो छल, और आबय वाला भविष्यो में रेडियो रहत। और आउ हमरा लोकन आगा बढ़े छी, और श्रोता लोकन हमर विभिन्न माध्यम से चाहे एंड्रॉयड फोन में सुनैत होइत, एफएम के माध्यम से सुनैत होइत, या हमरा मीडियम वेब पर टीवी को सुनैत होइत, बराबर श्रोता हमरा लोकन के सुनै छै। आउ हमरा लोकन कहिया हम आब आगा की बात कर रहल छी श्रोता लोकन से?
1: जी हाँ बिल्कुल, बात कर लें अगर कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की क्या कुछ भूमिका है। भारत हमारा
0: संयुक्त राष्ट्र में भारत की भूमिका याद करियो, भारतवासी संयुक्त राष्ट्र में ओ दिन जहिया स्वामी विवेकानंद संयुक्त राष्ट्र के सभा में अपन उद्बोधन से भारतीय झंडा के और पूरे संपूर्ण भारतवासी के केना जैसे गौरवमयी क्षण प्राप्त करवा के मौका देने रहथिन, और वही संयुक्त राष्ट्र में भारत की भूमिका छे अई विषय पर हम लोग चर्चा करब। कहिया महा वाला सुंदर बात शुरू केने छलूं हैं।
1: संयुक्त राष्ट्र में भारत की भूमिका के बारे में अगर बात किया जाए तो वैश्विक शांति, सतत विकास, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और विकासशील देशों से अधिकारों और वकालत करने में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहे भारत का। संयुक्त राष्ट्र में भारत के योगदानों के कुछ और भी मुख्य बिंदुओं पर अगर हम बात कर लें तो भारत दुनिया के सबसे बड़े शांति रक्षक योगदान कर्ता में आता है, और उनकी जो योग्यता है वो बहुत ज़्यादा है, आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। भारत लगभग में अब तक 49 से अधिक शांति अभियानों में भाग ले चुका है, और लगभग में 2.5 लाख से अधिक सैन्य पुलिस कर्मी को भेज चुका है हर तरह से
0: शांति स्थापित करवा।
1: जी हाँ बिल्कुल, भारत संयुक्त राष्ट्र में रंगभेद और उपनिवेशवाद का मुद्दा उठाने वाला पहला देश है, जो कि आपने पहले भी कहा कि स्वामी विवेकानंद जब इन चीज़ों पर आगे बढ़े थे तब से लेकर अब तक भारत बिल्कुल कदम में कदम मिलाकर चल रहा है, और अपनी हर वो गतिविधियों को साबित कर रहा है अपने हर वो हिसाब से कि हम साथ हैं हर वो चीज़ के लिए जिससे शांति समझौता हो सके।
0: देखियो कहियाम सबसे पैघ बात उठै छै जे एहिठमन प्रश्न अपने सब चर्चा कर संयुक्त राष्ट्र में भारत के भूमिका, तो जखन जखन संयुक्त राष्ट्र के बैठार भेलैए तखन तखन भारत प्रमुखता सँ विश्व के शांति के लेल वसुधैव कुटुम्बकम के परिभाषा के चरितार्थ केलकै। लेकिन आब एहिठमन सवाल उठै छै जे भारत जतबे तत्परता के संगे विश्व शांति के लेल संयुक्त राष्ट्र में अपन बात के राखि होबैए, ओतय जे संयुक्त राष्ट्र के पदाधिकारी लोकन बैसल छथिन ओहि बात पर ओते अमल नहीं कर रहल छथिन। यानी हमारा सीधा प्रश्न उठैए जे संयुक्त राष्ट्र के जे शैली छै, कार्यशैली छै, हम प्रश्न ओहि शैली पर उठा रहल छी। ओ संयुक्त राष्ट्र के जे दोहरा नीति छै ओहि दोहरा नीति पर हम प्रहार कर रहल छियै जे अहाँ भारत के बात के सुनै छियै, प्रमुखता से सब राष्ट्र के बात के सुनै छियै, लेकिन आई जे सबसे पैघ पूरे विश्व के लेल आतंकवाद से लड़वा के जखन प्रश्न उठै छै तो भारत बेर बेर संयुक्त राष्ट्र में अपन पक्ष बड़ा सतर्कता के संग रखै छै जे आतंकवाद के संगे हमरा लोकन के एकजुट भऽ के लड़वा के चाही। लेकिन ओहि बैसार में तो सब गोटे हामी भर दै छथिन, लेकिन ओहि बैसार से गेला के बाद संयुक्त राष्ट्र संग पासा पलटि दै छथिन। संयुक्त राष्ट्र के ई सोचे में अपना नहीं आबै छै जे हमरा करबा के की अछि, सिर्फ बैसार कऽ लेने और आपसी बातचीत कऽ लेने और सहमति बना लेने सँ धरातल पर कार्यान्वयन नहि होइ छै। धरातल पर कार्यान्वयन होबऽ के लेल ठोस निर्णय लेबऽ पड़ै छै, जाहि ठोस निर्णय लेबऽ के लेल संयुक्त राष्ट्र के करेजा अखन कमजोर पड़ि रहल छै। भारत ओकरा उकसा रहल छै, भारत ओकरा संबल दऽ रहल छै जे आतंकवाद के विरोध में सारा विश्व के एक संगे भऽ के लड़ाई लड़बाक चाही, लेकिन जखन ओ समय अबै छै तऽ लोक छिटपुट हो जाइ छथिन। फिलहाल हमरा लोकन संयुक्त राष्ट्र के जे गतिविधि और जानकारी के हिसाब से ते हिसाब से चर्चा केलहुँ हैं, और आजुक नमस्कार मिथिलांकन हमरा लोकन के समय और इशारा किछु कऽ रहल कहियाँ तो एक टा और फिल्म संगीत के आनंद हमरा लोकन लै छी, फिर श्रोता लोकन सब बातचीत करब। आओ श्रोता लोकन सुनै छी सुंदरतम फिल्म संगीत।

0: उम्मीद करते हैं श्रोताओं को ये गाना बिल्कुल पसंद आया होगा। हम कार्यक्रम के माध्यम से ये कोशिश करते हैं कि श्रोताओं को ये कार्यक्रम अच्छा लग सके और बहुत सारी चीज़ों को हम समेट कर लेकर आते हैं और रेडियो को आप अपने साथ लेकर जाने की अब आपको ज़रूरत नहीं है। रेडियो बिल्कुल आपके पास है, आपके साथ है। आपके पास जो एंड्रॉयड सेट है उसमें आप रेडियो सुन सकते हैं। उसका आसान तरीका है, प्ले स्टोर में जाएँ जहाँ न्यूज़ ऑन AIR ऐप डाउनलोड करें और आकाशवाणी दरभंगा के सारे कार्यक्रमों को आप अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं।
1: देखिए हम एक बात हम कहीं यहाँ अगर रेडियो के बात कहूँ हैं तो एक बात हम श्रोता लोकन से कहिए, श्रोता लोकन जहिया किछु अहाँ के संसाधन नहीं

तऽ कयाम आजुक नमस्कार मिथिलाक अंशसँ श्रोता लोकनिक हम ई संदेश देबय चाहै छियनि, संदेश देबय चाहै छियनि जे प्लास्टिक मुक्त भारत बनेबामे सब गोटे अपन अपन अहम भागीदारी, निर्णायक भागीदारी निभाबी। प्लास्टिक प्रदूषणसँ कोना बचाव हेतै ताहिके लेल आबयवला पीढ़ीके हमरा लोकनि सेहो प्रेरित करी आओर ओहि चीजसँ हमरा लोकनिके बचबाक हर सम्भव प्रयास करबाक चाही। आओर एहि शब्दक सङ्ग आजुक नमस्कार मिथिलाक अंकसँ हमरा लोकनि लैत छी विदा। नमस्कार।

0: भोर होते उठ जाओ किएक ता इजोतक पहिल किरण संग फुलाए लगत फूल प्रकृति में घोराए लगत ऊर्जा आबा वाला काल ले
1: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन एक
2: आ मनुख लेल तो बुझू अत्यंत जरूरी पानी बुन्नी नहीं है तो खेती नहीं है आ खेती जो नहीं है उपजा नहीं है तो हमरा लोकन खाब की
3: मामा बने जाने बाबा देने ज्यादा।
4: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
0: आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति गाम घर संध्या 6:30 पर।
5: जिंदगी कैसी है पहेली हाय,
6: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी रविवार दिन में 11 बजे।
0: घर घर के वाणी आकाशवाणी, हृदय हृदय के वाणी आकाशवाणी। आ हृदय सबके जोड़बा लेल हम आब रहल छी एक ही क्लिक पर। हमर स्टेशंस लाइव, मनक बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर। हमर सबक वेबसाइट akashwani.gov.in पर। नव भारत, नव आकाशवाणी। साहित्य, संस्कृति और कला के उपवन में फुलायल एक गोट एहन पुष्प जाहिसँ गमकैत अछि संपूर्ण मिथिला।

0: सब दिन भरतुहार आबै छल कहियो थमहू अगला साल, हमर गर्दन काटि लेला आ अपने बनल मालू।
1: गुआ सुपारी के कहल जायत अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनी आनि के दिया तऽ बहुत कमे लोक हेता जे गुआ बुझि के सुपारी बुझि के आनि के देता।
2: अपन परम्परा, अपन संस्कार, अपन माटिक सुगंध के सहेजे मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली के।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रपति दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमरीका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगे। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया।
2: परेड में भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था। ये भारत और सेशल्स की करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के अंतर्गत युद्धपोत INS तरकश और सर्वेक्षण पोत INS इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया था। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी के निमंत्रण पर सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर हैं। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच करीबी और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी तथा सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि भी करेगी। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और तरक्की को महत्व देता है। उन्होंने कहा कि मॉरिशस को स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और समुद्री संसाधनों के प्रबंधन में योगदान देना जारी रहेगा। दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत के विजन महासागर और पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति के तहत भारत मॉरिशस मजबूत रणनीतिक साझेदारी के महत्व और ग्लोबल साउथ के लिए साझा प्रतिबद्धता पर सहमति प्रकट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया।
3: सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी से मिले इस सम्मान से टिकाऊ विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी के लंबे समय से जारी प्रयास और उनके ग्रीन विजन को मान्यता मिली है। यह सम्मान टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री को मिले ऐसे ही कई सम्मानों की कड़ी में एक और उपलब्धि है। इनमें खाद्य और कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार शामिल हैं। इस सम्मान से पता चलता है कि सेशल्स हिंद महासागर क्षेत्र में क्षमता निर्माण, पर्यावरण संबंधी कार्यों, टिकाऊ विकास के प्रयासों और साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती भूमिका को भरोसेमंद साझेदार के तौर पर अत्यधिक महत्व देता है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
4: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के

0: परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अमीशा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। इस दौरान एथेंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भारतीय और ग्रीक उद्योग जगत के नेताओं के साथ बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रक्षा, खाद्य और कृषि जैसे विषयों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पदक प्रदान करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता अलंकरण प्रदान करेंगे। ये अलंकरण असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने 8 जून को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पदक प्रदान किए थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चों के जीवन विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ये कार्यक्रम जन्म से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए घर और समुदाय में ही स्वास्थ्य सेवाएं देगा। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर और मनसुख मांडविया तथा राज्य सरकार के कई मंत्री और विभिन्न देशों के राजनयिक हिस्सा लेंगे।
2: 150 से अधिक विशेषज्ञ और जापान, सिंगापुर, UAE, यूक्रेन और रवांडा जैसे भागीदार देशों के प्रतिनिधि मध्य गुजरात के आर्थिक विकास पर मंथन करेंगे। इसके साथ ही सम्मेलन में आयोजित भव्य प्रदर्शनी के 150 से अधिक स्टॉल, स्थानीय MSME, उन्नत तकनीकी स्टार्टअप और अमूल एवं GFSC जैसे बड़े उद्यमों की क्षमता और नवाचार को प्रदर्शित करेंगे। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, वडोदरा।
1: महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतर्राज्यीय परीक्षा रैकेट शामिल 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।
3: जांच अधिकारियों ने लीक हुए प्रश्न पत्र के स्रोत का पता लगाने, वित्तीय लेन देन की जांच करने, महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में बेचे जाने की छानबीन कराने तथा इस रैकेट में शामिल अन्य लोगों की पहचान कराने के लिए 10 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की थी। TET परीक्षा जो रविवार 28 जून को आयोजित होने वाली थी, भिवंडी पुलिस द्वारा परीक्षा से 1 दिन पहले पेपर लीक का भंडाफोड़ किए जाने के बाद स्थगित कर दी गई। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ACB ने दवाओं, सर्जिकल सामान और मेडिकल उपकरणों की खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के आरोप के मामलों में तत्कालीन स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक डॉक्टर वत्सल अग्रवाल और केंद्रीय खरीद एजेंसी के उपलेखा नियंत्रक नीरज चोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। उड़ीसा की पूरी तीर्थ नगरी में आज सवेरे श्री जगन्नाथ मंदिर में देव स्नान यात्रा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु जुटे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र स्नान उत्सव है।
4: सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भाई बहन देवताओं को गर्भगृह से औपचारिक रूप से स्नान वेदी तक ले जाया गया। वहाँ वैदिक मंत्रों के उच्चारण, शंख की ध्वनि और भक्ति संगीत के बीच पवित्र जल के 108 घड़ों से उनका स्नान कराया जाएगा। देव स्नान पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मनाया जाने वाला यह त्योहार वार्षिक रथ यात्रा से पहले देवताओं के सार्वजनिक दर्शन का मौका होता है। उत्सव को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बढ़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है।
5: धेमाजी जिला प्रशासन ने तत्काल जन सुरक्षा परामर्श जारी करते हुए चेतावनी दी है कि यदि अवरुद्ध जल अचानक नीचे की ओर प्रवाहित होता है तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नदी तटों, नालों, अर्द्रभूमियों, तटबंधों तथा अन्य निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की।

0: है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों से सरकारी निर्देशों और आधिकारिक सूचनाओं पर लगातार नजर रखने, स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग करने तथा आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहने को कहा है। इस बीच बाहरी क्षेत्रों से आए तेज बहाव के पानी ने जिले के जोनाइको डिस्ट्रिक्ट के कई हिस्सों को जलमग्न कर दिया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं दिल्ली, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में कल तक लू की स्थिति बनी रहेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉक्टर रजनीश भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विषय संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0111-23-31-7817, 0111-23-31-7106 और 0111-23-31-4444। खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न कर लिया है। लंदन में निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। उधर आयरलैंड ने दूसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 1 रन से हरा दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा से जुड़ा समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री मोदी के शब्द दिए हैं, हिंद महासागर को अवसरों का महासागर बनाना लक्ष्य। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने सेशल्स में कहा, समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में छापेमारी का समाचार भी कई समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, आरोपियों के ठिकानों से संपत्ति के दस्तावेज जब्त। दैनिक जागरण के शब्द हैं, 6 आरोपियों के साथ ठिकानों पर छापेमारी। आरोपी राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के घर से आभूषण और नकदी बरामद। राजधानी दिल्ली में दोपहर में 51 डिग्री वाली तपिश, जून में पहली बार लू। कल और परसों आंधी बारिश का येलो अलर्ट। 2 जुलाई से गर्मी से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद, नव भारत टाइम्स की खबर है। देशबंधु ने बढ़ते तापमान और कम बर्फबारी का समाचार प्रकाशित किया है। गर्मी की मार से तेजी से पिघल रहा हिमलिंग, अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं और प्रशासन की बढ़ी चिंता। हिंदुस्तान ने मानसून में देरी पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, समस्या बढ़ाएगा कमजोर मानसून। पत्र लिखता है, भारत में चावल का पर्याप्त सरकारी भंडार है और वो मुख्य खरीफ फसल में कमी को पूरा कर सकता है। अलबत्ता दलहन और तिलहन पर अल नीनो का असर पड़ेगा। लोक सत्य ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से मची तबाही के समाचार सचित्र दिए हैं। पत्र लिखता है, 1,500 से अधिक विदेशी बचाव कर्मी पहुंचे, चारों ओर नजर आ रहा तबाही का मंजर। ईरान का ऐलान, अगले 30 दिन होर्मुज पर हमारा कब्जा। बहरीन कुवैत पर फिर हमला। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेताया, ईरान नहीं सुधरा तो वजूद मिटा देंगे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। राजस्थान पत्रिका ने अनोखा फॉर्मूला शीर्षक से नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के विशेषज्ञों की अपील से जुड़ा समाचार दिया है। पत्र लिखता है, माँ के लिए चाय की प्याली हो, बच्चे की सेहत की रखवाली भी हो। माँ को चाय में फॉलिक एसिड और विटामिन B12 देने का सुझाव, अपंगता की बीमारी से बच सकेंगे नवजात।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के कौमी दिन की तकरीबात में एजाजी मेहमान के तौर पर शिरकत की। उन्होंने मॉरिशस के अपने हम मनसब नवीन चंद्र राम गुलाम से भी बातचीत की। अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर हमलों का सिलसिला रोकने और कल से बातचीत दोबारा शुरू करने पर रजामंद हो गए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दिफा से मुतालिक एक तकरीब में बहादुरी इनामात अदा करेंगी। भारत के महकमाए मौसमियात ने आज जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में बहुत शदीद बारिश के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। और हॉकी में भारत ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग की अपनी मुहिम जीत के इशारे के साथ मुकम्मल कर ली है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की आजादी के 50 साल पूरे होने के मौके पर वहां के कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत की। जनाब मोदी ने इस तकरीब में एजाजी मेहमान के तौर पर शिरकत की। इस तरह वो भारत के पहले वजीर आजम हैं जिन्हें ये एजाज दिया गया है। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: इस परेड में भारतीय बहरिया और फौज की टीमों पर मुश्तमिल एक दस्ते ने शिरकत की। भारत के एक बहरी बैंड ने भी शिरकत की है जिससे भारत और सेशल्स के दरमियान करीबी शराकतदारी का इजहार होता है। एक खसूसी इशारे के तौर पर INS तरकश और INS अक्षप को पोर्ट विक्टोरिया पर लंगरअंदाज किया गया है जिससे सेशल्स के साथ भारत की देरीना दोस्ती का अंदाजा होता है। वजीर आजम मोदी ने इस तारीखी मौके पर सेशल्स के आवाम को भारत की नेक ख्वाहिशात पेश की। जनाब मोदी सेशल्स के सदर पैट्रिक हरवनी की दावत पर हफ्ते के रोज सेशल्स पहुंचे थे। वजीर खारजा एस जयशंकर, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल और मॉरिशस के वजीर आजम नवीन चंद्र राम गुलाम भी इस मौके पर मौजूद थे। वजारत खारजा के मुताबिक भारत और सेशल्स के दरमियान देरीना दोस्ती है जिसकी जड़ें मुश्तरक तारीखी, सकाफती और अवाम से अवाम के दरमियान रिश्तों से वाबस्ता हैं। भारतीय बहर हिंद खत्ते में एक अहम समुद्री पड़ोसी के तौर पर सेशल्स का मकाम भारत के विजन महासागर और आलमी जुनूब के तई भारत के अहद में खसूसी हैसियत का हामिल है। वजारत खारजा ने बताया कि जनाब मोदी के इस दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत और पायदार दोस्ती का इरादा होता है और मुख्तलिफ शोबों में दोतरफा ताल्लुकात को फरोग देने में दोनों मुल्कों के मुश्तरक अहद का भी इरादा होता है। आशीष इब्राहिम की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शगुफ्ता यास्मीन।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के अपने हम मनसब डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने भारत और मॉरिशस के दरमियान मौजूदा तआवुन और इश्तराक पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने भारत की जानिब से दिए गए खसूसी मुआशी पैकेज के निफाज में हुई पेशरफ्त का भी जायजा लिया। दोनों रहनुमाओं ने भारत के विजन महासागर और पड़ोसी मुकदम की पॉलिसी के तहत भारत मॉरिशस की बढ़ती हुई स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की अहमियत से इत्तेफाक किया और आलमी खित्ते जनूब के तई अपने मुश्तरक अहद से भी इत्तेफाक किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को सेशल्स का माहौलियाती तहफ्फुज़ और मुस्तकिल तरक्की के मैदान में आला तरीन क़यादत पर गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन अवार्ड से नवाजा गया है। ये अवार्ड सेशल्स के सदर पैट्रिक हरमीनी के हाथों दिया गया है जिसके तहत मुस्तकिल तरक्की और जनाब मोदी के माहौल के लिए साजगार तसव्वुर का एतराफ किया गया है। जनाब मोदी ने इस अवार्ड से नवाजे जाने के बाद सेशल्स के अवाम और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। अमेरिका और ईरान कतर की राजधानी दोहा में इस बात पर रजामंद हो गए हैं कि एक दूसरे के खिलाफ हमले रोक दिए जाएं और कल से बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू किया जाए। इस कदम का मकसद कई दिन से जारी इस फौजी कार्रवाई को रोकना है जिसकी वजह से जंगबंदी को खतरा लाहिक हो गया था और आबनई हुरमुज से मुतालिक तनाजे को हल करना है। ये ऐलान आबनई हुरमुज के आसपास कई हमलों के बाद किया गया है। अमेरिका ने ईरान पर इल्जाम लगाया था कि उसने तिजारती जहाजों पर हमला करके जंगबंदी की खिलाफवर्जी की है।

0: के बाद उसने ईरान के फौजी ठिकानों पर हमले किए। इधर ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी फौजी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन से हमले किए। दोनों ही मुल्कों की तरफ से मजीद कशीदगी पैदा हो जाने के तई नए सिरे से खबरदार किया गया है। एक अमरीकी अफसर ने बताया कि अब दोनों ही मुल्क एक दूसरे पर हमले करने से बाज रहेंगे और मुजाकरात के दौरान इन जहाजों की बिला रुकावट आमदोरफ्त जारी रहेगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में बहादुरी से मुतालिक 2026 की दिफा की दूसरी तकरीब में बहादुरी इनामात अदा करेंगी। वो दिफाई अफवाज, मरकजी मुसल्ला पुलिस दस्तों और रियासतों मरकज के जेर इंतजाम पुलिस के अमले को बहादुरी के इनामात शाम 5 बजे अदा करेंगी। ये इनामात मुसल्ला दस्तों, मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्सेस और दीगर हिफाजती एजेंसियों के अमले के बहादुरी के गैर मामूली कारनामों को तस्लीम करते हुए दिए जाते हैं। इन इनामात से पूरे जम्मू कश्मीर, शिमाल मशरक और मुल्क की सरहदों पर दहशतगर्दी, शोरिश पसंदी और मुखासिमाना धमकियों की रोकथाम के लिए भारत की लगातार जदोजहद की अक्कासी होती है। नीज एविएशन, समंदरी कार्रवाइयों और इंसानी हमदर्दी वाले मिशनों में गैर मामूली हौसले के इकदाम उजागर होते हैं। सदर मुर्मू ने इससे पहले इस तकरीब के पहले मरहले में भी बहादुरी इनामात अदा किए थे। ये तकरीब राष्ट्रपति भवन में इस माह की 8 तारीख को मुनक्किद की गई थी। गुजरात के वडोदरा शहर में आज जीएसएफसी यूनिवर्सिटी में चौथी दरख्शां गुजरात इलाकाई कॉन्फ्रेंस का आगाज होगा, जिसका उन्वान है रीजनल एस्पिरेशंस ग्लोबल एम्बिशन। मरकजी वजरा राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर, मनसुख मांडविया, अहम रियासती वजरा और आलमी सिफारतकार इस 2 रोजा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस का मकसद वस्ती गुजरात के खित्ते में सनअती तरक्की की रफ्तार तेज करना है। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: इस 2 रोजा कॉन्फ्रेंस में 30 से ज्यादा सेमिनार मुनक्किद किए जाएंगे, जिनमें जापान, सिंगापुर, मुत्तहिदा अरब अमारात, यूक्रेन और रवांडा समेत शराकत दार मुल्कों के 151 माहरीन और मंदूबीन शिरकत करेंगे। मरकजी गुजरात की इकतसादी तरक्की पर मरकूज इस कॉन्फ्रेंस में मुल्क के लिए तैयार शोबों पर तवज्जो दी जाएगी, जिनमें सेमी कंडक्टर लॉजिस्टिक्स, माहौलियात के लिए साजगार हाइड्रोजन, क्वांटम टेक्नोलॉजी, ज़राअत, खला, दिफा और मसनूई जहानत के इस्तेमाल पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। 150 से ज्यादा स्टॉल्स पर मुश्तमिल इस बड़ी नुमाइश में इलाकाई एमएसएमईज, तरक्की याफ्ता टेक स्टार्टअप्स और कुछ बड़ी कंपनियां जैसे अमूल और जीएसएफसी वगैरह हिस्सा लेंगी। वडोदरा से अपर्णा खून की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से निश्र किया जा रहा है। भिवंडी में एक सेशंस अदालत ने उन 3 मुलजिमों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है, जिन्हें महाराष्ट्र टीचर अहलियत इम्तिहान टेट के पेपर लीक केस में गिरफ्तार किया गया था। तफ्तीशकारों को शक है कि ये लोग इम्तिहान के बैन रियासती रैकेट में मुलव्वस हैं। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: भिवंडी पुलिस ने अदालत को बताया कि मुलजिमीन इफ्शा किए गए टीईटी सवालनामे को 1,50,00,000 रुपए में बेचने के लिए दिल्ली से भिवंडी गए थे। ये पेपर असल में कहां से इफ्शा हुआ, तफ्तीशकारों ने यह जानने के लिए इन लोगों को 10 दिन के लिए पुलिस हिरासत में तलब किया है। पुलिस इस सिलसिले में माली लेन देन के बारे में जानना चाहती है और ये जानना चाहती है कि आया ये पेपर महाराष्ट्र में किसी और जगह भी फरोख्त किया गया है। पुलिस रैकेट के दीगर अरकान की भी शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है। पुलिस अफसरान ने बताया कि अब वो इस सिलसिले में 2 मफरूर मुलजिमीन को तलाश कर रहे हैं। टीईटी इम्तिहान इतवार 28 जून को होना था, लेकिन इस केस की वजह से इसे मुलतवी कर दिया गया। इस वाकये के बाद महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने हफ्ते को एक खसूसी तफ्तीशी टीम तश्कील देने का हुक्म दिया है। मुंबई से शैलजा तिवाली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शगुफ्ता यास्मीन।
0: ओडिशा में आज सुबह लाखों की तादाद में अकीदतमंद पुरी पहुंचे। आज श्री जगन्नाथ मंदिर में पवित्र देव स्नान यात्रा या स्नान यात्रा रिवायती शानो शौकत के साथ मुनक्किद की जा रही है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: भगवान जगन्नाथ, भगवान बालभद्र और देवी सुभद्रा की पवित्र स्नान यात्रा में शामिल होने के लिए अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में यज्ञ हुई। सदियों पुरानी रिवायत के मुताबिक तीनों देवताओं को रस्मी तौर पर स्नान बेड़ी तक लाया गया, जहां वैदिक मंत्रों के जाप, शंखों की आवाज और भजनों के साथ उन्हें स्नान कराया जाएगा। मस्कूरा त्यौहार देव स्नान पूर्णिमा के पवित्र मौके पर मनाया जाता है और सालाना रथ यात्रा से कबल इन तीनों देवताओं के दर्शन किए जाते हैं। अजीम शान रथ यात्रा

0: महीने की 16 तारीख से शुरू होगी। इस दौरान सिक्योरिटी के वसीतर इंतजाम किए गए हैं। आकाशवाणी न्यूज भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
1: भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने आज सिक्किम और मगरबी बंगाल के फैली हिमालयाई खित्ते में बहुत शदीद और कहीं कहीं इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे के मुताबिक गुजरात के कुछ हिस्सों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आइंदा 2 से 3 दिन के दौरान जनूबी मगरबी मानसून की मजीद पेशरफ्त के लिए हालात साजगार हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों, आसाम, मेघालय, केरला और माही में आइंदा 2 दिन के दौरान शदीद से बहुत शदीद बारिश होने का इम्कान है। आसाम के धेमाजी जिले में बड़े पैमाने पर सैलाब आ जाने के खतरात बढ़ गए हैं। खबरें हैं कि अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाके में गाई नदी के बहाव में आरजी तौर पर रुकावट आ गई है। समझा जाता है कि ये रुकावट बड़े पैमाने पर जमीनी तौदे खिसकने की वजह से आई है। खित्ते में तौदे खिसकने का ये हादसा कई दिन की शदीद बारिश की वजह से पेश आया है। एक रिपोर्ट।

0: आसाम के धेमाजी जिले में बड़े पैमाने पर सैलाब आ जाने के खतरात बढ़ गए हैं। खबरें हैं कि अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाके में गाई नदी के बहाव में आरजी तौर पर रुकावट आ गई है। समझा जाता है कि ये रुकावट बड़े पैमाने पर जमीनी तौदे खिसकने की वजह से आई है। खित्ते में तौदे खिसकने का ये हादसा कई दिन की शदीद बारिश की वजह से पेश आया है। एक रिपोर्ट।
1: धेमाजी जिला इंतजामिया ने लोगों के लिए एक फौरी हिदायत जारी की है और उन्हें खबरदार किया है कि जो पानी यहां जमा हो गया है अगर उसे आगे जाने दिया जाए तो अचानक सैलाब आ सकता है। यहां दरिया, झरनों, दलदली जमीनों, पानी के जखीरों और दीगर नशीबी इलाकों के पास रहने वालों से कहा गया है कि वो चौकन्ना रहें। कुदरती आफत की सूरत में बंदोबस्त से मुताबिक जिला अथॉरिटी ने लोगों से जोर देकर कहा है कि वो सरकार की तरफ से जारी की गई हिदायत पर सख्ती से अमल करें, मकामी हुक्काम के साथ तआवुन करें और अगर जरूरी हो तो महफूज तर जगहों पर मुंतकिल हो जाएं। इसी दौरान पहाड़ी इलाकों पर मूसलाधार बारिश की वजह से जिले के कुछ इलाके पानी में डूब गए हैं और यहाँ पानी कौमी शाहरा नंबर 515 के निशान से ऊपर बह रहा है, जिसकी वजह से गाड़ियों की आमद रफ्त में रुकावट आ गई है। इस बढ़ते हुए सैलाब से घर और खेत पानी में डूब गए हैं, जिसकी वजह से इमलाक और खड़ी फसलों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बे।
0: कल लंदन में खेले गए FIH हॉकी प्रो लीग के मुकाबले में भारत ने शानदार दिफाई मुजाहिमत का मुजाहिरा करते हुए इंग्लैंड को 3-2 से शिकस्त दी। इससे पहले मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ था, जिसके बाद मस्कूरा गोल पेनल्टी शूटआउट में किए गए। इस जीत के साथ ही आइंदा हॉकी आलमी कप से कबल भारतीय टीम के एतमाद में इजाफा हुआ है। फीफा आलमी कप के नॉकआउट मरहले में अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा ने जनूबी अफ्रीका को 1-0 से शिकस्त दी। ये कनाडा की किसी फीफा आलमी कप के किसी नॉकआउट मुकाबले में सबसे पहली जीत है। आकाशवाणी का खबरों का शोभा हिंदी और अंग्रेजी में बराहे रास्त नश्र होने वाले अपने फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे छोटे कारोबारियों के लिए बढ़ते हुए छोटे कारोबार और मौके के मौजू पर एक तफसीली मुजाकिरा नश्र करेगा। ये मुजाकिरा MSME की वजारत के एडिशनल सेक्रेटरी एंड डेवलपमेंट कमिश्नर डॉक्टर रजनीश के साथ किया जाएगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं शगुफ्ता यास्मीन।
2: शुक्रिया नितिका। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले अहम उर्दू अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सेशल्स दौरे को अपने सफ़े अव्वल की नुमाया खबर के तौर पर शाया किया है। रोजनामा इनकलाब ने वजीर आजम मोदी के बयान को अपनी शहसुर्खी बनाया है कि बहरुल काहिल की सलामती और खुशहाली हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी। सेशल्स के साथ ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने का वक्त, दोनों ममालिक के दरमियान मुतअद्दद अहम माहदों पर दस्तखत। रोजनामा प्रताप की शहसुर्खी है, पीएम मोदी को सेशेल्स ने मुल्क के आला तरीन एजाज से नवाजा। रोजनामा इनकलाब ने प्रोग्राम मन की बात के ताल्लुक से वजीर आजम के इस बयान को नुमाया अहमियत के साथ शाया किया है कि समंदर से आसमान तक हिंदुस्तान महफूज और आत्मनिर्भर बन रहा है। कुछ अहम बैन अलावामी खबरें इस तरह हैं, जंगबंदी माहदे की दोबारा खिलाफ वर्जी, ईरान अमरीका फिर आमने सामने, कशीदगी में इजाफा, साबिक वजीर आजम शेख हसीना का बांग्लादेश वापसी का ऐलान, इबोला वायरस की वजह से सऊदी अरब ने 3 ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद की।
0: और अब आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के कौमी दिन की तकरीबात में एजाजी मेहमान के तौर पर शिरकत की। उन्होंने मॉरिशस के अपने हम मनसब नवीन चंद्र राम गुलाम से बातचीत की। अमरीका और ईरान एक दूसरे पर हमलों का सिलसिला रोकने और कल से बातचीत दोबारा शुरू करने पर रजामंद हो गए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दिफा से मुतालिक एक तकरीब में बहादुरी इनामात अता करेंगी। भारत के महकमाए मौसमियात ने आज सैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में बहुत शदीद बारिश के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। और हॉकी में भारत ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग की अपनी मुहिम जीत के इशारे के साथ मुकम्मल कर ली है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
3: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ।
4: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडिया वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
5: नमस्कार, ये आकाशवाणी

0: नौ दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना साइंस कॉलेज परिसर में यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिक्स एंड साइंसेज की स्थापना की घोषणा की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज 3 साल तक के बच्चों के लिए समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। बिहार पुलिस में रेडियो सिपाही ऑपरेटर भर्ती परीक्षा में कदाचार के आरोप में 12 अभ्यर्थी गिरफ्तार। और मौसम विभाग ने आज भागलपुर, कटिहार और किशनगंज में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। वहीं भभुआ, बक्सर और रोहतास में लू का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना साइंस कॉलेज परिसर में यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिक्स एंड साइंसेज स्थापित करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए अधिकारियों को समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। कॉलेज के निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालय उच्च स्तरीय शिक्षा, अत्याधुनिक शोध और नवाचार का प्रमुख केंद्र बनेगा। श्री चौधरी ने आधुनिक प्रयोगशालाओं, अनुसंधान केंद्रों, छात्रावास और खेल सुविधाओं के विकास पर जोर देते हुए कहा कि इस पहल से पटना साइंस कॉलेज का गौरव पुनर्स्थापित होगा और बिहार को विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई पहचान मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के 2रे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता अलंकरण प्रदान करेंगे। ये अलंकरण असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में

0: वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा आज नई दिल्ली में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। यह कार्यक्रम केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में शुरू किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार यह योजना पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की सोच पर आधारित है। इसका उद्देश्य जन्म से 3 साल तक के बच्चों को घर के पास बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत नवजात और छोटे बच्चों की घर घर जाकर देखभाल की मौजूदा योजनाओं को एक साथ जोड़ा जाएगा। इस कार्यक्रम में बच्चों के शुरुआती विकास, माताओं के मानसिक स्वास्थ्य की जांच और डिजिटल माध्यम से निगरानी की भी व्यवस्था होगी। महिला हिंसा से जुड़े मामलों के त्वरित और संवेदनशील निपटारे के लिए राज्य के सभी अनुमंडल थानों में महिला कोषांग की स्थापना की जाएगी। इन कोषांगों के माध्यम से महिला उत्पीड़न और हिंसा से जुड़े मामलों की प्रभावी निगरानी, त्वरित कार्रवाई तथा पीड़िताओं को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। महिला एवं बाल विकास निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार इन कोषांगों के लिए महिला काउंसलरों की नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। राज्य के 1,14,718 आंगनबाड़ी केंद्रों की गतिविधियों की अब पोषण ट्रैकर के माध्यम से रियल टाइम निगरानी की जाएगी। इसके लिए समाज कल्याण विभाग मुख्यालय स्तर पर पोषण ट्रैकर कमांड सेंटर स्थापित करेगा। कमांड सेंटर के जरिए 6 साल तक के बच्चों की पोषण स्थिति, वजन, ऊंचाई और समग्र विकास से जुड़ी जानकारी की सतत निगरानी की जाएगी। ये आंकड़े सार्वजनिक डैशबोर्ड पर भी उपलब्ध होंगे, जिन्हें आम लोग देख सकेंगे। बिहार पुलिस रेडियो में सिपाही ऑपरेटर के 993 पदों के लिए आयोजित परीक्षा के दौरान कदाचार और गड़बड़ी के आरोप में 12 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती से प्राप्त जानकारी के अनुसार कदाचार के मामलों में कुल 17 प्राथमिकी दर्ज की गई है। सहरसा में पुलिस ने सॉल्वर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके पास से अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र, उत्तर पुस्तिकाएं, ब्लैंक चेकबुक और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पूछताछ के आधार पर किशनगंज, गया, भागलपुर और खगड़िया समेत कई जिलों में छापेमारी की गई। वहीं दरभंगा के लहरियासराय स्थित परीक्षा केंद्र पर ब्लूटूथ के जरिए नकल कराने के आरोप में एक महिला अभ्यर्थी और उसके भाई समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पर पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या के मामले में बिहार देश भर में 2रे स्थान पर पहुंच गया है। राज्य के 54,14,000 से अधिक बेरोजगारों ने पोर्टल पर पंजीकरण कराया है, जिनमें लगभग 26,67,000 सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश कर रहे हैं। पंजीकृत युवाओं में 25 से 34 वर्ष आयु वर्ग की संख्या सबसे अधिक है। रोजगार की तलाश करने वालों में स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी डिग्रीधारी भी शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि सरकारी पेंशन भोगियों को अतिरिक्त भुगतान की राशि अब बिना पूर्व सूचना के पेंशन खाते से नहीं काटी जा सकेगी। आरबीआई ने इस संबंध में सभी बैंकों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि बैंक को रिकवरी से पहले नोटिस जारी कर अतिरिक्त भुगतान का कारण, पूरी गणना और वसूली की प्रक्रिया की जानकारी देना अनिवार्य होगा। नए निर्देशों के तहत पेंशन भोगियों को आपत्ति दर्ज कराने का अवसर भी मिलेगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में मौसम

0: के अलग अलग मिजाज देखने को मिल रहे हैं। राज्य के उत्तरी हिस्से में जहां बारिश हो रही है, वहीं दूसरी ओर दक्षिणी हिस्सा भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। कल राज्य के 16 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान 40.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ भभुआ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 39.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने आज राज्य के कई हिस्सों में आंधी, बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। भागलपुर, कटिहार और किशनगंज में भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं भभुआ, बक्सर और रोहतास में लू की चेतावनी जारी की गई है।
1: राज्य के समस्त उत्तर भाग एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के भागलपुर, कटिहार, किशनगंज एवं रोहतास जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: पूर्व मंत्री हरी सहनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर दिल्ली उच्च न्यायालय में जगदीश चंद्र की उप महाधिवक्ता के रूप में नियुक्ति पर बधाई दी है। उन्होंने इस नियुक्ति को सामाजिक न्याय और समान अवसर की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है। अपने पत्र में श्री सहनी ने कहा कि यह निर्णय वंचित वर्ग के युवाओं के लिए प्रेरणादायक है और केंद्र सरकार की समावेशी सोच को दर्शाता है। पर्यटन विभाग की ओर से पटना के मनेर शरीफ दरगाह में सूफी महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन स्थानीय विधायक भाई वीरेंद्र ने किया। इस अवसर पर जाने माने पार्श्व गायक सलमान अली ने सूफी संगीत की मनमोहक प्रस्तुति दी। बेगूसराय जिले के सिंघौल थाना क्षेत्र के अंग्रेजी ढाला के पास दो चारपहिया वाहनों के बीच हुई टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई जबकि तीन अन्य घायल हो गए। सभी मृतक पोखरिया गांव के रहने वाले थे और गंगा स्नान के लिए सिमरिया जा रहे थे। हादसे में घायल लोगों का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर थाना क्षेत्र के चोल्हा टोली में आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। मामले को शांत कराने पहुंची पुलिस टीम पर आक्रोशित लोगों ने पथराव कर दिया। इस घटना में होमगार्ड के दो जवान घायल हो गए। इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपितों को हिरासत में लिया है। क्षेत्र में एहतियातन पुलिस बल की तैनाती की गई है और ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। सिवान जिले के दरौली थाना क्षेत्र में बालू लदे एक अनियंत्रित ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक दुकानदार की मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया और पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इस मामले में एक एएसआई और एक सिपाही घायल हो गए। सिवान में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने तकनीकी और मानवीय साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दरभंगा जिले के घनश्यामपुर थाना क्षेत्र में पोखर में डूबने से एक किशोरी की मौत हो गई। किशोरी को बचाने के प्रयास में उसकी मां भी घायल हो गयी जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। सारण जिले के मकेर थाना क्षेत्र में एक किराना दुकान में हुए विस्फोट और आग लगने की घटना में एक युवक की मौत हो गई जबकि एक अन्य झुलस गया। घटना के कारणों का पता लगाने के लिए एफएसएल टीम के साथ पुलिस जांच में जुटी है। गोपालगंज के कुचायकोट थाना क्षेत्र में शराब लदी तेज रफ्तार चारपहिया वाहन की चपेट में आने से दरवाजे पर बैठी एक महिला की मौत हो गई। पुलिस ने वाहन को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। नवादा जिले के पकड़ी बरावा थाना क्षेत्र के रोहुआ गांव में एक युवक के साथ मारपीट कर उसकी आंख फोड़ देने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। जमुई जिले के कुदरा थानाध्यक्ष नंदू कुमार को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी ने बताया कि निलंबित पुलिसकर्मी पर जब्त ट्रकों से बालू उतरवाने और एक पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार का आरोप है। पटना के पुनपुन थाना क्षेत्र अंतर्गत टुमड़ी पुल के पास से पुलिस ने एक मिनी ट्रक से 10 लाख रुपए मूल्य की शराब बरामद की है।

रास्ते से चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। अररिया जिले के जोगबनी थाना क्षेत्र अंतर्गत भारत नेपाल सीमा के पास से एसएसबी और पुलिस की टीम ने एक ऑटो रिक्शा से 87 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, नालंदा विश्वविद्यालय समृद्ध बौद्धिक विरासत का प्रतीक। हिंदुस्तान की सुर्खी है, साइंस कॉलेज में भौतिकी और विज्ञान विश्वविद्यालय खुलेगा, मुख्यमंत्री ने पटना साइंस कॉलेज के निरीक्षण के दौरान ऐलान किया। प्रभात खबर ने पंचायत विकास दिवस की खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है, हर माह के अंतिम रविवार को साथ बैठेंगे पंचायत प्रतिनिधि और ग्रामीण, सुलझेंगे समस्याएं। दैनिक भास्कर लिखता है, सूखा मॉनसून समय से पहले आया पर अब तक 50% कम बरसा पानी, 6 जिलों में हुई सामान्य या उससे अधिक बारिश। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड समस्तीपुर से गिरफ्तार। आज अखबार की सुर्खी है, भारत के क्रिकेट का काला रविवार, आयरलैंड के खिलाफ भारत ने पहली बार सीरीज कमाई, विश्व चैंपियन भारत विमेंस टी20 वर्ल्ड कप से बाहर। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना साइंस कॉलेज परिसर में यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिक्स एंड साइंसेज की स्थापना की घोषणा की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज 3 साल तक के बच्चों के लिए समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। बिहार पुलिस में रेडियो सिपाही ऑपरेटर भर्ती परीक्षा में कदाचार के आरोप में 12 अभ्यर्थी गिरफ्तार। और मौसम विभाग ने आज भागलपुर, कटिहार और किशनगंज में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। वहीं भभुआ, बक्सर और रोहतास में लू का अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर घर केरवाणी आकाशवाणी हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी आ हृदय सबके जोड़बा लेल हम आबि रहल छी एक कई क्लिक पर हमर स्टेशंस लाइव मनक बात संगीत ड्रामा स्पोर्ट्स क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर नव भारत नव आकाशवाणी। साहित्य संस्कृति और कला केर उपवन में फुलायल एक गोट एहन पुष्प जाहि सँ गमकैत अछि संपूर्ण मिथिला।

0: सब दिन बरतुहार आबै छल कहियो थमहू अगला साल, हमर गर्दन काटि लेल आ अपने बनल मालूम।
1: गुआ सुपारी के कहल जायत अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनि आनि के दिया तऽ बहुत कमे लोक हेता जे गुआ बुझि के सुपारी बुझि के आनि के देता।
2: अपन परम्परा, अपन संस्कार, अपन माइटक सुगंध के सहेजे मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार।
3: जिंदगी कैसी है पहेली हाय,
4: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
2: आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति गाम घर संध्या 6:30 पर।
5: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब आप सुनेंगे उर्दू प्रोग्राम अंजुमन।
1: आकाशवाणी का पटना दरभंगा केंद्र है, पेश है उर्दू प्रोग्राम अंजुमन।

शर्मिंदा जिससे चांद है। आप सुन रहे थे पंकज दास की आवाज में शेर व नगमा के तहत ये कलाम। दोस्तों आज हम बात करेंगे सेहत के हवाले से। जी हाँ दोस्तों, सेहत हजार नेमत। दोस्तों जैसा कि हम हमेशा से कहते हैं कि सेहत हजार नेमत, ये सारे आलिम का कौल है। सेहत है हजार नेमत, ये सारे आलिम का कौल है। ये जर जमीन दौलत बेकार है इसके बगैर, ये जर जमीन दौलत बेकार है इसके बगैर। तंदरुस्ती से बढ़कर नहीं और कोई शय, तंदरुस्ती से बढ़कर नहीं और कोई शय। सुबह की हल्की धूप थोड़ी सी कसरत से, आओ इसे हम और बनाएं बेहतर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेहत के हवाले से। सामईन कायनात गवाह है, राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, सबसे पहले उसकी शनाख्त उसके रुतबे से पहले उसके जिस्मानी तंदरुस्ती से होती है। अगर राजा होते हुए भी वो बीमार और सेहतयाब नहीं है तो उसका राजा होना किसी काम का नहीं। धीरे धीरे आवाम तो नकार ही देगी, साथ ही अहलोयाल भी बीमार लोगों को नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं। वहीं ये गरीबों नादार इंसान को अगर देखा जाए तो अगर वो सेहतयाब है तो उसकी ज़िंदगी शेर जैसी है, वहीं वह सेहतयाब नहीं तो और भी ज़्यादा वो गरीब है। गर्ज़ के कमज़ोर बीमार इंसान अगर कहा जाए तो वो दुनिया का सबसे गरीब इंसान है। दोस्तों इसलिए हमारे घर के बड़े बुजुर्ग सेहत के मुतल्लिक बार बार आगाह करते रहते हैं। वे हमें वक्त वक्त पर वैसी चीज़ों से रोकते टोकते रहते हैं जिनसे हमारा सेहत ख़राब हो। और आपने कभी आजमाया होगा कि उनकी दुआओं में सेहत से मुतल्लिक दुआएं ज़्यादा रहती हैं, क्योंकि वे बुढ़ापे की तरफ गामजन होते हैं और उन्हें इस बात का ख़ास अंदाज़ा होता है कि सेहत कितनी बड़ी नेमत है। इसलिए सामईन, हमारे आकाशवाणी के उर्दू प्रोग्राम अंजुमन के तहत भी हमने आपके लिए बरोज़े इतवार को ख़ास प्रोग्राम सेहतनामा भी नज़्म किया है, ताकि सेहत से मुतल्लिक अहम जानकारियों से आप आगाह होते रहें और अपना ख्याल रखें। दोस्तों WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी ये कहना है कि अगर इंसान अच्छी ग़िज़ाओं के साथ साथ भरपूर नींद और थोड़ी सी एक्सरसाइज पर ध्यान देता है तो उसे तंदुरुस्त रहने से कोई नहीं रोक सकता। और आपको पता ही है कि एक कामयाब इंसान वही है जो जिस्मानी और जहनी तौर पर तंदरुस्त है। सेहत से मुतल्लिक बाबा कौम महात्मा गांधी का भी कहना है कि इट इज हेल्थ दैट इज रियल वेल्थ एंड नॉट पीसेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। यानी गांधी जी ने हमें ये समझाने की कोशिश करी है कि सेहत ही है जो दौलत है, ख्वाह वो सोने और चांदी के टुकड़ों से कहीं अफजल है। तो दोस्तों गांधी जी की बातों को याद रखें, ख़ास तौर पर अभी के टाइम पर अपना ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि मौसमी बरसात में बीमारियां ज़्यादा और जल्दी फैलती हैं। इसके लिए अपने घर के आसपास सफाई का भी ख्याल रखें, इधर उधर कचरा ना फैलाएं। मोहल्ले में आने वाले कचरे की गाड़ी में सूखा और गीला कचरा अलग अलग हिस्सों में रखें और सफाई का एहतमाम एक दिन नहीं बल्कि हर रोज कायम रखें। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, क्योंकि एक कदम सफाई की तरफ। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं महफिल सुकन। इसमें शिरकत है तबस्सुम फरहाना और शकील अख्तर।

0: की निजामत करेंगे मोहम्मद मोइनुद्दीन अंसारी।
1: सामाइन आदाब, आपका स्टूडियो मुशायरा महफिल सुखन में खैर मकदम है। जिन शोरा को आज हमने स्टूडियो मुशायरा में मदऊ किया है, चलिए उनसे आपका तारुफ कराते हैं। सहसराम से हैं जनाब शकील अख्तर। तो शकील साहब, आपका खैर मकदम है।
2: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: दूसरी शायरा हैं तबस्सुम फरहाना, जो गया से तशरीफ लाई हैं। मोहतरमा तबस्सुम फरहाना, आपका भी खैर मकदम है।
3: बहुत बहुत शुक्रिया मोइन भाई।
1: और मैं मोइन गिरी दिहवी इस महफिल सुखन की नजामत कर रहा हूँ। सामाइन,
2: वाह वाह,
1: आज कोई सुना दे फसाने नए,
2: आज कोई सुना
1: दे, आज कोई सुना दे फसाने नए, छेड़ दे साज दिल पे तराने नए, आज कोई सुना दे फसाने नए, छेड़ दे साज दिल पे तराने नए, नगमय हिंद ऐसा सुनाता रहे, नगमय हिंद ऐसा सुनाता रहे, देश की अजमतों को बढ़ाता रहे, देश की अजमतों को बढ़ाता रहे, आखिरी दम भी आए मेरे देश की, आखिरी दम भी आए मेरे देश की, मीठी मीठी सदाएं मेरे देश की।
2: वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात।
1: सबसे पहले दावत सुखन दे रहा हूँ इस शेर के साथ के दर गुजर से जो काम लेते हैं, दर गुजर से जो काम लेते हैं, नहीं रखते वो इंतकाम लेते हैं, दर गुजर से जो काम लेते हैं, नहीं रखते वो इंतकाम का गम। जी हाँ, ये शेर है जनाब शकील अख्तर का। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि कलाम पेश करें।
2: गजल के अशार हाजिर हैं।
1: समाप्त।
2: बीच का रास्ता नहीं होता।
1: क्या बात है,
3: क्या बात, वाह वाह।

0: मतलब अच्छा
1: कि हम उसी को बुरा समझते हैं,
2: हम उसी को बुरा समझते हैं। वाह
1: मोइन साहब
0: क्या बात है।
1: हम

0: होता, इश्क होता है या नहीं होता। ये शेर मराजा फरमाए
1: जी अता हो
0: कि वो मेरे खैर खाह कैसे हैं,
1: वो मेरे खैर खाह कैसे हैं। वाह वाह
0: वो

0: जिनसे मेरा भला नहीं होता।
1: वाह वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जिनसे मेरा भला नहीं होता, बहुत अच्छे।
0: मेरा भला नहीं होता,
2: मेरे खैर खाते
0: इश्क होता है। और आखिरी शेर गजल का समाप्त फरमाया,
1: अता हो अता हो
0: के हो इरादा तो कुछ नहीं मुश्किल।
1: क्या बात है,
0: हो इरादा।

0: नहीं
1: होता। वाह वाह,
2: चाह जाओ तो क्या नहीं होता।
0: चाह जाओ धोए राधा तो कुछ नहीं मुश्किल, चाह जाओ तो क्या। और ये मक्ता का समाज फरमाया था
1: जी, अता हो
0: कि हजरत मीर कह गए हैं शकील हजरत।

0: बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत खूब, बहुत खूब।
1: और शिकार साहब होते हैं गजल और
2: हाँ इरशाद है इरशाद
0: अता हो,
1: ये दूसरी गजल के चंद अशआर
0: अता हो।
2: हाँ

0: क्या बात है, क्या बात है,
1: और शेर
0: बहुत
1: समाप्त फरमाए
0: इरशाद इरशाद।
1: कि सादा लफ्जों में शेर कहे देना,
2: सादा लफ्जों में शेर कहे
1: सादा
2: देना।
1: लफ्जों

0: वाह वाह
1: क्या बात है, क्या
0: ये
1: बात
0: मेरा
1: है, फन बहुत अच्छे शकील साहब, बहुत अच्छे
0: शायरी मेरी, किसने देखी अशर राजा हो
1: अच्छा अता हो अता
0: कि मेरे हिस्से में रह गया मेरा गम।

0: लुट गई लोगों में
1: वाह
0: खुशी
1: वाह,
0: में।
1: क्या
0: वाह
1: बात
0: वाह
1: है,
0: भाई,
1: लुट
0: क्या
1: गई
0: बात,
1: लोगों
0: लुट
1: में
0: गई
1: खुशी में।
0: लोगों
1: बहुत
0: में।
1: अच्छा शेर है,
2: बहुत शुक्रिया,
1: माशाल्लाह
0: बहुत
1: माशाल्लाह।
0: शुक्रिया,
2: बहुत
1: मेरे

0: और गजल का आखिरी शेर आप हजरत की नजर
1: अता
0: कि मैंने हर तरह से सदाएं दी,
1: मैंने हर तरह से सदाएं,
0: मैंने हर

0: मुकर्रर हो, मुकर्रर हो,
1: बहुत खूब
0: फिर
1: जनाब,
0: से
1: बहुत
0: फिर से।
2: मैंने हर तरह से सदाएं दी, उसने फिर भी नहीं सुनी मेरी, जो किसने देखी है बेकली मेरी। और ये मक्ता का शेर आप कि जिंदगी

0: गुजर गई
1: क्या बात है,
2: वाह वाह वाह वाह क्या बात है, बहुत अच्छा
0: जैसे गुजर गई
2: बहुत अच्छे
0: सब पे जाहिर है बस।

0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे जनाब, बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत खूब,
1: बहुत अच्छा।
0: मैंने हर तरह से सदाएं दी, उसने फिर भी नहीं सुनी मेरी। ये थे जनाब शकील अख्तर साहब। अब दावते सुखन दे रहा हूँ मोहतरमा तबसुम फरहाना साहबा को उन्हीं के इस शेर के साथ के ये दिल कब जाहो हसमत चाहता है, ये दिल कब जाहो हसमत चाहता है, फकत हरफे मोहब्बत चाहता है। मोहतरमा तबसुम फरहाना से कलाम समात फरमाए।
1: शुक्रिया मोइन भाई, मतला का शेर हाजिर है।
2: इरशाद।
1: ये

0: वाह
1: फकत हर्फे मुहब्बत चाहता है।
0: वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब।
1: ये दिल कब जाओ है।

0: बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत
1: ठुठरता दिल हरा रत चाहता है ये दिल कब जाओ हशीमत चाहता
0: बहुत खूब
2: बहुत खूब
1: जुदाई में कई सदियां गुजारी
2: जुदाई में कई सदियां गुजारी बहुत अच्छा
1: जुदाई

0: वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बहुत अच्छी।
1: मेरा दिल हबीर फगाहत चाहता है,
0: वाह
1: ये दिल कभी जाहो हशे।

0: आइए शेर देखें।
1: इरशाद हो
0: जुनू की कौन सी मंजिल है यार रब,
2: जुनू की कौन सी मंजिल है यार रब।

0: वाह वाह,
1: जहाँ दिल अस्तकामत चाहता।
0: वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब, बहुत अच्छे बहुत अच्छे,
1: शुक्रिया मोइन भाई,
0: बहुत अच्छे।
1: जहाँ दिल अस्तकामत चाहता,
0: वाह क्या बात है, वाह।
1: जहाँ

0: अगर इजाजत हो तो और शेर पढ़ूं मैं
1: जी। अता
2: जरूर पढ़िए।
0: बहुत तड़े पाहुजो दशते सितम में।
1: वाह क्या बात।
0: बहुत तड़े पाहुजो दशते सितम।
2: वाह वाह वाह क्या बात।
0: बहुत

0: जाहो हसी मती
1: बहुत खूब
0: चाहता
1: मोहतरमा, बहुत
0: है। और
1: खूब।
0: ये शेर पर आप लोगों की तवज्जो चाहूंगी।
1: हाँ
0: हाँ,
1: बताओ।
0: जुबां की चाशनी के साथ हर शेर,
1: हाँ वाह वाह वाह वाह।
0: जुबां

0: साथ हर शेर तखयल की सदा।
1: वाह वाह वाह वाह वाह, जवा की चाशनी के साथ हर शेर तखयल की सदा।
0: शुक्रिया शुक्रिया,
1: बहुत खूब, क्या बात है, क्या फिक्र
0: तखयल।

0: تخیل کی صداقت چاہتا
1: بہت اچھے بہت اچھے بہت
0: تخیل

0: अब आखिरी शेर है, नहीं है शायरी आसान तबस्सुम।
1: क्या बात है,
2: बहुत अच्छे।
1: आसान तबस्सुम।
0: नहीं

0: ये फन काफी रियाजत चाहता है।
1: वाह वाह
0: वाह, ये फन काफी रियाजत चाहता है। बहुत खूब बहुत खूब
2: बहुत खूब मोहतरमा, के बिजलियां किसको तबस्सुम ढूंढती हैं अब यहाँ, बिजलियां किसको तबस्सुम ढूंढती हैं अब यहाँ, चार दिन के बच रहे थे आंधिया। सामाईन हजरात, मैं मोइन गिरिडीह भी चाहता हूँ कि चंद अशार मैं भी आप सामाईन को गोश गुदास करूँ। तो पेश है गजल का मतला, समात फरमाएं। कभी न आया मेरे इख्तियार का मौसम, कभी न

0: क्या कहने, क्या कहने मुगली जी।
1: गुजर
0: बहुत
1: चुका है तेरे तबार का
2: गुजर चुका
1: मौसम,
2: है तेरे एतबार
1: बहुत
2: का
1: बहुत
2: मौसम।
1: शुक्रिया।
2: बहुत बहुत
1: बहुत
2: खुशमय।
1: परों को खोल दो अब तो सकूं के मतवालो,
0: परों को खोल दो अब तो सकूं के मतलब।
1: परों

0: मौसम।
1: बहुत खूब जनाब,
0: कभी उलझते हैं हमसे कभी बिगड़ते हैं,
1: कभी उलझते हैं हमसे
2: क्या
1: कभी
2: बात है।
1: बिगड़ते हैं, वाह वाह।
0: कभी

0: मेरे नसीब में
1: का
0: लिखा
1: बहुत
0: रखा है,
1: बहुत अच्छा,
2: बहुत बहुत शुक्रिया आप
0: खारता
2: सबका।
0: हूँ
2: मेरे
0: बहुत।
2: नसीब में लिखा है खार
1: क्या
2: का
1: बात है, क्या बात है,
2: मौसम। और
1: बहुत
2: आखिरी
1: खूब।
2: शेर हाजिर कर रहा हूँ, समाप्त
1: हाँ
2: फरमाए।
1: अताओ
0: अता
2: फिजा उंडेल रही है शराब मस्ती में,
1: फजा उंडेल रही है शराब।

0: हमें अता जो हुआ है कुमार का फिजा उंडेल रही है शराब मस्ती में।
1: क्या कहने, वाह वाह वाह।
0: फिजा

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और जगजीत सिंह की आवाज में ये कलाम। आइए सुनते हैं अगला कलाम अख्तर का, लता मंगेशकर और जगजीत सिंह की आवाज में।

अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से। आवाजें उदित नारायण और लता मंगेशकर की है।

आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आप हमारे सभी कार्यक्रम रेडियो सेट के अलावा मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR ऐप और सुनते रहें आकाशवाणी दरभंगा। अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म दिलवाले से। आवाजें कुमार सानू और अलका यज्ञिक की है।

आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। साधना सरगम और कुमार सानू की आवाजों में अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं, जिसे लिया है फिल्म सैनिक से।

दुश्मन फिल्म से अभी आप सुन रहे थे ये गीत। गायक कलाकार थे कुमार सानू और लता मंगेशकर। इस गीत के साथ फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

0: 90 वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
1: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
2: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
1: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
0: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए।
3: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, प्रस्तुत है विद्यापति गीत। कलाकार हैं अरविंद कुमार झा।

सियाराम तिवारी के स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये विद्यापति गीत। आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं विद्यापति गीत। अगला विद्यापति गीत हम आपको सुनवाते हैं, स्वर है ममता ठाकुर का।

काशीनाथ झा किरण के स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये विद्यापति गीत। अगला विद्यापति गीत हम आपको सुनवाते हैं विनय कुमार झा के स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे विद्यापति गीत। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

0: 90 वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
1: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
2: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
1: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
0: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए।
3: अब नन्हे मुन्ने बच्चे अपनी आवाज में कविता, कहानी, पहेली और चुटकुले सुन सकते हैं फुलवाड़ी कार्यक्रम में रविवार सुबह 10:30 पर। तो रिकॉर्ड करवाएं प्रत्येक शुक्रवार 3:30 से 4 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0627222481। मोबाइल नंबर है 9430029353।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत, कलाकार हैं पंडित जसराज। आइए इनसे सुनते हैं कबीर भजन राग शुद्ध वराड़ी में।

Gabadani ni badani bani da da ga da da ga.

पंडित जसराज से भी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत कबीर भजन राग शुद्ध वराड़ी में। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। ये सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जिसे हमें भेजा है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज जी ने। लिखते हैं,
2: पेड़ धरती के फेफड़े हैं, वे हवा को शुद्ध करते हैं और हमें नया जीवन देते हैं।
3: धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा।

0: और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
1: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में श्रोता संवाद के मासिक संस्करण का बेसब्री से इंतजार करते हैं। ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है।
0: आप आगे लिखते हैं, कार्यक्रम में CIET NCERT के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर भारती कौशिक और विमलेश जी की बातचीत प्रशंसा योग्य लगी। कार्यक्रम में समावेशी शिक्षा पर सुनाई गई विस्तार पूर्वक जानकारी बेहद पसंद आई। ये जानकारी रिकॉर्ड करके परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्यों को भी हमने सुनवाई
1: जी।
0: इस कार्यक्रम की सभी ने तारीफ की। समावेशी शिक्षा पर विस्तार पूर्वक जानकारी सुनवाने के लिए आभार प्रकट करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है,
1: गांव ढाणी, कुतुबपुर, तहसील हांसी, जिला हिसार, हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, प्यारी बिटिया मीठी, अनाया गुर्जर और बेबी किरत ने, वो लिखते हैं,
0: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। आपका ये कार्यक्रम विविध जानकारी और मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भाषाई विविधता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इस कार्यक्रम का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। ऐसी बेहतरीन प्रस्तुति के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
1: जून महीने के शुरुआती समय में उमंग प्रसारण का श्रोता संवाद कार्यक्रम एक नए अंदाज में प्रस्तुत किया गया, जिसने इस कार्यक्रम को अर्थपूर्ण बना दिया और एक प्रकार की नवीनता का संचार किया। सभी श्रोताओं को ये नवीन संस्करण अवश्य पसंद आया होगा।
0: आप आगे लिखते हैं, इस कार्यक्रम की परिचर्चा में आपने समावेशी शिक्षा जैसे अत्यंत प्रासंगिक असमकालीन विषय की ओर सभी श्रोता बंधुओं का ध्यान आकर्षित किया। प्रोफेसर भारती जी ने बड़ी सरलता से और विस्तार पूर्वक समावेशी शिक्षा का परिचय प्रस्तुत किया
1: जी।
0: अर्थ समझाया तथा समावेशी शिक्षा और समतामूलक शिक्षा के बीच का अर्थ स्पष्ट किया। शिक्षा जगत में इन दिनों समावेशी शिक्षा की खूब चर्चा होती रहती है। उमंग कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में भी इसका विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया। ये जानकर और कार्यक्रम सुनकर बहुत ही सकारात्मकता का अनुभव हुआ। आगे आप लिखते हैं,
1: श्रोता संवाद का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। प्रोफेसर राजेंद्र पाल जी के साथ जितने भी अंक प्रसारित किए गए हैं, उन सभी ने श्रोताओं के मस्तिष्क पटल पर एक गहरी छाप छोड़ी है। श्रोता संवाद हमारे और आपके बीच सक्रिय संवाद का एक विशेष सेतु है। आशा है कि उमंग प्रसारण में नवाचार, रचनात्मकता, आपसी संबंध और संवाद का ये क्रम चलता रहेगा।
0: आपको बहुत बहुत धन्यवाद योगेश ठाकुर जी, आपने बड़ी खूबसूरती से श्रोता संवाद कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी है, आपका धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है गोनियाना मंडी भटिंडा पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी का। लिखते हैं,
1: समावेशी शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। हमारी जानकारी भी बढ़ी और मैं ऐसे शिक्षाप्रद कार्यक्रम जरूर सुनता हूँ। आकाशवाणी भटिंडा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये प्रसारण हमारे लिए प्रस्तुत किया है।
0: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और आवासी परिवार के सभी सदस्य और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास। धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से बने रहिए आपके प्रिय शैक्षिक कार्यक्रम उमंग के साथ। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है, ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है?
1: इसका उत्तर है साथियों, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ठंडी होती हैं, लेकिन जब उनके बीच नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो गर्मी पैदा होती है।
0: हमारा दूसरा प्रश्न था, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की थी?
1: इसका उत्तर है साथियों, भीम बैठका की गुफाओं की खोज प्रसिद्ध पुरातत्वविद विष्णु वाकणकर जी ने की थी, जिसके लिए उन्हें नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
0: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न। हमारा प्रश्न था, कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, इन गुफाओं की बनावट ऐसी होती है कि गुफाओं की दीवारें और छत ध्वनि तरंगों को परावर्तित या रिफ्लेक्ट करती हैं। गुफाएं गहरी हैं, इसलिए वहां बाहर का शोर भी लगभग नहीं के बराबर होता है, इसलिए वहां धीमी आवाज भी स्पष्ट सुनाई देती है।
0: और अब हमारा अगला प्रश्न, हमने आपसे पूछा था, बोर्रा गुफाओं की खोज किसने और कैसे की?
1: बोर्रा गुफाओं की खोज ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज द्वारा की गई थी
0: जी। और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों?
1: सिजू गुफाओं में एक पैसेज को टूथ पैसेज कहते हैं क्योंकि वहां चट्टानों की बनावट मानव दांतों की श्रृंखला से मिलती जुलती है।
0: तो साथियों, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है? प्रश्न एक बार फिर

0: सुन लीजिए।
1: भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है?
0: 8800-4404-559 है हमारा IBRS नंबर, और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। साथ ही साथ CIET NCERT को इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी फॉलो करना ना भूलिए। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओं, हमारा पहला कार्यक्रम है बुधनी गई है जंगल।
1: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है जिसके द्वारा पेड़ पौधों के संरक्षण और पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: बहुत थक गया आज तो। बुधनी, अरे ओ बुधनी,
1: आई रे आई। आ गया बुधवा, ले आया लकड़ी।
2: इतनी सी चुब्बा कहाँ रह गया?
1: अम्मा अम्मा अम्मा देख कितने जामुन लाया हूँ जंगल से। इतना बड़ा पेड़ ढूंढा है मैंने आज जामुन का। कल से रोज जाऊंगा बापू के साथ जंगल, वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं अम्मा।
2: अरे चुप भी कर, क्या करूँ इतने सारे पेड़ों का। तेरा बापू तो एक भी पेड़ ना काट सकता, रोज यही जरी मरी सी सूखी टहनियाँ तोड़ लाता है बस।
0: फिर वही बात, अरे मैं क्यों काटूं पेड़ है? जब इतनी सारी लकड़ियों की टहनियाँ ऐसी मिल जाती है, काम तो चल जाता है ना।
2: काम चल जाता है, काम चल जाता है, हाँ नहीं तो। अरे ढेर लकड़ी लाओगे तो इतने सारे पैसे मिलेंगे बेचने से।
0: अच्छा,
2: कुछ कहना करिया, कुछ आड़े पकत के लिए कुछ समझता तो है ना। हाँ
0: अरे भोली, जब तक जंगल है तब तक आड़ा बखत आएगा ही नहीं। न लकड़ी की कमी, न फल कंद की, बीमारी पड़ी तो जड़ी बूटी भी। रही गहना गरिया की बात, तो बुधनी ये जो तू जंगली फूल लगा लेती है ना कभी कभी, उसके सामने सच कहूं सारे गहना गरिया मात।
2: अब ना बहलती मैं तुम्हारी बातों से, कह देती हूँ हाँ। या तो कल एक बड़ा सा पेड़ काट कर लाओ, नहीं तो मेरा मरा मुंह देखो।
0: अरे अरे रोने लगी। अरे सुन तो, अच्छा अच्छा सुन, आप चुप भी हो जा बुधनी, काट लाऊंगा एक पेड़ बड़ा सा। है तो ये पाप ही, हमारा ओझा भी यही कहता है कि पूरे विधि विधान के बाद ही काटो एक पेड़ और फिर लगाओ 10 पेड़, और पुरखों की भी यही रीत है। मगर तू कलह मत कर, मैं काटूंगा पेड़।
1: बापू दुख मत कर, कल हम पेड़ काटेंगे ही नहीं है? कोई बहाना बना देंगे ठीक।
0: हाँ यही ठीक रहेगा। अरे तू तो बड़ा सयाना है रे चुब्बा।
2: क्या भूल बातें कर रहे हो दोनों?
0: कुछ नहीं,
2: जरूर मुझे बुद्ध बनाने की बात होगी। हाँ।
0: नहीं नहीं नहीं,
2: अब तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। हाँ? अपने सामने कटवाऊंगी पेड़। अब तुम लोगों का कोई भरोसा है क्या?
0: नहीं नहीं नहीं, तू क्या करेगी जंगल में जाकर, हम काट लाएंगे ना एक अच्छा सा पेड़।
1: हाँ अम्मा, वहाँ ऐसे ऐसे भयानक जानवर होते हैं, ऐसे ऐसे जानवर होते हैं अम्मा।
2: अरे चुप, जैसे मैं तो कभी जंगल गई ही नहीं। मैंने तो सोच लिया है मैं जंगल जाऊंगी ही। सुबह जल्दी उठकर सारी तैयारी करनी है, दिन भर का खाना बनाना है। अब चलो खाना खाकर जल्दी सो जाओ।

0: अरे चुब्बा चुब्बा क्या हुआ बेटा?
1: डर मत बच्चे, मैं यही हूँ तेरे पास।
0: अरे कोई डरावना सपना देखा क्या? क्या सपना देखा तूने?
2: अम्मा मुझे डर लग रहा है अम्मा।
1: कोई डरावना सपना देखा होगा बच्चे? अरे क्या देखा तूने?
2: अम्मा अम्मा मैंने देखा कि हम जंगल में पेड़ काट रहे हैं और अम्मा पेड़ रोने लगा, मुझे मत काटो मत मारो, मुझे दर्द होता है, मेरी लकड़ी ले लो, पत्ते ले लो, फूल ले लो, फल ले लो, पर मुझे मत मारो, मैं तो तुम्हारा मीत हूँ माँ। माँ उसने ये कहा, उसने कहा माँ मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है अम्मा, और वो रोने लगा अम्मा। अम्मा जोर जोर से रोया, मगर हमने उसे काट ही दिया, काट ही दिया। वो चिल्लाया अम्मा, मैं भी चिल्लाया।
0: चुप्पा चुप्पा
1: सजा सजा।

0: दे सोजा, डर मत। अरे वो तो सपना था। सोजा सोजा बेटा, मैं तेरे पास ही तो लेटी हुई हूँ यहाँ है। सोजा बेटा, सोजा सोजा, शाबाश। अच्छा बेटा है ना, चुप्पा तो सोएगा। सोजा सो गया। इसने तो मुझे डरा ही दिया। अरे कैसे कैसे सपने देखता है ये।
1: तो फिर कल पेड़ काटने नहीं जाना ना?
0: क्यों नहीं, बिल्कुल जाना है। जा, जा, सो जा। अरे वो तो सपना था, उससे क्या होता है। अरे सो जा, सुबह जल्दी उठना है।

0: चुब्बा, अरे ओ चुब्बा, अरे उठ बेटा, पुतवा उठो ना, भोर हो गई, मैं तैयारी करती हूँ चलने की।
1: अरे तो जाना ही पड़ेगा, तू मानेगी नहीं?
0: ना, मैं तो ना मानू, चल
1: चल, तेरी यही हट है

0: या अरे कैसे कैसे सपने देखता है ये?
1: तो फिर कल पेड़ काटने नहीं जाना ना?
0: क्यों नहीं, बिल्कुल जाना है। जा, जा, सो जा। अरे वो तो सपना था, उससे क्या होता है। अरे सो जा, सुबह जल्दी उठना है।

0: चुब्बा, अरे ओ चुब्बा, अरे उठ बेटा, पुतवा उठो ना, भोर हो गई, मैं तैयारी करती हूँ चलने की।
1: अरे तो जाना ही पड़ेगा, तू मानेगी नहीं?
0: ना, मैं तो ना मानू। चल
1: चल, तेरी यही हट है तो चल चल चुब्बा।
0: अरे कुल्हाड़ी तो ले लो, पेड़ के हाथों से काटोगे।
1: अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था, आदत नहीं है ना।
0: आदत नहीं है, ये नियत ना है वो। चल चुब्बा, वो रस्सी उठा, लट्ठों को बांधना भी तो होगा ना।
2: अच्छा अम्मा।
0: अरे अब चलो भी
1: चलो
2: चलो।

0: मुंह क्यों लटका रखा है बाप बेटे ने? पेड़ की लकड़ी बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे तुम्हारे लिए भी तो चीजें आएंगी अच्छी अच्छी।
1: अम्मा मुझे नहीं चाहिए अच्छी चीजें। हाँ
2: मुझे भी नहीं।
0: ठीक है तुम लोग मत लेना, सारी अच्छी अच्छी चीजें मैं अपने लिए लाऊंगी बस।
3: मैं तो गहना लूंगी, मैं तो साड़ी लूंगी, गहना गरिया लूंगी, मैं तो साड़ी लूंगी, बढ़िया खाना खाऊंगी, मैं तो साड़ी लूंगी।
0: अरे बाप रे, इस जंगल में शेर भी है क्या?
2: अरे शेर तो नहीं है, कोई बघेरा वगैरह होगा। अरे डर मत, ये कुल्हाड़ी है ना, वैसे भी इस तरफ आदमियों का आना जाना लगा रहता है, इससे जानवर इधर नहीं आते।
0: फिर भी
1: अम्मा तू भी चले वापस?
0: ना वापस तो फिर भी नहीं जाएंगे हम। हाँ
1: अम्मा क्या सोच रही है?
0: यही कि कौन सा पेड़ काटना ठीक रहेगा। क्यों बुधवा, ये जामुन कैसा रहेगा रे?
2: ये जामुन?
0: हाँ
2: चलो इसी को काट देते।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा, इसे नहीं, ये तो फलों से लदा है।
2: हाँ।
1: हर साल फल देता है, इसे मत काटो।
0: हाँ ये बात तो ठीक है, जामुन कहाँ से खाऊंगी। तो फिर उस साल के पेड़ को काटते हैं चलो।
2: अरे रे क्या बात करती हो, वो तो अभी पूरा बढ़ा भी नहीं है, ये तो वैसे हुआ कि जैसे किसी को छुटपन में ही मरना पड़े।
0: हाय रे बात तो तुम्हारी सच है।
1: तो अम्मा ऐसा करते हैं, वो जो देवदार के बहुत सारे पेड़ है ना उनमें से एक को काट देते हैं।
0: अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। कितने सुंदर हैं ये पेड़, अरे उन्हें रहने दो। ये रोन का पेड़ कैसा रहेगा बुधवा?
2: ये
0: है भी काफी पुराना, फल भी नहीं है इस पर। तो
2: फूल तो हैं, फल भी आएंगे, अरे हजारों पक्षियों की भूख मिटाएंगे। नहीं नहीं नहीं नहीं ठीक नहीं रहेगा इसे काटना। चलो ठीक है काटना ही है तो ये नीम का पेड़ काट देते हैं।
0: अरे पागल हुआ है, ये नीम का पेड़ तो दवा दारू के काम आता है, कोई बीमारी नहीं जिसका इसके पास इलाज ना हो। हाँ
2: अच्छा तब तो अरार का पेड़ भी छोड़ना पड़ेगा है?
0: क्यों?
2: इसका भी नीम वाला हाल है, बल्कि ये तो सुना है सबकी किस्मत भी जानता है, इसे कौन काटे।
1: चलो आगे देखते हैं, कोई ना कोई बेकार पेड़ तो मिल ही जाएगा, ऐसा क्या है।
0: हाँ हाँ चलो चलो, चलो। आगे चलकर देखते हैं। चलो
4: ये देखो ये पेड़।
0: देख लो।
1: अम्मा अम्मा वो देखो ओक का पेड़। और वहीं बबूल भी है। चलो अम्मा काटे
0: चलो, चलो। इधर से निकल कर आओ।
1: अच्छा
4: ध्यान से बेटा।
1: आई
0: क्या हुआ चुप्पा?
2: क्या हुआ?
1: अम्मा अम्मा कांटा चुप गया। आई
0: अरे दिखा तो।
1: अम्मा लगता है पेड़ कह रहे हैं हमें मत काटो, हमें मत काटो। बापू इन्हें मत काटना, देखो ये रो रहे हैं।
2: ठीक है नहीं काटेंगे। हाँ
1: देखा अम्मा कैसे लहलाने लगे, जान बचने से खुश हो रहे होंगे है ना।
2: हाँ बेटा ये देखो, ये चीड़, देवदार, ओक, खजूर और ताड़।
0: हाँ।
2: ये तो है ही सदाबहार, इन्हें काटने से क्या फायदा?
0: अरे नुकसान भी क्या है?
2: बहुत नुकसान है, हमारे पुरखे कहते

0: देखिए, इन्हीं की बदौलत हवा पानी साफ रहता है, बरखा होती है, बाढ़ रुकती है। सोचो, हमारी तरह सभी लोग चल दें पेड़ काटने तो कितना नुकसान हो जाए।
1: रहने दो अपनी बातें, कोई और पेड़ ढूंढो। ये कौन सा पेड़ है? ना फूल ना फल।
0: क्या पता, मुझे सबके नाम थोड़ी मालूम है, मगर मैं तो इसे नहीं काटूंगा।
2: क्यों? देखो ना माँ, ये पेड़ हजारों लाखों कीड़ों का घर है, उन्हें दूध पिला रहा है।
1: और वो वाला, उसमें तो ना कीड़े दूध पी रहे हैं, ना फल है, ना फूल है, कुछ भी नहीं है उसमें, और ना ही उससे कोई लाभ है। उसे तो काटो कम से कम।
2: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा, उसे छोड़ दो। देखो अम्मा, इस पेड़ की घनी पत्तियों में सैकड़ों पंछियों का घोंसला है।
0: हाँ।
2: पेड़ कटा तो वो सब बेघर हो जाएंगे। सोचो माँ, अगर हमारा कोई घर तोड़ दे तो हमें कैसा लगेगा?
0: हाँ, बिल्कुल।
1: सचमुच इस पर तो कोयल भी रह रही है। बतवा, रहने दे इसको भी।
0: अच्छा।
1: मुझे कोयल का गाना बहुत अच्छा लगता है। तू रहने दे इस पेड़ को तो।
0: ठीक है। अरे सुन, कोयल खुश होकर तुझे धन्यवाद दे रही है बुधनी।
2: अम्मा, जिन जिन पेड़ों को तुमने बचा लिया वो सभी तुम्हें दुआएं दे रहे होंगे।
1: मुझे बनाओ मत, मैंने अभी बदला नहीं है अपना इरादा। चलो ढूंढो काटने लायक पेड़। हेलो, इसमें हंसने की क्या बात है? चलो ढूंढो ना।
0: अरे अब कहाँ से ढूंढे, जंगल के सारे पेड़ों को तो तूने बख्श दिया, अब किसे काटे?
1: क्या, सारे पेड़ों को बख्श दिया?
0: और क्या।
1: ना जी ना, अभी तो हजारों पेड़ होंगे इस जंगल में।
0: हाँ है तो सही, मगर वो सब भी इन्हीं के भाई बंद हैं। जो बात इनके साथ वही उनके साथ।
1: जीवा जीवा जी, अब तो पेड़ नहीं कटेगा, नहीं कटेगा।
2: अरे चुप।
0: क्या हुआ?
1: अरे चुप्पा। हाँ, पेड़ अब नहीं कटेगा। तो यही बात थी ना, तुम दोनों शाम को फुसफुसा कर यही बातें कर रहे थे ना, कि अम्मा को जंगल में बहला लेंगे और पेड़ नहीं काटेंगे। है,
0: तू समझ गई है?
2: तू भी तो मान गई ना कि कोई भी पेड़ कटने लायक नहीं है। अब तू ही बता किसे काटे।
1: रहने दे रहने दे, तुम दोनों बड़े सयाने हो, मुझे हमेशा ऐसे ही बहला देते हो। मैं जिस भी पेड़ पर हाथ रखूंगी तुम उसी के बारे में ऐसी ऐसी बातें बनाओगे कि मुझे को दया आ जाएगी। हाय रे, मेरी इच्छाएं क्या कभी पूरी नहीं होंगी?
0: होंगी होंगी, जरूर होंगी, मगर ऐसे नहीं।
1: फिर कैसे?
0: चल घर, चलते चलते बताता हूँ कि कैसे।
1: चल। बता।
0: सुन, हम सब मिलकर बहुत सारे पेड़ लगाएंगे अपने घर के आगे, फिर हमें फल मिलेंगे, फूल मिलेंगे, बुलबुलें आएंगी, कोयल गाएंगी, गीत गाएंगी, महुआ सींचेंगे, हम फिर मेले जाएंगे, खूब काम करेंगे, हम तीनों मिलजुल कर ताल बनाएंगे, मछली पालेंगे, मछली, फल, सब्जी, महुआ, कटहल बेचेंगे। हाँ, पैसे पाएंगे, बुधनी को देंगे, बुधनी खुश होगी, कलह नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, झगड़ेगी भी नहीं। क्यों बुधनी, तब भी झगड़ेगी क्या?
2: क्यों अम्मा, तब भी झगड़ेगी?
0: बोल ना।
1: नहीं रे नहीं, मुझे क्या शौक है झगड़ने का। चल।

0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम अर्जुन का निशाना।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए।
2: बात बहुत पहले की है। हमारे देश में एक राजा थे पांडु। पांडु के पांच पुत्र थे जिन्हें पांडव कहते हैं। युधिष्ठिर इनमें सब में बड़े थे। युधिष्ठिर से छोटे थे भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांचों राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते थे। भीम गदा चलाने में बहुत कुशल थे और अर्जुन धनुष बाण चलाने में। गुरु द्रोणाचार्य समय समय पर अपने शिष्यों की परीक्षा लिया करते थे। एक दिन उन्होंने पेड़ पर मिट्टी की एक चिड़िया टांग दी। फिर राजकुमारों से चिड़िया की आंख पर बाण मारने को कहा। गुरु द्रोणाचार्य ने बारी बारी से अपने सभी शिष्यों को बुलाया। उन्होंने चिड़िया की ओर संकेत करते हुए पूछा,
3: उधर देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है?
2: किसी ने कहा,
4: गुरुजी, मुझे राजकुमार, पेड़ और चिड़िया सब कुछ दिखाई दे रहा है।
2: किसी ने कहा,
5: मुझे पेड़ और चिड़िया दिखाई दे रही है।
2: किसी ने कहा,
6: मुझे चिड़िया के पंख दिखाई दे रहे हैं।
2: अर्जुन की बारी आने पर द्रोणाचार्य ने उससे भी वही प्रश्न किया। अर्जुन ने कहा,
7: गुरुजी, मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है।

0: अब द्रोणाचार्य ने बारी बारी से सभी को बाण चलाने का आदेश दिया। अर्जुन का निशाना तो ठीक आंख पर लगा, किंतु और भाइयों का निशाना चूक गया। द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को बताया,
1: क्या तुम लोग समझ गए कि अर्जुन का तीर निशाने पर क्यों लगा? जिसे केवल लक्ष्य दिखाई दे वही सफल होता है। तुम लोगों को लक्ष्य के साथ साथ और बहुत सी चीजें भी दिखाई दे रही थीं, इसलिए तुम्हारा ध्यान बट गया और निशाना ठीक नहीं बैठा। अर्जुन का ध्यान केवल चिड़िया की आंख पर था, इसलिए उसका निशाना बिल्कुल ठीक बैठा और बाण ठीक चिड़िया की आंख पर लगा।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम अर्जुन का निशाना, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। अब आप आनंद लेंगे हमारे केंद्र से नए फिल्मी गीतों का। गीतों की शुरुआत हम करने जा रहे फिल्म OMG 2 से। गायक कलाकार हैं विक्रम मंत्रोज और संगीत निर्देशन विक्रम मंत्रोज के हैं। गीत लिखा है शेखर अस्तित्व ने। आइए सुनते हैं यह गीत।

मनोज मुंतशिर के लिखे इस गीत को अभी आप सुन रहे थे फिल्म इमरजेंसी से। गायक कलाकार थे हरिहरन और अर्को, संगीत निर्देशन अर्को ने किया था। आइए सुनते हैं अगला गीत जिसे गाया है स्टीवन पेन ने फिल्म डेढ़ बीघा जमीन से। गीतकार हैं मनोज मुंतशिर, संगीत दिया है रोचक कोहली ने।

श्रोताओं भी आप सुन रहे थे अर्कों की आवाज में फिल्म डेढ़ बीघा जमीन का यह गीत। गीत और संगीत दोनों ही अर्कों के थे। आइए सुनते हैं अगला गीत विद्या गोपाल की आवाज में फिल्म फराज से। गीत लिखा है समीर राहत ने। गीत दिया है समीर राहत ने।

अमाल मलिक, जरहज खान और सलमा अगा को भी आप सुन रहे थे फिल्म गुमराह से। गीत रचना रश्मि विराग की थी, संगीत निर्देशन तनिष बागची ने किया था। श्रोता ये सुनते हैं अगला गीत जिसे हमने लिया है फिल्म वेदा से। गायक कलाकार हैं राघव अर्जुन और राघव चैतन्य। गीत लिखा है राघव और अर्जुन ने, संगीत निर्देशन राघव और अर्जुन के हैं।

राघव चैतन्य राघव और अर्जुन की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे वेदा फिल्म का यह गीत। इसी गीत के साथ नए फिल्मी गीतों का सिलसिला भी यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है सखी बहनों का कार्यक्रम नारी संसार।

नमस्कार बहनों, मैं हूं श्वेता और एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हूं कार्यक्रम नारी संसार लेकर। बहनों, आज सोमवार है और हमेशा की तरह आज भी हम विभिन्न विषयों पर चर्चा तो करेंगे ही, चर्चा के साथ साथ आपको लेकर चलेंगे मनोरंजन की दुनिया में, जहां आनंद लेंगे कुछ नए पुराने फिल्मी गीतों का और हर दिन कुछ खास में होगा कुछ खास आपके लिए। बहनों, आज 29 जून है और आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिवस हमें उन क्षेत्रों के महत्व को समझने का अवसर देते हैं जो पृथ्वी के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। भारत का एक बड़ा हिस्सा भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, इसलिए यह विषय हमारे जीवन से सीधे सीधे जुड़ा है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वैसे क्षेत्र होते हैं जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित हैं। इन क्षेत्रों की विशेषता है गर्म जलवायु, भरपूर वर्षा, घने वन और जैव विविधता। दुनिया के अनेक दुर्लभ पौधे, पशु पक्षी और प्राकृतिक संसाधन इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े कहे जाते हैं क्योंकि वो बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हैं। लेकिन आज ये क्षेत्र कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। इसका वर्षा चक्र, कृषि, जल स्रोतों और मानव जीवन पर भी इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। ऐसे में हम सभी की जिम्मेदारी है कि पर्यावरण संरक्षण को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं, पेड़ लगाएं, जल की बचत करें, प्लास्टिक का कम उपयोग करें और प्रकृति के प्रति संवेदनशील बने।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से राज भदगाई पंचायत से ओम प्रकाश कुमार बने हैं यशस्वी मुखिया।
1: मैं ओम प्रकाश कुमार ग्राम पंचायत राज भटगाई और अपने पंचायत के हर दुख सुख में रहे। हमारे पंचायत बहुत पिछड़ा हुआ पंचायत है, दलित बस्ती बहुत सारे हैं, जहां सड़क नहीं था वहां सड़क बनवाएं, स्कूल में चार दीवारी करवाएं। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। धन्यवाद।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।
2: आइए बहनों, आपको सुनवाते हैं एक छोटी मुलाकात के अंतर्गत वार्ता।

0: गर्म हवा यानी कि लू। आइए बात करते हैं इसी पर, इसके लक्षण को कैसे पहचानना है और इसके बचाव के किन उपायों को अपनाने से हम गर्मी के मौसम में भी स्वस्थ रह सकते हैं और इन गर्म हवाओं के थपेड़े से खुद को बचा सकते हैं। लू से बचाव के कुछ उपाय हैं जिन्हें आजमाना जरूरी होता है। जहां तक संभव हो कड़ी धूप में बाहर ना निकले। बुजुर्गों और बच्चों को कहें कि इस बात का विशेष ध्यान रखें। जहां तक संभव हो पानी पिए ताकि पेशाब का रंग हल्का रहे। भोजन हमेशा हल्का करें और भोजन करके ही घर से बाहर निकलें। इसके साथ ही आप कच्चे प्याज, सत्तू, पुदीना, सौंफ का भी सेवन करें। घर में बना पेय पदार्थ जैसे कि लस्सी, नमक, चीनी का घोल, छाछ, नींबू पानी, आम का शरबत का नियमित सेवन करें। अधिक पानी की मात्रा वाले मौसमी फल जैसे कि तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, नींबू का अधिकाधिक सेवन करें। जहां तक संभव हो आप हल्के ढीले ढाले सूती वस्त्र को ही पहने। धूप के चश्मे का इस्तेमाल करें। तौलिया या गमछा भिगोकर सर पर रखें और चेहरे को पोंछते रहें। जूता या चप्पल पहनकर बाहर जाएं। ज्यादा प्रोटीन वाले भोजन जैसे कि मटन, चिकन, अंडा का सेवन करने से बचें और इसके साथ ही गर्म पेय पदार्थ जैसे कि चाय, कॉफी का सेवन भी ना करें। अधिक तापमान में ज्यादा देर शारीरिक परिश्रम ना करें। सवेरे और रात में घर में ताजी और ठंडी हवा आने के लिए खिड़कियों को खुली रखें। लू लगने की स्थिति में तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपना इलाज करवाएं। आप पक्षियों के लिए भी दाना और पानी अपने घर की छत पर रखें और जानवरों को भी छाया प्रदान करें, उनके लिए भी छांव की व्यवस्था करके रखें। ये सारी बातें हैं जिन्हें हमें रोजमर्रा के जीवन में अपनाना चाहिए। इससे गर्मी और लू से बचाव होता है और स्वास्थ्य बना हुआ रहता है।
1: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। श्री यानवा पंचायत से ओम राजेश कुमार रंजन हैं यशस्वी मुखिया।
2: मैं राजेश कुमार रंजन ग्राम पंचायत ग्यामा। हमने RWD के प्रयास से ग्रामीण कार्य विभाग से मुख्य सड़क से पक्की रोड तक हमने जुड़वाए। कुछ ग्राम पंचायत से कार्य करवाए, अभी वो सब गांव खुशहाल है। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया के तरफ से मैं

0: धन्यवाद देता हूँ कि गांव बनेगा तभी देश बढ़ेगा।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।
2: बहनों, अब हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों से जुड़ा है। विषय है ऊर्जा, और बात करेंगे ऊर्जा की बचत के बारे में। ऊर्जा हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। घर में बिजली, रसोई में गैस, उद्योगों में मशीनें, सब ऊर्जा पर निर्भर करती हैं। लेकिन बढ़ती जनसंख्या और आधुनिक जीवन शैली के कारण ऊर्जा की मांग निरंतर बढ़ रही है। ऐसे में ऊर्जा संरक्षण समय की आवश्यकता बन गया है। बहनों, ऊर्जा के अधिकांश स्रोत सीमित हैं। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे संसाधन एक दिन समाप्त हो सकते हैं। इनके अत्यधिक उपयोग से पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं भी बढ़ रही हैं। ऊर्जा बचाने

समय की आवश्यकता बन गया है। बहनों, ऊर्जा के अधिकांश स्रोत सीमित हैं। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे संसाधन एक दिन समाप्त हो सकते हैं। इनके अत्यधिक उपयोग से पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं भी बढ़ रही हैं। ऊर्जा बचाने के लिए हमें अपने दैनिक जीवन से शुरुआत करनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग घर से बाहर निकलते हैं और बिजली नहीं बंद करते, वॉशिंग मशीन चलता हुआ छोड़ देते हैं कि चलो इसमें टाइम लगता है और जब घर आएंगे तो कपड़े धुलकर तैयार रहेंगे। फ्रीज चलती हुई छोड़ देते हैं हम लोग, गर्मी में तो समझ में आता है लेकिन सर्दियों में भी हम लोग सुबह से रात तक 24 घंटे फ्रीज को चलाकर छोड़ देते हैं। तो बहनों, ये सब गलत चीज़ें हैं। जाड़े के दिनों में इतनी ज़रूरत नहीं होती कि हम लोग 24 घंटा फ्रीज चला के छोड़ें। अगर फ्रीज ठंडा हो गया है तो आप उसे कुछ देर के लिए बंद भी कर सकती हैं। इस तरह से छोटे छोटे उपाय से ही ऊर्जा की बचत की जा सकती है। इसके लिए कोई विशेष ऐसा कुछ नियम नहीं बना हुआ है कि हम लोग ऊर्जा ऐसे बचत कर सकते हैं। हम लोग महिलाएँ हैं, स्त्री हैं, गृहिणियाँ हैं, हम लोगों का फर्ज बनता है कि हम लोग इस चीज़ पर ध्यान रखें और ऊर्जा की बचत में अपना योगदान दें। अब सुबह का टाइम है, इस वक्त बल्ब जलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इस दिन के टाइम में प्राकृतिक रोशनी का जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। जब भी कमरे से बाहर निकलें तो उस समय पंखा, लाइट, एसी, हर चीज़ को बंद कर दें। अब ऐसा नहीं है कि एसी चला के छोड़ दिए कि जब कमरे में आएंगे तो कमरा ठंडा मिलेगा। ये ऊर्जा की बचत का तरीका नहीं है, इससे ऊर्जा बर्बाद होती है और एक वक्त ऐसा आएगा कि हम लोग तरसेंगे कि अरे बिजली नहीं है, गर्मी लग रही है, क्या किया जाए। तो इनका ध्यान रखना है। खाना प्रेशर कुकर में बनाएं, जो जिस खाने को हम लोग कुकर में बना सकते हैं उसे कढ़ाई में ना बनाएं। मोबाइल चार्जर और भी तरीके के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं, इनके उपयोग के बाद इन्हें आप प्लग से निकाल दें। मतलब मामूली सी बात है, मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है, मेरे घर में खुद ही कई बार ऐसा होता है कि मोबाइल का चार्जर लगा होता है, मोबाइल चार्ज हो गया, हम लोग मोबाइल निकाल लिए, चार्जर ऑन ही रह गया। ये ध्यान नहीं आता कि हमें स्विच भी ऑफ करना है। तो ये ध्यान देने वाली बात है, छोटी सी बात है पर थोड़ा सा नज़र रखा जाए तो बहुत सारे ऊर्जा को हम लोग बचा सकते हैं। पानी की ज़रूरत है तभी मोटर को चलाएं। आजकल तो ज़्यादातर घरों में समरसेबुल लगा हुआ होता है तो तुरंत ही पानी भर जाता है टंकी में, तो ध्यान रखना कि स्विच को ऑफ कर देना है। ऊर्जा बचाने के लिए बहनों हमें अपने दैनिक जीवन से ही शुरुआत करनी चाहिए और बच्चों को भी ऊर्जा की बचत करना सिखाना है, क्योंकि हम महिलाएं हैं और हमारा फर्ज बनता है कि हमारे जो बच्चे हैं उन्हें ये सारी आदत बचपन में ही डाल दें, जिन्हें की करने में हमें अभी समस्या आती है तो बच्चों को समस्या ना आए। बच्चों को शुरू से आदत रहे कि अगर बत्ती जल रही है, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, बिना मतलब टीवी चल रहा है तो चलो सब चीज़ को बंद कर देना है, ऊर्जा की बचत करनी है। हमेशा इस बात को याद रखिए कि ऊर्जा की बचत का मतलब केवल बिजली का बिल कम करना नहीं है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखना भी है। तो बहनों, ऊर्जा बचाएं, पर्यावरण बचाएं और उज्जवल भविष्य बनाएं। तो इसी आशा के साथ सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला गीत।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। मोहनपुर पंचायत से ओम रानी देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
1: मेरा नाम है रानी देवी, मैं भागलपुर जिला को है। मेरे गाँव में तो पहले मैं 13 नंबर वार्ड का है। मेरा गाँव है सरैया, मोहनपुर पंचायत है। एक काम है उनकी वही गली नली है, वहाँ पानी फंस रहा है, वो पानी निकलना की जरूरी है उसका। यही काम बेसी खास बच्चे है। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।
2: अंतराल के बाद बहनों एक बार फिर आपका स्वागत है आपके मनपसंद कार्यक्रम नारी संसार में। तो चलिए बहनों, वक्त हो चला है हर दिन कुछ खास का। आज इसमें हम जानेंगे गर्मी के मौसम में त्वचा की सुरक्षा करने के उपायों के बारे में। बहनों, तेज धूप, पसीना और बढ़ता तापमान हमारी त्वचा पर बुरा प्रभाव डालकर जाता है। तो चलिए जानते हैं इस मौसम में अपनी त्वचा का ख्याल कैसे रखें। गर्मी के मौसम में धूप की तेज किरणें त्वचा को झुलसा देती हैं। इससे टैनिंग, सनबर्न, रैशेस, मुहासे और त्वचा में रूखापन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन कुछ आसान उपाय अपनाकर त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाकर रखा जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले घर से बाहर निकलते समय सूती और पूरे बाजू के कपड़े पहनें। सिर पर टोपी, दुपट्टा या छाता रखें। यदि संभव हो तो सुबह 11 बजे से दोपहर के 3 बजे के बीच तेज धूप में निकलने से बचें। त्वचा को हाइड्रेट रखना भी बहुत जरूरी है। दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ और मौसमी फलों का सेवन करते रहें। इससे शरीर और त्वचा दोनों स्वस्थ रहते हैं। चेहरे को दिन में 2 से 3 बार साफ पानी या हल्के फेस वॉश से जरूर धोएं ताकि पसीना और धूल हट जाए। बहुत अधिक रासायनिक उत्पादों के उपयोग से बचें। यदि धूप में लंबे समय तक रहना हो तो अपनी त्वचा के अनुसार सनस्क्रीन का प्रयोग करें और आवश्यकता होने पर इसे दोबारा फिर से लगाएं। बहनों, रैशेज या सनबर्न होने पर ठंडे पानी या दही मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाएं। इससे रैशेज पर ठंडक मिलती है। इसके साथ ही दिन में कम से कम आप 1 या 2 बार गुलाब जल को रुई में भिंगोकर आंखों पर गुलाब जल की रुई के फाहे रखें। इससे आंखों में ठंडक मिलती है। भारी क्रीम की बजाय हल्के जेल आधारित मॉइस्चराइजर का उपयोग करें। आप अगर चाहें तो आटे, बेसन, हल्दी और दही का लेप त्वचा पर लगा सकती हैं। इससे धूप में झुलसी हुई त्वचा को राहत मिलती है। गुलाब जल लगा करके भी 10 से 15 मिनट तक आप रख सकती हैं। इससे आपकी त्वचा घमौरियों से मुक्त हो जाएगी और खुजली नहीं होगी। बहनों, अगर आप चाहें तो अपने सुझाव हमें पत्र के माध्यम से लिखकर भेज सकती हैं। हमारा पता है कार्यक्रम नारी संसार, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी दरभंगा। आप अपने संदेश हमें ईमेल के माध्यम से भी भेज सकती हैं। हमारा ईमेल का पता है akashwanidarbhanga@gmail.com। तो चलिए बहनों, बातें तो बहुत हुई लेकिन चलते चलते आपको एक बार फिर लेकर चलते हैं मनोरंजन की दुनिया में और सुनवाते हैं ये प्यारा संगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रही हैं अरिजीत सिंह की आवाज में ये प्यारा सा गीत, फिल्म है लापता लेडी। तो चलिए बहनों, इसी गीत के साथ दीजिए विदा श्वेता को। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी संसार, ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अब समय हो चला है हिंदी समाचार का, जिसका प्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे। कुछ पल प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकी देश सेशल्स की अपनी यात्रा के तीसरे दिन आज विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायगर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने पीस पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री 3 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले श्री मोदी ने कल सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लिया। ये सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ है। श्री मोदी विशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू हराइजन से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स और भारत दोनों एक ऐसे विश्व के लिए प्रयासरत हैं जहां विकास अधिक समावेशी हो और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं समकालीन वास्तविकताओं पर ध्यान केंद्रित करें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जनविश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुकदमों को कम करना और विश्वास आधारित नियामक के ढांचे को मजबूत करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की

0: गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शिलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ कल से 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे और पात्र मतदाताओं से भरे हुए आवेदन पत्र एकत्र करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज नई दिल्ली के संसद भवन में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन ने श्री खड़गे को शपथ दिलाई। श्री खड़गे कर्नाटक से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण बड़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक दोपहर में लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स 425 अंक गिरकर 76,676 पर और निफ्टी 112 अंक कम होकर 23,944 पर था। फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन जस्टाक्यो ने एकमात्र गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 1:05 हो रहे हैं। अब आप जानकारी प्राप्त करेंगे हमारे केंद्र से होने वाले आज के आगामी कार्यक्रमों के संदर्भ में।

दोपहर 1:10 पर आप सुनेंगे हमारे केंद्र से देशभक्ति गीत। दिन के 1:15 पर आप सुनेंगे हमारे केंद्र से फिल्मी गीतों को। दोपहर 2:10 पर आप सुनेंगे रोजगार सूचना।

गीतों का लोकगीतों का आनंद ले सकेंगे दिन के 3 बजे। संध्या काल में हम आपको सुनवाएंगे युवा को संबोधित कार्यक्रम युववाणी। युववाणी के अंतर्गत श्रोता सुनेंगे तरुण कुसुम। फिल्मी गीतों का आनंद लेंगे संध्या काल में 5:40 पर। संध्या 6:10 पर आप सुनेंगे हमारे केंद्र से विद्यापति गीतों को।

संध्या काल में आप सुनेंगे कार्यक्रम गाम घर। गाम घर के अंतर्गत श्रोता सुनेंगे अनुभव के चश्मा सा, साथ ही सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद संध्या 6:30 पर। खेती गृहस्थी कार्यक्रम हम आपको

मैथिली साहित्य के कार्यक्रम सिंगरहार आप सुनेंगे रात्रि 8:15 पर। कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी हम आपको सुनवाएंगे रात्रि 10:00, सभा की समाप्ति 11:10 पर की जाएगी। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण यहीं समाप्त होता है।

श्रोताओं, अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारे केंद्र से प्रस्तुत होने वाले आज के आगामी कार्यक्रमों के संदर्भ में। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, ये सुनते हैं देशभक्ति गीत मन्नाडे मोहम्मद रफी और राजेंद्र मेहता की आवाज में।

श्रोता, अभी आप सुने थे देशभक्ति गीत मन्ना डे राजन मेहता और मोहम्मद रफी को। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है।

साहित्य, संस्कृति और कला के उपवन में फुलायल एक गोट एहन पुष्प जाहिसँ गमकैत अछि संपूर्ण मिथिला।

0: सब दिन भरतुहार आबै छल कहियो थमहू अगला साल, हमर गर्दन काटि लेला आ अपने बनल हमालू मा।
1: गुआ सुपारी के कहल जायत अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनी आनि के दिया तऽ बहुत कमे लोक हेता जे गुआ बुझि के सुपारी बुझि के आनि के देता।
2: अपन परम्परा, अपन संस्कार, अपन माइटक सुगंध के सहेजे मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार।
3: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अब हम आपको ले चलते हैं फिल्मी गीतों के सफर पर। सफर का पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से। संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने किया है।

मेहमान नजर के बन जाए। यह गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म पाताल भैरवी से। आवाजें थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, संगीत निर्देशन बप्पी लहरी ने किया था। श्रोताओं आइए सुनते हैं अगला गीत सफर का, जिसे हमने लिया है फिल्म प्यासा सावन से। गीत रचना संतोष आनंद की है और इस गीत को अपने धुनों से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, गायक कलाकार लता मंगेशकर।

लक्ष्मीकांत प्यालाल के संगीत निर्देशन में गाए इस गीत को अभी आप सुन रहे थे फिल्म आया सावन झूम के। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने, आवाजें थी मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। श्रोताओं अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में, गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी, संगीत दिया है आर डी बर्मन ने फिल्म मेरे जीवन साथी से।

आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को भी आप सुन रहे थे फिल्म लोफर से। गायक कलाकार थी लता मंगेशकर, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोताओं ये सुनते हैं एक और गीत लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म मनमौजी से। गीत रचना राजेंद्र कृष्णा ने की है और संगीत दिया है मदन मोहन ने।

सच्चा झूठा इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे थे इंदिवर ने, संगीत दिया था कल्याण जी, आनंद जी ने। श्रोता अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ में। गीत लिखा है आर डी बर्मन ने और इस गीत को अपने धुनों से सवारा है मजरू सुल्तानपुरी ने। फिल्म का नाम मेरे जीवन साथी।

किशोर कुमार की आवाज़ में अभी आप सुने थे फिल्म मुकद्दर का सिकंदर। इसी गीत के साथ फिल्मी गीतों का सफर अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। श्रोताओं, अब कुछ ही समय में आप सुनेंगे हमारे पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार और इलाकाई खबरें। कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज दिल्ली दौरे पर रवाना हो गए हैं। श्री चौधरी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे। जानकारी के अनुसार वे राज्य में प्रस्तावित विभिन्न सड़क परियोजनाओं को लेकर केंद्रीय मंत्री से चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री का पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ भी मुलाकात का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना मेट्रो परियोजना की प्रगति की उच्च स्तरीय समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने परियोजना से जुड़े अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने के साथ ही प्रत्येक चरण के लिए स्पष्ट समय सीमा तय करने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने परियोजना की नियमित मॉनिटरिंग और प्रगति की लगातार समीक्षा पर भी जोर दिया है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने में अहम भूमिका निभा रहा है। श्री पासवान ने महाराष्ट्र के परभणी में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए युवाओं से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से जुड़ने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आज युवाओं को नौकरी मांगने की बजाय रोजगार देने वाला बनना चाहिए। श्री पासवान ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और भारतीय खाद्य उत्पादों को वैश्विक गुणवत्ता के अनुरूप बनाने पर भी जोर दिया। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के अवसर पर आज देश प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की क्षेत्रीय इकाई की ओर से पटना के कर्पूरी सदन में आयोजित विशेष कार्यक्रम का उद्घाटन उप महानिदेशक रोशन साहू ने किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री साहू ने कहा कि राष्ट्रीय सांख्यिकी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

इस दौरान मधुबनी, सुपौल, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, सारण, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण समेत कई जिलों में विभिन्न स्थानों पर भारी बारिश की आशंका को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इधर पटना और आसपास के क्षेत्रों में भी सुबह से बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर बारिश हो रही है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान सुपौल के सरायगढ़ भपटियाही में सबसे अधिक 196.4 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। हमारे अररिया संवाददाता ने बताया है कि जिले में विभिन्न स्थानों पर देर रात हुई मूसलाधार बारिश के कारण कई स्थानों पर जल जमाव की भीषण स्थिति बन गई है, साथ ही शहर में बीएसएनएल सेवा भी प्रभावित हुई है। केंद्रीय चयन परिषद की कल संपन्न सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान कदाचार के आरोप में मुंगेर पुलिस ने सॉल्वर गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जिले के रामनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत नवागढ़ी उच्च विद्यालय परीक्षा केंद्र में छापेमारी के दौरान यह सफलता प्राप्त की है। पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने बताया कि पकड़े गए आरोपित राहुल से पूछताछ की जा रही है। शिवहर जिले के तरियानी छपरा थाना क्षेत्र अंतर्गत छपरा सिरहा टोला में सिलेंडर विस्फोट की घटना में चार लोग गंभीर रूप से झुलस गए। विस्फोट से लगी आग ने आसपास के कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। इधर पटना के दीदारगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत करमली चक स्थित एक वेयर हाउस में आज सुबह अगलगी की घटना में 50 लाख रुपए मूल्य से अधिक की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। अग्निशमन दस्ते की 21 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। बेगूसराय जिले के सिंघौल थाना क्षेत्र अंतर्गत अंग्रेजी ढाला के पास राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 31 पर दो चार पहिया वाहनों के आमने सामने टक्कर में चार लोगों की मौत हो गई, वहीं पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राज्य के अधिकतर भागों में मॉनसून की सक्रियता से मध्यम से भारी वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में अनेक स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान जताया है।

का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इधर पटना और आसपास के इलाकों में भी सुबह से बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर बारिश हो रही है। महकमे से मिली इत्तला के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सुपौल के सरायगढ़ भपटियाही में सबसे ज्यादा 196.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हमारे अररिया नुमाइंदा ने बताया है कि जिले में मुख्तलिफ मकामात पर देर रात हुई मूसलाधार बारिश से कई मकामात पर आबी जमाव हो गया है। बेगूसराय जिले के सिंघौल थाना इलाके के तहत अंग्रेजी ढाला के पास कौमी शाहरा नंबर 31 पर दो गाड़ियों की आमने सामने की टक्कर में चार लोगों की मौत हो गई, वहीं पांच लोग शदीद तौर से जख्मी हो गए। इन सभी का प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने हादसे का शिकार हुई गाड़ियों को सड़क से हटाकर आमदोरफ्त बहाल कर दी है। शिवहर जिले के तरियानी छपरा थाना इलाके के तहत छपरा सिराहट टोला में सिलेंडर ब्लास्ट के वाके में चार लोग झुलस गए। इस वाके में आग लगने से कई घर आग की जद में आ गए। इधर पटना के दीदारगंज थाना इलाके के तहत करमली चक वाके एक वेयर हाउस में आज सुबह आग लग जाने से 50 लाख रुपए से ज्यादा का कीमती सामान जल गया। फायर ब्रिगेड की 21 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के सबब का पता लगाया जा रहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर अभी हमारे स्टूडियो की घड़ी ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 2:10 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे रोजगार सूचना।

लेखा परीक्षक एवं सहायक 2026 ने कुल 1829 पद निकाले हैं। आवेदन शुरू होने की तिथि 14/7/2026 है और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 3/8/2026 है। इस पद के लिए उम्मीदवार आवेदक की न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल और अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष होनी चाहिए। इस पद की विस्तृत जानकारी के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट upssc.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। JKSSB 2026 ने कुल 130 पद निकाले हैं। आवेदन शुरू होने की तिथि 26/6/2026 है और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 21/7/2026 है। इस पद के आवेदन के लिए अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष रखी गई है। इसकी विस्तृत जानकारी आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट jkssb.nic.in पर देखने को मिलेगी। श्रोताओं, राजस्थान लोक सेवा आयोग 2026 के कुल पद 2007 निकाले गए हैं। आवेदन शुरू होने की तिथि 4/6/2026 है और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 3/7/2026 है। इस पद के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल और अधिकतम उम्र सीमा 40 साल है। इस पद की विस्तृत जानकारी देखने के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर देख सकते हैं।

श्रोताओं, बीएसएनएल ने 2026 में कुल 100 पद निकाले हैं। इस पद की आवेदन शुरू होने की तिथि 4/6/2026 और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 3/7/2026 है।

इस पद के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 20 साल और अधिकतम उम्र सीमा 30 साल रखी गई है। इस पद की विस्तृत जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट bsnl.co.in पर जाकर देख सकते हैं।

श्रोताओं, अब समय हो चला है दोपहर समाचार का, जिसका प्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे। कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। यात्रा के अंतिम दिन श्री मोदी ने विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनयगर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। बाद में प्रधानमंत्री ने पीस पार्क में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई गति देने वाली रही। इस यात्रा के दौरान श्री मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमेनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, समता निर्माण, समुद्री सुरक्षा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ावा देने पर सहमति जताई। साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में अवैध मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी और समुद्री डकैती जैसी चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। यात्रा के दौरान UPI, स्वास्थ्य, कृषि, नौवहन, अंतरिक्ष सहयोग

0: प्रत्यर्पण और लाइन ऑफ क्रेडिट से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उनके योगदान के लिए गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से भी सम्मानित किया गया। यह पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में सेशेल्स का सर्वोच्च सम्मान है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कल सेशेल्स की नेशनल असेंबली के विशेष सत्र को भी संबोधित किया और ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। विशाल और विष्णु के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे समझौते को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी उपस्थित थे। इस अवसर पर जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत राजस्थान के हिस्से का पानी मॉनसून के दौरान हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली से होकर गुजरने वाली भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा।
2: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा के अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI जांच के अंतर्गत 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। आरोपियों को उनकी पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और शीलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जनविश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया गया है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि इस सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुद्दों को कम करना और विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि नई व्यवस्था के अंतर्गत विधिक मापन अधिकारी संबंधित संस्थान को सुधार सूचना जारी कर कमियों को दूर करने के लिए उचित समय देंगे। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सुधार कर लिया जाता है तो दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि ये व्यवस्था निर्माताओं, आयातकों, पैकरों, डीलरों, मरम्मतकर्ताओं, व्यापारियों, लघु और मध्यम उद्यमों और अन्य विनियमित संस्थाओं पर लागू होगी। मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार उपभोक्ता संरक्षण को कमजोर किए बिना पारदर्शी और कारोबार अनुकूलन नियामकीय व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष CP राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 8 नवनिर्वाचित और पुनः निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। इन सदस्यों में कर्नाटक से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भाजपा के एम नागराज, पंजाब से भाजपा नेता तरुण चुग, गुजरात से मानसिंह मेरामन परमार और जितेंद्र मेघजी भाई कंजरिया, राजस्थान से डॉ अलका सिंह, मणिपुर से अधिकारी मयूम शारदा देवी।

0: और महाराष्ट्र से एनसीपी नेता राजेंद्र हीरालाल जैन शामिल हैं। तमिलनाडु में करूर से एआईएडीएमके विधायक एमआर विजय भास्कर ने आज विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर को अपना इस्तीफा सौंपा। श्री प्रभाकर ने बताया कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। इसके साथ ही विधानसभा से इस्तीफा देने वाले एआईएडीएमके विधायकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ कल से मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे।
1: जो हमारे लिए डेट है हाउस टू हाउस, जिसमें बीएलओज एक एक घर जाकर सभी इलेक्टर्स को इनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो 30 तारीख से शुरू हो जाएगी और 29 जुलाई तक फॉर्म वापसी की भी डेट है। और इसके लिए जो हमारे 13,033 बूथ्स हैं, वो सभी पे बीएलओज अपॉइंटेड हैं, तो सभी बीएलओज को उनके इनुमरेशन फॉर्म हमने दे दिए हैं, जो कि कल सुबह से अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा दी गई है।
0: मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन भी गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मध्य गुजरात क्षेत्र पर केंद्रित दो दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्र सम्मेलन का आज वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय आवास तथा शहरी मामलों और विद्युत मंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने औद्योगिक विकास को गति देने में विद्युत क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ योजना के कारण भारत ने इस ग्रीष्मकाल में 271 गीगावाट की रिकॉर्ड चरम बिजली मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कलकत्ता की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
2: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि कानूनी मामलों, मौत की सजा और आवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध के बावजूद वे इस वर्ष के अंत तक बांग्लादेश लौटेंगी। एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में शेख हसीना ने अपने खिलाफ जारी मामलों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार न्यायपालिका के बल पर आवामी लीग को देश के राजनीति से बाहर करने का प्रयास कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा संपन्न कर वार्षिक अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत की। यात्रा 3 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज अद्वितीय आध्यात्मिक उत्साह का माहौल रहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरी में वार्षिक देव स्नान पूर्णिमा के लिए लाखों श्रद्धालु एकत्र हुए।
3: आज पुरी में लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ के पवित्र देवस्नान पूर्णिमा समारोह देखा, जो इस साल की रथ यात्रा की उत्सव की औपचारिक शुरुआत है। सदियों पुरानी मंदिर परंपराओं के अनुसार देवताओं को मंदिर परिसर के भीतर स्थित पवित्र सुना कुआ यानी स्वर्ण कुप से लाए गए पवित्र सुगंधित जल के 108 घड़ों से स्नान कराया गया। विस्तृत स्नान के बाद देवताओं को गजानन के रूप में सजाया गया। अब वे अणसर के 2 हफ्ते लंबी अवधि के दौरान एकांतवास में रहेंगे और अगले महीने की 16 तारीख को शुरू होने वाली सालाना रथ यात्रा से पहले नव जौवन दर्शन के लिए फिर से प्रकट होंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया।

0: मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल और माहे में बुधवार तक तेज बारिश की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:30 हो रहे हैं। पुनः आप आने लेंगे हमारे केंद्र से फिल्मी गीतों का। गीतों की शुरुआत हम करने जा रहे हैं फिल्म 9-2-11 से। आवाजें हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की। गीत लिखा है मजरूर सुल्तानपुरी ने, संगीत दिया है SD बर्मन ने।

एस डी बर्मन के संगीत निर्देशन में गाए इस गीत को भी आप सुन रहे थे फिल्म काला बाजार से। गीत रचना शैलेंद्र की थी, आवाजें थी मोहम्मद रफी और गीता दत्त।

श्रोतो, अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म मंजिल से। गीत के बोल लिखे हैं योगेश ने और इस गीत को संगीतबद्ध किया है आरडी बर्मन ने।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को अभी आप सुन रहे थे फिल्म पारश मणि में। गीत रचना असाद भोपाली ने की और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोताओं, अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म पेन गेस्ट से। गीत के बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत दिया है SD बर्मन ने, आवाजें दी हैं किशोर कुमार और आशा भोसले ने।

पेन गेस्ट फिल्म का यह गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में। श्रोता, अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं गोपाल दास सक्सेना, संगीतकार सचिन देव बर्मन। फिल्म का नाम प्रेम पुजारी।

किशोर कुमार की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे, और लता मंगेशकर को फिल्म रामपुर का लक्ष्मण में। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीत निर्देशन आरडी बर्मन के थे। इसी फिल्म गीत के साथ फिल्मी गीतों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है लोकगीत, कलाकार हैं राखी कुमार।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। जजुआर मध्य पंचायत से ओम सुमंत नाथ ठाकुर बने हैं यशस्वी मुखिया।
1: मेरे यहाँ अस्पताल बनाया, मेरा ग्राम पंचायत तो कुपोषण मुक्त हमारा ग्राम पंचायत है, टीबी मुक्त हमारा ग्राम पंचायत है, एनीमिया मुक्त हमारा ग्राम पंचायत है। किसी भी गर्भवती महिलाएं की प्रसव के दौरान हमारे ग्राम पंचायत का खुद का अपना एम्बुलेंस है, जो कोई भी व्यक्ति को इलाज के लिए समय रहते गाड़ी के लिए कोई दिक्कत नहीं हो। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बनेगा।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। किशनपुर रटवारा पंचायत से ओम पूनम कुमारी बनी है यशस्वी मुखिया।
1: मैं पूनम कुमारी, ग्राम पंचायत किशनपुर रटवारा, प्रखंड आलमनगर, जिला मधेपुरा जी। मैंने काम करवाए है, अभी तो मेरा बाहर इलाका है, कोसी कटाव से पीड़ित है। वहाँ तो रोड सालों आती है, सालों चली जाती है बह के, तो उसी को हम अभी तक में 25 से 30 हम मतलब कच्ची सड़क बनाए हैं, 10 से 15।

0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान।
1: संदेश पर आप सुन रहे थे राखी कुमारी के स्वर में लोकगीत। लोकगीत में आप सुन रहे थे नचारी। अगली प्रस्तुति राखी कुमारी की है, आइए इनसे सुनते हैं देवी गीत।

0: देश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। मोतीपुर पंचायत से ओम प्रेमी देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
1: मैं प्रेमा देवी, 10 ग्राम पंचायत राज मोतीपुर, प्रखंड रोसरा, जिला समस्तीपुर। हम सारा काज किए हैं अपना ग्राम सभा में लेकर, अपना महिलाओं से और ग्राम से लेकर उसे पंचायत को शुरू किए हैं। हमारे आने से बहुत सारे महिलाओं को रोजगार मिले। अभी लाइब्रेरी खोले हैं, जिच्छा मिल रही है, अभी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।
2: श्रोताओं, संदेश पूर्व आप सुन रहे थे राखी कुमारी के स्वर में लोकगीत। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3:20 हो रहे हैं। यह सभा यहीं समाप्त होती है। पुनः हम उपस्थित होंगे अपने आगामी कार्यक्रमों के साथ संध्या 5 बजे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति।

0: कर मेरे साथ न्याय किया जाए।
1: महाशय यशोदा नंद घर में मेहमानों के लिए भोजन परसने का आदेश करने गए थे, निकले तो ये वाक्य उनके कानों में पड़ा। चेहरा फक हो गया, झपट कर लड़के के पास गए, कागज उसके हाथ से छीन लिया और बोले,
2: नालायक, ये क्या पढ़ रहा है? ये तो किसी मुवक्किल का खत है जो उसने अपने मुकदमे के बारे में लिखा था। ये तू कहां से उठा लाया? शैतान, जा वो कागज ला जो मैंने तुझे लिख कर दिया था।
3: पढ़ने दीजिए, इस तहरीर में जो लुत्फ है वो किसी दूसरी तकरीर में ना होगा।
4: सही बात है, जादू वो जो सिर चढ़ के बोले।
3: भाई अब जलसा बर्खास्त कीजिए, मैं तो चला।
4: वाह वाह वाह वाह, यहाँ भी चलते हुए।
2: अरे बैठिए बैठिए, पत्तल लगाए जा रहे हैं। अरे बैठिए ना आप लोग, बैठिए बैठिए।
4: बेटा परमानंद, जरा यहाँ तो आना। सुनो, तुमने यह कागज कहाँ पाया?
0: बाबूजी ही तो लिखकर अपने मेज के अंदर रख गए थे, मुझसे कहा था कि इसे पढ़ना, अब बेकार मुझसे खफा हो रहे हैं।
2: वो ये कागज था? मैंने तो मेज के ऊपर ही रख दिया था। तूने ड्रॉर में से क्यों निकाला इस कागज को?
0: मुझे मेज पर नहीं मिला।
2: तो मुझसे क्यों नहीं कहा? ड्रॉर क्यों खोला? देखो आज मैं तुम्हारी कैसे खबर लेता हूँ, तुम भी याद करोगे।
3: अरे भाई ये और क्या है, इसी को तो लीडरी कहते हैं कि अपना उल्लू सीधा करो और नेक नाम भी बनो।
4: शर्म आनी चाहिए, यह त्याग से मिलता है, समझे? धोखाधड़ी से नहीं।
3: मिल तो गया था पर बस एक आंच की कसर रह गई।
4: सच बताऊं, ईश्वर पाखंडियों को यों ही दंड देता है।
1: ये कहते हुए लोग उठ खड़े हुए। यशोदा नंद समझ गए कि भंडा फूट गया, अब रंग न जमेगा। बार बार परमानंद को कुपित नेत्रों से देखते और डंडा तौलकर रह जाते थे। इस शैतान ने आज जीती जिताई बाजी जो खो दी थी। मुंह में कालिख लग गई, सिर नीचा हो गया, गोली मार देने का काम किया है। उधर रास्ते में मित्र वर्ग यूं टिप्पणियां करते जा रहे थे,
3: ईश्वर ने मुंह में कैसी काली मां लगाई कि हयादार होगा तो अब सूरत ना दिखाएगा।
5: ऐसे ऐसे धनी मानी विद्वान लोग ऐसे पतित हो सकते हैं? मुझे यही आश्चर्य है। लीना है तो खुले खजाने लो, कौन तुम्हारा हाथ पकड़ता है? ये क्या कि माल चुपके चुपके उड़ाओ और यश भी कमाओ?
4: मक्कार का मुंह काला।
3: हाँ, यशोदानंद पर बड़ी दया आ रही है, बेचारे ने इतनी धूर्तता की

0: पर भी कलाई खुल ही गई, बस एक आंच की कसर रह गई।
1: एक आंच की कसर, मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी आपने सुनी कथा सुधा में। इस कहानी में भाग लेने वाले कलाकार रेणु चतुर्वेदी, जी श्याम, जयंत पात्रिकर, यूनुस खान और दीपक केसावलेकर। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। तो मंजरी जी, क्या संदेश प्रद कहानी थी?
2: बहुत अच्छी लग रही थी सुनकर, बहुत अच्छा लग रहा था। तो हमारे सभी साथियों को भी बहुत पसंद आई होगी, है ना? तो अब सुनते हैं गीत, उसके बाद हम अपने विषयों पर चर्चा करेंगे
1: जी।

0: तो मंजरी जी सब गीत सुन लिए, कहानी सुन ली, लेकिन बातें कब होंगी ये बताइए
1: भाई। बातें तो हमारा जो विषय है व्यसन एक गंभीर समस्या है नेहा, और आज के समय में जो ये नशा है केवल एक बुरी आदत नहीं बल्कि समाज के सामने एक गंभीर चुनौती बन चुका है
0: जी।
1: और विशेष रूप से युवाओं युवतियों में कुछ लोग इस आदत को जो है वो आधुनिकता स्टाइल और फैशन का प्रतीक मानने लगे हैं, और नई पीढ़ी जिसे जेंजी का नाम दिया गया है वो इन आदतों को हाई सोसाइटी के संग स्टेटस सिंबल मान रही है। उसे लगता है कि ये जो आदत है इसको करने में कोई बुराई नहीं, ये तो मॉडर्न समाज का फैशन है। देर रात तक पार्टी क्लब रिसॉर्ट्स में दोस्तों संग मादक पदार्थों का नशीले पदार्थों का सेवन करना, डांस करना, जश्न मनाना, उनको लगता है कि बस एक तो ये तो एक जस्ट एक एंजॉय

0: एंटरटेनमेंट है, फन है, लेकिन सच्चाई ये है कि इस आदत को कभी फैशन नहीं माना जा सकता है, ना ही ये हो सकता है। और ये एक ऐसा व्यसन है जो धीरे धीरे व्यक्ति के स्वास्थ्य, परिवार, करियर और पूरे समाज को नुकसान पहुंचाता है।
1: बिल्कुल, क्योंकि शुरुआत में तो कई लोग दोस्त के दबाव में आके, या फिर दिखावा होता है, या कोई कभी कभी जिज्ञासा होती है, या तनाव हो जाता है, तो उससे बचने के लिए मद्यपान करते हैं, धूम्रपान करते हैं, तम्बाकू या अन्य नशीले पदार्थों का वो सेवन करते हैं, और लगता है कि उनका व्यक्तित्व अधिक आकर्षक इससे दिखाई देगा और स्वीकार किए जाएंगे लोगों के बीच, जैसे लोगों के बीच वो रह रहे हैं। लेकिन तथाकथित ये जो फैशन है, धीरे धीरे आदत और फिर लत में बदल जाता है, और ये जो लत है वो बड़े नुकसान करती है, जैसे कि आपने कहा स्वास्थ्य पर नुकसान है, शरीर के साथ साथ मानसिक संतुलन भी इससे प्रभावित होता है, निर्णय लेने में बहुत ही परेशानियां आती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, काम में मन नहीं लगता, आर्थिक समस्याएं भी पड़ती हैं, परिवार में हो तो तनाव पैदा हो जाता है, कई बार इसकी वजह से अपराध, सड़क दुर्घटना और हिंसा जैसी घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। इससे संबंधित और बातें करेंगे, लेकिन एक अंतराल ले लें।

0: अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम
1: सखी सहेली और बातें चल रही थी कि हम ये जो गंभीर समस्या है व्यसन की, हाँ। तो नेहा इसमें क्या होता है कि जब ऐसी लत को आप ले करके चलते हैं, ड्राइव करते हैं, तो उसके साथ साथ आप रील बनाने लग जाते हैं, वीडियो बनाकर, हाँ। ब्लैकमेल करना भी एक आदत शुमार हो जाती है लोगों की, और शोषण करना जैसी बातें कितनी आए दिन होती रहती है, हम खबरों में भी देखते हैं, और इससे वो लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। लेकिन हमारे जो युवा युवतियां हैं वो इतनी न्यूज सुनने के बाद भी, समाचार सुनने के बाद भी वो लोग जागते नहीं, जागरूक नहीं होते, सतर्क नहीं होते कि उन्हें इन चीजों से दूर रहना चाहिए। हाँ। और सोचो उन माता पिता पर क्या बीतती होगी जब इस स्थिति में उनका बेटा या बेटी फंस जाते हैं, तो बहुत ही शर्मिंदगी की बात होती है, उनके अच्छा नहीं लगता है कि परिवार की इस तरह से सब जगह वैसी बातें हो रही हैं उनके बारे में। तो बच्चों को ये चीज़ सोचना चाहिए, और इसके लिए क्या है कि आप इसको फैशन, मतलब अगर मानते हैं तो बहुत ही गलत बात है, ये फैशन नहीं है, फैशन आप और चीज़ों का कीजिए, लेकिन ये चीज़ इन चीज़ों से आप दूर रहिए, और अपनी अपनी जो अच्छी शिक्षा है जो आपको पिता माता चाहते हैं कि आपका बच्चा, मेरा बच्चा अच्छा पढ़े लिखे, तो उस तरफ ध्यान दीजिए, आप अच्छी शिक्षा लीजिए, स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए, खेल संगीत साहित्य और रचनात्मक कार्य कीजिए जिससे कि आपका नाम रोशन है, ना कि आप इस वजह से आपके नाम को कहा जाए कि ये बच्चा गलत लत का शिकार है, ऐसा ना करें।
0: और कई बार इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि परिवार में, विद्यालय में, समाज में, सब हम मिलकर अगर युवाओं को इसके दुष्प्रभावों के बारे में अगर हम बताएं, या मित्रों का सही चुनाव कैसे करना चाहिए, या उनका जो तनाव है, तनाव तो सभी को होता है, तो तनाव का सकारात्मक रूप से कैसे समाधान कर सकते हैं, कैसे खुद को आत्मसंयमित हो सकते हैं कि नहीं, जो अगर हमारे साथी नशा कर रहे हैं या ऐसे लोगों के आसपास हम हैं या ऐसी चीजें हमें आकर्षित करनी है, तो कैसे खुद को हम ये बताएं कि नहीं ये चीज़ सही नहीं है, तो हमें इससे बचना है, तो इसके लिए आत्मसंयम बहुत ज़रूरी है। और जब हम देखते हैं कि क्या आजकल अगर हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जो ये व्यसन है, नशा है, वो एक नई पहचान की तरह आते जा रहा है, कि मान लीजिए सिगरेट है या नशीले पदार्थ हैं, तो उनका सेवन करना आधुनिकता मानी जाती है, ऐसा लगता है कि वह कितनी अच्छी तरह से, कितने अच्छे लग रहे हैं, ऐसा युवाओं का जो नज़रिया बदल रहा है उसके लिए ही वो उस तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। फिर अगर ऐसा हो रहा है, क्योंकि उसके तो पैकेट्स में ही सारी लिखे होते हैं क्या क्या नुकसान हो सकते हैं उसके, और अगर हम देखें तो इसके बहुत सारे दुष्परिणाम ही हैं जो आसपास भी दिख जाएंगे अगर वो देखते हैं, तो बहुत सी गंभीर समस्याएं होती हैं, कभी कभी लोग कहते हैं कि स्टेटस है या कूल दिखते हैं हम इससे, तो ये जो चीजें हैं वो सोशल मीडिया के जरिए या

0: फिल्मों के जरिए कई बार, क्योंकि फिल्मों में भी बताया जाता है कि किसी खास किरदार को दिखाने के लिए उस तरह की चीजें करना लगता है उन्हें जरूरी, तो इस वजह से वो पूरा जो एक शुरुआत में बताया जाता है, स्पष्टीकरण दिया जाता है कि इस तरह का कोई भी काम वो व्यक्ति नहीं कर रहा, एक किरदार को दिखाया जा रहा है।
1: बिल्कुल,
0: तो इस किरदार में आपको क्यों ढलना है,
1: क्यों ढलना है? और नेहा, जब कोई इस तरह की चीजों को लेता है तो उसका जो धुआं है वो सामने वाला अगर नहीं लेता है तो उसके वो सांस तो ले रहा है ना, तो उसके लंग्स में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके फेफड़ों को भी नुकसान हो रहा है। आप अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं लेकिन आपके साथ दूसरे को भी नुकसान हो रहा है। अब घर में आप अगर आप ले रहे हैं तो बच्चे भी देख रहे हैं, बच्चों को भी लंग्स में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पूरे परिवार इससे क्षति होती है। तो हमारे जो युवा बच्चे युवतियां हैं उनको कहना चाहिए कि वो सतर्क रहें, इस तरह की आदतों से दूर रहें। और हमारे साथी भी देखो लिखते हैं कि व्यसन एक दीर्घकालीन गंभीर मानसिक बीमारी है जो मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को बाधित करता है। किसी को धूम्रपान, तंबाकू सेवन या कैफी पदार्थ पीने का व्यसन हो जाता है जो शरीर और दिमाग को काफी नुकसानदायी होता है। आजकल एक नया व्यसन चल रहा है मोबाइल का, जिसका ज्यादा उपयोग करने से आंखों के साथ गर्दन के लिए भी काफी नुकसानदेह हो सकता है। व्यसन कोई भी हो, उनके अधीन होने में खुद का नुकसान ही होता है, इसीलिए इससे दूरी बनाने में ही समझदारी है। अगर आपको व्यसन कर रखना है तो रेडियो का रखिए विद भारती पर मनभावन गीत संगीत सुनना सबसे बड़ा फायदेमंद होगा। तो बहुत अच्छी सी बात आपने अंत में लिख दी है, तो बच्चों को सोचना चाहिए।
0: बिल्कुल, तो कुछ अच्छी चीजों का हम, क्योंकि किसी भी चीज की अगर लत लगती है तो वो ऐसे, हालांकि लत को बुरी चीजों बुरी आदतों के साथ ज्यादा जोड़ा जाता है, फिर भी अगर हम जोड़ रहे हैं हमारे साथी की संगीत के साथ आप कर सकते हैं, या पढ़ने के साथ अलग अलग किताबों का आप शौक पाल सकते हैं, उसके प्रति आप उतने ज्यादा दीवानगी पाल सकते हैं कि बस उसको आप, उसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हैं, तो फिर भी आपके व्यक्तित्व का विकास होगा, कुछ ना कुछ आपके लिए फायदेमंद ही होगा। हमारे एक साथी लिखते हैं कि व्यसन एक दीर्घकालीन समस्या है जो आपके जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित कर सकती है, जिनमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, रिश्ते और करियर शामिल है, और इसमें मादक पदार्थों के सेवन से संबंधित विकार, ये दो मुख्य प्रकार उन्होंने बताया व्यसन के, और व्यवहार संबंधी व्यसन। तो इसका इलाज लेकिन संभव है, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी इलाज कर लेना चाहिए, यानी कि व्यसन मुक्ति के भी बहुत से केंद्र हैं वहां अगर आप जाकर, क्योंकि अगर आपको आदत हो गई तो उसे छुड़ाना भी आवश्यक है, तो एक अच्छी तरह से अगर आप छुड़ाते हैं तो आसानी से आप उससे बच सकते हैं। वहीं वो कह रहे हैं कि मस्तिष्क का एक दीर्घकालिक रोग है जो सीखने और बार बार होने वाले व्यवहारों को प्रभावित करता है। इसे आमतौर पर किसी विशेष पदार्थ पर निर्भरता के रूप में पहचाना जाता है जो आदतन उपयोग को प्रेरित करता है, लेकिन अन्य बाहरी कारकों जैसे घटनाओं से भी संबंधित ये हो सकता है। जैसे इसके लक्षण उन्होंने बताते हुए लिखा है कि तीव्र लालसा होती है, आत्मनियंत्रण खो सकते हैं, वापसी के लक्षण होते हैं, यानी कि अगर एक बार आपने छोड़ दिया, उनका जो भी मूल तत्व जो कहना चाह रहे हैं, तो एक बार अगर आपने छोड़ दिया तो खुद को उसी स्थिति में बनाए रखना थोड़ा कठिन भी हो सकता है, क्योंकि आपके मन में फिर से वो लालसा हो सकती है कि एक बार फिर से क्यों ना उसे चखा जाए, या फिर से क्यों ना उसे और बढ़ा जाए। तो वहां आत्मसंयम रखना बहुत जरूरी है। छोड़ना फिर भी आसान है लेकिन छोड़े रहना थोड़ा मुश्किल है, तो वहां संयम बनाए रखना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, और अगर आप मन में ठान लेंगे तो आप कर भी सकते हैं, उससे दूरी बना भी सकते हैं। हमारे साथी और लिखते हैं कि व्यसन एक गंभीर समस्या है, स्मार्टफोन का व्यसन एक बड़ी चुनौती है। स्वयं शिस्त और सेल्फ कंट्रोल एक ही उपाय है। जिन्होंने ये फोन बनाया था उनको भी ये बात पता थी, उन्होंने एक राक्षस बना दिया है। 3-4 साल के बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन देखता हूं तो दुख होता है। चर्चा के इंतजार में इन्होंने लिखा है। कथा सुधा एक आज की कसर सुनेंगे इन्होंने, तो वो तो हमने सुनाई ही दी है।
0: तो ये सब तो हमने सुन लिया, लेकिन एक गीत भी तो सुने।

0: तो देखो
1: जीवन
0: भाई,
1: की बात बताता है ये गीत कितना अच्छा मंजे जी,
0: बिल्कुल एक दूसरे के प्रति समर्पित होना ये बहुत बड़ी बात है, इस गीत से भी संदेश मिलता है। और देखो जब विवाह जो है वो बंधन नहीं रिश्तों को समझने का सबसे सुंदर एक सफर है। अक्सर लोग विवाह को बंधन कह देते हैं नेहा, लेकिन सच तो ये है कि विवाह किसी को बांधने का नहीं बल्कि दो अलग अलग व्यक्तियों को समझने और स्वीकार करने का नाम है। ये ऐसा रिश्ता है जहाँ केवल दो लोग ही नहीं बल्कि दो परिवार, दो संस्कृतियाँ, दो आदतें और दो सोच एक साथ चलना सीखती हैं। और विवाह का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं बल्कि एक दूसरे की पहचान का सम्मान करना है। जहाँ प्रेम हो, भरोसा हो, विश्वास हो और संवाद हो, वहाँ विवाह कभी बंधन नहीं लगता है। बंधन तो तब महसूस होता है जब रिश्ते में अधिकार अधिक और अपनापन कम हो जाए।
1: वाकई मंजरी जी, और एक सफल वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो उसकी नींव ही इस बात पर है कि जो पति पत्नी हैं वो एक दूसरे को बदलने की कोशिश ना करें बल्कि एक दूसरे को समझने की और स्वीकार करने का प्रयास करें। हर व्यक्ति अपनी परवरिश, अपनी सोच और अनुभवों के साथ ही आता है और इसलिए मतभेद होना तो स्वाभाविक है, लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। कहीं हो सकता है वो कुछ अलग काम करते हो, आप कुछ अलग तरह से जीवन जी रहे हो, तो ये समझिए कि उनकी उनकी वो आदतें हैं। एक खास उम्र तक आप पहुंच चुके हैं और वो भी, तो एक जो आदतें हैं वो नहीं बदलती हैं, तो उन्हें स्वीकार जितनी जल्दी किया जाए
0: वो वही भी अच्छा है। और दोनों को पहल करनी पड़ती है रिश्ते में। रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब छोटी छोटी बातों पर संवाद होता है, जब गलती होने पर अहंकार नहीं बल्कि क्षमा आगे आती है, और जब वो खुशी के साथ साथ कठिन समय भी नेहा एक दूसरे का हाथ थामे रहते हैं, कभी एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएं, झूठ नहीं बोले, हमेशा सच बोले। यदि कोई अपनी लाइफ में तीसरा दखल देने की सोच रहा है तो उसके बारे में पति को बताएं, जिससे मुसीबतों से बचा जा सकता है। यानी कि विवाह को कोई कोई जो है वो कैद नहीं है बल्कि एक ऐसी साझेदारी है जहां दोनों का समान होता है, समान अधिकार है और अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिलता है। इसमें मैं से अधिक हम का भाव होता है, लेकिन हम बनाते हुए किसी को मैं खोना भी नहीं चाहिए। यानी जब शादी के लिए वो समय आए तो जब शादी कर रहे हैं तो उसको निभाने के बारे में सोचना चाहिए, ये नहीं कि आज किया और कल हम अलग हो रहे हैं, ये चीज नहीं होनी चाहिए, है ना?
1: जहां तक संभव हो आपको ये देखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि छोटी सी बात पर आपने इसे बहुत बड़ा बना लिया। आपको हर पहलू का, हर नजरिए को देखना जरूरी है और उसे उस सोच के साथ ही आगे बढ़ने की कोशिश करें। और हमारे साथी लिख रहे हैं कि विवाह को एक नैतिक सामाजिक बंधन माना जाता है, न कि बोझ। विश्वास, प्यार और सहयोग के नाजुक रेशमी रिश्तों में बंधा हुआ जड़तारी वस्त्र यानी शादी ब्याह है। उसे तहे दिल से निभाना पति और पत्नी दोनों का कर्तव्य है। दो

0: अनजान राहों का एक हो जाना, सुख दुख में एक दूसरे का हाथ थामना, यही विवाह की असली खूबसूरती है। और उन्होंने तो वो भी कहा, वट पूर्णिमा की पूजा भी आज है, जो प्रेम समर्पण त्याग और आत्मविश्वास की पवित्र सीख देती है।
1: क्या बात
0: और
1: है
0: वैवाहिक बंधन से जुड़ी हुई ये
1: जी,
0: बहुत ही अच्छी परंपरा है।
1: बिल्कुल। और हमारे साथी एक लिखते हैं कि विवाह केवल दो लोगों का साथ नहीं, बल्कि दो दिलों, दो परिवारों और दो जीवन यात्राओं का सुंदर मिलन है। इसे बंधन कहना उचित नहीं, क्योंकि सच्चा विवाह प्रेम, विश्वास, सम्मान और आपसी समझ पर टिका होता है। जब पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं, सपनों और परिस्थितियों को समझते हैं, तभी उनका रिश्ता मजबूत बनता है। जीवन में मतभेद आ सकते हैं, लेकिन संवाद, धैर्य और सहयोग हर कठिनाई को आसान बना देते हैं। विवाह का वास्तविक अर्थ एक दूसरे को बदलना नहीं, बल्कि एक दूसरे को स्वीकार करना और हर परिस्थिति में साथ निभाना। इसलिए विवाह बंधन नहीं, बल्कि रिश्तों को समझने, संजो और प्रेम से निभाने की एक खूबसूरत यात्रा है। नेहा,
0: वही हमारे एक साथी लिखते हैं कि विवाह का बंधन का मतलब बंधन नहीं है, अपने रिश्ते को समझें। कुछ लोग शादी तो कर लेते हैं, पर शादी के बाद नए रिश्तों को अपना नहीं पाते, खासकर कन्या। वो लोग शादी कर लेती हैं ससुराल को, ना ही अपने सास

0: कहना उचित नहीं, क्योंकि सच्चा विवाह प्रेम, विश्वास, सम्मान और आपसी समझ पर टिका होता है। जब पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं, सपनों और परिस्थितियों को समझते हैं, तभी उनका रिश्ता मजबूत बनता है। जीवन में मतभेद आ सकते हैं, लेकिन संवाद, धैर्य और सहयोग हर कठिनाई को आसान बना देते हैं। विवाह का वास्तविक अर्थ एक दूसरे को बदलना नहीं, बल्कि एक दूसरे को स्वीकार करना और हर परिस्थिति में साथ निभाना। इसलिए विवाह बंधन नहीं, बल्कि रिश्तों को समझने, संजोने और प्रेम से निभाने की एक खूबसूरत यात्रा है। नेहा,
1: वही हमारे एक साथी लिखते हैं कि विवाह का बंधन का मतलब बंधन नहीं है, अपने रिश्ते को समझें। कुछ लोग शादी तो कर लेते हैं, पर शादी के बाद नए रिश्तों को अपना नहीं पाते, खासकर कन्या। वो लोग शादी कर लेती हैं ससुराल को और ना ही अपने सास ससुर को जल्दी अपना पाती हैं। समय लगता है, रिश्ते नहीं समझती बल्कि एक बंधन समझती हैं। अब हम इस रिश्ते से बन चुके हैं, लेकिन वो सच्चे दिल के रिश्ते हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ये नहीं समझते कि अरे अभी हमें रिश्ता निभाना है, ये बंधन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं कि अपने माता पिता की तरह ही उन्हें माने और उनके साथ रहें। और वो आगे कहते हैं कि ससुराल वालों से भी ये कहना चाहेंगे कि लड़के के ससुराल वाले हों या लड़की के ससुराल वाले, दोनों को ही टाइम दें। लड़के के लिए भी नया होता है दामाद बनना और नए लोगों को माता पिता का दर्जा देना थोड़ा समय लगता है। ये लड़कियों के लिए भी नया होता है, ये नहीं कि आज आप थोप दें कि हमारा रिश्ता जुड़ गया है तो आप हमारे अनुसार, हमारे नियमों के अनुसार रहें, तो इसमें समय लगता है। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने दोनों नजरिया पेश किया, क्योंकि आमतौर पर लड़कियों के लिए इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि वो अपना घर बार छोड़कर नए घर में जा रही हैं और उन्हें तो पूरे समय वहां रहना है, जबकि जो नए दामाद बने हैं उन्हें तो कभी कभी ही आना है। तो कभी कभी आने में तो इंसान 2-3 दिन तो फिर भी चला सकता है, लेकिन अगर आपको पूरे दिन वहां रहना है तो बहुत सारे नियम कानून अगर नए तुरंत ही दे दिए जाए
0: तो
1: घबराहट होती है और ऐसा लगता है कि क्या ये मेरा घर नहीं है। वो जो एक मन में स्थिति आती है ना कि भाई ये मेरा घर नहीं है, क्या इतनी सारी चीजें ये सब करना है।
0: और सब लोग देखो उम्मीद भी लगा लेते हैं उस नई लड़की से कि ये तो आएगी तो हर काम कर लेगी, सबकी उम्मीदों पे खरी उतरेगी, तो ऐसा नहीं है। आप लोग मिल के काम करिए तो उस बच्चे को भी अच्छा लगेगा। और हमारे साथी लिखते हैं, विवाह बंधन नहीं, रिश्तों को समझे। आज की युवा पीढ़ी विवाह के पवित्र रिश्ते को जिस सरलता से ले रही है, आज हर माता पिता और परिवार के बड़ों के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है कि नई पीढ़ी को विवाह के पवित्र रिश्ते का महत्व समझाए। विवाह पति पत्नी का रिश्ता अंतिम सांस तक का होता है। पति और पत्नी दोनों को एक दूसरे के मिसाल कायम करनी चाहिए ताकि दोनों में प्रेम बढ़े। और हम सोचते हैं एक गीत सुन लिया जाए। नेहा,

0: तो
1: तो ये जब शादी ब्याह की बातें होती है तो नाच गाने की और सब बातें भी हो जाती हैं, लेकिन असली जो भी होता है मौका तो उसके बाद ही होता है, क्योंकि निभाना तो उसके बाद ही
0: बिल्कुल है। और बस खुशी खुशी निभाइए अपने रिश्ते को, है ना। तो हमारे एक साथी लिखते हैं कि विवाह को एक नैतिक सामाजिक बंधन माना जाता है, ना कि बोझ। विश्वास, प्यार और सहयोग के नाजुक रेशमी रिश्तों में बंधा युवा जर तारी वस्त्र यानी शादी ब्याह है उसे तहे दिल से निभा पाती, पति और पत्नी दोनों का कर्तव्य निभाना, मतलब दो अनजान राहों का एक हो जाना, सुख दुख में एक दूसरे का हाथ थामना, यही विवाह की असली खूबसूरती है। देखो ना, आज की सती सावित्री वाली वट पूर्णिमा की पूजा भी है, ये तुमने मेरे ख्याल से ये वाला संदेश लिया
1: था। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि विवाह को एक समझौता या बोझ मानने के बजाय इसे जीवन को सुंदर बनाने का एक जरिया समझना चाहिए। जब दो लोग एक दूसरे को बिना किसी शर्त के समझने का प्रयास करते हैं तब विवाह बंधन नहीं बल्कि एक खूबसूरत सफर बन जाता है।
0: बिल्कुल। और एक लिखते हैं, विवाह दो आत्माओं का स्वैच्छिक मिलन है, ये कोई बंधन नहीं है, ये दो लोगों के बीच बराबरी और सम्मान का रिश्ता है। एक अच्छा विवाह दोनों पार्टनर्स को व्यक्तिगत रूप से बढ़ने में मदद करता है। वाकई में जब आपकी शादी होती है, आपका पार्टनर है, तो एक दूसरे के साथ अपने विचार साझा करते हैं, और हम कहीं मुसीबत में होते तो वो हमें संभालता है, उसको परेशानी होती तो हम संभालते हैं। तो कहना चाहिए सुख दुख तो देखो आते ही रहते हैं जीवन में, लेकिन हमें उन्हें कैसे निभाना है वो हमें सीखना चाहिए। शादी के बाद वही बहुत जरूरी होता है कि एक दूसरे को बातों को समझे और कुछ भी ना छुपाए। आप सच बोले तो हमेशा आपकी बात को वो समझेंगे कि हाँ ये हमेशा सच बोलती है, तो इससे आपका एक विश्वास भरोसा बढ़ेगा आपके ऊपर।
1: इससे एक आपकी जो एक आपका एक व्यक्तित्व है उनके सामने क्लियर सही तरीके से आएगा कि ये जो भी बोलना है चाहे वो बात अच्छी लग रही हो ना लग रही हो या वो बात कैसी भी हो, ये सच हमें बता देंगे या ये सच हमें बता देंगे जो भी है दोनों के लिए। तो एक तरह से देखिए हमारे साथियों ने इतने सारे कमेंट्स किए तो सब में उन्होंने यही कहा है कि मिलजुल कर अगर रहें और आपसी सामंजस्य बिताएं, एक दूसरे को वक्त दें और एक दूसरे के साथ जो दूसरा साथी अगर थोड़ा बदल भी रहा है वक्त के साथ तो उसे स्वीकार करें क्योंकि हर व्यक्ति बदलता है।
0: बिल्कुल।
1: तो बस समझ कर चलने से एक दूसरे के साथ ही यही विवाह का एक कह सकते हैं कि मूल मंत्र है।
0: मूल मंत्र है
1: विवाह को अच्छी तरह से, बंधन नहीं है लेकिन साथ चलने का नाम है विवाह, जिसमें
0: अब देखो विवाह जब कर ही लिया है तो पति को क्या पसंद है वो भी समझे, क्योंकि कहते हैं कि अगर दिल जीतना है तो खाना वाना अच्छा सा बनाइए और दिल जीत लीजिए। तो
1: खाना तो बनाएंगे लेकिन गाना कब सुनाएंगे,
0: तो चलो पहले गाना सुना देते।
1: बिल्कुल।

0: तो देखो,
1: बनाने का तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि कुछ खिलाया जाए। अच्छा,
0: चलो
1: अच्छा,
0: फिर बना देते हैं दाल की कचौड़ी। इसके लिए मैदा लेंगे और 2 कप मैदा लेंगे और इसमें घी या तेल जो है वो मोयन के लिए डालेंगे, नमक डालेंगे और इसको हम गूथ लेंगे। और जो भरने की सामग्री है उसके लिए उड़द की दाल बिना छिलके वाली 1/2 कप, ये करीब 3-4 घंटे भीगी हुई, और इसको पीस के रख लें जब भीग जाए अच्छे से। और बेसन इसमें लगेगा 2 चम्मच, सौंफ दरदरी और 1 चम्मच साबुत धनिया कुटा हुआ, 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच हींग, 1 चुटकी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गर्म मसाला, 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार आप लीजिए, और तलने के लिए तेल। और बस जो आपने आटा गूंथ कर रखा है मैदा वगैरह उसको उसको एक बार वापस गूंथ लीजिए। और इधर जो आपने भरावन था उसको आपको भीगी हुई उड़द की दाल को बिना पानी डाले दरदरा पीस लीजिए। एक पैन में तेल गर्म करिए, इसमें हींग, जीरा, सौंफ, धनिया और बेसन डालकर भूनिए। इसके बाद पिसी हुई दाल डालें और सभी मसाले जो हैं वो मिर्च, लाल मिर्च, गरम मसाला, अमचूर डालकर धीमी आंच पर इसको तब तक भूने जब तक मिश्रण पूरी तरह से सूखा और भुरभुरा ना हो जाए। और इसमें आप नमक भी डाल दीजिएगा, नहीं मालूम पड़ा नमक भूल गए है ना। और जब ये अच्छे से भुन जाए तो आपने जो मैदे का आटा तैयार किया था उसकी लोई बनाइए, दाल को भरिए और कचौड़ी को धीमी धीमी आँच पर आप तल लीजिए है ना। और इसको खाया जाता है आलू की रसेदार सब्जी के साथ।
1: हम रेसिपी बताएंगे, पर एक बात यह है कि आपने कहा ना कि कहीं नमक डालना भूल गए, अगर भरावन में आप नमक डालना भूल गए तो बिल्कुल भी बुरा मत मानिए, जिसको आईबीपी हो से आप खिला सकते हैं बड़ी आसानी से।
0: हाँ, लेकिन जिसको नमक जिसको फीकी लगेगी वो कहेगा ये क्या बना दिया।
1: तो आलू की सब्जी के लिए उबले हुए आलू चाहिए 4 से 5, हाथ से आप उसको बड़े टुकड़े कर सकते हैं। टमाटर 2 बारीक कटे हुए, हरी मिर्च 2-3 बारीक कटी हुई, अदरक 1 इंच, हींग 1/2 छोटा चम्मच, मसाले चाहिए 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच सौंफ और मेथी का दाना 1/2 छोटा चम्मच, और पाउडर जो मसाले चाहिए वो हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, बाकी दोनों 1-1 छोटा चम्मच आप डाल सकते हैं। और नमक का आपके स्वाद के अनुसार, अमचूर पाउडर भी इसमें डालिए 1 छोटा चम्मच, और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला तेल आपको 2 बड़े चम्मच लगेंगे। सरसों का तेल अगर डालें तो बहुत अच्छा लगेगा। हरा धनिया बारीक कटा हुआ चाहिए। तो तेल गरम किए कढ़ाई में, हींग, जीरा, सौंफ और मेथी दाना डालकर उसको तड़काइए, और इसमें कटी हुई हरी मिर्च, अदरक और कटे हुए टमाटर डाल दीजिए। टमाटर थोड़ा नरम होते तक इसको पकाना है। फिर हल्दी, धनिया, लाल मिर्च पाउडर और नमक डाल दीजिए, और मसालों को तब तक भूनिए जब तक तेल ना छोड़ दें। फिर इसमें आलू डालिए हाथ से फोड़कर, और आलू डालने के बाद थोड़ी देर 1-2 मिनट तक उसको अच्छे से चलाइए, और उसके बाद 2-3 कप पानी डालिए। अंत में आप अमचूर पाउडर डाल दीजिए, और गरम मसाला डालना है तो भी डाल सकते हैं। हरा धनिया डालें, गर्मा गर्म आलू की सब्जी तैयार है। कचौड़ियाँ तो बन ही चुकी हैं,
0: बिल्कुल।
1: तो आप दोनों ये सारी चीज़ें खाइए, और देखिए समय ऐसा बता रहा है कि आप समोसा और जो छोले की जो रेसिपी थी ना, समोसा बना हुआ लाइए, छोले अपने घर में अपने हिसाब से बनाइए, दोनों को मिलाकर खाइए।
0: बिल्कुल
1: जी।
0: तो बस कार्यक्रम से लेते हैं विदा। तो सभी को मंजरी वर्मा और
1: नेहा शर्मा का नमस्कार।

0: आज के सेहतनामा कार्यक्रम में आप सुनेंगे जाने माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
1: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। अपने श्रोताओं को बताते हैं कि आज मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल के जाने माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता हमारे साथ विविध भारती के स्टूडियो में हैं और आज पेट की बीमारियों के बारे में और फैटी लीवर के बारे में जानकारी दे रहे हैं। हमारे श्रोताओं की ओर से भी डॉक्टर साहब कुछ सवाल आए हैं। एक तो IBS के बारे में सवाल था, एसिडिटी के बारे में बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा जिस पर हमने चर्चा की ही, और कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि हमें पेट में दर्द रहता है और सारे जांच करवा लिए लेकिन फिर भी सब कुछ रिपोर्ट नॉर्मल आई, फिर भी पेट में दर्द रहता है, इसकी क्या वजह हो सकती है? एक तो इन्फेक्शन, तो उसकी भी दवा कर चुका हूँ, फिर भी तकलीफ नहीं जा रही है।
2: हाँ, तो जब जो पेट का दर्द होता है उसके कई कारण होते हैं। अगर पेट का दर्द ज्यादा देर तक रहे तो क्लियरली इन्फेक्शन तो हो नहीं सकता
1: जी।
2: एक दूसरी बात ये भी हमारा कि हम एंटीबायोटिक बहुत जल्दी ले लेते हैं। कोई भी दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ, एक दो लूज मोशन हमने एंटीबायोटिक ले ली, तो वो हमको अवॉइड करना चाहिए। एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली एज अ लास्ट रिसोर्ट। अगर कुछ नहीं ठीक हो तो एंटीबायोटिक फॉर शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम। पेट के दर्द के अगेन कई कारण होते हैं। एसिडिटी से किसी को पेट में दर्द हो सकता है, पेट में अल्सर हो सकता है, तो पेट में और कई ऑर्गन्स होते हैं, पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज में अगर तकलीफ हो जाए, जो अल्कोहल पीते हैं उससे पेट में कभी कभी अल्सर हो सकता है, पेट में पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है, अगर कॉन्स्टिपेशन हो उससे पेट में दर्द हो सकता है, पार्ट ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो मैंने पहले कहा था IBS, उसमें भी पेट में दर्द हो सकता है। तो पेट का दर्द इज़ अ वेरी वेरी ब्रॉड टॉपिक, उसमें बहुत से कारण होते हैं। अगर पेट का दर्द थोड़े दिनों तक रहे और चला जाए तो उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर पेट का दर्द जारी रहे, दो से तीन दिन तक पेट का दर्द जारी रहे, उसके साथ अगर आपको बुखार आए या वॉमिटिंग हो, लूज मोशन हो या कॉन्स्टिपेशन हो, तब डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये कुछ सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस का सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम पेट का दर्द होता है। तो डोंट इग्नोर पेट का दर्द। एक दो दिन तक हो तो घर के नुस्खे कर सकते हैं, मगर अगर कोई अलार्म सिम्टम्स हो जैसे बुखार, वॉमिटिंग, तब डॉक्टर को दिखाइए
1: जी। तो ये आपने बड़ी ज़रूरी बात कही है, और उसमें यहाँ बहुत सारे लोग घरेलू इलाज करने लगते हैं। घरेलू इलाज की व्यवस्था तब थी जब मेडिकल साइंस एडवांस नहीं था। आज जब मेडिकल साइंस उपलब्ध है तो सीधे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और डॉक्टर साहब, हम एसिडिटी की बात जब कर रहे थे तो वहाँ मेरे जहन में एक बात आई कि बहुत सारे लोग एसिडिटी के शिकार होते हैं। क्या एसिडिटी का असर गले पर भी पड़ता है, थ्रोट पर, या आवाज़ पर भी पड़ता है? हमने सुना है कि आवाज़ फटने लगती है, ख़राब होने लगती है, इसके बारे में जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। जब एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाए तो एसिड ऊपर आके गले को इरिटेट करता है, और गले में हमारा वोकल कॉर्ड्स होते हैं जहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है। स्पेशली जब हम रात को सो जाएं, नींद में हो, और अगर आपको एसिड रिफ्लक्स हो तो ये गले में आके गले को इरिटेट करता है। कई पेशेंट कहते हैं गले में दर्द हो रहा है, किसी किसी की आवाज़ बदल

0: जाती है, तो नॉर्मली ये सारे पेशेंट पहले ENT को जाके देखते हैं, ये गला खराब है। ENT जब अपना कैमरा डाल के गले में देखता है तो उनको पता चलता है कि जहाँ से खाने की पाइप शुरू होती है वहाँ पे काफ़ी लाल हो चुका है, विच टेल्स यू कि ये एसिड रिफ्लक्स के कारण है। तो एसिड रिफ्लक्स से गला खराब हो सकता है, एसिड रिफ्लक्स से गले की आवाज़ जा सकती है, ऐसे लगता है हमको हमेशा कि गले में कुछ अटका हुआ है, तो एसिड रिफ्लक्स कैन कॉज ऑल दिस प्रॉब्लम्स इन पेशेंट्स।
1: तो मतलब आवाज़ की दुनिया में जो लोग काम कर रहे हैं और उन्हें अगर एसिडिटी की समस्या है तो फौरन जागृत हो जाएं और डॉक्टर से संपर्क करें। और बात आवाज़ की चली है तो एक गाना है, मेरी आवाज़ ही पहचान है, अगर ये गाना आप कहें तो हम सुनवाएं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया गाना है, बहुत सुनना चाहिए।
1: सुनते हैं ये गाना।

0: डॉक्टर साहब, गाने के बाद हमारे श्रोताओं को बताइए, बीच में पेट के अल्सर का भी जिक्र किया था, और पेट के अल्सर के हालांकि अब तो लोग डॉक्टर्स कहते हैं कि बहुत आसान है इलाज, लेकिन जिस मरीज़ को होता है वो बहुत जल्दी घबरा जाता है। तो क्या अल्सर का इलाज दवाइयों से भी संभव है या ऑपरेशन करना ज़रूरी होता है?
1: नहीं, आज के ज़माने में तो हम अल्सर का ऑपरेशन करते ही नहीं है, क्योंकि अभी इतनी बढ़िया दवाइयाँ निकल रही हैं जो अल्सर की ट्रीटमेंट टैबलेट से हो जाती है। पर क्वेश्चन है कि अल्सर क्यों हो रहे हैं? अगर आज के

0: हमारे में अल्सर हो तो हमको ढूंढना चाहिए क्यों होते हैं
1: क्यों हो
0: अल्सर।
1: रहा है?
0: ज़्यादातर अल्सर होते हैं जब हम पेन किलर्स बहुत खा लें, जैसे कभी जोड़ों का दर्द हो गया, हेडेक हो गया, तो लोग पेन के दवाइयाँ लेते रहते हैं,
1: जी
0: तो पेन मेडिसिन से अल्सर होने की संभावना बहुत हाई रहती है। स्ट्रेस से भी अल्सर हो सकता है, उसको स्ट्रेस अल्सर्स बोलते
1: जी
0: हैं। एसिडिटी से भी अल्सर हो सकता है, और रेयरली रेयरली पेट का अल्सर एक साइन ऑफ कैंसर भी हो सकता है। द रीज़न हम अभी आजकल सर्जरीज नहीं कर रहे, क्योंकि जो एसिडी की दवाइयाँ हैं वो अगर आप खाओ तो मोस्ट अल्सर्स 6 से 8 हफ्ते के अंदर मिट जाते हैं। तो पुराने ज़माने में ये दवाइयाँ नहीं होती थी, तो अल्सर लोगों के चले रहते थे, जबकि फट जाए तो सर्जरी कराओ। आज के ज़माने में अल्सर की सर्जरी इज़ ऑलमोस्ट अनहर्ड ऑफ, दवाइयों से 6 से 8 हफ्ते में मोस्ट अल्सर्स ठीक हो जाते हैं।
1: जी, तो ये बहुत सही बात आपने बताई है। लेकिन अल्सर की पहचान कैसे करें, मतलब मरीज को कैसे पता चले कि उसे अल्सर है, क्या सिम्टम होते हैं खास तौर से?
0: नॉर्मली अल्सर में आपको पेट में, जहाँ पेट शुरू होता है, छाती के जस्ट नीचे बीच में सेंटर में पेन होगा। कभी
1: जी
0: कभी ये पेन खाने के बाद हो सकता है, कभी कभी ये पेन खाने से पहले हो सकता है, कभी कभी पेशेंट को वॉमिटिंग होती है और वॉमिटिंग में ब्लड भी आ सकता है,
1: जी
0: कभी कभी ये ब्लीडिंग मोशन में भी हो सकती है। काला कलर का अगर मोशन हो गया मतलब पेट में अल्सर की ब्लीडिंग हो रही है, तो ये संभावना हो सकती है। अगर आपको ब्लीडिंग हो जाए, वॉमिटिंग हो जाए ब्लड की, पेट में दर्द हो जो खाने के बाद या खाने के पहले हो, दैट टेल्स यू कि आपके पेट में अल्सर होने की संभावना काफ़ी हाई है।
1: जी और एक बहुत बड़ी समस्या है, हमारे श्रोताओं की ओर से भी सवाल है, ये नींद और पेट की बीमारियों का क्या संबंध है? कि बहुत कम नींद लेके आजकल लोग काम करते हैं, बहुत टेंशन में, तनाव में, तो उसका क्या असर पेट पर पड़ता है?
0: हाँ बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर हम ठीक से सोए ना, अगर हमारी नींद पूरी ना हो, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा ख़राब हो जाता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक क्लॉक पे काम करता है, सुबह उठते हैं, मोशन होता है, और फिर पेट खाली होता है, फिर पूरे दिन हम खाना खाते हैं, अगले दिन फिर से सोते हैं, हमारी साइकिल रीसेट होती है, अगेन नेक्स्ट दिन मोशन होता है। चूँकि स्लीप साइकिल ख़राब हो या लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, ये स्लीप पैटर्न ख़राब हो जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो हम देखते हैं आजकल के युवाओं में, जो लेट नाइट बैठे रहते हैं, जंक फूड खाते हैं, फाइबर कम खाते हैं, कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं स्लीप डिप्राइव्ड पेशेंट को, जब स्लीप पैटर्न ठीक ना हो। अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए, तो एसिडिटी की संभावना ही काफ़ी ज़्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज़्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो स्लीप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप दर्शक देख नहीं रहे कि मेरे हाथ में एक रिंग पहनी हुई है मैंने, ये मेरी स्लीप रिंग है, ये मुझे कहती है कि मैं कितना सोया हूँ कल रात को, ठीक से सोया हूँ कि नहीं। अगर मेरी नींद पूरी नहीं हुई है तो ये मुझे कहेगी कि मैं नेक्स्ट दिन मुझे इतने बजे सोना है। अगर मैं इसको फॉलो करूँ अपने स्लीप पैटर्न को, तो मेरा पेट भी ठीक रहता है, एसिडिटी भी नहीं होती, वेट भी कंट्रोल में रहता है। अगर आप स्लीप पैटर्न्स को ठीक करें तो अपने वेट को भी कंट्रोल कर सकते हैं।
1: तो ये तो बहुत ज़रूरी बात आपने बताई है, क्योंकि आजकल तो सोने का किसी का समय फिक्स नहीं होता है, तो शिफ्ट ड्यूटी करने वाले लोगों को पेट की समस्या ज़्यादा होती है कुछ ऐसा?
0: बिल्कुल, या एब्सोल्युटली बिल्कुल। हमारे ओपीडी में काफ़ी कंपनी के पेशेंट्स आते हैं जो अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट ख़त्म करके आते हैं हमारे पास देखने, और मोस्टली सबको इधर कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ रहती है या एसिडिटी की तकलीफ रहती है, एंड दिस इज़ रिलेटेड टू द शिफ्ट वर्क। तो आई थिंक शिफ्ट वर्क पेशेंट्स को डेफिनेटली ज़्यादा प्रॉब्लम होती है।
1: जी, हमारे एक श्रोता की ओर से सवाल है कि ये गट फ्लोरा क्या होता है?
0: गट फ्लोरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो अभी लास्ट एटलीस्ट 10 साल से डिस्कवर हुई है। जो हमारा पेट इंटेस्टाइन होता है उसमें कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं,
1: जी
0: जो हम सिंपल टर्म्स में, देर इज गुड बैक्टीरिया एंड देर इज बैड बैक्टीरिया। जो गुड बैक्टीरिया हो अगर ज़्यादा हो तो डाइजेशन ईजी हो जाता है, गुड बैक्टीरिया ज़्यादा हो तो ओवरऑल बॉडी का फंक्शनिंग बेटर होता है।
1: जी
0: तो
1: जी
0: बहुत बार अगर हमको लूज मोशन हो, हमने एंटीबायोटिक ले ली, तो हमारे गुड बैक्टीरिया मर जाते हैं। जब वो मर जाते हैं तो पेट के मसले और बढ़ जाते हैं, लूज मोशन ज़्यादा होता है, पेट ठीक नहीं लगता, पेट का दर्द होता है। तो इसके लिए प्रोबायोटिक्स डेवलप हुई हैं गुड बैक्टीरिया जो हम देते हैं इंटेस्टाइन्स को, एंड इट हेल्प्स नॉट ओनली मेक द इंटेस्टाइन डाइजेस्ट फूड बेटर, बट ऑल्सो इम्प्रूव इम्यूनिटी, बॉडी की इम्यूनिटी को भी ठीक करता है गुड बैक्टीरिया।
1: जी, तो उसके लिए जो प्रोबायोटिक दवाएं आती हैं वो लेना
0: तो मैं तो कहूंगा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट गुड बैक्टीरिया और गुड प्रोबायोटिक्स जो हमारे घर में है ना, फर्मेंटेड फूड्स और दही,
1: दही,
0: दही से अच्छा कोई प्रोबायोटिक नहीं है, बट ऑब्वियसली अगर ये आप नहीं ले सकते, बहुत लोग दही नहीं खाते या फर्मेंटेड फूड्स नहीं टॉलरेट कर सकते, तो उनके लिए देयर इज गुड बैक्टीरिया अवेलेबल टू

0: यू कैन टेक इट ऑलमोस्ट डेली.
1: जी बहुत बढ़िया. यहाँ पर एक गाना सुनते हैं डॉक्टर साहब, बताइए कौन सा गाना सुनवाया.
0: तो ये एक बहुत पुराना सॉन्ग है, बहुत पुरानी मूवी कर्ज का, दर्द दिल दर्द जिगर. ये गाना मुझे बहुत पसंद है.
1: आशिक बनाया आपने, बढ़िया गाना है, सुनते हैं यही गाना.

0: गाने के बाद डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं की ओर से एक सवाल है कि फैटी लिवर की समस्या है, इसे योगासन से क्या ठीक कर सकते हैं और एक्सरसाइज से दवाओं के साथ साथ कर सकते हैं क्या, किस तरह के एक्सरसाइज?
1: बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि अगेन पेशेंट जब हमारे पास आते हैं, दवाई नहीं देनी है हमने पहले एक्सरसाइज देनी है। एक्सरसाइज इंक्लूड योगा, योगा के साथ एक्सरसाइज जिससे आपका हार्ट रेट बढ़े, एक्सरसाइज जिससे आपको पसीना आए, जिससे आपके कैलोरीज बर्न हो। तो खाली योगा नहीं, योगा के साथ ऐसी एक्सरसाइजेज जिसके आपसे आपका हार्ट रेट बढ़े, एरोबिक एक्सरसाइजेज जो बोलते हैं हम, साथ में योगा इज गुड बिकॉज योगा से मसल बनती है। तो अगर मसल बढ़ाओगे तो आपका फैटी लिवर जल्दी जाएगा।
0: जी बिल्कुल। क्या पतले लोगों को भी, जो बहुत दुबले पतले होते हैं, उनको भी फैटी लिवर होता है?
1: हाँ बिल्कुल, इनफैक्ट उनको जो फैटी लिवर होता है वो और नुकसान डेंजरस होता है, उसको हम लीन नैश बोलते हैं।
0: जी।
1: पहले हमको लगता था कि जिसका वेट ज्यादा हो उनको ये बीमारी होती है, पर अगर आप देखा जाओ कंट्रीज लाइक जापान जहाँ पे लोग काफी पतले हैं, पर उधर इंसिडेंस ऑफ फैटी लिवर बहुत ज्यादा है, उसको हम लीन नैश बोलते हैं। जो हमें लगता है कि हम सब, जैसे इंडियन पॉपुलेशन को ले लो, सारे सॉर्ट ऑफ दुबले पतले, पतले हाथ पतले पैर होते हैं, मगर जो मेन फैट होता है वो बेली में होता है, मेरे जो तोंद जो बोलते हैं सबकी निकल आती है, वो फैट इज अ मोस्ट डेंजरस फैट। तो आपका हाथ पैर पतला होगा, आप पतले लगोगे, मगर अगर आपका स्कैन करेंगे हम, सीटी स्कैन एमआरआई, तो पूरा फैट है वो पेट के अंदर आएगा, एंड दैट इज अ फैट विच इज अ मोस्ट डेंजरस फैट। तो इसको लीन नैश बोलते हैं। ये पेशेंट्स को भी फैटी लिवर के साथ सिरोसिस होने की संभावना ज्यादा होती है।
0: जी जी जी। और पेट के इन्फेक्शन के बारे में बताइए कि क्यों इन्फेक्शन होता है? किसी किसी को बार बार इन्फेक्शन होता है, बार बार लूज मोशन, कई कई बार लूज मोशन के लिए जाना पड़ता है, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: अगेन लॉट ऑफ इट इज हमारी इम्यूनिटी कैसी है, हम क्या कैसा खाना खा रहे हैं। जैसे मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ जिनको लूज मोशन दोबारा दोबारा होता है, मेक श्योर आप कुक्ड खाना खाओ, साफ सुथरा खाना खाओ। अगर आप बाहर रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो अवॉइड द चटनी, समोसा खा लो या जो भी खाना है, रोटी सब्जी खा लो, पर सलाद मत लो। बट अगर ये इमोशन दोबारा दोबारा होता रहे, दैट कुड मीन अ साइन ऑफ अदर मेडिकल प्रॉब्लम। जैसे आपको पेट के इंटेस्टाइन के अल्सर हो सकते हैं, एक तरह की बीमारी बोलते हैं IBD, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जिसमें इंटेस्टाइन्स में और बड़ी आंतरी में छाले होते हैं, उसे दोबारा दोबारा लूज मोशन हो सकते हैं, कभी ब्लीडिंग हो सकता है। कई फूड एलर्जीज होते हैं जिसके कारण नौजिया, वॉमिटिंग, लूज मोशन हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा सीलैक डिजीज, ग्लूटिन एलर्जी। तो अगर ये सिम्टम्स थोड़े दिन तक रहे तो वी कैन मैनेज, पर अगर ये दोबारा दोबारा होते रहे तो मेक श्योर यू सी योर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और थोड़ा बेसिक चेकअप कराओ कि कोई और बीमारी ना हो, जिसको ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होती है।
0: जी जी। और एक बात डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि जो अमूमन एक्सरसाइज से सेहत अच्छी होती है, लेकिन पेट की एक्सरसाइज ख़ास तौर से जो योगा करते हैं उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो पेट की बहुत फास्ट फास्ट एक्सरसाइज करते हैं, पेट को फुलाना पचाना, ये कहाँ तक कारगर है, सही है या गलत है?
1: हाँ, इसमें भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि बहुत रिगरस स्टमक की एक्सरसाइज करना भी अच्छी नहीं है। पेट की जो हमारी लाइनिंग है उसमें दो बड़े मसल्स होते हैं, वो मसल्स को अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करो तो आगे जाके वो वीक हो जाते हैं, वो मसल के बीच का जोड़ निकल जाता है और हर्निया होने के रिस्क होते हैं, पेट बाहर आ जाता है ज़्यादा उल्टा। तो यू हैव टू बी केयरफुल, जो भी एक्सरसाइज करो ध्यान से करो, अंडर सुपरविजन करो, सही तरीके से करो। अगर उसको ठीक से नहीं करोगे, ज़्यादा जोर लगाओगे पेट पे, तो हर्निया होने का रिस्क ज़्यादा होता है।
0: जी, तो मतलब पेट की एक्सरसाइज से पाचन क्रिया पर फर्क पड़ता है?
1: बिल्कुल पड़ सकता है।
0: जी, और डाइजेशन सही रखने के लिए कुछ है ऐसी कारगर दवा, कोई इलाज है लोगों के? क्योंकि हर कोई कहता है कि मुझे तो खाना पचता ही नहीं है, क्या करें?
1: हाँ, तो ये जो खाना पचता नहीं है इसके भी पूछना पड़ता है पेशेंट को, क्यों नहीं पच रहा है? बोले हमको खाना पचता नहीं है, पर उनको कॉन्स्टिपेशन होती है, कब्जियत होती है। तो मेरा मानना होता है कि खाना आपको बहुत अच्छा पच रहा है, पूरा खाना आपने डाइजेस्ट कर लिया, आपको तो कॉन्स्टिपेशन हो गई है, जिसको नहीं पचे मतलब उसको लूज मोशन हो रहे हैं। तो पूछना जरूरी है कि प्रॉब्लम क्या है, पचना नहीं पचना इज अ डिफरेंट sort of पेशेंट का जो आउटलुक होता है वो अलग होता है, पच नहीं रहा है। तो मोस्ट टाइम्स ये पेशेंट का मतलब होता है या तो उनको कॉन्स्टिपेशन हो रही है या उनको एसिडिटी हो रही है। तो उसको बेसिक प्रॉब्लम्स को ट्रीट करो, अगर कॉन्स्टिपेशन है तो फाइबर बढ़ाओ खाने में, पानी बढ़ाओ। मोस्ट टाइम्स हमने देखा है डाइट में, स्पेशली यंग किड्स पानी बहुत कम पीते हैं, तो पानी नहीं पीते हैं कॉन्स्टिपेशन होती है, पानी नहीं पियो तो और तकलीफें होती हैं, डिहाइड्रेशन होता है, फिर से कॉन्स्टिपेशन होती है, फिर खाना नहीं खाते, तो इट्स अ विशियस साइकिल। तो आई थिंक बैलेंस्ड डाइट, न्यूट्रिशन, वाटर इनटेक, गुड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि जो आपकी प्लेट है ना खाने की, वो कलरफुल होनी चाहिए।

0: ओके
1: मतलब पेट में आपके दो तरह की भाजियां हो जाएं, एक रेड हो जाए, ग्रीन हो जाए, रोटी हो जाए, वो कोई भी गेहूं की ले लो, जवार की ले लो, थोड़ा सा राइस लो, दाल ले लो, एंड इफ यू नॉन वेजिटेरियन एक छोटा सा मीट का पोर्शन हो जाए, बट योर प्लेट शुड बी कलरफुल।
0: लेकिन अभी एक चलन चला है कि या तो एक अन्न खाओ, चावल खाओ या रोटी खाओ, तो कुछ लोग ये भी करते हैं कि सिर्फ कढ़ी चावल खा लिया, सिर्फ दाल चावल, तो इससे बचना चाहिए।
1: बिल्कुल, इसमें तो खाली कार्बोहाइड्रेट खाए आपने, प्रोटीन तो बहुत मिनिमम हो गया।
0: तो बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, फिर हम आगे और बढ़ते हैं।
1: एक और गाना जो मुझे काफी पसंद है, बहुत पुरानी पिक्चर है, रॉकी पिक्चर का, क्या यही प्यार है। ये गाना फेमस मेरे स्कूल के टाइम पे
0: जी,
1: और काफी सुना है हमने
0: जी।

0: डॉक्टर साहब, बीच में एसिडिटी की बात कर रहे थे जो बहुत बड़ी समस्या है, वहाँ पर एक बात रह गई थी, वो ये कि कहीं एसिडिटी की वजह से, एसिड रिफ्लक्स की वजह से बीमारी को थोड़ी असावधानी हो, या तो कहीं कैंसर का रूप भी लेती है वो?
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। अगर आपको एसिडिटी हो रही है, जलन हो रही है और आप दवाई नहीं ले रहे ठीक से, या आपने इसका इलाज ना किया हो, तो जो एसिड होता है वो तेज़ाब है बेसिकली, ऊपर आके खाने की पाइप को जलाते रहता है, जला जला के फिर आगे एक अल्सर बनाता है, और यही अल्सर आगे जाके कैंसर भी बन सकता है, जिसमें खाने की पाइप का कैंसर हो जाता है और खाने की पाइप छोटी हो जाती है और अटकने लगता है। इसके लिए मैंने पहले कहा था, अगर खाना अटक रहा हो तो एंडोस्कोपी करना बहुत ज़रूरी है। अनकंट्रोल्ड एसिड रिफ्लक्स कैन लीड टू कैंसर्स इन द फूड पाइप।
0: जी, और ये जो एसिडिटी की समस्या, एसिड रिफ्लक्स, इसके लिए एक तो आपने एंडोस्कोपी बताया जांच, और क्या क्या जांच की पद्धति है, क्योंकि अभी तो टेक्निक बहुत एडवांस हो चुकी है, हमारे श्रोताओं को जानकारी
1: दीजिए। हाँ, तो बेसिक एंडोस्कोपी तो सेम रही है, एंडोस्कोपी टेक्निक काफ़ी सेम ही है, जिस तरीके से हम देखते जो इमेजिंग होती है वो चेंज हो गई है। अभी काफ़ी हाई डेफिनेशन मॉनिटर्स हैं, 4K मॉनिटर्स हैं, हम हमारे एंडोस्कोपी के टाइम पे एक बटन दबाते हैं जिससे लाइट चेंज हो जाती है, हमको और बेटर दिखता है। हमारे मशीन्स पे अभी AI भी लगना शुरू हो गया है, जो अगर हम सपोज ब्लिंक कर रहे हैं, हमने लेफ्ट एंड राइट देख लिया एक सेकंड के लिए, पर वो मशीन पकड़ लेते कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है और रुक जाती है और हमको कहती है कि यहाँ पे ठीक से देखो। ये एक सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो गया AI इन एंडोस्कोपी। दूसरा, अगर एंडोस्कोपी नॉर्मल है, हमको कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम कभी कभी खाने की पाइप का प्रेशर मेजरमेंट करते हैं, उसको मैनोमेट्री बोलते हैं, छोटी सी पाइप डालते हैं नाक से पेट में और वो पूरे खाने की पाइप के प्रेशर मेजर करती है, क्या प्रेशर की प्रॉब्लम है जिसके कारण खाना आगे नहीं जा रहा है या रिफ्लक्स कर रहा है। और फिर लास्ट एक और टेस्ट है जिसमें हम खाने के पाइप में एक पाइप डाल देते हैं और वो पाइप के साथ पेशेंट घर चले जाता है, और जब उसको एसिडिटी लग रही हो रहा है, एक बटन दबाता है और विद इन 24 to 48 hours हम वो पूरे खाने के पाइप का टेस्टिंग करते हैं कि कितना एसिड रिफ्लक्स हो रहा है। पेशेंट जो कह रहे हैं कि हमको एसिड रिफ्लक्स है, जरूरी नहीं है वो एसिड रिफ्लक्स हो, वो खाली एक सिम्टम हो सकता है, तो उसको 24 hour pH मैनोम pH probe बोलते हैं, जिसमें हम डिटेक्ट करते हैं कि एक्चुअली एसिड ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देयर आर मेनी अदर वेज टू डिटेक्ट द एसोफेगस।
0: जी, तो इतनी सारी इलाज की और जांच की सुविधाएं हैं, तो मेरे ख्याल से तकलीफ हो तो सीधे डॉक्टर के पास जाना चाहिए अपनी अटकलें लगाने के बजाय। डॉक्टर साहब, एक पेट संबंधी एक बीमारी है जो कॉमन हो रही है आजकल, कोलाइटिस, ये क्या है, कौन सी बीमारी है और इससे क्या तकलीफें होती हैं?
1: तो कोलाइटिस बेसिकली एक ब्रॉड टर्म है, कोलाइटिस मतलब बड़ी आंतड़ी में कुछ इशू है, अभी वो इशू अगर लूज मोशन हो तो उसको भी लोग कोलाइटिस का नाम दे देते हैं। जो बीमारी हमको डिटेक्ट करनी है उसको IBD बोलते हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जिसमें बड़ी आंतरी कोलन के अंदर छाले होते हैं और लूज मोशन और ब्लीडिंग होता है, तो उसको IBD बोलते हैं। ये जानना जरूरी है कि आपको कोलाइटिस IBD वाली है कि नहीं, क्योंकि अगर IBD की कोलाइटिस है तो ट्रीटमेंट उसकी लाइफ लॉन्ग रहती है, ये इम्यून मीडिएटेड डिसऑर्डर है, अगर इसको ट्रीटमेंट नहीं करो तो आगे जाके कैंसर भी बन सकता है। जो दूसरी कोलाइटिस होती है वो नॉन स्पेसिफिक कोलाइटिस होती है, मतलब हमको लूज मोशन हो गए और लूज मोशन बीच में होते रहते हैं और उसको नाम दे दिया कोलाइटिस, बट दैट इज़ नॉट रियली अ डिजीज, इट इज़ बेसिकली अ पार्ट ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ओनली। तो जानना कि आपको अल्सर वाली कोलाइटिस है कि नॉन अल्सर वाली कोलाइटिस बहुत जरूरी है।
0: तो मतलब डॉक्टर के पास संपर्क करें, यही ज़्यादा बेहतर होता है। और अब डॉक्टर साहब, एक गाना सुनते हैं पहले, यहाँ
1: शायद मेरी शादी का ख्याल
0: सुनते हैं डॉक्टर साहब, ये गाना।

0: अब डॉक्टर साहब बताइए कि आईबीएस और फैटी लिवर, एसिडिटी, जो पेट संबंधी ये जो बीमारियां हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बीमारियां हैं, इनसे बचने के लिए किस तरह की अवेयरनेस रखें, किस तरह की सजगता रखें और क्या सावधानी बरतें हमारे श्रोता?
1: तो ये जितनी भी ये बीमारियाँ, आई थिंक ये अवेयरनेस घर से शुरू होती है, बचपन से शुरू होनी चाहिए। एज ग्रोइंग अप एज अ किड, हमारे घर में एजुकेशन होनी चाहिए अबाउट डाइट। आई थिंक डाइट सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट अगर कोई सीख है वो डाइट है, कि प्रोटीन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, फैट क्या होता है। ये तीन बेसिक पिलर्स हैं हमारे लिए जिसके ऊपर हम खाना खाते हैं, कितना प्रोटीन खाना चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, कितना फैट खाना चाहिए। सो डाइट इज़ वन पिलर ऑफ हेल्थी सोसाइटी, हेल्थी पेट की गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिकल इश्यूज के लिए। सेकंड पिलर इज एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन।
0: जी
1: आई
0: जी
1: थिंक न्यूट्रिशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेस्ड ऑन व्हाट आई टोल्ड एंड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करोगे तो पेट की काफ़ी बीमारियां अपने आप ही ठीक हो जाएंगी, स्पेशली फैटी लिवर, आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, एसिड रिफ्लक्स डिजीज। द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, के कब आपको टेस्टिंग करनी चाहिए, कब आपको डॉक्टर को देखना चाहिए। तो अगर ये तीन पिलर्स हम करें, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर, ये तीन चीज़ें अगर हम कर पाए ना तो काफ़ी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: जी डॉक्टर साहब, हमने कई लोगों को ये सुना है कहते हुए कि सिर दर्द हो रहा है और सिर दर्द की दवा ना लेके एसिडिटी की दवा लेते हैं तो सिर दर्द ठीक हो जाता है, या उल्टी की दवा लेते हैं तो सिर दर्द ठीक हो जाता है। तो मैं मुझे बहुत अचरज हुआ कि उल्टी की दवा लेने से सिर दर्द कैसे ठीक हो गया, ये
1: हाँ,
0: क्या समस्या है?
1: ये बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि ये पेशेंट जब हमारे पास भी आते हैं कि अगर मेरे को एसिडिटी हो गई और सर दर्द हो गया है और
0: हाँ
1: एसिडिटी की दवाई लो तो मेरा सिर दर्द चले जाता है,
0: जी
1: तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोस्ट ये पेशेंट्स को माइग्रेन होता है, बेसिकली खाना खाया नहीं होता टाइम पे, स्ट्रेस होता है, हेडेक शुरू हो जाती है, तो एसिडिटी की दवाई लो तो एसिडिटी चली जाती है, पर फॉर सम रीजन द स्ट्रेस गोज डाउन एंड द माइग्रेन ऑल्सो गोज अवे। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट कि इनको माइग्रेन है कि नहीं। तो फर्स्ट पार्ट आपका सवाल था कि हेडेक होती है पर एसिडिटी की दवाई लो हेडेक चली जाती है, तो ये मैंने अपनी सारी किताबें छांट ली है, मुझे
0: जी
1: इसका जवाब किधर नहीं मिला। ये मैंने बाहर कभी नहीं देखा, ये मैंने इंडियन पेशेंट्स में ही देखा है
0: जी
1: कि एसिडिटी की दवाई लो मेरी हेडेक चली गई है।
0: जी जी
1: तो आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन फॉर इट, बट जब मैं पेशेंट्स मेरे पास ये कंप्लेन लेके आते हैं ना, तो मेरा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि ये माइग्रेन ना हो, क्योंकि माइग्रेन कैन ट्रिगर बोथ एसिड रिफ्लक्स, नॉजिया, वॉमिटिंग एंड हैव हेडेक्स। माइग्रेन को ठीक करोगे तो ये भी ठीक हो जाएगा। नाउ ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट ने बहुत देर तक खाना ना खाया हो, इसके लिए एसिडिटी हो, अगर हम खाना स्किप करें तो हमारी शुगर्स कम होगी तो अपने आप हेडेक शुरू हो जाएगी ना, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी, इट्स बिकॉज ऑफ स्किपिंग मील्स, इसके लिए आपको एसिडिटी हो रही है, इसके लिए आपको हेडेक हो रहा है।
0: जी हमने भी कई बार एक डॉक्टर से और पूछा था ये सवाल, तो उन्होंने कहा था नहीं सिर दर्द और एसिडिटी का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ने
1: कुछ
0: कहा
1: तो
0: कि
1: है, देयर इज सम कोरिलेशन बिटवीन डाइट, नॉट ईटिंग ऑन टाइम, एसिडिटी एंड हेडेक्स।
0: जी पर आजकल ये समस्या बहुत हो रही है लोगों में कि स्टमक अपसेट होता है तो सिर दर्द होने लगता है, तो माइग्रेन अगर किसी को है मान लीजिए तो किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए?
1: तो अगर माइग्रेन है तो वी शुड सी अ न्यूरोलॉजिस्ट, जो ब्रेन के डॉक्टर होते हैं, बिकॉज बहुत ध्यान से देनी पड़ती है, क्योंकि सम ऑफ द माइग्रेन मेडिसिन कैन कॉज एसिडिटी। तो अगर आपको एसिडिटी ऑलरेडी है तो माइग्रेन स्पेशलिस्ट को जब देखोगे तो यू हैव टू टेल कि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो दे मेक श्योर दे गिव एन एंटासिड उसके साथ।
0: जी जी जी और हम फैटी लिवर के बारे में बात कर रहे थे कि फैटी लिवर जिनको होता है, जिन पता चल जाता है, तो कई बार ऐसा लगता है कि कुछ लोग बहुत अल्कोहल लेते हैं या धूम्रपान करते हैं, सुपारी खाते हैं, तो क्या ये एक बड़ी वजह है फैटी लिवर की?
1: बिल्कुल
0: तो,
1: बिल्कुल
0: या फिर जो लोग नहीं लेते हैं उन्हें भी होता है तो
1: हाँ,
0: ये
1: तो अगर आप लिवर का टुकड़ा ले लो और फैटी लिवर है सपोज किसी को, वो लिवर का एक पीस निकाल के पैथोलॉजिस्ट को दिखाओ, वो पैथोलॉजिस्ट आपको बोल नहीं पाएगा, कह नहीं पाएगा कि ये पेशेंट अल्कोहल पीने के कारण फैटी लिवर हुआ है कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है, दोनों सेम चीज़ करते हैं। अगर आप अल्कोहल ना पियो, आपकी कार्बोहाइड्रेट इंटेक ज़्यादा हो, तो लिवर में एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट फैट की तरह डिपॉजिट हो जाता है। अल्कोहल इज ऑल्सो लाइक अ कार्बोहाइड्रेट, वो भी सेम चीज़ होता है, एक्सेसिव अल्कोहल पीने से लिवर के अंदर फैट करके डिपॉजिट हो जाता है। तो ओनली वे हम अल्क कर पाते हैं कि अल्कोहल एंड नॉन अल्कोहल, पेशेंट को पूछ के, हिस्ट्री के ऊपर। तो अगर आपको फैटी लिवर ऑलरेडी है तो अल्कोहल आपको

0: जरा भी नहीं पीनी चाहिए। वैसे भी अल्कोहल नहीं पीनी चाहिए बिकॉज इट इज अ ग्रेड वन कार्सिनोजेनिक, मतलब अल्कोहल कैन कॉज कैंसर्स नॉट ओनली ऑफ द लिवर बट ऑल्सो ऑफ द माउथ, द फूड पाइप, द स्टमक एंड अदर ऑर्गन्स। तो अगर आपको ऑलरेडी एक बीमारी है तो आप उस पर दूसरी बीमारी क्यों डालोगे? धूम्रपान, टबैको, सेम चीज। धूम्रपान टबैको करने से एसिडिटी ज्यादा होती है, ऑलरेडी एसिडिटी से अल्सर होके कैंसर होने की संभावना ज्यादा है, उसके ऊपर से आप धूम्रपान करो, तंबाकू खाओ, तो ये प्रॉब्लम काफी बढ़ सकती है। अल्कोहल और फैटी लिवर गो हैंड इन हैंड। अगर आप अभी न्यू जो हमारा सिस्टम है जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को फैटी लिवर है कि अल्कोहलिक लिवर डिजीज है, तो एक बीच का भी आता है समथिंग कॉल्ड मेट एएलडी, मतलब जहाँ पे अल्कोहल भी थोड़ा है, फैट भी थोड़ा है और दोनों बीमारियां पड़ रही हैं। ये सबसे डेंजरस है बिकॉज ऑलरेडी एक बीमारी चल रही है, आपने दूसरी बीमारी डाली है, तो ये जल्दी लिवर सिरोसिस और लिवर को खराब करती है। तो फैटी लिवर पेशेंट शुड नॉट बी टचिंग अल्कोहल।
1: जी जी डॉक्टर साहब, लिवर संबंधी और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं जिसके लिए सजग रहना चाहिए श्रोताओं को?
0: तो जो इंडिया में सबसे कॉमन है वो है हेपेटाइटिस बी, एक वायरस होता है

0: फैट भी थोड़ा है और दोनों बीमारियां पड़ रही हैं, ये सबसे डेंजरस है, बिकॉज ऑलरेडी एक बीमारी चल रही है, आपने दूसरी बीमारी डाली है, तो ये जल्दी लिवर सिरोसिस और लिवर को खराब करती है। तो फैटी लिवर पेशेंट शुड नॉट बी टचिंग अल्कोहल।
1: जी जी डॉक्टर साहब, लिवर संबंधी और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं जिसके लिए सजग रहना चाहिए श्रोताओं को?
0: तो जो इंडिया में सबसे कॉमन है वो है हेपेटाइटिस बी, एक वायरस होता है जो इंडिया में बहुत कॉमन है, सर्टेन एरियाज ऑफ इंडिया में तो बहुत ही कॉमन है। तो इसका एक सिंपल ब्लड टेस्ट आता है हेपेटाइटिस बी का, इसके हम काफ़ी कैंप्स करते हैं। आप एक सादा ब्लड टेस्ट हेपेटाइटिस बी का करो, अगर आपका हेपेटाइटिस बी नेगेटिव आया है तो आपको इसकी वैक्सीन ले लेनी चाहिए। दिस इज़ अ ट्रीटेबल कॉज ऑफ लिवर इंजरी हेपेटाइटिस बी। बाकी और भी वायरसेस होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए होता है, हेपेटाइटिस ई होता है, ये बेसिकली रेनी सीजन में हमको ज़्यादा दिखता है जब वाटर कंटेमिनेशन होता है, फीको ओरल कंटेमिनेशन बोलते हैं, खान पान साफ नहीं होता है, तब ये वायरस होता है, लिवर पे इंजरी करता है पर आके चला जाता है। हेपेटाइटिस ई ज़्यादा हम प्रेगनेंसी में देखते हैं, हेपेटाइटिस ए कैन बी सीन एनी टाइम। एक और तरह का वायरस होता है हेपेटाइटिस सी, ये अभी हम कम देखते हैं, फॉरेन में ज़्यादा दिखता है, इंडिया में कम दिखता है। ये बेसिकली ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है या कोई नीडल इंजरी से या कभी कभी सेक्शुअली भी होता है। हेपेटाइटिस सी की भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो मेरा मानना है कि ये वायरस इंजरीज हैं, ये लिवर को होती हैं, ये प्रिवेंटेबल डिजीजेज हैं। हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन आता है, हेपेटाइटिस बी का आता है और अभी हेपेटाइटिस ई का भी वैक्सीन आ गया है। तो अपने टेस्ट कराइए, अगर नेगेटिव है तो आप सब वैक्सीन लीजिए ताकि ये बीमारी ना हो। ये कॉमन इंजरी है लिवर की। तो फैटी लिवर हमने बोला, अल्कोहलिक लिवर इंजरी बहुत कॉमन है, अल्कोहल पीने के कारण लिवर फेल हो तो हम जानते ही है होता
1: जी,
0: है
1: जी, जी,
0: ये कॉमन है। वायरसेस कॉमन है, फिर बाकी की जो लिवर की इंजरीज हैं वो काफ़ी रेयर होती हैं। लास्ट चीज़ मैं कहूँगा गॉल ब्लैडर स्टोन, गॉल ब्लैडर में पथरी होती है, वो भी लिवर के नीचे ही बैठती है, उससे भी कभी कभी लिवर को इंजरी होती है। अगर वो लिवर की पथरी स्लिप हो जाए, लिवर की ट्यूब में आके फंस जाए, तो उससे भी जॉन्डिस हो सकता है। तो ये कॉमन लिवर की बीमारियां हैं, गॉल स्टोन्स, अल्कोहल, फैटी लिवर एंड वायरसेस।
1: जी, आपने गॉल ब्लैडर का जिक्र किया तो मेरे जहन में ये बात आई कि कई बार जो उल्टी होती है तो क्या गॉल ब्लैडर में स्टोन है, इस ये भी वजह होती है क्या?
0: बिल्कुल हो सकती है, कभी कभी पेशेंट को पेट में थोड़ा दर्द होता है, वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, स्पेशली फैटी फूड खा के, तला हुआ खा के, दिस इज अ साइन कि आपका शायद गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है। इसके लिए मैंने कहा था पहले भी कि अगर पेट का दर्द जारी रहे तो इन्वेस्टिगेशन करनी जरूरी है, एक सोनोग्राफी करेंगे उसमें ये पकड़ा जाएगा आपको गॉल ब्लैडर स्टोन है कि नहीं।
1: जी जी, और गॉल ब्लैडर अगर ऑपरेट करके निकाला जाए तो उसके कुछ आगे चलकर मरीज को कुछ तकलीफ होती है?
0: नहीं, जरा भी नहीं है। गॉल ब्लैडर और अपेंडिक्स ऐसे दो चीजें हैं जो निकाल के मोस्ट पेशेंट्स को कोई तकलीफ नहीं होती, लाइफ नॉर्मल कटते रहती है।
1: ये बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों में होती है तो दूर हुई। और डॉक्टर साहब एक बात बताइए कि जो आईबीएस की समस्या है वो भी बहुत कॉमन है, अमूमन लोगों को ये होता है, ये जिसको सिकनेस ही बोलते हैं हम लोग, कि यात्रा पर जाना है तो जैसे वोमिटिंग सेंसेशन होने लगा या बार बार मोशन के लिए जाना पड़ता है, तो इसकी वजह क्या होती है? एक तो स्ट्रेस आपने बताया था, तो आंतों से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है क्या ये?
0: हाँ, ये बेसिकली मन और आंतों के कनेक्शन की प्रॉब्लम है। अगर हमको पता हो हमको जाना है किधर, तो वो स्ट्रेस ऑफ गोइंग आउटसाइड, उसके कारण हमको लगता है कि मोशन करना चाहिए, मोशन करना चाहिए और मोशन जाते हैं। तो अगर सपोज लूज मोशन की इशू है, तो कई मेरे पेशेंट हैं जो अगर अपने मन को नहीं शांत कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे ठीक, तो हम एक एंटी डायरियल दे देते हैं दवाई कि अगर आपको ट्रैवल करना है तो एक गोली ले लो जाने के पहले। अगर वॉमिटिंग इज अ प्रीडोमिनेंट प्रॉब्लम तो एक वॉमिटिंग की दवाई लेते हुए जाओ। एसिडिटी प्रॉब्लम है तो एक एसिडिटी की दवाई खाते हुए जाओ ताकि आपके जर्नी ठीक जाए, पहुंच जाओ जहां पहुंचना है। तो बेसिकली इट इज टू डू विद, आई वुड नॉट से वीक इंटेस्टाइंस बट सेंसिटिविटी, दिस इज ऑल टू डू विद सेंसिटिव, हमारा पेट सेंसिटिव है बहुत।
1: तो इस समय आईबीएस की समस्या से जब ग्रसित हो तो क्या फूड लेना चाहिए मरीज को, मतलब सॉलिड फूड खाना चाहिए या लिक्विड या पानी? हाँ, या तो, कुछ नहीं
0: नहीं नहीं खा, ऑलवेज लिक्विड तो लेना ही चाहिए ताकि वो कीप वेल हाइड्रेटेड, बट जो इजी डाइजेशन हो, जैसे कच्ची चीज़ें नहीं खानी चाहिए, कच्चा सलाद हो गया, यू नो फ्रूट, ज़्यादा पत्ते वाली भाजी अवॉइड कर लो ट्रैवल में, कुक्ड फूड खाओ, राइस इजी होता है, दाल राइस खिचड़ी इजी है डाइजेस्ट करने के लिए, पानी अच्छे से पियो, छाछ पियो ताकि वो वेल हाइड्रेटेड।
1: और क्या उस समय आंतों में स्वेलिंग आई होती है आईबीएस?
0: एक्चुअली आईबीएस में कुछ नहीं आया होता, आईबीएस इज ऐसा सेंसिटिव थिंग, अगर आप स्कैन करके देखो, एंडोस्कोपी करके देखो तो सारा नॉर्मल होता है। इट इज अ सेंसिटिव।

बजे हैं, आरंभ होती है आज की हमारी दूसरी यानी सांध्यकालीन सभा। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है युवा श्रोताओं के लिए हमारा कार्यक्रम युववाणी।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5

युवा श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी के अंतर्गत आज आप सुन रहे हैं तरुण कुसुम। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में। स्वीकार करें अपने रेडियो मित्र भवेश की ओर से प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम के परिपाटी से आप परिचित हैं। हम लेकर उपस्थित होते हैं कुछ रोचक जानकारी से भरे चर्चा, तो बातचीत तो हम करेंगे ही, साथ ही कुछ लोकगीतों का आनंद भी हम सब लेंगे। तो सबसे पहले कुछ बातचीत कर लें। डेटा साइंस और सांख्यिकी में करियर आज के समय में सबसे तेजी से बढ़ने और आकर्षक करियर के क्षेत्र में से एक है। सांख्यिकी डेटा से सही जानकारी निकालने की रीढ़ होती है और डेटा साइंस इस जानकारी और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का उपयोग करके भविष्य की भविष्यवाणी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI बनाने का काम करता है।

श्रोताओं, हम बात कर रहे थे डेटा साइंस और सांख्यिकी प्रमुख करियर विकल्प की अगर बातें करें तो इन क्षेत्रों में पढ़ाई पूरी करने के बाद हम विभिन्न भूमिकाओं में काम कर सकते हैं, जैसे सांख्यिकीविद, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट। सांख्यिकीविद सरकारी एजेंसियों, हेल्थ केयर और रिसर्च में डेटा पैटर्न और सैम्पलिंग का विश्लेषण करते हैं। वहीं अगर डेटा एनालिस्ट को देखें तो ऐतिहासिक डेटा की मदद से रिपोर्ट बनाते हैं और निर्णय लेने में व्यवसायों की मदद करते हैं। डेटा साइंटिस्ट को देखें तो मशीन लर्निंग और उन्नत सांख्यिकी मॉडल का उपयोग करके जटिल समस्याओं का समाधान करते हैं और पूर्वानुमान लगाते हैं।

बीरेंद्र कुमार मिश्र के स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये नचाड़ी। उम्मीद करते हैं कि श्रोताओं को पसंद आया होगा। हम बात कर रहे थे डेटा साइंस और सांख्यिकी में करियर की। एक मजबूत करियर बनाने के लिए हमें इन विषयों में दक्षता हासिल करनी होगी, जैसे गणित और सांख्यिकी, प्रोग्रामिंग, डेटा विजुअलाइजेशन। गणित और सांख्यिकी की बात करें तो रैखिक बीजगणित, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, प्रोग्रामिंग में पाइथन, आर, एसक्यूएल। डेटा विजुअलाइजेशन की बात करें तो पावर बीएल,

श्रोता अभी पार्वती मिश्र को सुन रहे थे। अब बात करें डेटा साइंस और सांख्यिकी में करियर की, तो अगर एजुकेशन पाथ शैक्षिक मार्ग की बात हम करें तो हम सांख्यिकी और डेटा साइंस में बैचलर डिग्री, बीएससी स्टैटिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस या बीटेक कर सकते हैं। मास्टर डिग्री भी ले सकते हैं, एमएससी स्टैटिक्स, डेटा साइंस या एमटेक। बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं, हम कोर्सेरा या अपग्रेड जैसे प्लेटफॉर्म्स पर विशेष सर्टिफिकेशन कोर्स भी प्राप्त कर सकते हैं।

ये मैथिली गीत अभी आप सुन रहे थे कुंज बिहारी मिश्र के स्वर में। आकाशवाणी दरभंगा से श्रोता अभी सुन रहे हैं युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी। हम बातें कर रहे थे डेटा साइंस और सांख्यिकी में करियर की। तो अगर इस क्षेत्र में अवसर की बात करें तो भारत में इन प्रोफेशनल्स की भारी मांग है। एंट्री लेवल और अनुभव के आधार पर हम अच्छे पैकेज पर इस क्षेत्र में काम कर सकते हैं और अपने आप को अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं।

ये लोकगीत अभी आप सुन रहे थे राधा मोहन मिश्र के स्वर में। घड़ी की सुई अब इशारा करते हुए कि कार्यक्रम तरुण कुसुम से आप श्रोताओं से अगले अंक तक के लिए विदा लेने का वक्त हो चुका है, तो अपने रेडियो मित्र भवेश को दीजिए आज्ञा, अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

जुनूनियत। इस फिल्म का ये गाना भी आप सुन रहे थे अरमान मलिक के आवाज में। मनोज मुंतशिर के लिखे इस गाने को संगीत दिया था रश्मि विराग ने। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है?
0: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।
2: विज्ञापन से पूर्व आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह को फिल्म यंगिस्तान में। कौसर मुनीर के लिखे गाने को संगीत दिया था जीत गांगुली ने। हमारे कार्यक्रमों को आप सुन सकते हैं न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी।

जुड़वा फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और पूर्णिमा की आवाजों में। देव कोहली के लिखे इस गाने के लिए संगीत दिया था अनु मलिक ने।

लुका छिपी फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे करण सैम्बी के आवाज में। निर्माण के लिखे इस गाने को संगीत दिया था तनिष्क बागची ने। फिल्म संगीत एक बार पुनः आप सुनेंगे शाम 7:52 पर। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे हैं हमारी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रम। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 6 बजने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार।

0: केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं। ये पुरस्कार जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और देश की सीमाओं पर आतंकवाद, उग्रवाद और शत्रुतापूर्ण खतरों के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में असाधारण साहस के कार्य को भी मान्यता देते हैं। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अन्य केंद्रीय मंत्री और सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशक से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बीच जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में DRDO को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन DFP 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि DFP 2026 अनुसंधान और विकास, पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकी के तेजी से उत्पादन, रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ाया है, इससे देश के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक सस्ती और सुलभ हो गई हैं। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ब्रिक्स CCI के प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उभरती प्रौद्योगिकियों में इसकी अग्रणी भूमिका उद्योग संगठनों को मजबूत अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने का एक आदर्श अवसर प्रदान करती है, जो राष्ट्रीय विकास और वैश्विक प्रगति में योगदान देती है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज ब्राजील का सामना जापान से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र। अब श्रोताओं, आपको जानकारी दे दें आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में।

विद्यापति गीत आप सुनेंगे अब से कुछ देर बाद, यानी संध्या 6:10 से। इसके तुरंत बाद हम आपको सुनवाएंगे मैथिली संवाद, समय होगा संध्या 6:25 पर। सांध्यकालीन दैनिक कार्यक्रम गाम घर, इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे अनुभव के चश्मा सॉन्ग। प्रसारण समय होगा संध्या 6:30 से। इसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे एक प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद,

कुछ फिल्मी गाने हम आपको सुनवाएंगे शाम 7:52 पर। इसके बाद रात्रि 8:15 पर आप सुनेंगे मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार।

पब्लिक स्पीक, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9:30 पर, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर आपको सुनवाएंगे। फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी आप सुनेंगे रात 10:00।

अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आप सुन रहे हैं हमारी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रम। अब प्रस्तुत है विद्यापति गीत।

0: विद्यापति गीतों के कार्यक्रम में आज आपने सुना रामकुमार मल्लिक और गौतम मिश्र को। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है।
1: साहित्य, संस्कृति और कला के उपवन में फुलायल एक गोट एहन पुष्प जाहिसँ गमकैत अछि संपूर्ण मिथिला।

0: सब दिन बरतुहार आबै छल कहियो थमहु अगला साल, हमर गर्दन काटि लेल आ अपने बनल मालूम।
1: गुआ सुपारी के कहल जात अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनि आनि के दिया तऽ बहुत कमे लोक हेता जे गुआ बुझि के सुपारी बुझि के आनि के देता।
2: अपन परम्परा, अपन संस्कार, अपन माइटक सुगंध के सहेजित मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार।
3: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, आप सुन रहे हैं हमारी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रम। कुछ ही देर में आप सुनेंगे मैथिली संवाद।

नमस्कार, आकाशवाणी दरभंगा आ एफएम रेनबो पटना से प्रस्तुत एच संवाद, संवादक संग होम छी प्रियंका कुमारी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 2 जुलाई के पटना मेट्रो परियोजनाक अंतर्गत मलाही पकड़ी स्टेशन धरि मेट्रो रेलक परिचालनक घोषणा कयलनि। आई पटना में मेट्रो परियोजनाक प्रगतिक उच्च स्तरीय समीक्षाक दरमियान मुख्यमंत्री परियोजना से जुड़ल अधिकारी सबके निर्माण

0: खनन कार्य में तेजी अनबाक संगहि प्रत्येक चरणक लेल स्पष्ट समय सीमा तय करबाक आदेश देलनि अछि। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आइ एक दिवसीय दिल्ली यात्रा पर छथि। श्री चौधरी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सँ हुनक आवास पर भेंट कयलनि। एहि दरमियान ओ राज्य में प्रस्तावित विभिन्न राजकीय उच्च पथ योजना, पुल निर्माण समेत कतेको परियोजना के लऽ कऽ केंद्रीय मंत्री सँ चर्चा कयलनि। मुख्यमंत्री के पार्टीक वरिष्ठ नेता सब सँ सेहो भेंट करबाक कार्यक्रम छनि। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान कहलनि जे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग किसान सभक आमदनी बढ़ायब, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मजबूत करब और युवा सब लेल रोजगारक अवसर सृजित करबा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहल अछि। श्री पासवान महाराष्ट्रक परभनी में एक कार्यक्रम के संबोधित करैत युवा सब सँ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सँ जुड़बाक अपील कयलनि। वो कहलनि जे आई युवा सब के नौकरी मंगबाक बजाय रोजगार देबय वाला बनबाक चाही। श्री पासवान प्राकृतिक खेती के बढ़ावा देब और भारतीय खाद्य उत्पाद सबके वैश्विक गुणवत्ताक अनुरूप बनेबा पर सेहो जोर देलनि। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवसक अवसर पर आई देश प्रदेश में कतेको कार्यक्रम आयोजित कयल जा रहल अछि। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयक क्षेत्रीय इकाईक दिस सँ पटनाक कर्पूरी सदन में आयोजित विशेष कार्यक्रमक उद्घाटन उप महानिदेशक रोशन लाल साहू कयलनि। एहि अवसर पर अपन संबोधन में श्री साहू कहलनि जे राष्ट्रीय सांख्यिकी देशक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभबैत अछि। राज्यक अधिकतर भाग में मॉनसूनक सक्रियता सँ मध्यम सँ भारी वर्षा दर्ज कयल गेल अछि। मौसम विभाग अगिला तीन दिन धरि राज्यक उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भाग में कतेको स्थान पर तेज हवाक संग वर्षाक पूर्वानुमान जतौलक अछि। एहि दरमियान मधुबनी, सुपौल, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, सारण, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण समेत कतेको जिला में विभिन्न स्थान पर भारी वर्षाक आशंका के लऽ कऽ ऑरेंज अलर्ट जारी कयल गेल। एम्हर पटना और लग पासक क्षेत्र सब में सेहो भोरे सँ मेघ लागल अछि और रुक रुक कऽ वर्षा भऽ रहल अछि। काल्हि सम्पन्न भेल केंद्रीय चयन पर्षदक सिपाही भर्ती परीक्षाक दरमियान कदाचारक आरोप में मुंगेर पुलिस द्वारा सॉल्वर गैंगक एकटा सदस्य के गिरफ्तार कयल गेल। पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद कहलनि जे आरोपी राहुल सँ पूछताछ कयल जा रहल अछि। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा आई त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी कयल गेल। बोर्ड द्वारा कहल गेल जे दसवीं कक्षाक वर्तमान बैच के नव भाखा नीतिक पालन नहि करे पड़त। बोर्ड द्वारा इहो कहल गेल जे सातम, आठम और नवम कक्षा में पढ़ रहल वर्तमान बैचक छात्र सब के सेहो दसवीं कक्षा में पहुँचला पर तेसर भाषा में बोर्ड परीक्षा देबाक आवश्यकता नहि अछि। बोर्ड कहलक जे कक्षाक अनुरूप संसाधन सामग्री समय सँ उपलब्ध करा देल जायत। नीट UG परीक्षाक प्रश्न पत्र लीक मामला में दिल्लीक एकटा अदालत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI जांचक अंतर्गत 10 आरोपी के न्यायिक हिरासत 11 जुलाई धरि बढ़ा देने अछि। शिवहर जिलाक तरियानी छपरा थाना क्षेत्रक अंतर्गत छपरा सिरहा टोला में सिलेंडर विस्फोटक घटना में 4 गोटे गंभीर रूप से झुलस गेलैत। एम्हर पटनाक दीदारगंज थाना क्षेत्रक अंतर्गत करमली चक स्थित एकटा वेयर हाउस में आई भोरे आग लगबाक घटना में 50 लाख टका से बेसीक संपत्ति जरिकऽ नष्ट भऽ गेल। एहि संग आकाशवाणी दरभंगा आ FM रेनबो पटना सँ प्रसारित संवादक ई अंक समाप्त भेल।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज़।

और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र। प्रस्तुत है सांध्यकालीन दैनिक कार्यक्रम गाम घर।

0: कार्यक्रम गाम घर अंतर्गत अनुभव के चश्मा से सुननिहार समस्त श्रोतागण के आशुतोष कुमार झा दिस से स्वागत आ नमस्कार। संगहि गोर लगे छे उना भाई,
1: खूब प्रसन्न रहू आशुतोष भाई। आशुतोष भाई,
0: हाँ हाँ,
1: आज सोम दिन है, आजुक दिन हमरा लोकन स्नेही बुजुर्ग श्रोता लोकनिक लेल ल क अबै छन हुनक साप्ताहिक कार्यक्रम
0: अनुभव के चश्मा।
1: एहि कार्यक्रम अंतर्गत एकटा प्रायोजित कार्यक्रम ल क आयल छन बुनियाद, एकर संगहि एकटा बाह्य ध्वनांकन पर आधारित हमरा लोकन गपशप सुनब
0: सेहो सुनब,
1: जकर विषय संगहि अपना सबके लहि लेब। मुदा एहि सबसँ पहिने किछु दू टप्पी कऽ लै छी।
0: ठीके कहलहुँ उगना भाई। देखै छी जे अपना सभक समाजमे बहुतो रास लोक सब रहै छथि और सरकार दिस बहुतो रास योजना सब चलाओल जा रहल अछि, मुदा होइत ई अछि जे बहुतो रास एहन योजना अछि जकर लाभ हुनका तक पहुँच नहि पाबै छनि। कारण छनि जानकारीके अभाव, जागरूकताके अभाव। की
1: ठीके कहलहुँ? आ अहाँ एखन कहऽ चाहै छी एकटा योजना चलि रहल अछि प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम अल्पसंख्यक कल्याणक हेतु।
0: ठीके कहलहुँ।
1: तऽ एहि योजनासँ लाभ उठाबैत अल्पसंख्यक लोकनि, आ एहिमे एकटा योजना अछि शैक्षणिक क्षेत्रमे छात्रवृत्ति योजना, प्रशिक्षणके योजना, अन्यान
0: बहुत
1: योजना, एकर संगहि एकटा अछि हुनर योजना जे अछि जे ओहिमे बेसी पढ़ल लिखल रहबाक नहि जरूरत अछि, अहाँके काज करबाक हुनर हेबाक चाही जे अहाँ कोनो काज कऽ सकी।
0: ठीक है, तऽ
1: ओ जाहिसँ कि अपन रोजगार कऽ कऽ जीवन यापन कऽ सकी। एकटा तेसर अछि ओहिमे सीखो और कमाओ योजना।
0: देखियो
1: तऽ ई अछि जेना कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम सब चलैत अछि, तही
0: आब अहाँ हमरा कहलहुँ हँ तऽ आब हम आनो टोलमे जायब तऽ एहि सब योजनाके सम्बन्धमे हम लोक सबके कहबनि और संगहि इहो कहबनि जे एहि सम्बन्धमे और विशेष जानकारी एखुनका तऽ समय छियै सोशल मीडियाके की, और अधिकाधिक ऑफिस और जानकारी हमरा उपलब्ध भऽ सकैत अछि, तऽ ओ लेलाके बाद हमसब आगू बढ़ि सकै छी।
1: तऽ फेर गपशप करब, मुदा आप पहिने किछु संदेश भी लहि लै छी।
2: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। किशनपुर लोहुआर पंचायत से ओम राकेश कुमार बने हैं यशस्वी मुखिया।
3: यशस्वी मुखिया राकेश कुमार शाह, ग्राम पंचायत में पंचायत सरकार भवन नहीं था, जिसके चलते मेरे यहाँ नागरिकों को बहुत कठिनाई होती थी, प्रखंड जाकर काम कराना पड़ता था। मैंने ग्राम पंचायत में अपने ग्राम पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया। अब पंचायत सरकार भवन के एक छत के नीचे ही मेरे पंचायत के लोगों का सारा काम हो जाता है, अब प्रखंड जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
2: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान।
4: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
5: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
4: मैं फसल की नहीं NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
5: हैं मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है?
4: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। राजभासर मच्छा पंचायत से अजीत कुमार बने हैं अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया।
1: अल्ट्राटेक तो बहुत अच्छी सीमेंट है, उससे मैंने अपना घर भी बनवाया है और योजना में भी मैक्सिमम टाइम हम लोग वही यूज करते हैं और हिंदुस्तान अखबार तो बचपन से जब से पढ़ने आए तब से पढ़ते ही हैं। तो ये बहुत अच्छी पहल है जो हम लोगों के एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे ला करके और बिहार पे हमें अपने पंचायत का नाम रोशन करने का मौका मिला है, जिसके लिए अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान दोनों को बहुत बहुत बधाई। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।
2: क्षणिक विराम के बाद श्रोतागण के एक बेर फेर से स्वागत छन अनुभव का चश्मा से। तो आब बिना देरी के ने अपना सब सुनी ये भेंटवार्ता हमारे बुजुर्ग और सरकारी योजनाएं।
3: आई हम कामेश्वर नगर दरभंगा में आयल छी। एतो बुजुर्ग छथ विजयनाथ मिश्र हिनक नाम भेलन। हिनका से स्नेही बुजुर्ग श्रोता भाई बहिन लोकन लेल ई बुझ चाहे जे बुजुर्ग लोकनिक लेल सरकार द्वारा कतेको प्रकारक कल्याणकारी योजना सब चलाओल जा रहल अछि, ओहिमे कोन कोन योजना हिनका लोकनिक लेल विशेष रूपे लाभकारी छन, ताहि प्रसंग में विजय जी अपन परिचय के संग किछु जनतब दियौन।
4: शंकर जी, हम विजयनाथ मिश्र अध्यापन कार्य में से लागल छलौं। बहुत रास इसकुल में स्थानीय इसकुल सब में से अध्यापन कार्य में छलौं हैं। तो बुजुर्ग लोकनिक लेल केंद्र सरकार आ राज्य सरकार दुनू दिस से बहुत किछ सम्मान के रूप सहायता देल जाए छे। एमे से देखियो कोनो व्यक्ति के बूढ़ भेला के बाद से मुख्य रूप से तीन तरह के आवश्यकता छे। भोजन ठीक से बुजुर्ग लोकन के भेट जाएं, वस्त्र देह पर रहें, अस्वस्थ रहें, यह तो मुख्य आवश्यकता छें। तो सबसे पहले भोजन के यदि बात करी तो परिवार में जे सरकार के द्वारा अन्न पानी देल जाए छे से बुजुर्गों के नाम पर 5 किलो तो भेटबे करे छे। दोसर बेर वस्त्र तो किछ पाई के सहायता से हो चाहे तो केंद्र सरकार दिस से या राज्य सरकार के दिस से भेट जाए छे। आब जना कि बिहार सरकार एठाम 1100 रुपया वृद्ध पेंशन के रूप में से सब के दे छथिन
3: महीने में सुरक्षा योजना
4: सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत। आब ओकर बाद भेल जना कि जखन अहाँ के भोजन भेट गेल वस्त्र भेट गेल तो केना अहाँ स्वस्थ रही, केंद्र सरकार के एकटा आयुष्मान योजना छे आयुष्मान कार्ड छे जकर अंतर्गत 5 लाख के से सहायता अहाँ कोनो वृद्ध व्यक्ति के ओना तो सब व्यक्ति के भेटे छे लेकिन वृद्धों के विशेष आर्थिक सहायता आ जो 70 वर्ष से ऊपर के छी अहाँ के तो और बेसी सहायता भेटत।
3: ठीक है, कहलो
4: बुझलो। तो ई आयुष्मान कार्ड के माध्यम से बहुत बुजुर्ग लोकन दुखित भेला पर या कोनो एहन बीमारी भेला पर जे असाध्य छन ओ यदि ओहि हॉस्पिटल में जे स्वीकृत छे आयुष्मान कार्ड जे हॉस्पिटल में स्वीकृत छे सरकारी में तो छै है प्राइवेटो में से जाकर ओहिठाम ओ 5 लाख तक के सहायता प्राप्त कर सकै छथि। अब तकर बाद आवश्यकता बूढ़ बुजुर्ग के लोकन को होइ छन कतौ एतौ से ओतौ जाय आबै के तो तै लेल हमरा जनैत चाहे हवाई यात्रा हो चाहे बस यात्रा हो चाहे रेल यात्रा हो एमे किछ यात्रा में टिकट में सुविधा सेहो देल जाय छन वृद्ध लोकन के। तो हम इएह कहब जे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दुनू मिल के से वृद्ध लोकन पर तो बहुत ध्यान दऽ रहल छथि।
3: एकर संग संग दवाई लेल सेहो जन औषध परियोजना चल रहल।
4: हाँ, तो ई तो हम तो कहबे कलु तो हमरा सबके जगह जगह पर देखै छी जे प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र सब खुजल अछि। अइ प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में
3: बहुत सस्ता में
4: जे दवाई अहाँ के 100 रुपया में मान लिया आन दुकान में भेटत वही ग्रुपक अइ दुकान में

0: 15-15 रुपया में भेट जाए छे तो ई तो बड फायदा ने
1: मुदा आवश्यकता आई गप के है जे सरकारो कह रहल है जे चिकित्सक लोकन ओ दवाई के लिखो
0: हां तो
1: से एहन देखल जा रहल है जे बुजुर्ग लोकन चाहितो छात तो हुनका जे चिकित्सक लोकन जे दै छथिन पुर्जा तै पर ओ नै लिखै छथिन
0: ई तो हमर हम मनक गप हमर मुहक गप ल लेलौ ई हम कहै छलौ जे प्रिस्क्रिप्शन लोक के की धारणा होइ छै दुखता है लोग के जे डॉक्टर साहब जे लिखलन है वह दवाई चाहिए एक टा स्पेलिंग ई आ ए में अंतर भ जते आ
1: हेबाको सह चाहिए
0: चाहिए
1: ओ लिखलन
0: कहत तो डॉक्टर साहब सब तो दवाई के नाम लिखे छथिन ए में ग्रुप के हिसाब है वही तरहक दवाई से बहुत सस्ता में भेटे छे हम तो बहुत रास दवाई से ओहिना पूछ के ल लै छी जे सस्ता में भेट जाए चाहे वो गैस के दवाई हुए चाहे कोनो आंखी
1: के दवाई के दवाई हुए
0: मधुमेह के दवाई हुए
1: अन्य कतेको बीमारी के दवाई
0: यदि बुजुर्ग लोकन अपन सम्मान के रखत जे आर्थिक सहायता भेटे छन और अन्न के सहायता भेटे छन किछ आर्थिक सहायता के संग संग स्वास्थ्य सुरक्षा भेटे छन तो एहि सब के आधार पर लाभ उठा सके छन
1: के कहलौ विजयनाथ मिश्र जी अहाँ बड़ नीक जनतब देलियन बुजुर्ग लोकन के अय योजना सब से ई लोकन
0: आ यात्रा के लाभ सोहो उठा तीर्थ यात्रा कर चाहे छी त सोहो जा सके छी
1: बहुत के कहलौ विशेष रूप से त सरकारी बस सेवा में राजपथ परिवहन निगम में एकर संग संग रेल सेवा
0: रेल सेवा हवाई यात्रा में सोहो भेट रहल
1: त अय सब में अहि गप के ध्यान में राखि क भेट रहल छै सुविधा हिनका लोकन के जे जत जे घूम फिर चाहे सेहो कोन हिसाब से घूमू
0: आ जै ठाम भारतक जै कोनो कोन में जै अस्पताल में अहाँ अपन स्वास्थ्य के से सुरक्षा करे वास्ते स्वास्थ्य के निक करे वास्ते कोनो ऑपरेशन करवा चाहे छी
1: विशेष रूप से त बुजुर्ग लोकन के आँख के ऑपरेशन
0: देखै
1: छियनि जे बड़ लाभकारी
0: भेल आँख भेलै कान देखियो मन त सब सबसे स्वस्थ रहबाक चाहिए यदि अहाँके अंग सब धीरे धीरे कमजोर भेल जाइ छै जेना जेना व्यास बढ़े छै तेना आँख कमजोर हैत कान कमजोर
1: हैत सबके
0: दाँत टूट जाए दाँत में दर्द हैत तो छोट बीमारी हुए या पैघ बीमारी हो ककरो गामक लोक से सहायता लऽ कऽ हुनका संगे कोनो हॉस्पिटल चल जाओ आ आयुष्मान कार्ड जे बनौने छी ओ डॉक्टर के देखबियौ ओहिके माध्यम से अहाँके 5 लाख रुपया तक के सहायता के अनुसार ओकर सब चीज नहि खाएके चिंता सब चीज
1: प्राय तो सब ठाम प्रखंड स्तर पर जे चिकित्सा केंद्र प्राथमिक चिकित्सा केंद्र सब है ओतौ जाकर निःशुल्क अपन स्वास्थ्य के जांच करा सके
0: एकदम ठीक कहलौं तो आई शंकर जी अहाँ से गप कऽ के बहुत निक लागल
1: अहूँ के धन्यवाद
2: उगना भाई एखन अपना सब सुन रहा छो ई वार्ता भेंट वार्ता हमारे बुजुर्ग और सरकारी योजनाएं हिनका से भेंट वार्ता कार छलैथ विजयनाथ मिश्र और भेंटकर्ता छलैथ शंकर कुमार चौधरी तो बड़ा निक रहल गपशप
3: आशुतोष भाई अब हमरा लोकन सुनै छी जे ई साप्ताहिक कार्यक्रम बुनियाद प्रायोजित कार्यक्रम अछि तो हमरा लोकन सुनै छी
2: ई प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।

नमस्कार, मैं हूं राजेश और एक बार फिर से बुनियाद कार्यक्रम लेकर हंसते खेलते आपके घर आंगन में आ गया। हंसना खेलना इसलिए जरूरी है कि उससे आप खुश रहेंगे और पॉजिटिव सोच रखेंगे और इसी सोच के साथ बुनियाद कार्यक्रम को सुनेंगे, जिसमें हम नए नए कोर्सेज की आज चर्चा कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से, पिछले एपिसोड में हमने बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, जी हाँ, इसके बारे में बताया था। बैचलर ऑफ

0: इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी के विषय में बताया था। इसके अलावा एक कोर्स और है परफ्यूजन टेक्नोलॉजी।
1: एक बार फिर से आप लोगों के अनुरोध पर आपने क्वेरीज की, बहुत ज्यादा जानकारी चाही और कहा कि एक बार फिर से सारी जानकारियां दिलवाई जाए, तो आज फिर से हम एक बार उसी पर चर्चा करेंगे। और वो कोर्स है
0: बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, और हमारे साथ एक्सपर्ट भी होंगे। लेकिन उससे पहले दो बातें हम कर लें। बहुत सारे फोन कॉल्स आए जब हमने बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी के विषय में बातचीत की थी। हाँ, डॉक्टर नीरज से हमने बातचीत की थी और जानकारियां दिलवाई थी। पूरे बिहार से फोन आया वैसे युवा साथियों का जिन्होंने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया था, अच्छा लगा। सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे सोमवार के दिन बने रहना होगा इसी समय इसी मीटर पर। एकदम आपके लिए खोज खोज कर ऐसे कोर्सेज को हम लाएंगे और

0: बातचीत की थी और जानकारियां दिलवाई थी। पूरे बिहार से फोन आया वैसे युवा साथियों का जिन्होंने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया था। अच्छा लगा, सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे सोमवार के दिन बने रहना होगा इसी समय इसी मीटर पर। एकदम आपके लिए खोज कर हाँ ऐसे कोर्सेज को हम लाएंगे और गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जिनकी तरफ से ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम रोहतास बिहार में ये कोर्सेज इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं आप युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर फ्यूचर के लिए। जी हाँ, और तीन कोर्सेज हम बार बार कह रहे हैं, हमने बातचीत कर ली है बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी पर, ढेर सारे फोन आए हैं, सारे सवाल हमने रखे हैं। इसके अलावा परफ्यूजन टेक्नोलॉजी एक नया कोर्स है और आज जिस पर चर्चा करेंगे वो है फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज। जी हाँ, इस पर आज चर्चा करेंगे, विशेषज्ञ को बुलाएंगे। लेकिन फिर भी हम बार बार कहते हैं, राजेश बार बार कहता है कि भैया छोटे छोटे भाई बड़े बड़े चाचा बड़े बड़े दादा, अब आप समझ लीजिए कि टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है। हाँ, टेक्निकल पढ़ाई कर लीजिए, हाँ बेरोजगारी की समस्या दूर हो जाएगी ऐसा हम समझते हैं। अगर अच्छे से पढ़ाई की गई ना तो विशेषज्ञता हासिल होगी और वो विशेषज्ञता आपको जीवन में खड़े होने का आधार मजबूत बुनियाद देगी। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमसे सवाल भी पूछ सकते हैं। टोल फ्री नंबर पहले बता रहा हूँ 1800 121 0051 1800 121 0051, और एक जो मोबाइल नंबर है आपके लिए सिर्फ आपके लिए वो है 9431899002 9431899002, और एक वेबसाइट भी है www.gnsu.ac.in। ढेर सारे फोन कॉल्स आते हैं कि बहुत सुलभ कर दिया, अब सुनते सुनते जानकारियां मिल जाती हैं, किसी दूसरे माध्यम में तो पढ़ना पड़ता है, काम छोड़ना पड़ता है, और ये तो काम करते करते बाजा बज रहा होता है और जानकारियां मिल जाती हैं। धन्यवाद आपका कि आप इतना कंसर्न हैं इस कार्यक्रम से, क्योंकि हम आपके फायदे की बात करते हैं। बहरहाल चलिए आज बातचीत करते हैं फिजिशियन, हाँ बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, इस विषय में क्या पढ़ाई है, कितने दिन की पढ़ाई है, रोजगार की क्या संभावनाएं हैं, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में अगर इसे इंट्रोड्यूस किया गया है तो क्या सिस्टम है, सारी चीजों पर बात करेंगे। चलिए आज के अतिथि से सबसे पहले जानते हैं उनका परिचय।
1: नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर नीरज कुमार, डायरेक्टर नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड एंड हेल्थ केयर साइंसेज, गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी जमुआर।
0: उम्मीद है आप ठीक से होंगे। एक व्यक्तिगत सवाल हम आपसे करना चाहते हैं। उस जमाने में हाँ ये कोर्स जो है ना, न कोविड था न कुछ और चीजें थी, तो इस तरीके के कोर्सेज को चुनने के लिए आपको किसने प्रेरित किया, क्या सोच थी उस समय?
1: नहीं, वो तो जब मैं बचपन में जब क्रिकेट देख रहा होता था या कोई भी स्पोर्ट्स देख रहा होता था, तो जैसे किसी खिलाड़ी को चोट लगी तो मैं देखा कि कोई जना आया, उसने कुछ लगाया करा, एक्सरसाइज कुछ कराई, नौ खिलाड़ी वो फिर से खेल रहा है, तो उस वक्त मुझे लगा कि ये क्या है, तो पता चला कि ये फिजियो है। तो फिर मेरा उस वक्त से थोड़ा सा इंक्लिनेशन आया कि इस कोर्स के प्रति कि मुझे ये कोर्स करना चाहिए, और फिर जाके फिर मैंने ये कोर्स।
0: नीरज जी, जमाना बदल गया, बहुत पानी बह गया, हाँ आज टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, और टेक्निकल पढ़ाई के विषय में क्या कहना चाहिएगा?
1: क्योंकि अब हर कोई चाह रहा है कि हमें इमीडिएटली पढ़ाई के बाद कुछ ना कुछ तो हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले, और इसके लिए टेक्निकल पढ़ाई इज द अल्टीमेट ऑप्शन, उसी के बाद ही हमारे पास ये ऑप्शन आएंगे।
0: टेक्निकल पढ़ाई इज द अल्टीमेट ऑप्शन फॉर जॉब, फॉर ए बेटर फ्यूचर, है ना? इसीलिए कहते हैं भैया टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, इधर उधर मत तको। इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ अगर आपने किया है तो हेल्थ सेक्टर में टेक्निकल पढ़ाई की भरमार है। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, और आज चर्चा करने जा रहे हैं बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, और अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। हाँ, इस विषय में क्या कहा, कैसे हो सकता है, कुछ भी बताएंगे। बहरहाल नंबर एक बार बताएं, फिर डॉक्टर नीरज से हम पूछेंगे बैचलर

0: ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज के बारे में नंबर नोट करें 9431899002 और 1800121001. डॉक्टर नीरज बताइए, हाँ हमारे सुनने वालों को, युवा साथियों को, उनके माता पिता को बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज के विषय में?
1: हाँ, ये बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज ये 4 साल का कोर्स है और इसमें जिस 3 साल की पढ़ाई और 1 साल का इंटर्नशिप होता है। ये एक बहुत ही बढ़िया अल्टरनेटिव है MBBS का। जैसे इस कोर्स को करने के बाद जो फिजिशियन एसोसिएट होते हैं वो पेशेंट की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ये दोनों काम करते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ फिजिशियन। यानी इनका काम है फिजिशियन को एसोसिएट करना, यानी फिजिशियन को असिस्ट करना। कई दफा ऐसा होता है, बहुत सारे दूर दराज के सेंटर होते हैं जहां पर प्रोफेशनल या हाईली प्रोफेशनल जो फिजिशियन की पहुंच नहीं हो पाती है, तो वैसे दूर दराज के सेंटर में, कम्युनिटी सेंटर्स में, ये फिजिशियन एसोसिएट अपना रोल अदा कर सकते हैं, जहां वो छोटी मोटी बीमारियों के लिए पेशेंट को देख के उनकी डायग्नोसिस कर सकते हैं और कंसल्ट करके जिनके अंडर वो काम कर रहे हैं, जिस फिजिशियन के अंडर वो काम कर रहे हैं उनसे कंसल्ट करके उनको वो इलाज भी दे सकते हैं।
0: कितने सीटों के साथ आपने इसकी शुरुआत की है इस यूनिवर्सिटी के अंदर?
1: ये हमने अभी 30 सीटों के साथ स्टार्ट किया है।
0: क्या एलिजिबिलिटी है?
1: हाँ, इसकी एलिजिबिलिटी है 10+2 विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, 45% मार्क्स एग्रीगेट।
0: कैसे बच्चे आ सकते हैं?
1: नहीं, जो अपने सोसाइटी के लिए, अपने समाज के कल्याण के लिए और पेशेंट वेलफेयर के लिए जिनका मोटो है कि वो चाहते हैं कि हम समाज का कल्याण करें, हम पेशेंट का कल्याण करें, वो बच्चे इसमें एडमिशन लें, क्योंकि इसका मेन उनका रोल है पेशेंट वेलफेयर, पेशेंट ट्रीटमेंट, पेशेंट केयर।
0: अपॉर्चुनिटीज पढ़ने के बाद?
1: इनकी अपॉर्चुनिटीज इतनी हाई डिमांड बढ़ी हुई है कि भारत में, जैसे आप सबको पता है, आप लोग न्यूज़पेपर में भी, हम लोग न्यूज में भी देखते हैं कि डॉक्टरों की कमी है और अस्पतालों में इसलिए ट्रेंड फिजिशियन एसोसिएट की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। एक रिसेंट डेटा कहता है कि अभी तक 28% इनकी डिमांड बढ़ी है फिजिशियन एसोसिएट की हमारे अस्पतालों में। साथ ही मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों, इमरजेंसी सेवाओं और डायग्नोस्टिक सेंटरों में भी 90% तक संभावना है प्लेसमेंट की। और साथ ही साथ इनकी विदेशों में भी ऑप्शन है, जैसे इनकी यूके, यूएसए जैसे देशों में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करियर बनाने की बहुत ही अच्छी संभावना है।
0: कार्यक्रम चल रहा है बुनियाद, मैं हूं राजेश और हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर नीरज। जानकारियां दी जा रही है, एक नया कोर्स आया है, सिर्फ 30 सीट है, ओनली 30 सीट्स है, बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज। जी हाँ, बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज का, इसके बारे में जानकारियां दी जा रही हैं। टेक्निकल पढ़ाई बार बार कहते हैं, जैसे पिछले एपिसोड में हमने बताया था आपको, बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी। ढेर सारे सवाल आए हैं, आने वाले सोमवार के दिन हम उसका उत्तर देंगे। इसके अलावा परफ्यूजन टेक्नोलॉजी के विषय में आने वाले सोमवार को एकदम बताएंगे ही बताएंगे। फिलहाल आइए जानते हैं डॉक्टर नीरज से, जहां 30 सीट ही आया है गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में। सबसे पहले नंबर बता दें एक बार, 9431899002 और 1800121001। हाँ डॉक्टर नीरज, नया कोर्स आया है, हाँ सारा कुछ नया नया है, बच्चे नए होंगे, सब कुछ नया होगा, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या तैयारी है आपके यहाँ ओवरऑल?
1: फिजिशियन एसोसिएट के लिए हमारे पास ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर सारे अवेलेबल, जो हमारे पास क्लासरूम चाहिए वो हमारे पास है, जो लैब चाहिए वो हमारे पास है। इसके अलावा क्लिनिकल पेशेंट प्रैक्टिकल के लिए हमारे पास अपना हॉस्पिटल NMCH हॉस्पिटल है, नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो 1200 बेडेड हॉस्पिटल है लगभग, वहाँ हमारे बच्चों का हैंड्स ऑन एक्सपोजर होने हम कराएंगे हमारे बच्चों का। क्लासेस कराने के लिए, टीचर्स के लिए हमारे पास अपने फिजिशियन एसोसिएट टीचर प्रोफेशनल्स हैं, साथ ही साथ जो मेडिकल सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए हमारे पास मेडिकल फैकल्टी है, मेडिकल टीचर्स हमारे पास। चूंकि आपको पता है कि हमारा गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी का कैंपस बहुत ही बड़ा कैंपस है, इस कैंपस के अंदर हमारे पास सारी बेसिक सुविधाएं हैं, हमारे यहाँ हॉस्टल है, बॉयज हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, साथ ही साथ स्टाफ टीचर और उनके लिए भी एकोमोडेशन है, फ्लैट्स हैं, क्वार्टर्स हैं, और जो भी बेसिक नीड की जरूरत होती है सब हमारे कैंपस के अंदर मौजूद।
0: डॉक्टर नीरज, बहुत बहुत पहले तो बधाई।

0: की सारी तैयारियां हो चुकी हैं और हमें पता है कि गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम रोहतास बिहार में जब तक पूरी तैयारी नहीं होती कोई कोर्स शुरू नहीं किया जाता। लेकिन एक सवाल हम बच्चों की तरफ से पूछना चाहते हैं कि बच्चे रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्निकल पढ़ाई, अंग्रेजी में बातचीत, उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या पर्सनैलिटी जो लेकर आते हैं और यहाँ आकर क्या उन बच्चों के झिझक को आपके कॉलेज में, आपके यूनिवर्सिटी में तोड़ने के लिए कोई व्यवस्था, उनकी अंग्रेजी या कोर्सेज के बारे में जानकारी या उनके ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए कोई सिस्टम?
1: नहीं, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया है सर आपने। नहीं, हमारे यहाँ हम लोग जैसे बच्चे हमारे एडमिशन होता है तो शुरू के एक महीने हम उनका सिर्फ इंडक्शन प्रोग्राम चलाते हैं ताकि उनको हम इस कोर्स के बारे में अवगत कराएं। हम सिलेबस स्टार्ट नहीं करते हैं शुरुआत में, पहले हम कोर्स को अवगत कराते हैं। ब्रिज कोर्स काइंड यू आप कह सकते हैं कि अभी चूंकि जस्ट वो इंटर पास करके इस प्रोफेशन में, मेडिकल प्रोफेशन के कोर्स में आए हैं, तो उसका जो गैप है उसको हम लोग फुलफिल करते हैं। रहा बात इंग्लिश का, तो हमारे यहाँ के जितने भी टीचर हैं वो डुअल मोड में पढ़ाते हैं, दोनों मोड में, इंग्लिश और हिंदी दोनों मोड में पढ़ाते हैं। साथ ही साथ हम लोग इंग्लिश, कम्युनिकेशन इंग्लिश की क्लासेस भी लगाते हैं बच्चों के लिए। और हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं सर, आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जितने भी फाइनल ईयर के बच्चे हैं जब वो फर्स्ट ईयर में यहाँ आते हैं तब उनसे आप पूछेंगे जब फर्स्ट ईयर में आते हैं तो उनका क्या स्टैंडर्ड या क्या लेवल रहता है, और अभी उनका आप देखेंगे लेवल और स्टैंडर्ड, तो पीरियोडिकली दे आर इम्प्रूविंग देमसेल्व्स। और इस पे हमारे टीचर, हम लोग बिल्कुल मिलजुल कर काम करते हैं और हमारा मेन उद्देश्य यही रहता है कि हमें बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है।
0: थैंक यू प्रोफेसर नीरज, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें विश्वास है कि आप सबों के गाइडलाइन में जो बच्चे आएंगे, 30 बच्चे आएंगे, उनका सही मार्गदर्शन होगा, सही पढ़ाई होगी और करियर की नई अपॉर्चुनिटी खुलेगी। अभी हमारी बातचीत चल रही थी बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, ये एक नया कोर्स आया है, इस पर सिर्फ 30 ही सीट है इंटरमीडिएट बायोलॉजी के लिए। अगर जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो नंबर डायल करें, टोल फ्री नंबर 1-800-121-0051 और दूसरा नंबर है 9431899002, ये नंबर है। तो ढेर सारी संभावनाएं हैं टेक्निकल पढ़ाई में। युवा साथियों, सोचिए, विचारिए और निर्णय लीजिए, फोन से बात कीजिए। फिलहाल थैंक यू गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम लेकर आने का मौका दिया। नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।
3: तो उगना भाई, एखन अपना सब सुन रहल छलो ई प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद। तो
4: आ आशुतोष भाई,
3: हाँ हाँ,
4: ई कार्यक्रम संपन्न भेल आ आब हमरा लोकन फिर अगला सोम दिन ई गाम घर के दलान पर आब अनुभव के चश्मा से कार्यक्रम लऽ कऽ बुजुर्ग लोकनिक लेल। आ आब हमरा लोकन खेती गृहस्थी में स्नेही किसान श्रोता भाई लोकन के स्वागत करै छियन।
3: अन्नदाता किसान लोकन का हमरो दिस से स्वागत और नमस्कार। त उगना भाई, आजुक खेती गृहस्थी में की अहां अलौ ह
4: से आइ हमरा लोकन जैविक खेती से जे लाभ ताई प्रसंग में की चर्चा करब।
3: अच्छा,
4: एकर संग गीत नाद के आनंद से हो लेब, मौसम संबंधी जे
3: जानकारी है
4: ओ देवन स्नेही किसान श्रोता भाई बहन लोकन के, एकर संग संग समसामयिक जे कृषि संबंधी कार्य ताई प्रसंग में हम सब गप
3: करब।
4: त ई सब गप करब
3: मुदा
4: ताई से पहिने हमरा लोकन
3: आपस में कनी दू टॉपिक कोली, तकर बाद फिर त अहाँ एखन गप केलौं जैविक खेती से लाभ के। त पहले श्रोतागण से कह दिए अपना सब जे जैविक खेती एक एहन कृषि पद्धति है जैमे रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और खर पतवार के जे नाशक है ओकरा स्थान पर गोबर के खाद, वर्मी कंपोस्ट, हरियर खाद, जैव उर्वरक आ प्राकृतिक कीट नियंत्रण विधि के उपयोग कैल जात है।
4: आशुतोष भाई, जैविक खेती के जो हमरा लोकन अपनबै छी तो एकर कतेको लाभ होते, जकरा देखैत कृषि वैज्ञानिक लोकनि

0: ई अनुशंसा करैत छथि जे स्नेही किसान श्रोता भाई बहिन लोकनि के जैविक खेती के अपनेबाक चाहिए
1: हाँ।
0: कारण ऐसा कतेको प्रकार के लाभ होइत
1: बहुत
0: जना हमरा लोकनि ई बुझि सकैत छी जे सबसे त पहिने जो जैविक खाद के व्यवहार करैत छी त खेतक उर्वरा शक्ति बढ़त
1: माटिक
0: गुणवत्ता बढ़त माटि में जल धारण क्षमता बढ़त
1: सबसे पैघ रासायनिक प्रदूषण कम हो जाते न
0: एकर संग संग उर्वरक के जे व्यवहार करैत छी जना नेत्रजन भेल अन्यान उर्वरक भेल तो ओकर मात्रा जो जैविक खाद के व्यवहार करैत छी तो कम करो पड़ते ओकर व्यवहार से अर्थ के संचय होते
1: ठीक है कहलूँ और संगे संग उत्पादन लागत में कमी सेहो अबैया जना कि किसान जे छथि से स्थानीय स्तर पर जो उपलब्ध गोबर है कंपोस्ट है और जैव उर्वरक सब है ओकर उपयोग क के राय जे रासायनिक अपना सब खर्चा लगबे छी
0: रासायनिक खाद के किनवा में
1: तो बचत होइ छी ठीक है कहलूँ
0: आब एकर संगे इहो हमरा लोकन देखै छी जे जैविक खाद में हमरा लोकन वर्मी कंपोस्ट के व्यवहार करै छी जे केचुआ के खाद होइत अछि
1: ठीक है कहलूँ हाँ
0: एकरा एकर जे विष्ठा होइत अछि तकर व्यवहार करै छी खाद के रूप में एकर संगे हरियर जे खाद होइत अछि तकर व्यवहार
1: करै छी
0: जे माटि में दबा कऽ बनाओल जाइत अछि हरियर खाद के ओकर डांट पात के
1: ठीक है कहलो
0: एकर संग संग हमरा लोकनि कथक खाद के व्यवहार करै
1: छी जेकरा
0: भूरा खाद कहै छी तो खाद अछि एकर सबके व्यवहार करै छी मुदा कोन फसिल लगबै छी तदन अनुसारे एकर व्यवहार
1: कयल जाइत अछि और एकटा बात हम कहब उना भाई
0: जे जैविक भाई
1: खेती जे अछि से एकटा कृषि पद्धति नहि बल्कि टिकाऊ विकासक आधार अछि की
0: ठीक है कहलहुँ
1: किसान भाई के आय बढ़बऽ हुनकर जे उपभोक्ता छथिन हुनका सुरक्षित भोजन जे अपना सब चाहै छी जे भेटनि ओ उपलब्ध कराबऽ पर्यावरण के रक्षा जे अपना सबके एखन सर्वोच्च प्राथमिकता रहैत अछि नहि ओकरा रक्षा करैमे अपना सब एकर माध्यमे समर्थ भऽ जाइ छी और प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण में सेहो ई महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करैत अछि
0: अछि
1: नहि तऽ यदि वैज्ञानिक तकनीक सब और अपना सबके जे योजना सब सरकारी अछि ओकरा संग एकरा आजमाओल जाय अपनायल जाय तऽ ई अपना सबके कृषि के बेसी समृद्ध सुरक्षित और आत्मनिर्भर बना सकैत अछि नहि
0: ठीक कहलहुँ फेर गपशप करब मुदा आप पहिने किछु संदेश भी लै लैत छी
2: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से कुटुंब पंचायत से अनीता कुमारी बनी है यशस्वी मुखिया
3: मैसेल्फ अनीता कुमारी फ्रॉम कुटुंबा पंचायत डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद मैंने अपने गांव में बहुत सारे काम किए हैं जैसे WPUS प्रोसेसिंग यूनिट और चाइल्ड एजुकेशन और ओल्ड एज पेंशन नली गली छठ घाट निर्माण वुमेन एजुकेशन गांव में लाइब्रेरी भी खुलवाई हूँ ताकि जो बच्चे लोग बाहर पढ़ने जाते हैं और घर में वो लोग को लाइट के बिना सुविधा नहीं मिल पाता है वहाँ बैठ के वो लोग आसानी से पढ़ सकते हैं और बड़े होकर कुछ बन सकते हैं
2: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया गांव बनेगा देश बढ़ेगा सहयोगकर्ता हिंदुस्तान देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से छतरहार पंचायत से अनीता मिश्र बनी है यशस्वी मुखिया
3: अल्ट्राटेक का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ क्योंकि गांव बनेगा तो हमारा देश बढ़ेगा तो गांव बनाने की जो अहम भूमिका है वो अल्ट्राटेक सीमेंट का है चाहे मेरे यहाँ पंचायत सरकार भवन बने घाट बने या स्कूल बने बिल्डिंग बने अल्ट्राटेक सीमेंट हमेशा आगे बढ़े क्योंकि गांव के निर्माण में उसका बहुत योगदान है कि वो लोग सहयोगी बन करके सुचारू रूप से सफल बनाया
2: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया गांव बनेगा देश बढ़ेगा सहयोगकर्ता हिंदुस्तान
1: छाने के विराम के बाद श्रोता

0: के वीर फिर से स्वागत छन और आब बिना विलंब केने किया ने पहले श्रोतागण के एक सुंदर सन गीत सुना दियन
1: तो ई सुनै छी हमरा लोकन देवी गीत संवेद स्वर में गाओ
0: सुनल जाए।

0: एखन हमरा लोकनि समवेत स्वरमे ई देवी गीत सुनलहुँ आ आब स्नेही किसान श्रोता भाइ बहिन लोकनिके मौसम सम्बन्धी जे ई पूर्वानुमान ओकर जनतब दऽ दैत छियनि जे ई आगामी 30 जून धरिक अर्थात काल्हि धरिक मौसम पूर्वानुमान अछि जे एहि अवधिमे प्रायः मौसमके शुष्क रहबाक सम्भावना अछि यद्यपि किछु ठाम पर गर्जनके सङ्ग तेज आ झोंकाके सङ्ग हवा चलबाक सम्भावना अछि। एकर प्रभावसँ कतौ कतौ हल्लुकसँ मध्यम वर्षा होयबाक सेहो अनुमान अछि।
1: एहि दौरान औसतन अधिकतम तापमान 32-36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहबाक सम्भावना अछि, जखन कि न्यूनतम तापमान 24-28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहबाक सम्भावना छै। सङ्गहि पूर्वानुमानित अवधिमे हवा मुख्यतः पूर्वा दिशाके रहत आओर एकर रफ्तार जे रहत से 14-20 किलोमीटर प्रति घण्टा।
0: भिनसरमे सापेक्ष आर्द्रता 80-85% धरि ओ दुपहरियामे सापेक्ष आर्द्रता 30-35% धरि रहबाक अनुमान
1: अछि।
0: मौसम सम्बन्धी पूर्वानुमान एकर सङ्गे एखनुक बेरमे स्नेही किसान श्रोता भाइ बहिन लोकनिके किछु जे कृषि कार्य जे ओ करबाक चाही ताहि पर हमरा लोकनि एखन गपशप कऽ रहल छी। कारण आशुतोष भाइ ई जानिते छी सब गोटे जे खेती बाड़ीमे बेरक बड़ बेसी
1: बड़
0: तऽ एहि दृष्टिके ध्यानमे रखैत एखनुक जे कृषि सम्बन्धी काज ओहिपर ध्यान दी, जेना उचास भूमिमे खरीफ मकईके बाग हमरा लोकनि कऽ सकैत छी। अंतिम जोतके बेरमे 100-150 क्विंटल अर्थात 150 क्विंटल सरल गोबरके खाद ओ 30 किलोग्राम नेत्रजन 60 किलोग्राम स्फुर ओ 50 किलोग्राम पोटासके व्यवहार कऽ सकैत छी। खरीफ मकईके लेल जे उन्नत प्रभेद

0: OH शक्तिमान 2, शक्तिमान 5, शक्तिमान 6 आ राजेंद्र शंकर मक्का 3। अइ प्रभेद के हमरा लोकन बाउक करबा के लेल व्यवहार क सके छी आ जखन खेत में पर्याप्त नमी रहे त एकरा बाउक करबा चाहिए।
1: संगे संग ऊंचा से जे जमीन है छो तो राहर के बुआई हेतु जे छे से खेत तैयार करी। बहार पूसा 9, राजेंद्र राहर 1 आ राजेंद्र राहर 2 किस्म के जे छे से बुआई 60x20 cm के दूरी पर अपना सब करी। अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम स्फुर, 20 किलोग्राम पोटास आ 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें। राहर के लिए अनुशंसित बिया दर 16-20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। उगना भाई बुआई से पहले बिया का कार्बेंडाइजियम क्लोर पायरीफॉस आ राइजोबियम कल्चर से हो उपचारित अपना सबका कॉलवाक चाहिए।
0: किसान भाई बहन लोकन एखन खरीफ तरकारी जना भिंडी जकरा राम तोरे कहे छी, कद्दू जकरा सजमन कहे छी, खीरा नेनुआ जकरा घेरा कहे छी, एकर सबके हमरा लोकन के बिया के बाउक को सके छी। अल्प बरखा के वर्तमान परिस्थिति में खेत में खरपतवार के बेसी होयबाक संभावना रहैत अछि। अइ लेल हमरा लोकन के बेर बेर पर कमौनी निकौनी करैत रहबाक चाही जे बड़ आवश्यक काज भ गेल अछि। 5-7 दिन के अंतर पर पटौनी करी आ पत्ती खाय वाला सुंडी ओ फल छेदक कीड़ा के निगरानी करैत रहबाक चाही जे बड़ आवश्यक अछि। आ एकर प्रकोप से बचबाक लेल डाइमोथिएट 30 EC दवाई के 1.0 से 1.5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर तखन छिड़काव करिए।
1: और मोट अनाज के खेती हेतु उचास भूमि का चयन करी, जेना कि जे छै से मड़ुआ में जे छै से राजेंद्र मड़ुआ RU6 और RU3 संगे ही जे छै से आन आन किस्म जे अछि जेना कि राजेंद्र कौनी ई किस्म सब का बुआई जे छै अपना सब कह सकै छी।
0: ई कौनी के प्रभेद भेल आ मड़ुआ के प्रभेद
1: ओ तो भ गेल अहाँके राजेंद्र मड़ुआ और RU6 RU3
0: आ RU3
1: त अपना सब एखन
0: हॉल में हाँ लीची के फल के तोराई के बाद गाछी के छटनी जकरा प्रूनिंग कहे छी को देबाक चाही आ खसल पत्ता के ओ सुखर डारि के हमरा लोकन के हटा देबाक चाही जाहिसँ कीड़ा ओ बीमारी के प्रकोप कम होयत आ गाछ स्वस्थ रहत जाहिसँ एकर वृद्धि सेहो निक जकाँ होयत।
1: दुधारू पशुधन के संक्रामक रोग से बचाव हेतु पशु चिकित्सक निर्देश के अनुसारे रोग निरोधक जे उपाय सब अछि ओकरा अपनेबाक चाही। संगे ही जहन ठनका खसैए यानी कि मेघ गर्जन और वज्रपात के समय पशुधन के खुला में कखनो नहीं राखी। अखन अपना सबके पूरा सतर्क रहबाक अछि। देखबे के लिए उगना भाई जे परसुओ खना जे काल्हि खना जे पानि भेल हँ ताहिमे पानि जते नहि भेल ओहिसँ बेसी मने बिजली कड़कै छल।
0: ठीके कहलहुँ तऽ एहन परिस्थितिमे जखन बिजलत्ता चमकऽ लागै अथवा खूब जोरसँ हवा चलऽ लागै तऽ पशुधनके नीक जकाँ रखबाक चाही, एकरा पर ध्यान रखबाक चाही। एकर सङ्ग सङ्ग आशुतोष भाइ आब बरसातक बेर आयल तऽ एहन बेर मे पशु के जे किछु बरसात मे संक्रामक बीमारी सब होइत अछि ओहि सँ बचबाक लेल टीकाकरण करेबाक चाही।
1: टीकाकरण पर पूरा पूरा ध्यान,
0: कारण टीकाकरण करौला सँ पशु के कतेको प्रकारक लाभ होइत अछि। सबसँ तऽ पहिने ई जे पशु के जान नहि जाइत

0: पशु के लेल कतेको एहन संक्रामक बीमारी अछि जे जानलेवा होइत अछि।
1: बहुत बढ़िया बात।
0: एतबे ने हमरा लोकनि के टीकाकरण से जखन कराबी त किछु सावधानी राखऽ पड़ैत अछि।
1: बहुत जरूरी।
0: कारण किछु जे टीका होइत अछि ओ पशु के चमड़ा में देल जाइत अछि, किछु जे टीका अछि ओकर दवाई के मात्रा मांस में देल जाइत अछि पशु के, तऽ एहि पर ध्यान दी। संगहि
1: पूरा पूरा
0: टीका जे देल जाइत अछि ओ कुशल पशु चिकित्सक लोकनि के देख रेख में दिएबाक चाही। कारण टीका में दवाई के जे मात्रा होइत अछि
1: ओकर
0: पर बेसी मोल अछि,
1: निश्चित
0: तखन नहि से टीकाकरण करौला पर पशु के लाभ
1: हैत। और संगे संग निर्धारित समय और टीकाकरण कैलेंडर का पालन सेहो अपना सबके करबाक चाही। बीमार पशु के टीकाकरण करेबा से पहले पशु चिकित्सक का सलाह अपना सबके लेबाक चाही। और किसान भाई से इहो कहबन जे टीकाकरण के रिकॉर्ड सुरक्षित रखबाक चाही अपना सबके की इहो ध्यान में रखी अपना सब पूरा पूरा जे टीका के निर्धारित तापमान में राखल गेल हो ओकर बादे ओकर अपना सब उपयोग करी की।
0: निश्चित रूप
1: नियमित टीकाकरण पशुधन के स्वास्थ्य सुरक्षा के हम तो कहब सबसे प्रभावी और किफायती उपाय है, क्योंकि समय पर अगर अपना सब टीकाकरण करवाबै छी त पशुधन स्वस्थ रहै छै और हुनकर उत्पादन बढ़ैत अछि और पशुपालक के आय में सेहो वृद्धि होइत अछि।
0: आ आशुतोष भाई हमरा लोकनि टीकाकरण अइ लेल आवश्यक भ जाइत अछि करायब, कारण विषाणु जनित बीमारी होइत अछि जे दवाई से नहि ई मात्र टीके से एकरा से रोकल जा सकैत अछि। आ टीकाकरण बीमारी होयबा से पहिने कराओल जाइत अछि।
1: निश्चित निश्चित
0: अपना सबके शरीर के ओकर उपचार
1: बीमारी से लड़बा में अपना सबके सक्षम बनबैत अछि।
0: रोग प्रतिरोधक क्षमता के देह में विकास होइत छै।
1: कतेको बीमारी एहन अछि जाहिसँ अपना सबके पशुधन सुरक्षित रहै छै। तऽ आब देख रहल छी जे समय अपना सबके संकेत कऽ रहल अछि जे श्रोतागण से विदा ली, तऽ गोर लगै छै उगना भाई।
0: खूब प्रसन्न रहू आशुतोष भाई।

अभी आप सुन रहे थे सांध्यकालीन दैनिक कार्यक्रम खेती गृहस्थी, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।

0: एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: हो गया इंतजाम।
2: किसका? गुड्डी की फीस का।
3: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत।
2: पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है?
3: लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत,
2: वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
4: RBI कहता है,
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से नई दिल्ली में की मुलाकात, विकास परियोजनाओं पर हुई चर्चा। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा, निर्धारित समय पर होगा पंचायत चुनाव, आरक्षण का नया रोस्टर भी लागू किया जाएगा। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे राज्यपाल सैयद अता हसनैन। और पूरे राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता बढ़ी, मौसम विभाग ने मधुबनी और सुपौल समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री के साथ राज्य में प्रस्तावित विभिन्न राजकीय उच्च पथ योजना, पुल निर्माण समेत विभिन्न

0: परियोजनाओं को लेकर प्रगति की समीक्षा की। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से राज्य में सड़क संपर्कता को नई गति मिलेगी। केंद्रीय मंत्री ने राज्य की सड़क योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया है। इस दौरान पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेंद्र भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री श्री चौधरी का आज पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 2 जुलाई को पटना मेट्रो परियोजना के तहत मलाही पकड़ी स्टेशन तक मेट्रो रेल के परिचालन के लोकार्पण की घोषणा की है। नई दिल्ली रवाना होने से पहले आज पटना मेट्रो परियोजना की प्रगति की उच्चस्तरीय समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने परियोजना से जुड़े अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने के साथ ही प्रत्येक चरण के लिए स्पष्ट समय सीमा तय करने के निर्देश दिए हैं। पंचायती राज्य मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा है कि राज्य में पंचायत चुनाव अपने निर्धारित समय पर कराए जाएंगे। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव ईवीएम से होगा और आरक्षण का नया रोस्टर भी लागू किया जाएगा।
1: सारी तैयारी चल रही है राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन में। विभाग के स्तर से पूरे सहयोग के साथ निर्वाचन आयोग के निर्देशन में किया जा रहा है। रोस्टर चूंकि 10 साल पूरे हुए हैं रोस्टर को लागू हुए, इस बार आरक्षण का नया रोस्टर लागू होगा। और इसके अलावा बाकी जो चुनाव से संबंधित जो सामान्यतः प्रश्न रहते हैं लोगों के मन में, चुनाव सही समय पर कराए जाएंगे। 2021 में दिसंबर के समय पर जाकर चुनाव का काम पूरा हुआ था, उसी कार्यकाल को देखते हुए इस वर्ष भी चुनाव कराए जाएंगे। मल्टी पोस्ट ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराए जाने हैं, लोगों को सहूलियत होगी, तेजी भी आएगी।
0: केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने में अहम भूमिका निभा रहा है। श्री पासवान ने महाराष्ट्र के परभणी में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए युवाओं से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से जुड़ने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आज युवाओं को नौकरी मांगने की बजाय रोजगार देने वाला बनना चाहिए। श्री पासवान ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और भारतीय खाद्य उत्पादों को वैश्विक गुणवत्ता के अनुरूप बनाने पर भी जोर दिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में के दौरान आरोग्य सेतु के दूसरे चरण, आयुष्मान सारथी चैटबॉट, आयुष्मान ऐप, ई सुश्रुत क्लिनिक समेत कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। इनका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना और देश में डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे को लोकप्रिय बनाना है। श्री नड्डा ने इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि ये कदम स्वस्थ भारत और अधिक डिजिटल रूप से सशक्त राष्ट्र के निर्माण की दिशा में देश की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के गठन के 5 वर्ष पूरे होने पर सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि विकसित भारत और समृद्ध बिहार के निर्माण में सहकारिता क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। श्री यादव पटना में सहकारिता सप्ताह समारोह के उद्घाटन और जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय सहकारी नीति के माध्यम से पैक्स और जमीनी स्तर की सहकारी संस्थानों को अधिक सशक्त बनाया जाएगा।
2: सहकारिता मंत्रालय 5 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में सहकारिता समारोह मनाने का काम किया है। बिहार के राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2026 के तहत बिहार में भी सहकारिता नीति 2026 जल्द ही लागू, इसको बड़ा करके 5 करोड़ करना है। इस अभियान में हम सब लोग जुड़े हैं। चूड़ा का प्रोसेसिंग करना है, पेट्रोल पंप खोलना है, गैस एजेंसी खोलना है, जैसे और भी कई कार्य करने के लिए पैक्स को प्रेरित करने का काम किया है।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने कहा है कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा है कि कक्षा के अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI जांच के अंतर्गत 10 आरोपितों की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। आरोपियों को उनकी पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि

समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज राउज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन भारत सरकार की ओर से ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में शामिल होंगे। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा भी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ईरान की सरकारी मीडिया के अनुसार 4 से 9 जुलाई तक स्वर्गीय खामेनेई के जनाजे और उन्हें दफनाने की रस्म की जाएगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: Akashwani at 90.
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि कंप्यूटर और इंटरनेट के विस्तार ने लोगों को अपने अधिकारों के प्रति सजग बना दिया है। तेलंगाना के मेडचल में विकसित भारत स्टूडेंट कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए श्री नवीन ने कहा कि तकनीक के इस दौर में राजनेताओं को भी जिम्मेदारी के साथ बयान देना चाहिए।
2: जब कंप्यूटर आया, अवेयरनेस की दुनिया आगे आई, तो आज हर व्यक्ति अपने राइट के साथ साथ, अपने ड्यूटी के साथ साथ अपने राइट के प्रति बहुत ही संवेदनशील हो गया है। और अवेयरनेस ने निश्चित रूप से लोगों को जागरूक किया है। तो हम जो जनप्रतिनिधि होते हैं, उनको अब ये अधिकार नहीं है कि हम कुछ कह दे और जनता भूल जाए। जनता याद रखती है और सही समय पर चोट भी करती है, और ये मुझ पर भी लागू है, यानी भाजपा पर भी, और ये सभी दलों पर लागू है।
1: राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के अवसर पर आज देश प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की क्षेत्रीय इकाई की ओर से पटना के कर्पूरी सदन में आयोजित विशेष कार्यक्रम का उद्घाटन उप महानिदेशक रोशन लाल साहू ने किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री साहू ने कहा कि राष्ट्रीय सांख्यिकी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राज्य के अधिकतर भागों में मानसून की सक्रियता बढ़ गई है। इसके प्रभाव से विभिन्न स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा हुई है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में अनेक स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान मधुबनी, सुपौल, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, सारण, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण समेत कई जिलों में विभिन्न स्थानों पर भारी बारिश की आशंका को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
3: 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के मधुबनी एवं सुपौल जिलों में एक दो स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के उत्तर पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के बांका, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर एवं सारण जिलों में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।
1: इधर पटना और आसपास के क्षेत्रों में भी सुबह से बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर बारिश हो रही है। इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान सुपौल के सरायगढ़ भपटियाही में सबसे अधिक 196.4

0: 4 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। हमारे अररिया संवाददाता ने बताया है कि जिले में विभिन्न स्थानों पर देर रात हुई मूसलाधार बारिश के कारण कई स्थानों पर जल जमाव की भीषण स्थिति बन गई है। साथ ही शहर में BSNL सेवा भी प्रभावित हुई है। रोहतास जिले में आज दोपहर बाद हुई भारी बारिश के कारण सदर अस्पताल समेत कई प्रमुख कार्यालयों में पानी जमा हो गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इधर मुंगेर जिले के टेटिया बंबर प्रखंड अंतर्गत धौरी गांव में बारिश के दौरान वज्रपात की घटना में एक किशोरी की मौत हो गई। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने राज्य के प्रमुख ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों का भ्रमण किया। विधानसभा अध्यक्ष नगर के ऐतिहासिक लाल चौक भी गए। उन्होंने कहा कि कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत सभी को आकर्षित और प्रभावित करती है। केंद्रीय चयन परिषद की कल संपन्न सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान कदाचार के आरोप में मुंगेर पुलिस ने सॉल्वर गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जिले के रामनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत नवा गढ़ी उच्च विद्यालय परीक्षा केंद्र में छापेमारी के दौरान ये सफलता प्राप्त की। पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने बताया कि पकड़े गए आरोपित राहुल से पूछताछ की जा रही है। बेगूसराय जिले के सिंघौल थाना क्षेत्र अंतर्गत अंग्रेजी ढाला के पास राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 31 पर आज सुबह दो चारपहिया वाहनों के आमने सामने की टक्कर में चार लोगों की मौत हो गई, वहीं पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इन सभी का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहन को सड़क से हटाकर यातायात व्यवस्था सुचारू कर दी है। शिवहर जिले के तरियानी छपरा थाना क्षेत्र अंतर्गत छपरा सिरहा टोला में सिलेंडर विस्फोट की घटना में चार लोग गंभीर रूप से झुलस गए। विस्फोट से लगी आग ने आसपास के कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। इधर पटना के दीदारगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत करमली चक स्थित एक वेयर हाउस में आज सुबह आगलगी की घटना में 50 लाख रूपये मूल्य से अधिक की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। किशनगंज के बहादुरगंज में पुलिस ने अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ हेरोइन की तस्करी में शामिल गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से लगभग 3 करोड़ रुपए मूल्य की हेरोइन बरामद की गई है। शेखपुरा जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत कारे गांव में कल हुई एक युवक की हत्या के मामले में 2 नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। SDPO राकेश कुमार ने बताया कि हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद कर लिया गया है। सीवान के कचहरी दुर्गा मंदिर में चोरी के मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक पूरन कुमार झा ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों के पास से चोरी किया गया हार बरामद कर लिया गया है। कटिहार जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत शरीफगंज में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में देसी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से नई दिल्ली में की मुलाकात, विकास परियोजनाओं पर हुई चर्चा। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा, निर्धारित समय पर होगा पंचायत चुनाव, आरक्षण का नया रोस्टर भी लागू किया जाएगा। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे राज्यपाल सैयद अता हसनैन। और पूरे राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता बढ़ी, मौसम विभाग ने मधुबनी और सुपौल समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: दीदी नौकरी लग गई।
2: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
1: हाँ दी, नया मोबाइल।
2: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
1: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
2: पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो।
1: पर दीप,
2: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
1: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
2: अच्छा।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, प्रस्तुत है जहानाबाद जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता आभाष रंजन।
1: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त के तहत जहानाबाद जिले के 41,713 किसानों के बैंक खातों में 8,34,26,000 रुपए की राशि सीधे हस्तांतरित की गई है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम मन की बात का सीधा प्रसारण जिला मुख्यालय के साथ साथ सभी प्रखंड मुख्यालयों में भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता 3 समान किस्तों में उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने कहा कि इस राशि से किसानों को

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है जहानाबाद जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता आभाष रंजन।
1: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त के तहत जहानाबाद जिले के 41,713 किसानों के बैंक खातों में 8,34,26,000 रुपए की राशि सीधे हस्तांतरित की गई है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम मन की बात का सीधा प्रसारण जिला मुख्यालय के साथ साथ सभी प्रखंड मुख्यालयों में भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता 3 समान किस्तों में उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने कहा कि इस राशि से किसानों को खरीफ फसलों की बुआई, बीज, उर्वरक, कीटनाशक तथा अन्य कृषि निवेश की व्यवस्था करने में सुविधा मिलेगी। उन्होंने किसानों से EKYC और भू सत्यापन जैसी आवश्यक प्रक्रियाएं समय पर पूरी कराने की भी अपील की, ताकि भविष्य में उन्हें योजना का लाभ निर्बाध रूप से मिलता रहे। जिले के विभिन्न प्रखंडों में आयोजित जन सहयोग सह जन कल्याण शिविरों के माध्यम से आम लोगों की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा 121 से अधिक मामलों का निष्पादन किया गया तथा 702 पात्र लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया गया। शिविर में सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान भारत, श्रम, शिक्षा, कृषि, राजस्व, स्वास्थ्य तथा अन्य विभागों से संबंधित मामलों का भी निस्तारण किया गया। जिला प्रशासन ने बताया कि इन शिविरों का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को लोगों के घर के निकट उपलब्ध कराना और उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है। प्रशासन ने जिलावासियों से अपील की है कि वो आगामी शिविरों में भी अधिक से अधिक संख्या में भाग लें तथा केंद्र तथा राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। महिला एवं बाल विकास निगम के अंतर्गत संचालित डिस्ट्रिक्ट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन की ओर से सखी वार्ता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्याओं में महिलाओं और किशोरियों ने भाग लिया। इस दौरान उन्हें महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता, सामाजिक सुरक्षा, महिला हेल्पलाइन, वन स्टॉप सेंटर तथा सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। वक्ताओं ने कहा कि महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्वावलंबन और कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक होना आवश्यक है। घरेलू हिंसा, बाल विवाह, दहेज प्रथा तथा महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अन्य अपराधों के प्रति सजग रहने और आवश्यकता पड़ने पर संबंधित विभागों से सहायता लेने की जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और कानूनी रूप से सशक्त बनाना तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करना है। मुख्यमंत्री दिव्यांग जन सशक्तिकरण अर्थात संबल योजना के अंतर्गत आयोजित प्रखंड स्तरीय जन सहयोग सह जन कल्याण शिविर में 6 दिव्यांग जनों के बीच निःशुल्क बैटरी चलित ट्राई साइकिल का वितरण किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी ने लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार दिव्यांग जनों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सहायक उपकरण उपलब्ध होने से दिव्यांगजन शिक्षा, रोजगार तथा दैनिक जीवन के कार्यों में अधिक सुविधा के साथ भागीदारी कर सकेंगे। लाभार्थियों ने भारत सरकार के इस प्रयास के लिए प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि इससे उनकी आवाजाही पहले की तुलना में अधिक आसान होगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला गंगा समिति, नमामि गंगे, खेल विभाग, महिला विकास निगम तथा जिला आयुष के संयुक्त तत्वाधान में स्थानीय खेल मैदान में सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में युवाओं, महिलाओं, विद्यार्थियों, विभिन्न विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। योग प्रशिक्षक अमर कुमार ने प्रतिभागियों को विभिन्न योगासन, प्राणायाम तथा ध्यान की विधियों का अभ्यास कराया। उन्होंने बताया कि नियमित योग करने से शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक तनाव भी कम होता है और व्यक्ति स्वस्थ और सक्रिय जीवन जी सकता है। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों ने नियमित योग करने का संकल्प भी लिया। जहानाबाद जिले में मुहर्रम शांति, सौहार्द और आपसी भाईचारे के वातावरण में संपन्न हुआ। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के संयुक्त नेतृत्व में नगर परिषद क्षेत्र के विभिन्न मार्गों पर फ्लैग मार्च निकाला गया तथा लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई। संवेदनशील स्थानों पर दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। ड्रोन वीडियोग्राफी और CCTV कैमरे के माध्यम से लगातार निगरानी रखी गई। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त चिकित्सा दल, अग्निशमन वाहन तथा जिला नियंत्रण कक्ष भी सक्रिय रखा गया था। जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने शांतिपूर्ण आयोजन के लिए जिलेवासियों, विभिन्न अखाड़ा समितियों, जनप्रतिनिधियों तथा सामाजिक संगठनों के सहयोग की सराहना करते हुए सभी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रशासन भविष्य में भी इसी तरह सामाजिक सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा।
0: अभी आप सुन रहे थे जहानाबाद जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे।

0: हमारे संवाददाता आभाष रंजन।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र। पेश है फिल्म संगीत।

प्यार किया तो डरना क्या, इस फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे कमाल खान की आवाजों में। समीर के लिखे इस गाने को संगीत दिया था जतिन ललित ने।

उदित नारायण और साधना सरगम को अभी आप सुन रहे थे फिल्म पृथ्वी में। जलीज शेरवानी के लिखे इस गाने को संगीत दिया था विजू साह ने। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से।

दस्तक फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण की आवाज़ में। गीत के बोल जावेद अख्तर के, संगीत निर्देशन राजेश रोशन का था।

प्यासा फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे अदनान सामी और सुनिधि चौहान की आवाजों में। फैज अनवर के लिखे इस गाने को संगीत दिया था संजीव दर्शन ने। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे हैं हमारी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रम। अब प्रस्तुत है मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार।

श्रोतागण नमस्कार। मैथिली कार्यक्रम सिंगरहारक आजुक अंकक संग हम राकेश चंद्र नंदन। हमरा लोकनि जखन अपन कार्यक्रम सिंगरहार में समवेत भऽ गेल छी तऽ एखन सँ आधा घंटा धरि बहुत रास गप करब। बंधु लोकनि, साहित्यक प्रत्येक विधाक जखन फराक फराक गप कयल जाय तऽ ओहि सब में सँ सबसँ बेसी हमरा सबकेँ काव्य रचना देखना जाइत अछि। कविता आकि गीत सब हमर सभक हृदय केर बेसी लगीच रहैत अछि। आ जखन गप अपन सभक मैथिली साहित्यक हमसब करैत छी तऽ एहिठामक प्रत्येक व्यक्तिमे काव्य रचना करबाक गुण विद्यमान देखना जा सकैत अछि। अपना सभक क्षेत्र अदौ कालसँ ज्ञान विज्ञानक क्षेत्रमे आगाँ रहल अछि। एहिठाम एक सँ एक विद्वान सब भेला अछि आ इएह कारण अछि जे मैथिली साहित्य समृद्ध रूपमे हमरा सबकेँ देखना जाइत अछि। मिथिला अपन ज्ञानात्मक आ संवेदनात्मक उपजा लेल चर्चित रहल अछि आ काव्यकृति तऽ प्रमुख रूपसँ एहिमे अपन स्थान बनौने रखलक अछि। हमसब देखैत छी

जे अपना सब ओहिठाम प्रत्येक गाम में कवि भेट जाइत छथि, हिनके सब में सँ केओ यात्री बनै छथि आ राष्ट्रीय स्तर पर अपना संग संग मैथिलीक प्रतिष्ठा बढ़बैत छथि। बंधु लोकनि, गप हम सब आगा आर करब, मुदा पहिने ई गीत।

0: समवेत स्वर में एखन हमरा लोकनि भगवती गीत सुनि रहल छलहुँ। आजुक समय में हम सब देखै छी जे साहित्यकार लोकनिक कैकटा पीढ़ी काव्य लेखन में सक्रिय अछि आ काव्यक जे पोथी सब प्रकाशित भऽ रहल अछि ओहि में सँ कतेको एहन अछि जे आन भाषा साहित्यक पोथी सब सँ आगा देखना जाइत अछि। मैथिली रचनाकार लोकनिक दृष्टिबोध आन कोनो भाषाक रचनाकार लोकनि सँ कथमपि कम नहि देखना जाइ छै। पहिने के समय में माध्यमक अभाव छल, मुदा आब तो कतेको प्रकारक माध्यम सब सुलभ रूप सँ प्राप्त भऽ जाइत अछि आ रचनाकार लोकनिक रचना सब सुगमता सँ हमरा सब धरि पहुँचि जाइत अछि। आजुक समय में हमरा लोकनि सोशल मीडियाक माध्यमे बहुत रास कवि लोकनिक रचना सब पढ़ैत रहैत छी, बहुत रास रचना सभक पोथी प्रकाशित भऽ रहल अछि, बहुत रास गोष्ठी संगोष्ठी आदिक आयोजन होइत अछि, पत्र पत्रिकाक माध्यमे सेहो हमरा लोकनि बहुत रास काव्य रचना सब पढ़ैत छी। कहबाक भाव ई जे आजुक समय में काव्य लेखनक स्थिति सर्वथा संतोषप्रद देखना जाइत अछि। बंधु लोकनि, जखन आधुनिक काल में काव्य कृति सभक गप कऽ रहल छी तऽ आउ ने एक गोट पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता सुनि लै छी। विषय अछि मैथिली में कविता लेखन। भेंट वार्ताकार छथि साहित्य अकादमी पुरस्कृत कवि अजीत आजाद आ हिनका सँ भेंट कऽ रहल छथिन विनीत कुमार ठाकुर।
1: नमस्कार, हम विनीत कुमार ठाकुर। कविता साहित्यक एकटा बहुत महत्वपूर्ण विधा अछि आ मैथिली में कविता लेखन एखुनका समय में बहुत बढ़ल अछि आ ई कोन दिशा में जा रहल अछि, कोन तरह कविता लिखा रहल अछि, एहि सब पर आइ हम अपन स्टूडियो में चर्चा करब। आ एहि लेल आइ आकाशवाणी दरभंगा के स्टूडियो में हमरा संग छथि एकटा नीक लेखक, एकटा नीक साहित्यकार, एकटा नीक रंगकर्मी सेहो आ संगहि एकटा नीक प्रकाशक सेहो हमरा संग छथि अजीत आजाद जी। अजीत आजाद जी, अहाँके बहुत बहुत स्वागत अछि।
2: धन्यवाद ठाकुर जी। आकाशवाणी से जुड़ल और एहि प्रसारण के सुन रहल सब गोटे के हमर प्रणाम निवेदित अछि।
1: अहाँ आकाशवाणी दरभंगा में बहुत दिन बाद जे छै आबि रहल छी
2: जी,
1: तऽ केहन लागि रहल अछि एखन?
2: हाँ, हम 1987 में पहिल बेर एतय आयल रही और ते समय में हम इंटर के छात्र रही और एहि दौरान जे ई 30-35 साल बितलैया
1: जी,
2: ई जरूर छै जे अनुहार नहि लागल जे अपने घर छी, अपने ठाम पढ़क छी। आकाशवाणी दरभंगा के से हमर निर्मिति में या हमर साहित्यकार के जे हमरा भीतर में साहित्यकार अछि तकर निर्मिति में योगदान छै, ताहि दुआरे तऽ लगैए जे अगर जे हमर यात्रा छै तऽ ओहिमे दरभंगा आकाशवाणी के बहुत बहुत योगदान छै
1: जी। अजीत आजाद जी, सबसे पहिने जे हमर नव श्रोता सब सेहो जुड़लै अछि एम्हर आबि कऽ, जखन कि आकाशवाणी आ आकाशवाणी के सबटा केन्द्र न्यूज़ ऑन AIR ऐप के माध्यम से आप जे छै

0: मोबाइलपर सेहो सुनल जा सकैत अछि।
1: जी हमहुँ सुनै छी।
0: जी तऽ हुनका सब लेल अहाँके एकटा संक्षिप्त परिचय भऽ जाय, अपनेक जन्म कतय भेल रहे?
1: हमर जन्म हमर मातृक साङ्गीमे भेल छल, मधुबनी जिलाक एकटा गाम घोघरडीहा प्रखण्डमे, बगलेमे हमर अपन गाम पैतृक गाम हटनी। तऽ लिखऽ तऽ पड़ै छै तऽ लिख देने छियै जे हटनीमे जन्म भेल अछि, लेकिन हमर अपन मामा गाममे से जन्म भेल। आओर आरम्भिक शिक्षा दीक्षा जे छै से सेहो कहि सकै छी जे हमरा मातृकेमे भेल, ओतुके हाई इसकुलसँ, हुलासपट्टी हाई इसकुलसँ 1985 हम मैट्रिक केलहुँ। पिताजी फौजमे रहथि आओर हुनकर ट्रांसफरेबल जॉब रहनि, बहुत ठाम जाय पड़नि, तऽ ओहि क्रममे हम झाँसीमे, फेर किछु अध्ययन दिल्लीमे, फेर हैदराबाद सिकंदराबादमे, फेर एहि तरहसँ जतय जतय ओ जाइत गेला। एहि क्रममे हमरा से एक बेर एहन स्थिति बनलै, मने आर्मीके दृष्टिकोणसँ, जे फैमिली राखब से कहल गेलै जे फैमिलीके हटा दियौ, मने लॉकसँ। ओहि समयमे हमर पिताजी कश्मीरमे रहथि, तऽ फैमिलीके राखैके ओतय नहि रहै, बहुत स्थिति खराब सनके रहै, युद्धवला रहै। तऽ हमरा से गाम पठाएल गेल आ ओहि समयमे हम एतय जे छै दरभंगेमे CM साइंस कॉलेजसँ से BSc केलहुँ, आओर बादमे हम एम्हर एतयसँ अपन पढ़ाइ लिखाइके आगू केलहुँ। तऽ सामान्यतया ई अछि जे पढ़ाइ लिखाइके केन्द्रमे पूरा देशके विभिन्न हिस्सा रहल आ बेसी भाग जे रहल से मिथिले रहल। एतय आबिके हमरा मैथिली कविता या मैथिली साहित्यसँ जुड़ाव अनुभव भेल। लिखैत तऽ रहियै ओहिसँ पहिनेसँ, लेकिन ताहि समयमे हिंदी रहै, आओर जखन मिथिला सेक्टरमे एलियै, मिथिला परिक्षेत्रमे, तऽ तखन मैथिली लिखैके प्रति से एकटा वातावरण भेल। दरभंगामे गोष्ठी सब होइत रहै, तऽ ओ शुरुआती दौर छियै। आ एहि क्रममे जे छै से अन्य बहुत रास भाषा साहित्यके पढ़बाक सेहो जुगुत लागि गेल, तऽ से पढ़ैत रहलियै।
0: जी तऽ ई जे अध्ययन अछि, इएह अहाँके रचनामे सेहो जे छै देखाइ पड़ैत अछि, आ सङ्गे जाहि तरहसँ अहाँ प्रकाशनसँ जुड़ल छी तऽ अहाँके एकटा नीक पाठक सेहो बनऽ पड़ैत अछि, तऽ ओहोमे अहाँके काज आबि जाइत अछि। हम अपन श्रोता लोकनिकेँ इहो बता दी जे अपनेके साहित्य अकादमी पुरस्कार सेहो प्राप्त अछि। 2022 मैथिलीक साहित्य अकादमी पुरस्कार अहाँके भेटल रहे पेन ड्राइवमे पृथ्वी, एहि काव्य संग्रह लेल। तऽ जखन ई पुरस्कारके घोषणा भेल तऽ केहन लागल?
1: स्वाभाविक छै जे प्रसन्नता तऽ होइते छै, तखन ई बात जरूर छै जे कने से चौंकबैवला से बात सेहो रहै हमरा लेल। मैथिलीमे बहुत लोक लिख रहल छथिन आओर हमरासँ बहुत सीनियर सब से आओर हमरासँ योग्य सब सेहो छथिन।
0: जी
1: तऽ मैथिलीमे से किताबक जे प्रकाशन छै, लेखक सभक जे संख्या छै, सेहो बहुत बढ़ि गेलैए। तऽ एहि पुरस्कारके लेल जे एखन तकके जे मोटा मोटी रहै छलै, अगर अपवाद छोड़ि दियौ,
0: जी,
1: तऽ सामान्यतया जे छलै जे ओ उम्रके अंतिम पड़ावपर से बेसी गोटेके भेटलनि, मने 60-70-80 वर्षक अवस्थामे भेटलनि, या परम्परा छलै। तऽ एतुका लेखक लोकनिके ई लगै छै जे एखन हम 50 छी तऽ एखन एहिपर बाते नहि, 60 छी तऽ एखन नहि, 70-80 बाद जे छै से ओ सब सोचै छथिन जे आब हमरोपर विचार हेतै, तेहन सनके स्थिति छै। ताहि स्थितिमे थोड़ा सा बदलाव अवश्य भेलैए, जे आब नीक किताब छै आओर अगर लेखकके उम्र कमो छै तऽ विचार हुअ लगलैए। तऽ हम बहुत संकोच आओर सम्मानके सङ्ग ई कहै छी जे हमरा कने से चकित विस्मित भेलहुँ जे हमरा पर भेल। हालांकि पुरस्कार भेटलाके बाद जे एकटा सर्वव्यापी चर्चा भेलै, प्रशंसा भेलै, अखबारसँ लए कऽ निजी माध्यमसँ, फोनसँ, चिट्ठीसँ, जे सबके नीक लगलनि, विरोध नहि भेलै, तऽ अपना लागल जे हम सही तरहसँ काज करैत रहियै, तैँ ई समाज एकरासँ स्वीकारो कऽ लेलकै। असलमे हम जे साहित्यमे एलियै तऽ शुरू शुरूमे गीत लिखैत रहियै,
0: आओर
1: तकर बाद गीतके बाद हम कथा सब लिखऽ लगलियै, 50-60 कथा लिखलियै, बहुत कथा छब्बो केलै। एतऽ सगर राति दीप जरय नामक एकटा 3 मासपर एकटा श्रृंखला चलै छै, ताहिमे हम लगभग 100 भाग लेलियै, तऽ कथा सब पढ़ियौ ओहिमे। लेकिन धीरे धीरे जे जीवन छै ओ व्यस्त होइत गेलै, नौकरी चाकरीके संदर्भ

0: में और कथा ज्यादा समय मांगित रहे। कविता में की रहे जे ओ मने से कम समय लगित रहे और अहाँ समय निकाल लेत रहिए। तो शुरुआती दौर में पत्रकारिता सेहो करित रहिए, अखबार में, फिर इलेक्ट्रॉनिक चैनल में एलिए जे टीवी चैनल मैथिली के रहे तेमे रहिए। तो अइ सब कारण से कविता में आबि गेलिए और कविता में जे एलिए तो गीत पहिने लिखते रहिए, लेकिन अइ बेर जे छै समकालीन कविता के जे एकटा छलैए स्थिति तेमे हम अपना के से देलिए। तहन फिर ई भेल जे कि जे एहि कविता में तो बहुतो लोग लिख रहल छै तऽ अहाँ के जगह केना बनत या अहाँ दिसन लोकक ध्यान केना जेतै, आ दोसर ई जे अहाँ के दायित्व की छी कवि रूप में या लेखक रूप में। से ओना तो मनुष्य रूप में हैब सह सबसे पैघ उपलब्धि छै, लेकिन मनुष्यों में कहल जाय छै जे लेखक आ कवि या साहित्यकार जखन अहाँ होइ छी तो मनुष्य में सबसे श्रेष्ठ प्राणी के रूप में अहाँ आबै छी और तहन अहाँ के एकटा दायित्व बनैए। तो हम ओहि दायित्वपूर्ण लेखन दिशन से अग्रसर भेलहुँ, मने लिखै मात्र लेल आ पुराबै मात्र लेल हम नहि लिखलहुँ, तऽ हम लिखलहुँ जे समाज के कोन दिशा में लऽ जेबाक चाही, समाज के प्रति हमर की कर्तव्य होइए, ओ सब चीज के हम ध्यान में रखैत कविता लिखलहुँ हँ।
1: आब जे छै कनी आबि जाइ छी अखन जे मैथिली कविता रचना चलि रहल छै, बहुत लोग लिख रहल छथि आ कोन तरहक लिख रहल छथि से अहाँ सँ नीक क्यों नहि बता सकै छथि, एहि लेल कि एकटा नीक प्रकाशन हाउस सेहो अहाँ जे छै चला रहल छी।
0: मैथिली कविता में सामान्यतया जेना सब भाषा साहित्य में होइ छै आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल, उत्तर आधुनिक काल, ई सब चलै छै। तहन फेर ओहिमे होइ छै रीतकालीन, भक्तिकालीन, श्रृंगार, ई सब सब चलैत रहलैया। एम्हर आबि के की भेलैए जे मैथिली कविता यानी 50 साल पहिलुका मने विगत शताब्दी के जे उत्तरार्ध अछि, खास कए के यात्री जी के आगमन के बाद और सुमन जी के आगमन के बाद, एम्हर की भेलै जे प्रकाशन के सुविधा भेला के कारणे जे किताब सब आबि रहलैए। तऽ पहिने तक प्रकाशन के स्थिति बहुत खराब रहै, साल में 5 टा किताब निकलै, आब एखन छै जे 300 तक किताब निकलि जाइ छै मैथिली मे। हँ
1: जी,
0: तऽ एक तरह से कहि दी तऽ मोटा मोटी 365 दिन मे अगर 300-350 किताब छपि रहलैए तऽ लगभग प्रतिदिन एकटा किताब छपि रहलै लगभग। तऽ एहन मे बहुलता जे छै से समकालीन कविता के छै। समकालीन कविता जखन कहै छी यानी यात्री जी के जे धारा छै ओहू धारा मे बहुत गुणात्मक परिवर्तन सब भेलैए। यात्री जी जतय कविता छोड़ देलखिन तते नहीं छे कविता, बहुत आगू के यात्रा कलके ओहि धारा में से जीवकांत जी अबै छथिन, धूमकेतु, सोमदेव जी से लैके आ बाद के समय में से मने अग्निपुष्प जी, कुणाल जी, नरेंद्र जी, सुकांत जी, तकर बाद जे छे तारानंद वियोगी, रमेश, अरविंद ठाकुर, विभूति आनंद और नाम एतः गनायब उद्देश्य नहीं छे। तहिना से सुष्मिता पाठक, ज्योत्सना चंद्रम, केदार कानन और आय के समय में से तत्ते युवा के संख्या बढ़ गए। किताबे जहन कहलूँ 300 तो वही अनुपात में लेखो बढ़ल। एखन मने 5 पीढ़ी तो निस्तुकी है, लेकिन जाधर गोविंद बाबू जीवित रहे पंडित गोविंद झा तो हम कहिए जे पंडित गोविंद झा से लऽ के गुंजन श्री तक 6 पीढ़ी सक्रिय अछि मैथिली कविता में। आब अहाँ कहि सकै छी एखनो हम मानै छी जे 6 पीढ़ी अछि, जाधर वीरेंद्र मल्लिक जी छथि हमरा सभक बीच में, तो ताधर तो हम सब कहिए सकै छी जे 6 पीढ़ी के हम सब रचनाकार। नया बच्चा सब जे एलखिन हैं कवि कवित्री सब, तो ओ सब गुणात्मक रूपे से एहि धारा के से आगू लऽ गेलखिन। तहि अनुपात में जे हम सुमन जी के जे धारा छलै तो तहू धारा में मानि लिया जे अमर जी, मधुप जी और यत्किंचित किरण जी ओ दुनू पार रहलखिन, प्रगतिशील में हुनकर एकटा पैर रहलनि आ परम्परावादी में सेहो रहलनि। तहिना उदय चंद झा विनोद जी के प्रगतिशील कवि छथि आ ओ सुमन जियो के धारा में छथि। तो तहिना बहुत रास एलखिन भीम बाबू सब एखनो तक सक्रिय छथिन, तो ओहो धारा मजबूत रहले। तो हमरा ई लगैए जे एखन जे अहाँ के प्रश्न छले जे वर्तमान में मैथिली कविता के की स्थिति परिस्थिति छै, तो ओहि संदर्भ

0: में हम ई कहब जे ओ भारतीय भाषा के चाहे संवैधानिक भाषा हो या संविधान में जे भाषा नहीं गेले लेकिन लिखल तो जा रहले है, तो ओय में मैथिली की स्थिति पहिल बात ई पॉइंट वन जे ओ न्यून नहीं छे और दोसर छे जे ओ बहुतो भाषा से आगू छे। अहाँ कहबे जे हिंदी से आगू छे, तो हाँ हिंदी से आगू छे, मैथिली कविता हिंदी से आगू छे। जे भाषा 140 करोड़ में आगू छे तो ओ तो शेष दुनिया में सेहो आगू छे।
1: एखन हमरा लोकन ई भेंट वार्ता सुनलहुँ, आशा करै छी नीक लागल हैत। आ आब हमरा लोकन चली शब्द विमर्श दिस, आउ ने ओहिसँ पहिने ई महेशवाणी सुनि लै छी।

बंधु लोकनि, एखन हमरा लोकनि ई महेशवाणी सुनि रहल छलहुँ आ आब शब्द विमर्श। बंधु लोकनि, एकटा शब्द अछि भकरार, प्रफुल्ल लेल, पूरा फुलायब, एहि लेल हमरा लोकनि भकरार शब्द केर प्रयोग करै छी। छगायब, छगायब भेल शोकसँ मर्माहत होयबाक कारणे शंकालु होयब, एहि लेल हमरा लोकनि छगायब शब्द केर प्रयोग करैत छी। छगुन्ता, छगुन्ता भेल विस्मय, आ एहि सब हमरा लोकनि कहै छी छगुनब, माने छगुन्तामे पड़ब। तऽ ई छल आजुक शब्द विमर्श। अपने लोकनिसँ विदा लेबासँ पूर्व एक गोट आग्रह, आग्रह ई

जे कार्यक्रम सिंगरहारक प्रति अपने लोकनिक जे प्रतिक्रिया अपने लोकनिक जे सुझाव ओकर प्रतीक्षा रहित अछि हमरा सबके तो अपन सुझाव आकि प्रतिक्रिया जो अपने लोकन पत्र द्वारा पठबय चाहे छी ओहि लेल हमर सबक पता अछि कार्यक्रम सिंगरहार द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा पिनकोड अछि 8460004। बंधु लोकनि अपने लोकनि आकाशवाणी दरभंगा @gmail.com पर सेहो ईमेल द्वारा अपन प्रतिक्रिया आकि सुझाव हमरा सब धरि पठा सकैत छी। तऽ अपने लोकनिक प्रतिक्रिया आकि सुझाव केर प्रतीक्षा रहत हमरा यानि राकेश चंद्र नंदनकेँ। अगिला भेंट धरिक लेल देल जाओ विदा। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।
1: भोर होते उठ जाओ किएक तऽ इजोतक पहिल किरण संग फुलाय लगैत अछि, फूल प्रकृति में घोराय लगैत अछि, ऊर्जा आबा वाला काल्हि लेल।
2: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप सँ सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन।
3: आ मनुख लेल तो बुझो अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नहीं है तो खेती नहीं है, आ खेती जो नहीं है उपजा नहीं है तो हमरा लोकन खायब की।
4: मामा बने जाने बाबा देने जादा।
5: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र बिहार, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरलम के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया कि पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल

0: चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्य शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ग्रीस के विकास मंत्री ताकिस थियोडोरिकाकोस से

0: के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ग्रीस के विकास मंत्री ताकिस थियोडोरिकाकोस से आज ग्रीस में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, औद्योगिक सहयोग और सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से भारत ग्रीस आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। यह बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस अतिरिक्त निवेश का उपयोग NIIF के अवसंरचना केंद्रित दूसरे कोष की स्थापना के लिए किया जाएगा। अवसंरचना कोष द्वितीय के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। इससे परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल और शहरी अवसंरचना तथा ई मोबिलिटी जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के अंतर्गत अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। ये विधेयक असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने, असामाजिक तत्वों की कड़ी सजा देने के उद्देश्य से पारित किया गया है। चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अधिनियम बनने के बाद इन विधेयकों को असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती से लागू किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में DRDO को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन DFP 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि DFP 2026 अनुसंधान और विकास, पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकियों के तेजी से उत्पादन, रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशक से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बीच जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा।
1: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चुरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समृद्ध और विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब गांव समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित हों। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिन के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि गांव केवल लाभार्थी ही नहीं बल्कि विकास के प्रेरक शक्ति भी हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। श्री नड्डा ने कहा कि इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: Applications launch is going to play a very important role.
3: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 सालों में कई नई पहलें शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है और उन्हें देश में सस्ता और सुलभ बनाया है। इसमें 62 करोड़ लोग शामिल हैं और अब भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है।
2: लार्जेस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर।
0: श्री नड्डा ने कहा कि देश भर में लगभग 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद

0: ये 16वें सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर नागरिकों के लिए प्राथमिक संपर्क केंद्र है जो पहले दूसरे तथा तीसरे स्तर के स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक मजबूत सेतु का काम करते हैं। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के गुना जिले के अपने 4 दिन के दौरे के दौरान लगभग 350 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पर्यावरण, सिंचाई, रेलवे, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास से संबंधित हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद से त्रिपुरा और नई दिल्ली के बीच की दूरी काफी कम हो गई है। उन्होंने बताया कि बेहतर संपर्क के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। आज अगरतला के राजकीय अतिथि गृह में समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ सबके विकास के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने आज दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी। इसे 1 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह नीति पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों, विशेष रूप से शून्य उत्सर्जन वाहनों पर केंद्रित है। हमारी संवाददाता सौम्या शरण की रिपोर्ट।
1: श्रीमती गुप्ता ने बताया कि अगले 4 वर्षों में इस नीति पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं 8,000 करोड़ रुपए की लागत से 30,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन और अन्य अवसंरचनात्मक तैयारियां की जाएंगी,
2: जिसमें हमने खरीद पे प्रोत्साहन दिया है, स्क्रैपिंग पे प्रोत्साहन दिया है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है और रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन की छूट भी इस पॉलिसी में दी गई है।
1: वहीं 30 लाख रुपए तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस नीति से 2-पहिया, तिपहिया, 4-पहिया वाहन और N1 ट्रक जैसी वाहन लाभान्वित होंगे। इससे परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी और दिल्ली एक स्मार्ट सिटी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगी।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी भी निवेश योजना, उपकरण या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन कई खबरों का भी खंडन किया है में दावा किया गया था कि भारत के पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी वाले होर्डिंग लगाए गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। इकाई ने कहा कि खुदरा पेट्रोल दुकानों पर ऐसा कोई होर्डिंग नहीं लगाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा होर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के एक नए दौर की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान ने इस संबंध में बैठक का अनुरोध किया है और ये बातचीत दोहा में होगी। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है कि उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा है कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। दोहा में तकनीकी वार्ता की खबरों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच सीधी उड़ान सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। क्षेत्रीय संघर्ष के बाद से 28 फरवरी से दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क निलंबित था। देश में इस वर्ष मई में वार्षिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP पर आधारित औद्योगिक उत्पादन 5.1% की वृद्धि हुई। बीते अप्रैल में देश के औद्योगिक उत्पादन 4.9% की वृद्धि हुई थी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक

0: एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 352 अंक घटकर 76,728 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 110 अंक कम होकर 23,946 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 14 पैसे कमजोर होकर 94.54 रुपए पर बंद हुआ।
1: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए स्थान पक्का कर लिया है। आईसीसी ने पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज ब्राजील का सामना जापान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं देर रात 2 बजे जर्मनी और पराग्वे आमने सामने होंगे। अमेरिका के फुलटन में किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के उपविजेता रहे। पुरुष सिंगल्स फाइनल में श्रीकांत को चीनी ताइपे के सू लियांग से हार का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में कल तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी तेज बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I'm Saira Mushtaba with the news at 9. The headlines. President Draupadi Murmu confers gallantry awards at Defence Investiture Ceremony in Rashtrapati Bhavan. Prime Minister Narendra Modi says, 50-year-old partnership with Seychelles will now advance through innovation, sustainability and shared prosperity. Returns home after successful visit to island nation. Cabinet approves additional investment of 30,000 crore rupees in National Investment and Infrastructure Fund to accelerate infrastructure investment. West Bengal Assembly passes Public Safety and Control of Anti-Social Activities Bill to curb anti-social activities. IMD issues orange alert for very heavy rainfall in parts of northeast, sub-Himalayan West Bengal, Bihar, Goa, Maharashtra, Karnataka and Kerala tomorrow. And Indian women's cricket team earns one of the first berths for 2028 Olympics. And now the news in detail. President Draupadi Murmu conferred gallantry awards to the personnel of the Defence Forces and the Indian Coast Guard during the Phase 2 of Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Vice President C.P. Radhakrishnan, Defence Minister Rajnath Singh, along with other Union Ministers and senior officials of Armed Forces, were also present on the occasion. A report.
3: The President conferred 7 Sarvottam Yudh Seva Medals, 30 Param Vishisht Seva Medals, 12 Uttam Yudh Seva Medals and 56 Ati Vishisht Seva Medals at the ceremony. Some recipients of the Ati Vishisht Seva Medal included Air Marshal Tarun Chaudhary, Lieutenant General Neeraj Varshne and Vice Admiral Anand Vai Sardesai. Recipients of the Sarvottam Yudh Seva Medal included Lieutenant General Pratik Sharma, Air Marshal Nagesh Kapoor and Lieutenant General Rajiv Ghai. Among those honored with the Param Vishisht Seva Medal were Vice Admiral Sanjay Vatsayan, Lieutenant General Manjinder Singh and Air Marshal Ashutosh Dixit. Recipients of the Uttam Yudh Seva Medal included Lieutenant General Dhiraj Seth, Air Marshal Manish Khanna and Vice Admiral Tarun Sopti. The medals were awarded to personnel for distinguished service of an exceptional order with Soumya Sharan, Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
2: Prime Minister Narendra Modi has said that his visit to Seychelles has yielded significant results that will enhance the friendship between both the nations. The Prime Minister returned home after concluding his

0: दीक्षित को परम विशिष्ट सेवा मेडल जता किए गए। उत्तम युद्ध सेवा मेडल पाने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोबती शामिल हैं। ये एजाजात मजकूरा एहलकारों को उनकी गैर मामूली और नुमाया खिदमात के एतराफ में दिए गए। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनका 3 रोजा सेशल्स का दौरा निहायत कामयाब रहा और इससे दोनों मुल्कों के रिश्तों में इजाफा होगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि गुज़िश्ता 50 बरसों से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और मुश्तरका तरक्की पर उस्तवार रहे हैं, जबकि आइंदा 50 साल जिद्दत, पायदार तरक्की और इज्तिमाई खुशहाली से इबारत है। मजीद तफसील हमारी नामा निगार से।
2: अपने दौरे के आखिरी दिन जनाब मोदी ने विक्टोरिया के नवाशक्ति विनायागार मंदिर का दौरा किया और वहां पूजा की। वहां उन्होंने भारतीय बिरादरी के अरकान से भी मुलाकात की। वजीर आजम ने पीस पार्क में नस्ब महात्मा गांधी के मुजस्मे पर फूलों का नजराना भी पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने सेशल्स के 50वें योम आज़ादी की तकरीबात में शिरकत पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने सेशल्स के सदर डॉक्टर पैट्रिक हरमीनी, हुकूमत और आवाम का शुक्रिया भी अदा किया। सेशल्स की नेशनल असेंबली को खिताब करने वाले वो भारत के पहले वजीर आजम बन गए हैं। दौरे के दौरान दोनों मुल्कों के माबैन UPI, ज़राअत, जहाज़रानी, खलाई ताउन, मुलजमान की हवालगी और लाइन ऑफ क्रेडिट समेत मुतअद्दिद शोबों में मुफाहमत नामों पर दस्तखत किए गए। न्यूज़ डेस्क से उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
1: सरमायाकारी और बुनियादी ढांचे से मुतालिक कौमी फंड NIIF में हुकूमत हिंद की मजमूई सरमायाकारी अब 60,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। ये इकदाम मुल्क में बुनियादी ढांचे और कौमी अहमियत के हामिल दीगर शोबों में सरमायाकारी के लिए हुकूमत के पुख्ता अज़्म की अक्कासी करता है। पिछले हफ्ते मरकजी काबीना ने मजकूरा फंड में 30,000 करोड़ रुपए की इजाफी सरमायाकारी की मंजूरी दी थी, ताकि बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों में सरमायाकारी में तेजी लाई जा सके और मुल्क में घरेलू और बैन अलाक़वामी इदारा जाती सरमायाकारों को राग़िब किया जा सके। वजारत खजाना के मुताबिक ये इजाफी रकम सरमायाकारी और बुनियादी ढांचे से मुतालिक कौमी फंड NIIF के बुनियादी ढांचे पर मरकूज दूसरे फंड के क्याम के लिए इस्तेमाल की जाएगी, जो साबिका अहम फंड की जगह लेगा। सनअती पैदावार के इशारिये IIP के मुताबिक मई 2026 के दौरान भारत की सनअती पैदावार में सालाना बुनियाद पर 5.1% का इजाफा हुआ। इससे कबल अप्रैल में सनअती पैदावार की शरह नमू 4.9% थी। मई के आदादोशुमार अप्रैल के आदादोशुमार के बाद जारी किए गए हैं, जो कि नए बुनियादी साल 2022-23 के तहत 8.9 तश्कील शुदा IIP सीरीज के पहले आदादोशुमार थे, जिसमें जदीद तरीन मसनूआत की फहरिस्त, वजन और मुख्तलिफ शोबों की ज्यादा जामे शमूलियत शामिल है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मगरबी बंगाल कानून साज असम्बली ने आज मगरबी बंगाल अवामी तहफ़ और समाजी मुखालिफ सरगर्मियों की रोकथाम से मुतालिक बिल 2026 और मगरबी बंगाल में अमन अमान कायम करने के से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 को मंजूरी दी। मजकूरा बिल की हिमायत में 176 वोट हासिल हुए, जबकि मुखालफत में 41 वोट पड़े। वहीं 20 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इस बिल के तहत ऐसे अफराद को जिनकी समाज मुखालिफ सरगर्मियों से आवाम की सलामती, अमन अमान और नज्म व नस्क को खतरा लाहक हो सकता हो, उन्हें एहतियाती तौर पर ज्यादा से ज्यादा 12 माह तक हिरासत में रखा जा सकता है। हुकूमत के मुताबिक इस कानून का मकसद समाज दुश्मन अनासिर की सरगर्मियों पर काबू पाना, उन्हें सख्त सजा देना और उनकी साजिशी मंसूबाबंदी को नाकाम बनाना है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में हरियाणा और राजस्थान की हुकूमत ने आज नई दिल्ली में जमुना आबी प्रोजेक्ट की तामीर और उस पर अमल दरामद के लिए एक मफाहमत नामे पर दस्तखत किए। इस मौके पर बात करते हुए जनाब शाह ने कहा कि इस मफाहमत नामे से हरियाणा और राजस्थान के लोगों को तकरीबन 3 दहाइयों से दरपेश पानी के मसले का हल हो गया है। उन्होंने कहा कि ये मुआहिदा वजीर आजम नरेंद्र मोदी के उसूल मुजाकिरात के जरिए हल की एक बेहतरीन मिसाल है। वजीर मौसूफ ने यह भी कहा कि इस मुआहिदे के तहत अगले माह से अक्टूबर तक 3 जेर

0: जमीन पाइपलाइंस के जरिए यमुना कनाल से राजस्थान को तकरीबन 580 मिलियन क्यूबिक पानी मुहैया कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन पाइपलाइंस से दोनों रियासतों के आवाम को पीने का पानी मुहैया हो सकेगा। इस दौरान जलशक्ति के वजीर सीआर पाटिल ने कहा कि इस मुहैदे के तहत मानसून के मौसम में राजस्थान के हिस्से का पानी हथनी कुंड बैराज से वेस्टर्न यमुना कनाल के निजाम के रास्ते बिछाई गई जेरे जमीन पाइपलाइन के जरिए फराहम किया जाएगा।
1: इस परियोजना के अंतर्गत हथनी कुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकताओं की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: दिल्ली काबीना ने आज दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। अगले महीने की पहली तारीख से शुरू होने वाले 4 साल मरहलेवार रोल आउट के लिए मुकर्रर कसीर जैती फ्रेमवर्क 31 मार्च 2030 तक कौमी दारुल हुकूमत को मुकम्मल तौर पर कार्बन के सिफर इखराज की तरफ मुंतकिल करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए के बड़े मालियाती अखराजात का अहद करता है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में स्ट्रेटेजिक तहकीक और तरक्याती प्रोजेक्टों की कारकर्दगी, जवाबदेही और बरवक्त अमलावरी के लिए DRDO DFP 2026 को मालियाती इख्तियारात का एक वफ़ जारी किया। इस मौके पर जनाब सिंह ने कहा कि DFP 2026 दिफाई अफवाज में तहकीक और तरक्की के एक निज़ाम से निकलने वाले निज़ाम और उभरती हुई टेक्नोलॉजी की तेज तर पैदावार और शमूलियत में सहूलत फराहम करेगा। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा कि हुकूमत ने बुनियादी, सानवी और तीसरे दर्जे की तिब्बी सहूलती मराकज में तौसी करके मुल्क के सेहत निज़ाम को नुमाया तौर पर मजबूत किया है। नई दिल्ली में सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी कौंसिल की 16वीं कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब नड्डा ने कहा कि शहरियों और सेहत निज़ाम के दरमियान राब्ते के पहले मरकज के तौर पर मुल्क भर में 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर कायम किए जा चुके हैं। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल बरतानिया का अपना दौरा मुकम्मल करने के बाद यूनान के एथेंस में एक आला सतही भारतीय कारोबारी वफ्द की क्यादत कर रहे हैं। जनाब गोयल ने आज यूनान के तरक्यात के वजीर टाकिस थियोडोरी काकोस से मुलाकात की। जनाब गोयल ने कहा कि उन्होंने वसी तर तजारत, सरमायाकारी, सनती तावुन और लचकदार सप्लाई चेन्स के जरिए भारत यूनान इक्तिसादी शराकतदारी को मजबूत करने पर तबादले ख्याल किया। अमरीका और ईरान ने एक दूसरे पर फौजी हमले को आर्जी तौर पर रोकने और आबनाए हुरमुस से तिजारती बहरी जहाजों की आमदोरफ्त दोबारा शुरू करने पर इत्तेफाक किया है। इस दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि दोनों ममालिक के दरमियान मुजाकिरात का एक नया दौर कल कतर की राजधानी दोहा में होगा। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बताया कि ईरान ने मीटिंग की दरख्वास्त की थी और ये मीटिंग दोहा में होगी, ताहम उन्होंने मुजाकिरात के एजेंडे या दोनों ममालिक की नुमाइंदगी की सतह के बारे में मजीद तफसीलात फराहम नहीं की। ऑपरेशन एमिस्टेड के तहत जलजले के मुतासिर वेनेजुएला में तैनात भारतीय फौज का फील्ड अस्पताल मुकम्मल तौर पर फाल हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त तिब्बी खिदमात फराहम कर रहा है। वेनेजुएला में भारतीय सिफारत खाने ने कहा कि तजुर्बेकार डॉक्टरों पर मुश्तमिल भारतीय तिब्बी टीम ने कराकस में इंटरनेशनल ला रिंकोनाडा रेस्ट्रेक पर एक कैंप कायम किया है। उसने कहा कि मेडिकल कैंप अब मुकम्मल तौर पर काम कर रहा है और खिदमात 24 घंटे खुली रहती हैं। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने मुल्क के शिमाल मशरकी इलाकों, जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला और माहे में कल शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। IMD के मुताबिक अगले 2 रोज के दौरान उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी शदीद बारिश होने का इम्कान है।

0: नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी MSME किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव होते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन और नवाचार में छोटे व्यवसायों के महत्वपूर्ण योगदान को पहचानने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए हाल ही में 27 जून को विश्व MSME दिवस मनाया गया। भारत की अगर बात करें तो कृषि के बाद रोजगार का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत MSME क्षेत्र है। MSME न केवल रोजगार के लिए नए अवसर सृजित करते हैं, बल्कि नवाचार को बढ़ावा देने, स्थानीय उद्योगों को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को गति देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज जब हम भारत विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं तो उसके लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ने की दिशा में MSME क्षेत्र की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। आज पब्लिक स्पीक में हमने यही विषय चुना है, लघु व्यवसायों का विकास और उद्यमियों के लिए अवसर। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉक्टर रजनीश। आपका स्वागत है डॉक्टर रजनीश कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हैं, आप भी अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। स्टूडियो का नंबर है 2331-0481 या 2371-7117, 2371-7106 या 2331-4444। याद रखें, इससे पहले 011 जो दिल्ली का कोड है वो लगाना ना भूलें। व्हाट्सएप नंबर भी है 9289094044। और इसके अलावा आप जानते हैं ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पे भी #AskAIR के जरिए आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। तो आगाज करते हैं आज के कार्यक्रम का। डॉक्टर रजनीश, भारत जैसे विशाल देश में हम देखते हैं कि शहरों की गलियों से लेकर गांवों तक बड़ी संख्या में छोटे छोटे उद्यम चल रहे हैं। बड़े उद्योगों की तुलना में इनका कितना महत्व है और MSME क्षेत्र का देश

0: की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है?
1: प्रियंका जी, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम जो हैं, ये हमारी आर्थिकी में 31% से ऊपर योगदान रखते हैं
0: जी।
1: और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो 35% से ऊपर इनका योगदान है। एक्सपोर्ट्स में 48% से ऊपर योगदान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों का है। सबसे बड़ी बात जो एमएसएमई की है, वो जैसा आपने बताया कि एग्रीकल्चर के बाद लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एमएसएमईज हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ एमएसएमईज के माध्यम से 38 करोड़ से ऊपर लोग इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। और हम ये मानते हैं मिनिस्ट्री में कि जो हमारे विकसित भारत की प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है, उसमें एमएसएमई का एक बहुत बड़ा योगदान इसलिए है क्योंकि इंक्लूसिव डेवलपमेंट में इनका एक बहुत बड़ी भागीदारी है।
0: सही बात है, 38 करोड़ से जितने ज़्यादा लोग जिस क्षेत्र से जुड़े हों तो लाजमी है उस क्षेत्र पर ध्यान देना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है और सरकार दे भी रही है। आगे चर्चा जारी रखते हैं, पहले अपने श्रोता से बात कर लेते हैं जो दिल्ली से जुड़े हैं, धर्मवीर जी।
2: जी नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में, आपका प्रश्न क्या है?
2: धन्यवाद, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ
0: जी।
2: तो एक्सपर्ट को नमस्कार। जैसे हमारे एक्सपर्ट भी जानते हैं कि गांधीनगर दिल्ली की सबसे एशिया की सबसे बड़ी रेडीमेड मार्केट है। यहाँ जो भी आपके लघु उद्योग और छोटे उद्योग सारे चलते हैं, तो इसमें क्या बेनिफिट मिलता है? क्योंकि यहाँ जैसे फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कोई 50 भी स्टाफ काम करता है, कहीं 30 करता है, कहीं 90 स्टाफ काम करता है। इन लोगों को जानकारी नहीं है इसका कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाया जाए
0: जी।
1: देखिए, एमएसएमई के अंदर हमारे कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट है बैंकों से सुगम और कम दर ब्याज के ऊपर ऋण प्राप्त करना। इनफैक्ट हमारे माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए एलिजिबल हैं। और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 10 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए का क्रेडिट जो पहले इनको मिलता था, अब वो बढ़कर 36 लाख करोड़ के ऊपर हो गया है। तो पिछले 10 साल में 3 गुना से ऊपर की वृद्धि हम देखते हैं। जो एक्सेस टू क्रेडिट है माइक्रो और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, वो प्रदान की गई है। दूसरी सबसे बड़ी बात हमने ये देखा है कि सूक्ष्म और लघु उद्यम जो हैं, वहाँ उद्यमियों को जब वो बैंक में अपना प्रोजेक्ट लेके जाते हैं या उनको कोई अपने व्यवसाय विस्तार के लिए धनराशि चाहिए होती है, तो उस समय नॉर्मली बैंक्स जो हैं वो कोलेटरल मांगते हैं
0: जी।
1: और कोलेटरल देना एक समस्या रहती है। तो मंत्रालय की तरफ से एक हमारी स्कीम चलती है जिसको हम CGTMSE बोलते हैं, क्रेडिट गारंटी फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो जितने भी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, इनको बिना कोलेटरल के ऋण देने की एक व्यवस्था इस योजना के माध्यम से की गई है। बेसिकली क्या होता है कि कोई बैंक अगर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज को लोन दे रहा है, तो उसका डिफॉल्ट रिस्क हम CGTMSE से कवर करते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 2000 से ये योजना चल रही है, 2000 से लेकर 2020 तक 20 सालों में 3,20,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटीज हमने दी हैं। और 2023 में एडिशनल 2,00,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटीज हमें देनी थी, और 2,00,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटीज का जो टारगेट था, हमने 3.5 साल में ही 10,00,000 करोड़ के ऊपर क्रेडिट गारंटीज और दी हैं। तो हमारा मंत्रालय की तरफ से एक बहुत बड़ा पुश ये रहता है कि जितने माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, उनको अपने व्यवसाय विस्तार के लिए आसानी से बैंकों से ऋण
0: उपलब्ध हो जाए। और उसमें सबसे बड़ी बात जो अक्सर चिंता का सबब रहता है कि गिरवी रखना पड़ेगा कुछ, तो इस केस में जो आप योजना है जो CGTMSE, उसके लिए आपको कोई गिरवी नहीं रखना कुछ, आप निश्चिंत होकर बैंक के पास जा सकते हैं और अगर सही है सारा प्रोजेक्ट तो आपको उस पर लोन मिल सकता है।
1: इसमें दो बातें मैं और बताना चाहूंगा। पहले कोलेटरल फ्री लेंडिंग की जो RBI की लिमिट थी वो 10,00,000 रुपए थी, तो हमने RBI से मैटर टेकअप किया कि इस लिमिट को बढ़ाया जाए, और इस वर्ष 1 अप्रैल से ये लिमिट दुगनी कर दी गई। तो 20 लाख तक का लोन अगर कोई लेना चाहता है तो उसमें वैसे भी कोई कोलेटरल देने की आवश्यकता नहीं है। और क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंदर 10 करोड़ रुपए तक का क्रेडिट गारंटीज हम लोग देते हैं, इसमें 75% से लेकर 85% तक का गारंटी कवर रहता है।

0: ये योजना है जिसके माध्यम से हमने देखा है कि एमएसएमईज अपने व्यवसाय विस्तार को आगे बढ़ावा दे रहे हैं।
1: जी, बूस्ट अप मिलता है उनको। हरियाणा से एक और श्रोता जुड़े हैं, राजेंद्र जी।
2: नमस्कार जी, प्रियंका जी और विशेषज्ञ जी, नमस्कार जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि देश में लघु उद्योग तो काफी है, लेकिन कैसे माल बेचने की उनको बड़ी समस्या है। देश में या राज्य में ऐसी कोई मार्केट हो जो अपना माल बेच सके और वो अपना हुनर दिखा सके। दूसरा, जो अभी बैंक लोन आता है तो उसकी बैंक गारंटी होती है तो वो आम आदमी की होती है, पता नहीं लगता अभी किस टाइम लोन आएगा। तो पता करने जाए तो ग्रांट कहते हैं खत्म हो चुकी है। तो ये लोगों में कैसे जानकारी फैले कि जो ग्रांट आए लोन का टाइम को तो पता लगे लोगों को। नमस्कार
1: जी।
0: आपने जो प्रश्न पूछा इसके दो भाग हैं। पहला ये जानना चाहते हैं कि मार्केटिंग में किस तरह से इनकी सहायता की जा सकती है। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जो हमारे माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, इसके लिए हमारा पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी ऑर्डर है और ये हमारे एक्ट के तहत, एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट के तहत है, जिसके अंदर जितनी भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनको 25% अपनी खरीद जो है वो मैंडेटरली माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस से करनी है। और दूसरी बात ये है कि जब कभी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस किसी टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं तो 15% की प्राइस प्रेफरेंस भी उन्हें मिलती है।
1: अच्छा।
0: मतलब ये कि मान लीजिए अगर किसी ने टेंडर में जो लोएस्ट कोट किया है वो 100 रुपये है और माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज ने 115 तक का भी अगर कोट किया है तो वो, अगर हम उसे एक मौका देते हैं कि आप 100 रुपीज़ जो कि मिनिमम प्राइस कोट आया है, अगर आप उसको मैच करते हैं तो 25% वो ऑर्डर आपको मिलेगा। तो एक ये हमारी प्राइस प्रेफरेंस है जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए है। इसके अलावा हम एक हमारी योजना है पीएमएस, जिसके अंदर हम हमारे जो व्यवसायी हैं उनको ट्रेड फेयर्स में और मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पार्टिसिपेट करने में हम मदद करते हैं, तो उस योजना का ये लाभ ले सकते हैं। जो बैंक की इन्होंने बात की कि बैंक में लोन के लिए जाते हैं तो वहाँ गारंटीज के बारे में पता नहीं होता, तो ये एक्चुअली क्रेडिट गारंटी जो है इसके लिए आवेदन करने की माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज को आवश्यकता नहीं है। ये क्रेडिट गारंटी हम बैंक को ही देते हैं, तो जब लोन इनको दिया जाता है तो उस समय बैंक्स जो है ये क्रेडिट गारंटी कवर हमारे CGTMSE से लेते हैं और हम माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के अंदर और अधिक अवेयरनेस क्रिएट करने पे भी जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और जो हमारी एमएसएमई एसोसिएशंस हैं उसके माध्यम से इस बात का प्रसार कर रहे हैं कि आप जब लोन लेने बैंक में जाएं तो कृपया CGTMSE का जरूर हवाला दें ताकि आपको कोलेटरल जो है वो ना देना पड़े और कोलेटरल फ्री लेंडिंग जो है आप उसकी सुविधा
1: जी आप बिना गिरवी के ये ऋण प्राप्त कर सके। तो इसलिए जो CGTMSE जो योजना का नाम है उसका जिक्र जरूर करें जब भी आप इस योजना का लाभ लेने जाते हैं। मध्य प्रदेश से जुड़े हैं विपिन सागर जी। विपिन जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो जी, हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे उनसे। जहां तक अभी हमने बात की कि मार्केटिंग की, तो जैसे एक जेम पोर्टल भी है उसके थ्रू भी जो छोटे व्यवसायियों को फायदा हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है वो भी सरकार की ओर से तैयार की गई। क्योंकि ब्रांडिंग की जब बात करती है, जो बड़े बड़े जो उद्योग हैं या अन्य हम जो कॉरपोरेट कंपनीज की बात करते हैं तो वो पैसा खर्च करके अपने दम पर अपनी पहचान बना लेते हैं, लेकिन जो छोटे व्यवसाय हैं उनको कैसे पहचान मिले?
0: देखिए, जेम पोर्टल के माध्यम से एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आया है प्रोक्योरमेंट्स में। पहली बात तो ये, जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जो भी प्रोक्योरमेंट ये करते हैं इनको जेम से करना है, ये हमारे GFR के अंदर ये चीज़ निहित है। दूसरी बात ये कि जेम पे जो प्रोक्योरमेंट होता है, क्योंकि ये एक फेसलेस प्रोक्योरमेंट है, पोर्टल के ऊपर टेंडर फ्लोट होता है और उसके अंदर प्रोक्योरमेंट रिक्वायरमेंट्स हैं और कोई भी इसके अंदर बिड कर सकता है। तो एक बहुत ही पारदर्शी रूप में जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं वो जेम का फायदा उठा रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम देखें पिछले 5 साल में संख्या एमएसएमईज की जो जेम पे प्रोक्योरमेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बहुत बड़ी है, और इसके अंदर जो अमाउंट है प्रोक्योरमेंट का और जो अपॉर्चुनिटीज मिली हैं सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों को, उसके अंदर भी बहुत विस्तार हुआ है।

0: हम चर्चा जारी रखते हैं, पहले अपने श्रोता को ले लेते हैं। शिमला से जुड़े हैं राकेश जी।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: मैं राकेश बात कर रहा हूँ, कोटखाई शिमला हिमाचल प्रदेश।
0: जी
1: जी, मेरा ये प्रश्न है कि हम बागवानी क्षेत्र के लिए जो है MSN के लिए लोन लेना चाहते, तो कितने परसेंट में ब्याज हमें मिलता है बागवानी क्षेत्र के लिए?
0: जी
2: देखिए, जो एग्रीकल्चरल लोन्स हैं, आप जानते हैं कि बैंक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसके वो खुद स्वयं निर्धारित करते हैं, RBI की गाइडलाइंस हैं। बैंक्स को ये इख्तियार है कि वो ये लोन के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चार्ज करना है, वो बैंक इसको डिटरमिन करता है। पर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस जो हमारी हैं, और अगर आप हमारे उद्यम पोर्टल के ऊपर रजिस्टर होते हैं, तो फिर आपको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की के लाभ मिलेंगे। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर जो ब्याज की दर है वो काफ़ी कम रहती है। ये एक्चुअल क्या एग्जैक्ट आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो तो डिपेंड करता है कि लोन अमाउंट आप कितना चाहते हैं, पर नॉर्मली 8 से लेकर 10% के बीच में अगर आप छोटा लोन लेना चाहते हैं तो प्राइवेट सेक्टर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आप ये लोन की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। और कोटखाई क्योंकि सेब और बागवानी के लिए बहुत प्रसिद्ध इलाका है, तो ये आप हमारे CGTMSE का कवर भी इसके अंदर ले सकते हैं। और सबसे पहले आपको अपने जो आप व्यवसाय कर रहे हैं, अगर आप प्रोसेसिंग में हैं, तो फिर आपको इसके हमारे उद्यम पोर्टल के ऊपर रजिस्टर करना होगा।
0: जी, मध्य प्रदेश से एक और श्रोता जुड़े हैं, छतरपुर से राशिद अहमद खान जी।
3: जी नमस्ते मैम।
0: नमस्कार,
3: मैं छतरपुर मध्य प्रदेश से राशिद अहमद खान।
0: जी
3: मेरे छोटे छोटे दो प्रश्न है कि लघु उद्योग की परिभाषा क्या है, इन टर्म ऑफ लागत कितनी लागत होना चाहिए तब वो लघु उद्योग में आता है। दूसरा सवाल ये है कि प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाता है, उसकी सभी लोगों को पूरे देशवासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। और ये पूछना चाहता हूं कि क्या नर्सरी प्लांट की कोई नर्सरी लगाई जाए या फूलों की खेती के लिए कोई प्लांट डाला जाए, तो उसके लिए हमको लोन वगैरह मिल सकता है क्या, प्लीज बता दीजिए। थैंक यू
2: राशिद जी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि माइक्रो स्मॉल मीडियम ये 3 श्रेणियां हैं MSME में, और इनकी कैटेगराइजेशन की जाती है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और दूसरा टर्नओवर पे। अगर हम टर्नओवर की बात करें तो हमारे माइक्रो एंटरप्राइजेस बेसिकली जिनकी 10 करोड़ तक की टर्नओवर है वो माइक्रो एंटरप्राइजेस रहते हैं, जिनकी 100 करोड़ तक की टर्नओवर है वो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, और जिनकी 500 करोड़ तक की टर्नओवर है वो मीडियम एंटरप्राइजेस हैं। और इसी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी है वो 2.5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी माइक्रो के लिए है, 25 करोड़ स्मॉल के लिए है, और 125 करोड़ मीडियम के लिए है। मैं यहाँ पर अपने श्रोताओं को ये भी बताना चाहूँगा कि ये डेफिनेशन MSME की हमने पिछले साल रिवाइज की थी, और ये लिमिट्स हमने टर्नओवर की लिमिट को हमने दुगना किया है, और इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इसको 2.5 गुना बढ़ाया गया। और इसका पर्पज़ ये है कि बहुत से हमारे MSMEs इस बात से चिंतित रहते थे कि अगर हम ग्रो करेंगे, बड़े होंगे, हमारी टर्नओवर बढ़ेगी, या हम अपनी प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट करेंगे तो हम MSME का स्टेटस खो देंगे, और ये जो बेनिफिट MSMEs के मिलते हैं वो हम उनसे वंचित हो जाएंगे। तो इस चीज़ को देखते हुए इस डेफिनेशन को हमने बढ़ाया है। और दूसरा सवाल जो आपने बैंक से के रिलेशन में कहा है, तो प्रोसेसिंग यूनिट का अगर आप कोई प्लांट लगाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप बैंक को संपर्क करें, आपको लोन मिलेगा।
0: जी हम एक बार फिर से जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से विपिन जी।
4: जी नमस्ते मैम।
0: जी नमस्कार
4: मैम, मेरा सवाल ये था कि जो लघु उद्योग हैं जिनमें पहले से मतलब डाउनफॉल चल रहा है, किसी भी प्रकार का लघु उद्योग हो सकता है, तो पहले से ही अगर उनका क्रेडिट सही नहीं है बैंक का, तो क्या ऐसे में फाइनेंशियली हेल्प मिल सकती है जो योजना आप बता रहे हैं? क्योंकि अगर पहले ही वो लोन को ले चुके हैं और सक्सेस नहीं हो पाए हैं, और क्या इसमें सभी प्रकार के लघु उद्योग ही शामिल होते हैं अगर कुछ छोड़ भी दिए गए हैं?
2: देखिए, आपने जो ये बात की कि लघु उद्योगों में या सूक्ष्म उद्योगों में डाउनफॉल है, तो इसमें मैं इस बात से थोड़ा मेरा मैं आपको अपना व्यू देना चाहूँगा, शायद जो आप कह रहे हैं वो पूरी तरह ठीक नहीं है।
0: शायद उन्होंने एक जनरल सवाल भी पूछा है, जैसे कोई उद्योग है अगर वो अच्छा नहीं चल रहा, क्रेडिट ले चुके हैं, नहीं चुका पाए होंगे, तो क्या उनको और दोबारा से फाइनेंस मिल सकता है इस लिहाज से?
2: जी मैं इस प्रश्न का

दो तरह से देना चाहूंगा। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि सूक्ष्म और लघु उद्यमों की अगर हम सिर्फ बात करें, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस की, और मीडियम को भी अगर इसमें जोड़ लें, तो हमारा 2023 तक, 1 अप्रैल 2023 तक 1,65,00,000 एमएसएमईज हमारे साथ पंजीकृत थे। और ऐसे बहुत से एमएसएमईज थे जो कि काम कर रहे थे, हमारी अर्थव्यवस्था का पार्ट थे, पर हमारे उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर नहीं थे, औपचारिक रूप से नहीं थे। तो एक ड्राइव हमने चलाई स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, एमएसएमई एसोसिएशंस के साथ, आज ये संख्या 1,65,00,000 जो 2023 तक थी, 3 साल के अंदर ये संख्या बढ़कर 1,65,00,000 से 8,70,00,000 हो गई है। तो बहुत बड़ा एक व्यापक विस्तार फॉर्मलाइजेशन में हम देखते हैं कि एमएसएमई सेक्टर में पिछले 3 सालों में हुआ है। दूसरी बात ये हम मानते हैं कि एमएसएमईज जो है वो हमारी इकोनॉमी के रेजिलियंस का पार्ट है, और काफ़ी जो हमारी इकोनॉमी की रेजिलियंस है, अगर हम 31% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सो डेफिनेटली इट इज़ थ्रू दी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज।

0: 70 लाख हो गई है। तो बहुत बड़ा एक व्यापक विस्तार फॉर्मलाइजेशन में हम देखते हैं कि एमएसएमई सेक्टर में पिछले 3 सालों में हुआ है। दूसरी बात ये हम मानते हैं कि एमएसएमई जो है वो हमारी इकोनॉमी के रेजिलियंस का पार्ट है, और काफ़ी जो हमारी इकोनॉमी की रेजिलियंस है, अगर हम 31% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सो डेफिनेटली इट इज़ थ्रू दी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। जो इन्होंने स्पेसिफिक प्रश्न उठाया कि अगर मान लीजिए किसी एंटरप्राइज में थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं और किसी कारण से वो अगर अपना लोन पे नहीं कर पाए हैं, तो क्या उनको कोई आगे सुविधा प्राप्त होती है? तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए आपका कोई पेमेंट डिफॉल्ट है, वो पेमेंट डिफॉल्ट 30 दिन तक अगर आपने उस पेमेंट डिफॉल्ट को कवर नहीं किया है, तो आपका अकाउंट स्पेशल मेंशन अकाउंट में जाता है, इमीडिएटली उसको एनपीए नहीं घोषित किया जाता। फिर अगर एसएमए 0 स्टेज पे 30 दिन तक नहीं हुआ, 60 दिन तक भी अगर आपने अपने अकाउंट को सेटल नहीं किया है, तो वो एसएमए 1 स्टेज पे जाता है। 60 दिन में भी अगर नहीं हुआ, आपने 60 से 90 दिन तक उस अकाउंट को सेटल नहीं किया, तो वो SMA 2 स्टेज पे जाता है। इसमें बैंक्स प्रयास करते हैं कि आपको सहायता प्रदान करके जो है उस वित्तीय संकट से में आपका मदद किया जाए। 90 दिन तक अगर आप अपना लोन में कोई अगर इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके बाद ही वो NPA करार दिया जाता
1: है। और अगर कुछ थोड़ी सी उसमें इंस्टॉलमेंट में से कुछ अगर रकम चुका दे, तो फिर भी थोड़ा सा उस पर ध्यान दिया जाता है।
0: देखिए, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि भारत सरकार में वी बिलीव इन प्रूडेंशियल फाइनेंशियल नॉर्म्स। तो इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंकिंग जो है वो काफ़ी मजबूत रही है, और उसका एक रीज़न ये है कि हमारा फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो बैंक्स के ऊपर है वो भी काफ़ी सख्त है। तो इनफैक्ट बैंक्स को भी इंश्योर करना होता है कि उनके अकाउंट्स जो हैं वो क्लीन चलें। तो ये 90 दिन का एक रिलीफ पीरियड है जिसके बीच में आप अपने अकाउंट्स को अगर मेंटेन कर पाते हैं, तो उसमें आपको सहायता दी जाती
1: है। हरियाणा के करनाल से जुड़े हैं संजीव कुमार जी।
2: संजीव मैडम जी नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: और जो एक्सपर्ट साहब हैं इनको भी नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: हाँ जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे MSME होती है नए और इनमें जो लोग काम करते हैं, तो एक तो के ओवर टाइम काम ना करवाए, 8 घंटे से ज्यादा काम ना करवाए, इसके लिए क्या किया गया अभी तक? और मिनिमम वेज में कितने निर्धारित करी गई है जी? और वेलफेयर स्कीम के बारे में बताइए कुछ, के जो मजदूर काम करते हैं इनमें और वेलफेयर स्कीम्स कैसे होती हैं?
0: देखिए, जो आपने प्रश्न किया है उसमें मैं बताना चाहता हूँ, जहाँ तक मिनिमम वेजेस का प्रश्न है, तो मिनिमम वेजेस रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स डिक्लेयर करते हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट्स मिनिमम वेजेस को डिक्लेयर करती हैं, वो उसमें एरियाज डिफाइंड रहते हैं, अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज, किस नेचर का वो काम है, स्किल्ड वर्क है, अनस्किल्ड वर्क है, तो उस हिसाब से मिनिमम वेजेस स्टेट गवर्नमेंट्स नोटिफाई करती हैं, और हर साल ये टाइम टू टाइम रिवाइज भी होती हैं। तो किसी भी एंटरप्राइज में कोई अगर व्यक्ति काम कर रहा है, तो आपके स्टेट में जो मिनिमम वेजेस डिक्लेयर्ड है आपकी कैटेगरी ऑफ वर्क के लिए, जिस श्रेणी में आपका स्किल लेवल आता है, तो उससे नीचे कोई भी एंटरप्रेन्योर आपको उससे कम वेजेस नहीं दे सकता, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के बहुत वेलफेयर स्कीम्स हैं जिनको जिनकी अनुपालना करनी होती है, और इसके अंदर ECIS का कवर जो है वो डिपेंडिंग कि एक एंटरप्राइज में 10 लोग हैं 20 लोग हैं, तो उस हिसाब से वो सारे कवर्स जो हैं वो भी प्राप्त रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने स्टेट गवर्नमेंट में जो मिनिमम वेज नोटिफाइड है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप देख सकते हैं कि आपकी वेज जो है वो मिनिमम वेज पे।
1: और उन्होंने ओवर टाइम का पूछा, अगर ऐसा किया जा रहा है तो कहीं शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, कोई हेल्पलाइन नंबर है जहाँ?
0: मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है, उनके लेबर इंस्पेक्टर्स हैं जो हर स्टेट के अंदर रहते हैं, वहाँ पर अगर ऐसी कोई कंप्लेंट है या दिक्कत है, तो आप शिकायत अपनी दर्ज करा सकते हैं। इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कई बार हमने ये देखा मंत्रालय के पास, हमारे पास रिक्वेस्ट आई कि बहुत सी स्टेट्स जो हैं वो विमेन को नाइट शिफ्ट अलाउ नहीं करती हैं। मैं इस प्रश्न को थोड़ा सा दूसरे रूप में आपसे साझा करना चाहूँगा अपने श्रोताओं के लिए, कि बहुत कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो नाइट शिफ्ट अलाउ नहीं करती थी, और एक रिक्वेस्ट थी विमेन एसोसिएशंस की तरफ से हमारे पास कि नाइट शिफ्ट अलाउ की जाए, तो हमने स्टेट गवर्नमेंट से टेकअप किया और उसके बाद काफी स्टेट्स ने अब नाइट शिफ्ट जो

0: उसको भी अलाउ किया है।
1: हाँ, अब एक और श्रोता लेते हैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली से, रमा शंकर वाजपेयी जी।
2: जी
1: नमस्कार, सवाल पूछे।
2: जो लघु उद्योग ये बड़े धंधों के साथ अटैच होते थे पहले, अब निरंतर बड़े उद्योग धंधे जो है मरणासन हो चुके हैं। अब इसके लिए छोटे उद्योगों को क्या जो है सरकार का नजरिया?
0: जो आपने प्रश्न पूछा है, मैं फिर एक बार ये दोहराना चाहूँगा कि जैसे मैंने बताया कि नंबर ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो है वो काफ़ी संख्या इसकी बढ़ी है, 1,65,00,000 से अब 8,70,00,000 से ऊपर हुए हैं। और हमारे MSMEs जो हैं वो लार्जर कॉरपोरेट्स का सप्लाई चेन का पार्ट है। हम ये मानते हैं कि जो सूक्ष्म उद्यम है वो आगे प्रोग्रेस करके लघु उद्योग या उद्यमी वो बने, और लघु जो है वो हमारे मीडियम एंटरप्राइजेस बने, और मीडियम एंटरप्राइजेस जो है वो ग्रेजुएट करें फॉर दी लार्ज एंटरप्राइज। तो ये एक कड़ी है, ये एक चेन है, और मंत्रालय की तरफ से हमारा ये प्रयास रहता है कि MSMEs की ग्रोथ और उनके विकास के लिए हमारी 18 से ऊपर फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं। अभी जो हमने मेंशन किया, अभी सिर्फ क्रेडिट और मार्केटिंग की बात हुई है, इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल हैंड होल्डिंग सपोर्ट, क्रिएशन ऑफ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिएशन ऑफ क्लस्टर्स, क्लस्टर्स में हमारे कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स, और इस तरह की बहुत सी योजनाएं हैं। हमारा डिलेड पेमेंट्स के लिए एक इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया है, ट्रेड्स, जो कि RBI रेगुलेटेड है। तो वो ट्रेड्स के अंदर भी पिछले 4 सालों में 40,000 करोड़ से बढ़कर 3,00,000 करोड़ से ऊपर के बिल डिस्काउंटिंग जो है वो हुए हैं, जिससे लोगों को डिलेड पेमेंट के अंदर जो एक समस्या आ रही थी उसका समाधान अब हो रहा है। और इस तरह की बहुत सी हमारी योजनाएं हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे मंत्रालय की जो वेबसाइट है या जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, अगर आपको कोई चीज़ है जिसके बारे में जानकारी आप चाहते हैं, तो 1800-1806-7-6-3 के ऊपर आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, और इसकी आपकी समस्या की जानकारी जो है उसमें हमारी कौन सी योजना आपके काम आ सकती है उसके बारे में आपको बताया जाएगा।
1: दिल्ली से जुड़े हमारे साथ कोको मस्ताना जी। कोको जी,
3: हेलो
1: जी। हाँ, अपना सवाल पूछे।
3: हाँ नमस्ते मैडम
1: जी।
3: हेलो
1: जी, हम सुन पा रहे हैं जल्दी से सवाल।
3: एक्चुअली में हमारा ना बुटीक है
1: जी
3: सिलाई का, तो उसमें हमारे पास 2 कारीगर है, क्या हमारे को उसमें लोन मिल सकता है?
0: बिल्कुल आपको लोन मिल सकता है, और इसमें मैं बताना चाहूँगा कि एक PMEGP हमारी, वैसे तो आपका एक एस्टेब्लिश्ड यूनिट है जो ऑलरेडी चल रहा है, अगर कोई साथी हमारे नया कोई यूनिट लगाना चाहते हैं और नया उद्यम स्थापित करना चाहते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एक हमारी स्कीम है, इसके अंदर हम कैपिटल सब्सिडी भी देते हैं, तो इसमें आपको बैंकों के माध्यम से लोन मिल सकता है, आप इस योजना का लाभ जरूर लें।
1: हमारे पास व्हाट्सएप पे भी एक सवाल आया है, उन्होंने पूछा है कि MSME को ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलता है क्या?
0: जी बिल्कुल, MSME को डेफिनेटली ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलता है। जैसे मैंने बताया कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें 48% कंट्रीब्यूशन माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की है, तो डेफिनेटली एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म हमारे MSMEs को मिलता है। और इसके अंदर मंत्रालय की तरफ से हमारी चेष्टा ये रहती है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को हम कैसे प्रमोट कर सकें, किस तरह से और बेटर एक्सपोर्ट्स हम कर पाएँ बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी। तो कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, ये दो एक पहलू हैं जिसके ऊपर हम काम करते हैं।
1: आपने उद्यम पोर्टल का जिक्र किया डॉक्टर रजनी, उस पर कैसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उसके क्या फायदे हैं, रजिस्टर करवाना क्यों जरूरी है?
0: देखिए, उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर कराने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एक एंटाइटलमेंट क्रिएट होती है। जब आप उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर करते हैं अपने आप को, तो आप MSME में औपचारिक रूप से शामिल हो जाते हैं, आपको एक पहचान मिलती है, आपकी एक एंटाइटलमेंट क्रिएट होती है। मैंने जैसे बताया कि 20 से ऊपर योजनाएं हैं, फ्लैगशिप प्रोग्राम्स जो हम इंप्लीमेंट करते हैं, तो इन योजनाओं का आप लाभ तभी ले पाते हैं अगर आप उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल 2020 में शुरू किया गया था, ये पोर्टल फुल्ली वॉलंटरी है, ऑनलाइन है, और ये पोर्टल हमारा, इसमें हमारी API बैकिंग है, जिसके अंदर हम GST, इनकम टैक्स

0: और अलग अलग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो पोर्टल्स हैं उनसे जुड़े हुए हैं। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो बहुत सरल है। इसमें आपको अपना पैन नंबर और आधार नंबर, उसके बेसिस पे बेसिक जानकारी आप फिल करेंगे, बाकी डेटा हम ऑटो फेच करते हैं और उसके ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे, ऐसा नहीं है कि कोई इंस्पेक्टर आपकी यूनिट पे आएगा, वहां पर जाके पहले आपकी यूनिट को इंस्पेक्ट करेगा, उसके बाद कोई आपको रजिस्ट्रेशन जो है उसकी अप्रूवल होगी। ये सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस के ऊपर है, आप अपने आप जो है स्वतः ही इसके अंदर रजिस्टर हो सकते हैं।
1: चाहते चाहते बहुत जल्दी से विश्वकर्मा योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की गई थी, उससे क्या लाभ हुआ है जो पारंपरिक कारीगर हैं और शिल्पकार हैं?
0: देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि 30 लाख लोगों को 5 साल में हमें जोड़ना था। 2023 में ये योजना सितंबर में शुरू की थी, 2028 तक हमारे को 30 लाख लोगों को जोड़ना था। 2.5 साल में ही 30 लाख लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 30 लाख में से 24 लाख लोगों को हम प्रशिक्षण दे चुके हैं। 17 लाख लोगों को 15,000 रुपये का टूल किट प्राप्त हो चुका है। 6 लाख लोगों को 5,000 करोड़ से ऊपर के ऋण मिल चुके हैं। तो एक ब्रॉड मैंने आपको जानकारी,
1: तो बहुत बड़े स्तर पर योजनाओं का लाभ ले रहे हैं एमएसएमई। डॉक्टर रजनीश, आप आए हमसे चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद। अपने श्रोताओं का भी आभार व्यक्त करते हैं। अगले सोमवार को फिर से मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति, नमस्कार।
0: धन्यवाद प्रियंका जी।
2: मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलो हर्ट्ज और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

श्रोताओं, रात का अपना एक अलग ही मज़ा होता है, और अगर रात में हल्की सी ठंडक हो, मौसम थोड़ा रूमानी हो, भीषण गर्मी के बीच आज की बारिश ने मौसम को थोड़ा रूमानी कर दिया है। सदाबहार फिल्म मुझे जीने दो का एक ऐसा ही गीत जो अभी आप सुन रहे थे, आज भी हमारे दिलों पर राज करता है। साहिर लुधियानवी के दिल को छू लेने वाले बोल, जयदेव का शानदार संगीत और स्वर कोकिला, लता मंगेशकर की जादुई आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये बेहद खूबसूरत नगमा। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से।

राम और श्याम। इस फिल्म का ये गाना भी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। शकील बदायूनी के लिखे इस गाने को संगीत दिया था नौशाद ने।

ऐसा लगा जैसे वो बीता हुआ दौर फिर से जीवंत हो उठा। चोरी चोरी फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की जादुई आवाज में। गीत के बोल हसरत जयपुरी के, संगीत निर्देशन शंकर जयकिशन का था।

कहते हैं इश्क वो दरिया है जो हर किसी को अपनी गहराई में डुबो देता है। मोहब्बत की इसी गहराई और समर्पण को बयां कर रहा था फिल्म दिल एक मंदिर का ये गाना जिसे आपने अभी अभी सुना। लता मंगेशकर की आवाज में, गीत के बोल हसरत जयपुरी के, संगीत निर्देशन शंकर जयकिशन का था। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से।

कहते हैं खुदा ने जब किसी की खूबसूरती को तराश कर इस जमीन पर उतारा होगा तो उसे भी खुद पर रश्क आया होगा। संगीत की दुनिया में एक ऐसा ही नगमा जो खूबसूरती की तारीफ में बेहतरीन माना गया, अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, जिसे हमने लिया था फिल्म घराना से। शकील बदायूनी के लिखे इस गाने को संगीत दिया था रवि ने।

जब प्यार दिल में इस कदर उतर जाए तो दुनिया की सुध-बुध भला किसे रहती है। फिल्म साहिब बीबी और गुलाम का यह सदाबहार गीत जहां एक तरफ दिल की गहराई को छू लेता है, वहीं दूसरी तरफ हमें एक खूबसूरत एहसास से भर देता है। गीता दत्त की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म साहिब बीबी और गुलाम का ये गाना। शकील बदायूनी के लिखे इस गाने को संगीत दिया था हेमंत कुमार ने।

हसरत जयपुरी के लिखे इस गाने को अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, जिसे हमने लिया था फिल्म राजकुमार से। संगीत निर्देशन शंकर जयकिशन का था।

मोहब्बत में परस्तिश और इबादत का क्या मकाम होता है, इस गीत से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। ये गीत अभी आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर की आवाज में, जिसे हमने लिया था फिल्म हमराज से। शाहिर लुधियानवी के लिखे इस गाने को संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने।

अनोखी रात। इस फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। कैफी आजमी के लिखे इस गाने को संगीत दिया था रोशन ने। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से।

अदाओं में शोखियाँ और लहजे में मिठास। इस गीत की हर एक धुन जैसे दिल के बिल्कुल पास। लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे पाकीज़ा फिल्म का ये गाना। गीत के बोल मजरूह सुल्तानपुरी के, संगीत गुलाम मोहम्मद का।

मोहब्बत वो एहसास है जो वक्त की सीमाओं से परे होती है, और जब प्यार में इंतजार की हद हो जाए तो वो इबादत बन जाती है। फिल्म बहू बेगम का ये गाना अभी आप सुन रहे थे, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। शाहिर लुधियानवी के लिखे इस गाने को संगीत दिया था रोशन ने।

0: एन इवनिंग इन पेरिस। इस फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। शैलेंद्र के लिखे इस गाने को संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजने को हैं। अब समाचार होंगे क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
2: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को 12 महीनों तक हिरासत में रखा जा सकता है। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की आज कड़ी निंदा की। इन हमलों में महिलाओं और बच्चे समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये खुली आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। भारतीय सेना ने मीडिया की उन